लेकिन माताओं की आदत, अब आजकल वो चल गए कान में लगा लेती रोटी बनाती है, हे जय हो माता, फिल्मी गीत लगे हैं, फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए, और रोटी बन रही। अब बताओ वो प्रसाद जो पाएगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हनुमान जी ही बचाएं। माताओं हमारी प्रार्थना है जब भोजन बनाए तो भोजन भोजन की तरह नहीं प्रसाद की तरह बनाए। अच्छा प्रसाद में कितने अक्षर हैं बताओ, बोलो बोलो, तुम तो पढ़े लिखे हो, कितने हैं? तीन। कौन कौन? प्रा सा, प्रामाने प्रत्यक्ष, सामाने साक्षात, दामाने दर्शन। जिसको पाकर के साक्षात दर्शन का अनुभव हो वही भगवान का प्रसाद है। इसीलिए जब भी प्रसाद बनाए तो प्रसाद ना बनाए पहली थाली। पहले के जमाने में माताएं रोटी बनाया करती थी तो पहली रोटी गाय को और लास्ट की रोटी कुत्ता को। आज का जमाना बड़ा उल्टा हो गया। आज के जमाने में पहली रोटी तो खुद ही खा जाती है, मतलब हम गाय हैं, और अंतिम

आफत मोल नहीं लेनी है। पहले के जमाने में गाय माता की रोटी, हमारी माता जी तो अभी भी निकालती, यहाँ भी बहुत माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके घर पे पहली रोटी गाय को निकलती होगी। हमें भरोसा है जो नहीं है वो आज से मान जाएंगे, ये भी हमें भरोसा है। हाँ, ये भी हमें भरोसा है। तो अगर हम पहली रोटी गाय को निकालें, फिर पहली थाली भगवान को लगा दें, घर में जो ठाकुर जी हैं, हनुमान जी हैं, बालाजी हैं, सन्यासी बाबा हैं, उसी थाली का प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबकी थाली में रख दें तो वो प्रसाद हो जाएगा। माता जानकी जी ने क्या कहा हनुमान जी से, दे

इस चौपाई का यदि अर्थ निकाला जाए तो लंका में भी जाना पड़े पर दिल में यदि राम हो, मेरे पागलो ये संसार सागर है और संसार सागर में माया कंचन कामनी और काया तीनों खींचते हैं। कंचन का मतलब सोना, कामनी का मतलब भोग और काया का मतलब शरीर, ये तीनों खींचते हैं और लंका में भी तीन है। कंचन मतलब सोना, सोने की लंका, कामनी मतलब भोग भोगने वाली स्त्रियां और काया बड़े बड़े भट सुभट और सुंदर नारियां तीनों खींचती हैं लंका में। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, क्या अद्भुत सूत्र दिया कि यदि तुम्हें ऐसी जगह जाना पड़े तो घबराना मत, हृदय में राम रख करके जाना, राम जी को हृदय में रख करके जाओ तो लंका में भी डंका बजा करके आओगे। कितना अच्छा संकेत है। अच्छा विचित्र बात देखो, हम लोग लंका में नहीं है, भारत में है, फिर भी राम राम नहीं जप पा रहे, और विभीषण लंका में था फिर भी राम का भजन कर पा रहा था, बोलो सीताराम। तो रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ, राम जी के चरण हृदय में रखकर फल खाओ, बोलो सीताराम। इस पे एक बात और बोले, कह दो बोलो, कहो सुनो, भगवान को सर्वस्व मानकर जो भी भगत जीवन जिएगा भैया, हम दावे के साथ कह सकते उसका कभी काम नहीं बिगड़ेगा। भगवान को सब कुछ मानो हृदय में, ये एक अच्छा सूत्र बनता यहां पर, जो माता जानकी जी ने कहा वो सूत्र ये बनता, बाहर से संसारी रहो अंदर से सन्यासी हो जाओ। हाँ, बाहर से संसारी रहो पर अंदर से सन्यासी हो जा, बाहर से संसार के रहो। किसी को हम कथा सुनाते, बोले गुरुजी अब तो हम बाबा बनेंगे, ना ना ना ठटरी के भरे बाबा काहे को बने, बाबा मत बनो, एक काम करो, हाँ बाहर से संसार के रहो, जगत के काम करो, जो कर रहे दुकान मकान नौकरी सब करो, पर अंदर से भगवान के हो जाओ कि हम जो भी कर रहे भगवान के लिए कर रहे हैं। हनुमान जी जो भी कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे, बोलो बोलो बोलो, किसके लिए कर रहे थे, राम जी के लिए कर रहे थे। हमें एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए, जल्दी तो नहीं है तुम्हें, हमें भी नहीं है, हम तो फ्री हैं। आहा।

जो जो भगवान को भुला रहे हैं, माया के चक्कर में, काम के चक्कर में, जगत के चक्कर में, जरा कान खोलकर सुन लो भैया।

0: कौन से दिन जन्म लिए हुए लोग अक्सर बीमार रहते हैं? किस दिन जन्म ले लिए हुए लोगों के जीवन में पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता? और किस दिन जन्म लेने वाले लोगों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है? आपके जन्मदिन का आपकी किस्मत से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: Good news today is really good. In this case, there are खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे, वैदिक मंत्रोच्चार से कुंभाभिषेकम और आयु सेना के अशो के बीच मनाया जा रहा है सोमनाथ अमृत पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे आयोजन का हिस्सा। वडोदरा में आज सरदार गौरव रत्न से सम्मानित होंगे पीएम मोदी। सामाजिक सुधार और राष्ट्र विकास में सराहनीय योगदान, नवनिर्मित सरदार धाम भवन 3 का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। हीट वेव और बाढ़ को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, आपदा प्रबंधन पर कड़े निर्देश। शाह ने दिया गर्मी के विरुद्ध जीरो कैजुअल्टी का मंत्र।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
10: सोमनाथ अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज, आज भव्य समारोह में मंदिर के इतिहास को किया जाएगा याद। सोमनाथ मंदिर के इतिहास में आज पहली बार होगा कुंभाभिषेकम, 11 तीर्थों के पवित्र जल का होगा इस्तेमाल। विशाल कुंभ को मंदिर के शिखर पर ले जाने के लिए 90 मीटर ऊंचे क्रेन का होगा प्रयोग, मंत्रों से किया जाएगा अभिषेक। दक्षिण भारत के मंदिरों में होने वाली परंपरा पर अब सोमनाथ भी दिखेगी, मंदिर के सांस्कृतिक जीवंतता को मिलेगा बढ़ावा। 11 मई 1951 को आधुनिक सोमनाथ मंदिर का हुआ था लोकार्पण, आज 75 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, जामनगर में करेंगे रात्रि विश्राम। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी जामनगर से सोमनाथ के लिए होंगे रवाना, हेलीपैड से मंदिर तक निकालेंगे रोड शो। सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, रोड शो में 12 ज्योतिर्लिंग की झांकियां भी रहेंगी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर पर ध्वजा भी चढ़ाएंगे, सूर्य किरण टीम का एयर शो के साथ करेंगे पुष्प वर्षा। बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर हुआ आयोजन। अरुल मिगू श्री पूथाजी मंदिर के चिथिराई उत्सव में 1008 पालकुडम शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं ने दूध कलश लेकर देवी मरियम्मन की पूजा अर्चना की। तिरुचिरापल्ली में चिथिराई फेस्टिवल के दौरान उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, मंदिर परिसर ओम शक्ति के जयकारों और पारंपरिक संगीत से गूंज उठा। 1008 पालकुडम यात्रा में महिलाओं और युवाओं ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा। श्रद्धालुओं ने सर पर दूध का कलश रखकर देवी से सुख समृद्धि की कामना की। चिथिराई महोत्सव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के खास इंतजाम किए। श्रद्धालुओं के लिए पानी, छाछ और मेडिकल सहायता केंद्र भी लगाए गए। तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक आयोजन में शामिल यह उत्सव हर साल हजारों भक्तों को कराता है आकर्षित। पालकुडम और रथ यात्रा जैसे अनुष्ठान बने हुए हैं इसकी खास पहचान। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब, भक्तों का आंकड़ा पहुंचा करीब 10.5 लाख। केदारनाथ धाम रिकॉर्ड तोड़ने के करीब, अब तक सबसे ज्यादा 4,42,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे धाम। बद्रीनाथ धाम में रविवार को 22,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, अब तक का आंकड़ा 2,88,000 के पार। यमुनोत्री धाम में कल 12,560 भक्तों ने दर्शन किए, अब तक 1,68,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे दरबार। गंगोत्री धाम में 10 मई को करीब 12,000 भक्तों ने दर्शन किए, अभी तक 1,66,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य लगभग हो चुका है पूरा। परिसर को अंतिम रूप देने और सौंदर्यीकरण का तेजी से चल रहा है काम। मंदिर परिसर में बन रहा है शहीद स्तंभ 15 जून तक हो जाएगा तैयार। इसके बाद बड़े निर्माण कार्य खत्म होंगे और केवल रखरखाव टीम रहेगी मौजूद। कुबेर टीला सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर श्रद्धालुओं के बने हैं आकर्षण का केंद्र। राम भक्त अब पूरे आध्यात्मिक परिसर का कर पा रहे हैं दिव्य अनुभव। सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय में 20 आधुनिक गैलरियों की जा रही है तैयारियां। एक विशेष गैलरी भगवान हनुमान को होगी समर्पित। मंदिर के शिखर को विशेष लाइटिंग से जगमगाने की तैयारी हो गई है शुरू। जून अंत तक ट्रस्ट के सामने होगा मॉक प्रदर्शन। रामायण शोध का वैश्विक केंद्र बनेगा अयोध्या। एक ही छत के नीचे मिलेगा श्रीराम साहित्य, पांडुलिपि और शोध सामग्री। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया परीक्षा परिणाम, 10वीं के परिणामों में बेटियों ने मारी बाजी। 10वीं की परीक्षा परिणाम में टॉप 10 में कुल 107 छात्राओं में 83 लड़कियां, वहीं लड़कों की संख्या रही 24। कांगड़ा की अनमोल ने 700 में से 699 नंबर लाकर प्राप्त किया प्रथम स्थान। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रही 3 छात्रा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने कृष्णावतारम पार्ट 1 की देखी स्पेशल स्क्रीनिंग, फिल्म की जमकर सराहना की। बीजेपी विधायक मुकेश पटेल ने सूरत के ओलपाड़ में 32 गरीब आदिवासी जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। 8 साल में उनके ट्रस्ट ने अब तक 471 जोड़ों की निःशुल्क करवाई शादी। ओलपाड़ में आज सामूहिक विवाह समारोह में आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को नई शुरुआत मिली। विवाह का पूरा खर्च और घर बसाने का सामान ट्रस्ट की ओर से दिया गया। कार्यक्रम में गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी भी हुए शामिल। इस पहल को समाज सेवा और सामाजिक समरसता की बताया मिसाल। नवविवाहित जोड़े ने ट्रस्ट का जताया आभार, आर्थिक तंगी के बीच यह आयोजन उनके लिए बना बड़ी मदद। असम के गुवाहाटी के कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में मौसम फिर से लेने वाला है बड़ा यू टर्न, तेज हवाओं और बारिश का येलो अलर्ट जारी। आईएमडी ने मौसम में बड़े बदलाव की जताई संभावना, दो दिनों तक दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार। भारत में एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्ट, बिहार से बंगाल की खाड़ी तक दिखेगा असर। केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट, तटीय राज्य ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। बिहार और झारखंड में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के अनुमान, गरज के साथ बारिश होने की संभावना। पूर्व नेशनल पार्क की सीमा से बाहर निकल चीते का रेस्क्यू, तेज दिनों से बाहरी इलाके में घूम रहा था चीता। चीता के AP2 को ट्रैकलाइज कर लाया गया कूनो पार्क, खुले जंगल में छोड़ा। रणथंभौर में बढ़ रहा है बाघों का कुनबा, टेरिटरी को लेकर बड़ा आपसी संघर्ष। रणथंभौर का दायरा बढ़ाने पर वन विभाग कर सकता है विचार, बाघों के लिए नए ग्रासलैंड भी विकसित किए जाने की जरूरत। करीब 1700 वर्ग किलोमीटर में फैला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, 77 से अधिक बाघ बाघे नौशावर। टेरी गढ़वाल में विधि विधान के साथ निकाली गई विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। उत्तराखंड में पिछले 27 सालों से निकाली जा रही है पवित्र विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा, प्रदेश के प्रमुख देवालयों में करेगी भ्रमण। भगवान विश्वनाथ जगदीशिला के दर्शन कर लोगों ने की सुख समृद्धि की कामना, जगह जगह डोली का भव्य स्वागत। जोशीमठ नीति मलारी बॉर्डर रोड पर भारी भूस्खलन, मार्ग पूरी तरह से बंद।
7: लगाए थे लेकिन
10: अलवर के राजगढ़ थाने की रसोई में निकला 8 फीट लंबा सांप, मुश्किल से किया गया रेस्क्यू। चाइना बीजिंग इंटरनेशनल हाईटेक एक्सपो में अंडर वाटर ऑर्का मरीन रोबोट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, रोबोट समुद्र में सफाई और विंड फॉर्म मेंटेनेंस जैसे कर सकता है काम। बीजिंग हाईटेक एक्सपो में AI टेक्नोलॉजी रही सबसे बड़ा आकर्षण, करीब 30 कंपनी ने AI मॉडल, ऑटोनॉमस ट्रैक्टर और डिजिटल ड्रिवन टेक किया पेश। 50,000 वर्ग मीटर में फैले टेक एक्सपो में 800 से ज्यादा कंपनी शामिल, IT, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी समेत 6 थीम जोन बनाए गए। प्लान स्पेस के जुकू 2 और जुकू 3 रोबोट मॉडल ने लोगों को किया आकर्षित, एक्सपो में चीन की रीयूजेबल स्पेस टेक्नोलॉजी की झलक देखने को मिली। ग्रीन और लो कार्बन टेक्नोलॉजी भी एक्सपो का रही फोकस, कार्बन कैप्चर, वेस्ट रिसाइकलिंग और स्मार्ट एनर्जी सिस्टम की नई टेक्निक प्रदर्शित की गई।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
4: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन का आपके भाग्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या वो दिन आपकी किस्मत पर कोई असर डालता है, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आपके भाग्य को चमकाने के लिए एक लकी टिप। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, ज्योतिष में ये भी बताया जाता है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसका आपके भाग्य पर, जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। जिस तिथि को हुआ है, जिस नक्षत्र में हुआ है, वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन आपका जन्म जिस दिन हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसका भी आपके भाग्य से संबंध है, और वही आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिनका जन्म सोमवार के दिन हुआ है उनका, उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सोमवार का दिन होता है चंद्रमा का दिन, तो जिनका जन्म सोमवार को होगा स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर चंद्र का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य होगा। तो सोमवार के दिन जिनका जन्म हुआ है ऐसे लोग बड़े मूडी स्वभाव के होते हैं। कब गुस्सा जाएं, कब खुश हो जाएं, कब उदास हो जाएं, ये पता नहीं चलता। मूडी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनका भाग्य आम तौर पर विवाह के बाद उदय होता है। विवाह के बाद ये जीवन में तरक्की ज्यादा करते हैं। जिन लोगों का भी जन्म सोमवार के दिन का है इनको हमेशा अपने रिश्तों में सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में रिश्तों के मामले में अक्सर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अगर आपका जन्म सोमवार के दिन का है तो आप ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की उपासना करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जीवन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। अगर आपका जन्म हुआ है मंगलवार को तो इसका आपके भाग्य से क्या संबंध है। मंगलवार का मतलब हुआ कि आपके ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव जरूर होगा, थोड़ा या ज्यादा। क्या प्रभाव होगा? आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ होता है ऐसे लोग स्वभावतः बड़े क्रोधी होते हैं, बड़े डोमिनेटिंग, बड़ा शासन करने वाले, बड़ा रूल करने वाले होते हैं, और आम तौर पर बचपन में बीमार रहते हैं। जिन भी बच्चों का जन्म या लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है उनसे पूछिए तो पता चलेगा कि बचपन में बीमार रहते थे या बचपन में बार बार चोट चपेट लगती थी। जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है ऐसे लोगों को पूरे जीवन में चोट चपेट का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके साथ चोट चपेट की, इंजरी की संभावनाएं रहती हैं। अगर आपका जन्म मंगलवार के दिन का है तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा, और अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा ही पढ़िएगा, आपको लाभ होगा। देखिए, जिन लोगों का जन्म बुधवार के दिन हुआ है तो उनके ऊपर बुध ग्रह का प्रभाव थोड़ा बहुत जरूर होगा, क्योंकि बुधवार के दिन का स्वामी है बुध। तो जिनका जन्म बुधवार को हुआ है, ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः बुधवार के दिन जन्म लेने वाले लोग धनवान होते हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी सफलता से काम करते हैं, लेकिन हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, हर काम को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। याद रखिए, हर काम परफेक्ट नहीं हो सकता। जिन लोगों का जन्म बुधवार को हुआ है उनके अंदर अहंकार आने की संभावना प्रबल होती है। तो जिनका जन्म भी बुधवार को है उन्हें अपने अहंकारी स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना उनका डाउनफॉल हो सकता है। और अगर आपका जन्म बुधवार को हुआ है तो अधिक से अधिक श्री हरि विष्णु की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनका जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ है उनके ऊपर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव अवश्य होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन के स्वामी हैं बृहस्पति। जिन लोगों का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इस दिन जन्म लेने वाले लोग भाग्यवान होते हैं। इस दिन जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य थोड़ा बेहतर होता है। इन लोगों को अपने कर्मों की वजह से और अपने स्वभाव की वजह से जीवन में मान सम्मान बहुत मिलता है। जीवन में पैसा भले ही कम पाएं, लेकिन सम्मान बहुत होता है। अगर आपका जन्म बृहस्पतिवार का है तो आपको अपनी एक आदत पर ध्यान देना होगा। जीवन में दूसरों के ऊपर ज्यादा विश्वास करने से बचिएगा, क्योंकि यहां पर आपके साथ धोखा हो सकता है। जिन लोगों का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, ऐसे लोगों को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर भगवान शिव की उपासना करें तो जीवन अच्छा रहेगा। देखिए, जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को हुआ है उनके ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन के स्वामी हैं शुक्र। तो जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को हुआ है ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनके मन में ईश्वर के प्रति, साधना पूजा के प्रति, उपासना के प्रति थोड़ा झुकाव होता है। ये थोड़े आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं। इनके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होती है और जीवन की बड़ी सारी मुश्किलों से ये ईश्वर की कृपा के कारण बच जाते हैं। जिन लोगों का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है वो थोड़े स्वभाव से लापरवाह होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो इनको लापरवाही से और अति विश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। और अगर आपका जन्म शुक्रवार का है, आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, पूजा उपासना करें, दान करें, तो आपके लिए जीवन बेहतर होगा। जिन लोगों का जन्म शनिवार के दिन हुआ है, वो ये ना सोचें कि शनिवार को जन्म हुआ है तो अशुभ है। शनिवार को जन्म लेने से किसी का जीवन अशुभ नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर शनिवार के दिन का आपका जन्म है तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव शनि ग्रह का होगा। तो शनिवार के दिन जो लोग जन्म लिए हैं, ऐसे लोगों को सामान्यतः जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन एक उम्र के बाद ऐसा देखा गया है कि लगभग 28-30 साल के बाद या तो घर से बहुत दूर जाते हैं या विदेश जाते हैं, और घर से दूर जा करके जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अगर शनिवार के दिन का जन्म है आपका, आप नशे के चक्कर में बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो नशे के चक्कर से बचिए, इधर उधर के प्रेम के चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि प्रेम आपका असफल होगा और जीवन में कष्ट का कारण बनेगा। अगर आपका जन्म शनिवार के दिन का है तो जीवन में संघर्ष कम हो, जीवन की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, इसके लिए नियमित रूप से शनि देव की उपासना करिएगा। कम से कम रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आपका जन्म रविवार के दिन का है तो रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन है। इस दिन के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है, तो जिनका जन्म रविवार के दिन का होता है उनके ऊपर सूर्य देव का प्रभाव थोड़ा बहुत अवश्य होता है। जिन लोगों का जन्म रविवार के दिन का है, ऐसे लोग सामान्यतः बीमार रहते हैं। छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं इनके साथ लगी रहती हैं, लेकिन ये लोग जीवन में बहुत सारा नाम और यश पाते हैं, यशस्वी बहुत होते हैं, अपने करियर जीवन में सफलता बहुत पाते हैं, ऊंचाइयों पर बहुत जाते हैं, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य की दिक्कतें लगी रहती हैं। इनको अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का जन्म रविवार को हुआ है, ऐसा देखा जाता है कि उनकी फैमिली लाइफ, उनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। तो एक तो पारिवारिक जीवन का ध्यान दीजिए, और दूसरे नंबर पर नियमित रूप से सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपका जन्म दिन के समय का है, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का है, तो चंद्रमा की उपासना करिए, और अगर रात का जन्म है यानी सूर्यास्त से लेके अगले दिन के सूर्योदय के पहले का जन्म है तो सूर्य देव की उपासना करिए। यानी दिन का जन्म है तो चंद्रदेव की और रात का जन्म है तो सूर्य देव की उपासना करें। ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष कम होता जाएगा। अगर आपके विदेश जाने में अड़चन आ रही हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए। सुबह और शाम बृहस्पति मंत्र का जप करिए, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में धारण करिए, और एक कांच की शीशी छोटी सी लेकर उसमें पीसी हुई हल्दी भर लीजिए और इसको अपने सिरहाने रखिए और सोते समय भी सिरहाने रहने दीजिए। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: आज सोमनाथ मंदिर में पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे, वैदिक मंत्रोच्चार से कुंभाभिषेक और वायुसेना के एयर शो के बीच मनाया जा रहा है सोमनाथ अमृत पर्व। प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे आयोजन का हिस्सा। वडोदरा में आज सरदार गौरव रत्न से सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सामाजिक सुधार और राष्ट्र विकास में सराहनीय योगदान, नवनिर्मित सरदार धाम भवन 3 का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। हीटवेव और बाढ़ को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, आपदा प्रबंधन पर कड़े निर्देश। शाह ने दिया गर्मी के विरुद्ध जीरो कैजुअल्टी का मंत्र। दुनिया के सामने आई कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता की सफलता की कहानी। शॉर्ट फिल्म में दिखा मादा चीता की ममता और शावकों का संघर्ष। 3 साल में जन्मे 49 शावक, अब तक 57 हुए संख्या। इकॉनमी और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित 28वें चीन बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हाईटेक एक्सपो का समापन। अंडर वाटर क्लीनिंग समेत कई जटिल काम करने में सक्षम मरीन रोबोट ऑर्का का डेब्यू, दुनिया को लुभाया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में, और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जिस दिन भी आपका जन्म होता है, आपके जन्म का दिन चाहे वो सोमवार हो चाहे वो मंगलवार हो, उसका आपके भाग्य से, आपकी किस्मत से किस तरह कनेक्शन होता है, किस तरह से आपका जो भाग्य है वो बदल सकता है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: अगर आपका जन्म दिन के समय का है, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का है, तो चंद्रमा की उपासना करिए। और अगर रात का जन्म है, यानी सूर्यास्त से लेके अगले दिन के सूर्योदय के पहले का जन्म है, तो सूर्य देव की उपासना करिए। यानी दिन का जन्म है तो चंद्रदेव की, और रात का जन्म है तो सूर्य देव की उपासना करें। ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष कम होता जाएगा।
4: और चलिए अब जानते हैं 11 मई 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर

0: कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसका आपके भाग्य पर, जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, जिस तिथि को हुआ है, जिस नक्षत्र में हुआ है, वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन आपका जन्म जिस दिन हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसका भी आपके भाग्य से संबंध है, और वही आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिनका जन्म सोमवार के दिन हुआ है, उनका, उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सोमवार का दिन होता है चंद्रमा का दिन, तो जिनका जन्म सोमवार को होगा, स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर चंद्र का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य होगा। तो सोमवार के दिन जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोग बड़े मूडी स्वभाव के होते हैं। कब गुस्सा जाएं, कब खुश हो जाएं, कब उदास हो जाएं, ये पता नहीं चलता। मूडी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनका भाग्य आम तौर पर विवाह के बाद उदय होता है। विवाह के बाद ये जीवन में तरक्की ज्यादा करते हैं। जिन लोगों का भी जन्म सोमवार के दिन का है, इनको हमेशा अपने रिश्तों में सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में रिश्तों के मामले में अक्सर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अगर आपका जन्म सोमवार के दिन का है, तो आप ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की उपासना करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जीवन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी।
1: और अब जानेंगे कि अगर आपका जन्म मंगलवार को हुआ हो तो इसका क्या फल है।
0: अगर आपका जन्म हुआ है मंगलवार को, तो इसका आपके भाग्य से क्या संबंध है? मंगलवार का मतलब हुआ कि आपके ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव जरूर होगा, थोड़ा या ज्यादा। क्या प्रभाव होगा? आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ होता है, ऐसे लोग स्वभावतः बड़े क्रोधी होते हैं, बड़े डोमिनेटिंग, बड़ा शासन करने वाले, बड़ा रूल करने वाले होते हैं, और आम तौर पर बचपन में बीमार रहते हैं। जिन भी बच्चों का जन्म या लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है, उनसे पूछिए तो पता चलेगा कि बचपन में बीमार रहते थे या बचपन में बार बार चोट चपेट लगती थी। जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है, ऐसे लोगों को पूरे जीवन में चोट चपेट का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके साथ चोट चपेट की, इंजरी की संभावनाएं रहती हैं। अगर आपका जन्म मंगलवार के दिन का है, तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा, और अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, तो कम से कम सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा ही पढ़िएगा, आपको लाभ होगा।
1: और अब आइए जान लेते हैं आपके राशिफल के बारे में। तो जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल का क्या है परिणाम।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य

0: अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं कि अगर आपका जन्म बुधवार को हुआ है तो इसका क्या फल आपको आपके जीवन में मिलेगा।
0: देखिए, जिन लोगों का जन्म बुधवार के दिन हुआ है तो उनके ऊपर बुध ग्रह का प्रभाव थोड़ा बहुत जरूर होगा, क्योंकि बुधवार के दिन का स्वामी है बुध। तो जिनका जन्म बुधवार को हुआ है, ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः बुधवार के दिन जन्म लेने वाले लोग धनवान होते हैं, बड़ी मेहनत से बड़ी सफलता से काम करते हैं, लेकिन हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, हर काम को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। याद रखिए, हर काम परफेक्ट नहीं हो सकता। जिन लोगों का जन्म बुधवार को हुआ है उनके अंदर अहंकार आने की संभावना प्रबल होती है, तो जिनका जन्म भी बुधवार को है उन्हें अपने अहंकारी स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना उनका डाउनफॉल हो सकता है। और अगर आपका जन्म बुधवार को हुआ है तो अधिक से अधिक श्री हरि विष्णु की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और बुधवार के बाद आइए जानते हैं कि अगर आपका जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ है तो इसका आपको क्या फल मिलेगा।
0: जिनका जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ है उनके ऊपर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव अवश्य होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन के स्वामी हैं बृहस्पति। जिन लोगों का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इस दिन जन्म लेने वाले लोग भाग्यवान होते हैं, इस दिन जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य थोड़ा बेहतर होता है। इन लोगों को अपने कर्मों की वजह से और अपने स्वभाव की वजह से जीवन में मान सम्मान बहुत मिलता है। जीवन में पैसा भले ही कम पाएं, लेकिन सम्मान बहुत होता है। अगर आपका जन्म बृहस्पतिवार का है तो आपको अपनी एक आदत पर ध्यान देना होगा। जीवन में दूसरों के ऊपर ज्यादा विश्वास करने से बचिएगा, क्योंकि यहां पर आपके साथ धोखा हो सकता है। जिन लोगों का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, ऐसे लोगों को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर भगवान शिव की उपासना करें तो जीवन अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संतान से आपको सुख मिलेगा, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, रुका हुआ काम इस समय होगा आपका, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों का और पंडित जी द्वारा उनके दिए जाने के जवाबों का। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न सविता जी ने हमें लिखा है और सविता जी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1984, शाम के 7 बजे, जन्म स्थान है पटना बिहार। सविता जी कह रही हैं कि काफी समय से ये और इनके पति मिल करके मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी संपत्ति का लाभ कब तक होगा? सविता जी, आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी खरीदने और बनाने का योग चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से ये संभावना बनती है कि नवंबर 2026 के पहले आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगी या बना लेंगी। उसके लिए अभी से प्रयास करना शुरू कर दीजिए। रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करिए। ये दो उपाय अगले 6 महीने तक लगातार करिएगा, संपत्ति प्राप्ति की आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी, अगला प्रश्न अरुण जी ने हमें लिखा है और अरुण जी हमें हिमाचल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1983, शाम के 6 बजे, सोलन। अरुण कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इनके व्यापार में दिक्कतें चल रही हैं, काम में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो क्या उपाय करें जिससे व्यापार बेहतर हो? और दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में अशांति बहुत है, उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? अरुण जी, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका होटल, रेस्टोरेंट, लॉज, ऐसा कोई व्यापार होगा ऐसा मुझे लगता है। तो व्यापार आपका ठीक है, हाँ 6 महीने से समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में दोबारा से व्यापार अच्छा हो जाएगा, उसको लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में धन के मामले में या व्यापार के मामले में कोई बड़ी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। जहां तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, देखिए आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के एवरेज ही रहेगा, बहुत एक्सेलेंट नहीं होगा, लेकिन अभी की तुलना में थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो अपने व्यापार और अपने वैवाहिक जीवन के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं जिनका भी जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है, उनको उनके जीवन में इससे क्या फल मिलने वाला है।
0: देखिए, जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को हुआ है उनके ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन के स्वामी हैं शुक्र। तो जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को हुआ है ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनके मन में ईश्वर के प्रति, साधना पूजा के प्रति, उपासना के प्रति थोड़ा झुकाव होता है। ये थोड़े आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं, इनके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होती है और जीवन की बड़ी सारी मुश्किलों से ये ईश्वर की कृपा के कारण बच जाते हैं। जिन लोगों का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है वो थोड़े स्वभाव से लापरवाह होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो इनको लापरवाही से और अति विश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। और अगर आपका जन्म शुक्रवार का है, आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, पूजा उपासना करें, दान करें, तो आपके लिए जीवन बेहतर होगा।
1: तो आज के इस एपिसोड में हमने जान लिया जिनका जन्म सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को हुआ है उनको उनके जीवन में क्या फल मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि जिनका जन्म शनिवार को हुआ है उनका उनके जीवन में उसको क्या फल मिलेगा।
0: जिन लोगों का जन्म शनिवार के दिन हुआ है वो ये ना सोचें कि शनिवार को जन्म हुआ है तो अशुभ है। शनिवार को जन्म लेने से किसी का जीवन अशुभ नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर शनिवार के दिन का आपका जन्म है तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव शनि ग्रह का होगा। तो शनिवार के दिन जो लोग जन्म लिए हैं ऐसे लोगों को सामान्यतः जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन एक उम्र के बाद ऐसा देखा गया है कि लगभग 28-30 साल के बाद या तो घर से बहुत दूर जाते हैं या विदेश जाते हैं, और घर से दूर जा करके जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अगर शनिवार के दिन का जन्म है आपका, आप नशे के चक्कर में बहुत जल्दी आ सकते हैं, तो नशे के चक्कर से बचिए, इधर उधर के प्रेम के चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि प्रेम आपका असफल होगा और जीवन में कष्ट का कारण बनेगा। अगर आपका जन्म शनिवार के दिन का है तो जीवन में संघर्ष कम हो, जीवन की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, इसके लिए नियमित रूप से शनि देव की उपासना करिएगा। कम से कम रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा।
1: और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों की समस्या का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया है रविवार के दिन जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके जीवन में उसको उनका क्या फल मिलेगा, तो आइए जानते हैं कि आपका जन्म अगर रविवार को हुआ है तो आपको इसका क्या फल मिलने वाला है।
0: देखिए, अगर आपका जन्म रविवार के दिन का है तो रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन है, इस दिन के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है, तो जिनका जन्म रविवार के दिन का होता है उनके ऊपर सूर्य देव का प्रभाव थोड़ा बहुत अवश्य होता है। जिन लोगों का जन्म रविवार के दिन का है ऐसे लोग सामान्यतः बीमार रहते हैं, छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं इनके साथ लगी रहती हैं, लेकिन ये लोग जीवन में बहुत सारा नाम और यश पाते हैं, यशस्वी बहुत होते हैं, अपने करियर जीवन में सफलता बहुत पाते हैं, ऊंचाइयों पर बहुत जाते हैं, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य की दिक्कतें लगी रहती हैं। इनको अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का जन्म रविवार को हुआ है ऐसा देखा जाता है कि उनकी फैमिली लाइफ, उनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। तो एक तो पारिवारिक जीवन का ध्यान दीजिए और दूसरे नंबर पर नियमित रूप से सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, धन का लाभ होगा, लेकिन दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल मीन राशि, काम का दबाव बना रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न निशांत शर्मा जी ने हमें लिखा है और निशांत शर्मा जी हमें प्रयागराज से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 जनवरी 1981। जन्म का समय रात में 8:20। जन्म स्थान है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं फिलहाल बैंक में नौकरी करता हूं और एक मेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है एक लोन को लेकर के। पहले जो अपील की थी, पहले जो डिस्कशन हुआ था या जो बात हुई थी उसमें मैं मुक्त हो गया था, लेकिन दोबारा से उस पर इंक्वायरी चल रही है, दोबारा से पूछताछ हो रही है। तो क्या मेरे करियर पर इसका कोई बुरा असर पड़ेगा या मुझे कोई पेनाल्टी मिलेगी या मुझे कोई दंड मिलेगा, क्या होगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। निशान जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका समय तनाव का चल रहा है, दंड का नहीं है। थोड़ी शांति और सब्र बनाए रखिए, आपने कोई गलती नहीं की है, समय का फेर है, आप मुश्किल में आ गए हैं। अक्टूबर तक शांति बनाए रखिए, अक्टूबर के बाद आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, आप इस इंक्वायरी से बाहर आ जाएंगे और अगले साल चूंकि आपका प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन बड़ी सरलता से हो जाएगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दो उपाय करिए, अगर आपने कोई भी लाल रंग का रत्न पहना है, मूंगा पहना है, माणिक पहना है, गोमेद पहना है, तो कृपा करके उसको निकाल दीजिएगा। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का हनुमान जी के चित्र के सामने बैठकर पाठ करिए, प्रार्थना करिए उनसे कृपा करने की। और मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का निर्धनों में दान करिए, आप चाहें तो हर मंगलवार को हलवा पूड़ी भी बांट सकते हैं। अगर ये दो उपाय आप करें दिसंबर तक भी बांट सकते हैं। अगर ये दो उपाय आप करें दिसंबर तक तो आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे।
1: और गुडलक में वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो कहां से और किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न कृष्ण दयाल जी ने हमें लिखा है, ये खगड़िया से लिखते हैं, खगड़िया बिहार से। फिलहाल ये रह रहे हैं पटना में, लेकिन मेल लिखते हैं खगड़िया से। ये अपनी पत्नी के बारे में अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 नवंबर 1956। जन्म का समय रात के लगभग 9 बजे। जन्म स्थान है खगड़िया। ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से काफी खराब चल रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। और हम पति पत्नी कभी खगड़िया में रहते हैं, कभी अपने बेटे के पास पटना में रहते हैं, तो हमारे लिए कहां रहना बेहतर होगा। कृष्णदयाल जी, सबसे पहले बता दूं कि जून 2027 तक अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, हड्डियों की नसों की समस्या का ध्यान रखिए, उनको कोई चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, इसका भी ध्यान बनाए रखिए। अपनी पत्नी को कहिए कि रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जहां तक रहने की बात है, देखिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप अपने बेटे के पास ही जाकर के रहिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि मेडिकल की वजह से, मेडिकल कारणों की वजह से आपको अभी अकेले रहना पति पत्नी का बहुत अच्छा नहीं है। विचार करेंगे भविष्य में खगड़िया के लिए, लेकिन अभी जा करके पुत्र के साथ रहिए। पुत्र आपका आज्ञाकारी भी है, सेवक भी है, तो अच्छा रहेगा। तो फिलहाल पत्नी के लिए ये उपाय करिए, साल भर तक सावधानी रखिए, आने वाले समय में चीजें बेहतर हो जाएंगी।
1: जिनका जन्मदिन 11 मई 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।

0: जन्मदिन 11 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में बड़े बदलाव होंगे, स्थान परिवर्तन होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: बहुत सारे लोग अपने ग्रहों को बेहतर करने के लिए रत्न धारण करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली में जो ग्रह खराब है उसका रत्न पहनो, उसको ठीक करो। कुछ लोग कहते हैं जो ग्रह अच्छा है उसका रत्न पहनो और अच्छा करो। तो कुंडली में किस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए? कुंडली के जो अशुभ ग्रह हैं और जो खराब ग्रह हैं उनका रत्न कभी भी धारण ना करें। कुंडली के लिए जो ग्रह शुभकारी हो, शुभ होने के बावजूद कमजोर हो, शुभ फल पूरी तरह से नहीं दे पा रहा हो, उसका रत्न धारण करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। इससे आपको जीवन में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा।
1: और आइए जान लेते हैं 11 मई 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो शिव मंत्र का, नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 11 मई सोमवार रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक।
1: गुडलक में अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को इस समय किस तरह के स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। आज की गुडलक राशि है वृषभ। इस समय सामान्यतः आपका स्वास्थ्य ठीक है, थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर, मानसिक उतार चढ़ाव है, लेकिन इस समय कोई बहुत चिंता करने की, कोई बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है।
1: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी

0: खाने में अड़चन आ रही हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए, सुबह और शाम बृहस्पति मंत्र का जप करिए, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में धारण करिए और एक कांच की शीशी छोटी सी लेकर उसमें पीसी हुई हल्दी भर लीजिए और इसको अपने सिरहाने रखिए और सोते समय भी सिरहाने रहने दीजिए।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की सारी अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें,
10: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में कल से एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार से दिल्ली में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिखने लगेगा। 2 दिनों के लिए दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बारिश के बाद दिल्ली और आसपास के इलाके का तापमान भी गिरने की उम्मीद है, यानी गर्मी से राहत के दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं।

0: मई के महीने में मौसम की आंख में चोली राजधानी में लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आई है। मई का महीना आमतौर पर चिलमिलाती गर्मी का एहसास कराता है, लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर ने गर्मी की तपिश को नदारद कर दिया है। शनिवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई और दिल्ली में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया, लेकिन ये तापमान भी सामान्य से थोड़ा कम ही रहा। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर दिल्ली में मौसम के करवट लेने के संकेत दे दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो सोमवार से एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिखने लगेगा। इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। कुछ इलाकों में गरज के साथ चमक भी देखने को मिल सकती है। बारिश और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली में एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे ही रहेंगे, यानी आने वाले कुछ और दिन दिल्ली वालों को गर्मी परेशान नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब आपको दिखाते हैं हांगकांग के 100 साल से ज्यादा पुराने टी हाउस की खबर, जिसे बचाए रखने और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए खास पहल की गई है। देखिए रिपोर्ट।
2: रंग बिरंगी लाइट्स के बीच डीजे की धुन पर डांस, झूमते थिरकते चेहरे, ये नजारा किसी पब या नाइट क्लब जैसा लग रहा है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। असल में ये हांगकांग का ऐतिहासिक टी हाउस है, जिसका नाम है लिन ह्यूआ लाओ। नई पीढ़ी के ग्राहकों को रिझाने और लुभाने के लिए यहाँ डिस्को बॉल जैसा माहौल बना दिया गया है, जिसमें नौजवान डांस फ्लोर पर नाचते पार्टी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ ऐसी ड्रिंक्स नहीं परोसी जा रही जिनमें अल्कोहल हो। असल में इस टेक हाउस को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने और पारंपरिक पकवान डिम सम को बढ़ावा देने के लिए यहाँ का माहौल बदल दिया गया है। टी हाउस में हुए इस अनोखे इवेंट में जेन जी से लेकर कुछ ज्यादा उम्र तक के 300 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और डिम सम का स्वाद लेते हुए मजे में थिरकते नजर आए। हांगकांग में ये टी हाउस 1920 में खोला गया था। यहाँ अभी भी पारंपरिक तौर तरीके से ही कैंटोनीज और चीनी पकवान परोसे जाते हैं, लेकिन समय के साथ चलने और नई जनरेशन को आकर्षित करने के लिए इसे नए ट्रेंड से जोड़ना जरूरी हो गया था। हालांकि करीब 100 साल पुराने इसके सेंट्रल ब्रांच को फिलहाल रीडेवलपमेंट के लिए बंद किया जा रहा है, लेकिन इस चेन के दूसरे टेक हाउस में आगे भी इस तरह की पार्टी चलती रहेंगी ताकि नई पीढ़ी का लगाव इससे बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: सोमवार के दिन जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य कैसा होता है? क्या मंगलवार के दिन जन्म लिए हुए लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं? किस दिन के जन्म का आपकी किस्मत से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today, from pop songs to EDM bangers. The hits are on. And hip-hop beats.
6: I'm in the game, I should have joined with this G23.
5: Today's hits will keep the party going 24-7. Listen now. Just search Today's Hits or ask your device to play Today's Hits on TuneIn.
7: में पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
11: गुड न्यूज टुडे
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: सोमवार के दिन जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य कैसा होता है? क्या मंगलवार के दिन जन्म लिए हुए लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं? किस दिन के जन्म का आपकी किस्मत से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Your Saturday nights will never be the same.
3: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
4: The Tailgate Block Party.
2: The Tailgate Block Party.
3: 6 hours non-stop. Non-stop.
4: The best DJs from around the world.
2: The Tailgate Block Party.
3: Saturday night.
2: 8 p.m. Eastern.
4: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
3: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: हाँ, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे, वैदिक मंत्रोच्चार से कुंभाभिषेकम, ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सूर्य किरण एयर शो के दौरान आसमान से होगी पुष्प वर्षा।

0: 57 हुई संख्या। एआई डिजिटल इकोनॉमी और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित 28वें चीन बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हाईटेक एक्सपो का समापन। अंडर वाटर क्लीनिंग समेत कई जटिल काम करने में सक्षम मरीन रोबोट ऑर्का के डेब्यू ने दुनिया को लुभाया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
0: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन पांच खबरों पर जिन्हें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: तो शुभ समाचार की शुरुआत सोमनाथ अमृत महोत्सव के साथ होगी। गुजरात में अरब सागर के किनारे बसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी ऐतिहासिक उत्सव को लेकर कुछ ही देर में वहां खास कार्यक्रम भी होगा। तो वहीं इस अमृत महोत्सव को लेकर मंदिर को खास तरह से सजाया भी गया है। यहाँ पर फूलों से सजावट की गई है, पूरा मंदिर भव्य लग रहा है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर यह आयोजन हो रहा है। तो इसी आयोजन के बीच सुबह सोमनाथ मंदिर में विशेष आरती हुई, साथ ही सुबह की दूसरी रस्में भी मंदिर में निभाई गई। इस दौरान माहौल पूरा भक्तिमय हो गया। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की स्वाभिमान आस्था और अदम्य चेतना का प्रतीक है। इसे अनेक बार तोड़ा गया लेकिन हर बार ये पहले से ज्यादा भव्य होकर खड़ा हुआ। वहीं सोमनाथ में हो रहे इसी भव्य उत्सव में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, वो भी कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या है उनका पूरा कार्यक्रम, इसकी जानकारी देंगे आगे।
2: तो सोमनाथ मंदिर हमें सिखाता है कि हमें संस्कृति पर कितने आघात हो, सनातन की आत्मा कभी पराजित नहीं होती। ऐसे में आज उसको लेकर यहाँ खास उत्सव मनाया जा रहा है। इसके हर रंग हम आपको GNT पर दिखाएंगे। क्या हो रही है तैयारियां वो भी आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं सुबह 9 बजे की बड़ी खबरें।
0: आज सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार से कुंभ अभिषेक और वायुसेना के एयर शो के बीच सोमनाथ अमृत पर्व मना रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में पीएम मोदी आयोजन का हिस्सा बनेंगे।
2: वडोदरा में आज पीएम मोदी को सरदार गौरव रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय विकास में सराहनीय योगदान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी नवनिर्मित सरदार धाम भवन 3 का उद्घाटन भी करेंगे।
0: चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। अब तक 10.5 लाख से अधिक भक्तों ने चारधाम यात्रा की, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए, जबकि बद्रीनाथ धाम में 2,70,000 भक्तों ने हाजिरी लगाई।
2: अरुलमिगू श्री पुथाजी मंदिर के चिथिराई उत्सव में 1008 पाल कुडम शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं ने दूध कलश लेकर देवी मरियम्मन की पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर परिसर ओम शक्ति के जयकारों और पारंपरिक संगीत से गूंज उठा।
0: वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा भोलेनाथ की भव्य भस्म आरती की गई, जहां महाकाल का जलाभिषेक कर दूध दही शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया। आरती के बाद बाबा महाकाल के मस्तक पर भांग चंदन और त्रिपुंड अर्पित कर श्रृंगार किया गया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन पूजन भी किए।
2: जन्मभूमि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। परिसर को अंतिम रूप देने और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। परिसर में कुबेर टीला, सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राम भक्त अब पूरे आध्यात्मिक परिसर का दिव्य अनुभव पा रहे हैं।
0: मदर्स डे के मौके पर कुनू नेशनल पार्क प्रबंधन ने चीता माताओं के संघर्ष और मातृत्व को समर्पित एक शॉर्ट फिल्म जारी की, जो कि भारतीय जंगलों में चीतों की नई पीढ़ी को बसाने में उनकी भूमिका को दर्शाती है। इसमें बताया गया है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत पिछले 3.5 सालों में भारत में चीतों का कुनबा बढ़कर अब 57 हो गया।
2: चाइना बीजिंग इंटरनेशनल हाईटेक एक्सपो का समापन हुआ। इस हाईटेक एक्सपो में AI टेक्निक ने सबसे

0: ज्यादा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तीन दिनों में 70,000 से ज्यादा ऑफलाइन विजिटर्स शामिल हुए और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे ऑनलाइन भी देखा।
1: वहीं अनन्या पांडे और लक्ष्य ललवानी की मुख्य भूमिका वाली रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर आज रिलीज होगा। इस फिल्म में लक्ष्य को आरव की भूमिका में देखा जाएगा। वहीं अनन्या पांडे ने चांदनी का रोल निभाया है। 22 मई को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

और शुभ समाचार की शुरुआत शुभ खबर के साथ। अगले एक घंटे हम आपको सोमनाथ अमृत महोत्सव की हर तस्वीर दिखाने वाले हैं। आपको सीधे सोमनाथ धाम लिए चलेंगे, जहां आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। चार दिन से चल रहे अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है, जिसका साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। आज कई धार्मिक अनुष्ठान सोमनाथ धाम में होंगे। जीएनटी पर इस महाउत्सव की हर तस्वीर आगे आपके सामने होगी। आज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे हो गए हैं और इस शुभ अवसर पर सोमनाथ मंदिर को भव्य तौर पर सजाया गया। वैसे तो पूरे साल से सोमनाथ का अमृत पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि 11 मई 1991 इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वो तारीख है जब एक बार फिर सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान, आस्था और अदम्य चेतना का प्रतीक है। इसे अनेक बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये पहले से ज्यादा भव्य होकर खड़ा हुआ। सोमनाथ हमें सिखाता है कि संस्कृति पर कितने भी आघात हों, सनातन की आत्मा कभी पराजित नहीं होती। और इस संदेश को दुनिया भर में देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए कार्यक्रम में पहुंचेंगे। पीएम यहां महापूजा, कुंभाभिषेकम और ध्वजारोहण करेंगे।

तो अमृत पर्व का हर अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको सोमनाथ के भव्य दिव्य दरबार में लेकर चलते हैं, जहां आज सुबह सोमनाथ महादेव का भव्य पंचामृत अभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान शिव का दिव्य अभिषेक किया गया। ये सोमनाथ मंदिर की

सौ भव्य पंचामृत अभिषेक के बाद सोमनाथ मंदिर में महादेव का अलौकिक श्रृंगार किया गया। पुष्पों, चंदन, बेलपत्र से बाबा सोमनाथ के दर्शन ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच भव्य आरती

0: समझो।
1: तो इस पर चर्चा के लिए हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंडित डीपी शास्त्री जी और संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास आएंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम और अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। आक्रमणों और बार बार हुए पुनर्निर्माणों के बीच ये मंदिर भारतीय आस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी प्रतीक बना हुआ है। आज एक बार फिर से सोमनाथ अमृत पर्व जैसे भव्य आयोजन के चलते चर्चा में है। तो आज सोमनाथ मंदिर पर हमले के हजार साल पूरे हुए हैं, तो वहीं मंदिर के लोकार्पण के 75 साल भी पूरे हुए हैं।

0: 11 मई 1991 से 11 मई 2026 देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे हो गए हैं। गुजरात में अरब सागर के किनारे बसे शिव आस्था के अनुपम केंद्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर के जो है 75 साल नवनिर्माण के हो रहे हैं और 11 मई वो तारीख है कि जिस दिन इसका नवनिर्माण हुआ था और ये मंदिर इसी स्वरूप में जो है वो बना था और यही मंदिर को लेकर जो है वो 75 साल इसके होने के चलते ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अमृत महोत्सव में जो है वो शामिल हो रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। पीएम मोदी सुबह 10:15 बजे सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां हेलीपैड से मंदिर तक पीएम का रोड शो होगा। पीएम मंदिर पहुंचकर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। पीएम यहां महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण करेंगे। पीएम अतिरुद्र यज्ञ का समापन भी करेंगे। इस दौरान वायुसेना के भव्य एयर शो का आयोजन होगा। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा होगी। पीएम सद्भावना मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
2: देश के राजनीति के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेते ही 24वें दिन सुवर्ण महोत्सव का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सोमनाथ अमृत महोत्सव के तौर पे प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें फिर से एक बार सोमनाथ जी की पूजा अर्चना एवं ये अमृत महोत्सव आयोजन करने की प्रेरणा पूरी करने का काम उनके द्वारा किया गया है। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इतिहास है।
0: सोमनाथ अमृत महोत्सव एक विरासत के 75 साल पूरे होने का जश्न है, जिसे यादगार बनाने के लिए एक ऐतिहासिक विशेष कुंभाभिषेक का आयोजन भी किया जा रहा है। 11 पवित्र तीर्थों से लाए गए जल से सोमनाथ महादेव मंदिर के शिखर कलश का जलाभिषेक किया जाएगा। मंदिर के इतिहास में पहली बार 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से एक विशाल कुंभ में पवित्र जल को शिखर तक ले जाया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिखर कलश का अभिषेक किया जाएगा। कुंभाभिषेक के बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पर ध्वजारोहण भी चढ़ाएंगे। कुंभाभिषेक की परंपरा आमतौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों में देखी जाती है। अमृत महोत्सव पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में भी इस परंपरा को शुरू किया जा रहा है। सोमनाथ अमृत महोत्सव का उत्साह जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी दिखेगा। गुजरात की लोक संस्कृति से जुड़ी झांकियों के बीच मंदिर के आकाश पर वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एक भव्य एयर शो में अपने करतब दिखाएंगी। चारों ओर माहौल भक्तिमय है, महादेव के जयकारों की गूंज है और आस्था में डूबे भक्त हैं। साथ ही प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर परिसर को अमृत पर्व के लिए फूलों से विशेष रूप से सजाया गया है, जो राष्ट्र की अटूट आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसके अलावा पीएम मोदी के आने के चलते यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है।
3: एसपी लेवल ऑफिसर से लेके डिप्टी एसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स और वन विभाग के कर्मचारियों की भी हेल्प लेके 2000 से ज्यादा हमारे पुलिसकर्मी, वनकर्मी और होमगार्ड, जीआरडी और सब सीनियर ऑफिसर को ड्यूटी में लगाए रखा है। क्यूआरटी की टीम्स है, बीडीडीएस की टीम्स राउंड द क्लॉक बीडीएस चेक कर रही है। पूरा इलाका हमारी निगरानी में है और साथ साथ वेकेशन का टाइम चल रहा है तो जो रूटीन पर्यटक आ रहे हैं, रूटीन जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इस हिसाब से हमने पूरा आयोजन करके रखा है।
0: सनातन आस्था का प्रतीक प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ हजारों साल के गौरवशाली इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। विदेशी आक्रमकताओं ने कई बार इस मंदिर पर हमला किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो इस मंदिर से जुड़ी अनंत आस्था को नहीं तोड़ पाए। हर बार सोमनाथ मंदिर और अधिक भव्यता के साथ फिर खड़ा हुआ। आजादी के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मंदिर का मौजूदा स्वरूप सरदार पटेल की कोशिशों से ही साकार हुआ। 11 मई 1991 को मंदिर निर्माण पूरा हुआ, जहां सोमनाथ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज सोमनाथ मंदिर 75 साल तक तटस्थित खड़े रहने का जश्न मना रहा है। और महादेव गिर सोमनाथ से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो आज पूरा देश सोमनाथ अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल पूरे हो चुके हैं इसके लोकार्पण के, इसके पुनर्निर्माण के, जिसके साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और आज उस पर खास जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जो हैं दिलीप मोरे हमसे जुड़ रहे हैं। तो दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल है, क्या क्या कार्यक्रम है जो आज दिन भर रहने वाले हैं।
5: जी, अभी प्रधानमंत्री है वो चंद मिनटों में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर काफी जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अभी उसका रोड शो है वहाँ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का हेलीपैड से लेकर सोमनाथ महादेव मंदिर है जहाँ हमीरपुर सर्कल है, तो 1-2 किलोमीटर का ये पूरा रूट है वहाँ रोड शो किया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री
6: जी, चलिए ठीक है दिलीप, आपके पास लौटेंगे। संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, जो शिखर पर कुंभ अभिषेक आज सोमनाथ मंदिर के होने वाला है, उसका धार्मिक महत्व आपसे समझना चाहेंगे।
7: जी, सबसे पहले एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। कहते हैं कि भगवान शिव का ध्वजारोपण या अभिषेक जब भी होता है तो भगवान शिव का ध्यान जरूर कर लेना चाहिए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च।

0: कहा जाता है कि जो जल है वो अमृत तुल्य है, और आज अमृत योग भी बन रहा है, और उसमें जो 11 स्थानों का जल ला करके या पवित्र नदियों का जल ला करके जब अभिषेक किया जाता है तो अमृत वर्षा का जो महत्व होता है, जिस प्रकार से आप अमृत ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से जब जल जो है उस कलश से जो है कुंभ कलश से जो है जल जब आता है तो एक अमृत तुल्य या अमृत के समान जो है वर्षा हो जाती है, और उस जल का बड़ा भारी महत्व होता है। और कहते हैं कि जब भी आप कोई अभिषेक करते हैं तो उसमें जो है 5 तत्वों से जो है अभिषेक किया जाता है, दूध दही शहद गंगा जल पंचामृत से जो है स्नान किया जाता है। और ध्वजा जो है, ध्वजा का मतलब ही होता है कि हम हमेशा जो है अपने जीवन में शिखर पर रहे हैं, और शिखर जो है तभी प्राप्त होता है जब आपके अंदर आत्मशक्ति आत्मबोध और अत्यंत साहस जब होता है। और कहा जाता है कि हमारी संस्कृति को एकता को एकाग्रता को बढ़ाने वाला है, और ये पुनरुत्थान का समय है। और ऐसे समय में कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने जो है इस मंदिर को कई बार तोड़ दिया 1026 ईसा ईस्वी में, उसके पश्चात भी जो है पुनर्निर्माण हुआ 1951 में, और उसके पश्चात जो है ये महाउत्सव भी मनाया जा रहा है। पिछले 6 महीने पहले भी जो है यहाँ पर पूजा पाठ किया गया और अभी भी पूजा पाठ किया जाता है। और जल जो है शुद्धि का प्रतीक है, आत्मशुद्धि का प्रतीक है, अमृतत्व की प्राप्ति कराता है, और आपके कहते शारीरिक मानसिक भौतिक सभी प्रकार का सुख प्राप्त करता है, और आपके जीवन में शुभता प्रताप करता है, क्योंकि जल से ही जीवन बना है। इसीलिए जब नदियों का जल लाया जाता है उस जल से जो है जब भी अभिषेक होता है तो आपके आत्मिक शुद्धि जो है हो जाती है। ओम आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम अमृत तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। तो जो ये शरीर है आत्मा है उन सबको जो है जल पवित्र कर देता है। ऐसे स्थान से जब जल ऊपर से जब कहते हैं कि वर्षा रूपी जल भी जब
1: जी
0: गिरता है तो सबसे पवित्र जल वर्षा का माना जाता है, जो नदियों में बहकर के आता है, और जब नदियों के अंदर बहता है तो उसमें जड़ी बूटियां सब
1: जी
0: मिल जाती हैं, और 11 स्थानों का जल जीवन को शुद्ध आत्मा को शुद्ध और समुद्र
1: जी
0: के
1: संजय
0: तट
1: जी,
0: पर पहुंच
1: बिल्कुल
0: देता है।
1: लौटूंगी आपके पास। और हमारे साथ हमारे संवाददाता बृजेश दोषी भी जुड़ रहे हैं सोमनाथ से। तो बृजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का भक्तिमय माहौल इस वक्त सोमनाथ में देखने को मिल रहा है, कितने श्रद्धालु हैं जो बाबा के दर्शन के लिए वहां पहुंचे, और पूरा दिन भर जो है आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, जरा उसके बारे में बताइए।
2: बिल्कुल, देखिए आज का जो पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, वैसे तो करीबन 2 घंटे का कार्यक्रम मंदिर में रहेगा, पर मंदिर जो है बंद नहीं किया गया, मंदिर खुला ही है और लोग भी श्रद्धालु जो है बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं, जो मंदिर का गेट है वहां से लोगों को अभी भी जो आवाजाही है वो शुरू है, यात्री यहाँ से आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, उनके लिए मंदिर का गेट और परिसर खुला हो गया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जो है करीब 10 बजे यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद 10 मिनट का उनका रोड शो होगा, हेलीपैड से लेकर हमीरजी सर्कल तक इनका ये रोड शो होना है, और सर्कल से जो है यहाँ पे माल्यार्पण करने के बाद जो है प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे मंदिर में, परिसर में सरदार पटेल की प्रतिमा है वहां पे भी वो पुष्पांजलि करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री का वहां पे भव्य स्वागत होगा, ढोल नगाड़ों के साथ अंदर स्वागत किया जाएगा। पिछली बार जिस तरह से डमरू दिखे थे इस बार भी डमरू की तरह जो है देखिए यहाँ पे रोड शो के दौरान ही डमरू से लोग उनका स्वागत करने वाले हैं। और दूसरी ओर जो मंदिर की बात है, जो विशेष आध्यात्मिक पूजा और दर्शन की बात है, तो 75 साल इस मंदिर के पुनर्निर्माण के होने के अवसर पर जो रुद्र यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ में आहुति देके उसका समापन जो है प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद मंदिर का जो शिखर है उस शिखर पर जो है वहां पे ध्वजारोहण भी होनी है, उससे पहले 11 तीर्थ स्थानों से आया हुआ जल है उसे कुंभाभिषेक किया जाएगा। आमतौर पे ये प्रथा दक्षिणी राज्यों में है, दक्षिण के राज्यों के जो मंदिर है वहां पे जो है हर 10-12 साल में ये होता है, पर सोमनाथ में ये पहली बार हो रहा है कि जहाँ पे कुंभाभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री उस वक्त मौजूद रहेंगे मंदिर परिसर में ही, और ये जो क्रेन देख रही है उसी क्रेन से कुंभाभिषेक किया जाने वाला है, और साथ ही ध्वजारोहण भी होगा। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री जो है वो वहां से रवाना होंगे और सद्भावना मैदान में उनकी जनसभा है, जनसभा में वो बात करेंगे किस तरह से विनाश पर विकास के 75 साल यानी कि जो 1000 साल का इतिहास था सोमनाथ के ऊपर विदेशी आक्रांताओं के हमले का, उसके बाद उन्होंने पिछले जनवरी महीने में जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत करवाई तब कहा था कि ये 1000 साल जो है जिन जिन लोगों ने सोमनाथ पे आक्रमण किया उनकी हस्तियां मिट गई, वो आज कहीं पर भी नहीं है, पर सोमनाथ आज भी वहीं पर है तो ये जो बात उन्होंने तब कही थी उसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से 1947 में सरदार पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था जो 1951 में साकार हुआ और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका लोकार्पण किया था। उस समय जो बाधाएं आई उसकी बात भी प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में करेंगे, उसके बाद वो वडोदरा के लिए रवाना होंगे।
1: बिल्कुल ब्रजेश, देखिए इतिहास काफी पुराना है जैसा कि आप बता रहे थे, अब बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचने का, और वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी कुंभ अभिषेक की। आप हमारे साथ बने रहिएगा, और भी तस्वीरें आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: सोमवार के दिन जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य कैसा होता है? क्या मंगलवार के दिन जन्म लिए हुए लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं? किस दिन के जन्म का आपकी किस्मत से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads, and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे, वैदिक मंत्रोच्चार से कुंभाभिषेक, ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे पीएम, सूर्य किरण एयर शो के दौरान आसमान से होगी पुष्प वर्षा।
14: वडोदरा में आज सरदार गौरव रत्न से सम्मानित होंगे पीएम, सामाजिक सुधार और राष्ट्र विकास में सराहनीय योगदान, नवनिर्मित सरदार धाम भवन 3 का उद्घाटन भी करेंगे पीएम।
1: हीट वेव और बाढ़ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, आपदा प्रबंधन पर कड़े निर्देश, शाह ने दिया गर्मी के विरुद्ध जीरो कैजुअल्टी का मंत्र।
14: भोपाल बना ग्रीन टेक का नया चेहरा, लॉन्च हुआ एलगी ट्री, शहरों में ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मिलेगी मदद, एक एलगी ट्री में है 25 पेड़ों के बराबर हवा साफ करने की क्षमता।
1: दुनिया के सामने आई कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता की सफलता की कहानी, शॉर्ट फिल्म में दिखा मादा चीता की ममता और शावकों का संघर्ष, 3 साल में जन्मे 49 शावक, अब तक 57 हुई संख्या।
14: एआई, डिजिटल इकोनॉमी और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित 28वें चीन बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हाईटेक एक्सपो का समापन, अंडरवाटर क्लीनिंग समेत कई जटिल काम करने में सक्षम मरीन रोबोट ऑर्का के डेब्यू ने दुनिया को लुभाया।

और एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। सोमनाथ अमृत महोत्सव आज पूरा देश मना रहा है। सोमनाथ मंदिर में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत उत्सव देखने को मिल रहा है। समुद्र की लहरों के बीच गूंजते शंखनाद, मंदिर की घंटियां और महादेव का जय घोष पूरे वातावरण को शिवमय बना रहा है। आज का दिन सोमनाथ के इतिहास में दर्ज है। आज ही मंदिर में ज्योतिर्लिंग की एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 75 साल पूरे होने की खुशी में आज मंदिर में विशेष का दिव्य श्रृंगार और महाआरती संपन्न हुई। देश विदेश से आज श्रद्धालु इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। आज मंदिर में विशेष पूजा होनी है और आज सुबह महादेव का भव्य पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बाद बाबा सोमनाथ का दिव्य श्रृंगार और महाआरती संपन्न हुई। देश विदेश से आज श्रद्धालु इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए सोम

0: तो चलिए अब सोमनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों से ही शिव के इस पवित्र धाम का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व जानते हैं। मान्यता है कि इस धाम की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी, इसलिए इसका नाम चंद्रदेव के नाम पर सोमनाथ पड़ा।
1: कई सालों पहले पूजा का क्रम तो जो क्योंकि तीर्थ पुरोहित सोमप्रा ब्राह्मण समाज के पूर्वजों को लाया ही यहाँ चंद्रमा की ओर से गया था। जब भी उन्होंने ये प्रतिष्ठा की सोमनाथ जी की और अपना अनुष्ठान पूर्ण किया तो यहाँ पे उन्होंने हमारे पुरखों को लाए और यहाँ हमारे पुरखों ने ही उनको ये अनुष्ठान का समापन करवाया था और तभी से हमें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था कि आप यहीं रहो, आने वाले यात्रियों को पूजा पाठ करा के आप अपना योगक्षेम चलाओ।
2: पहले जैसे होता था
1: पूजा तो डे बाय डे जैसे हर क्षेत्र में अपडेट आता है उस प्रकार में विभिन्न पुराणों से कुछ लेते लेते पूजाओं का जैसे शिव जी की राजोपचार भी पूजा होने लगी और जैसे कि गन्ने के जूस से अगर चढ़ाता है तो लक्ष्मी प्राप्त होती है, शहद से चढ़ा जाए तो लक्ष्मी प्राप्त होती है, उसी प्रकार अतिवृष्टि हो तो उसको शांत करने के लिए भी घी से अभिषेक किया जाता है।
0: तो सोमनाथ धाम पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे कर रहा है। अब एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाते हैं जो 75 साल पहले हुए लोकार्पण उत्सव के साक्षी बने और आज अमृत महोत्सव के भी गवाह बन रहे हैं। सोमनाथ के भास्कर वैद्य ने सोमनाथ धाम के 75 साल की इस गौरवशाली यात्रा को बहुत ही करीब से देखा है।
3: पटेल जब 1947 में भारत को आजादी मिली तब उसने उस समय वो नायब होम मिनिस्टर थे इंडिया का, उसने पहला काम 13 नवंबर को सीधे सीधा सोमनाथ आए और उस समय हेलीकॉप्टर की जैसी व्यवस्था नहीं थी मगर ट्रेन में आए। उस ट्रेन का भी फोटो अब लाइब्रेरी में अवेलेबल है और उसने मंदिर की ये जीर्ण दशा देखी तो उसकी लोखंडी पुरुष मानते हैं, उसकी आँख भी आंसू से दिखाई गई है, उसका दर्द उसके चेहरे में और आंखों में दिखाई दिया। उसने पहला ही काम उस समय जब पुराना मंदिर था वहां से समुद्र में जाने के लिए एक सीढ़ी थी, पत्थर की सीढ़ी थी, वहां से सीधा उतरे और उसने आंख में सूर्य का समुद्र का जल लेकर उसने प्रतिज्ञा ली कि जहाँ मैं सोमनाथ का पुनरुद्धार करूँगा और बिना सोमनाथ का पुनरुद्धार आज़ादी मिली तो ये आज़ादी अधूरी है।
0: तो हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं और पंडित डीपी शास्त्री जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, डीपी शास्त्री जी आपके पास आते हुए क्योंकि कुंभ अभिषेक की बात चल रही है तो इसकी परंपरा के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे और आज जब कुंभ अभिषेक किया जाएगा तो किन जो खास बातें हैं उनका ध्यान आज रखा जाएगा?
4: देखिए शुभकामनाएं, पूरे त्रिलोक का पहला त्रिलिंग है भूमंडल और चंद्रमा का जीवन सोमनाथ मिला था दक्ष प्रजापति के श्राप श्राप के कारण। चंद्रमा जब छेद होने लगे तब महादेव की आराधना किया गया, सत्य इत्यादि आदि काल से मैं है। ये सोमनाथ जो षष्ठ क्षेत्र जो स्थान है आज वहां भी से अन्यथा दिव्य पूजन या सोड़ोपचार जन कलश जन कुंभ तिरुत्र इत्यादि का आयोजन किया गया है। रुद्र उसके मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, गायत्री सुख है, भगवान विष्णु के सुख है, लक्ष्मी के आराधना के लिए सूर्य का और चंद्रमा का सुख है। ये सब मंत्र है, इसमें पुरुषता है, चंद्रता है, सूर्य सुख सबका राज किया रहा है। इसके जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि आदिकाल भूमंडल में जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग दर्शन करता है उसको कोई मानव रूपी हो इसी रूप में व्यक्ति रूप में क्यों नहीं हो तो उसको मानसिक रोग नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कुंडली में चंद्रमा के अंगल के साथ, बल्कि लक्ष्मी नारायण योग है, वो बार बार शिव आराधना करते हैं और बार बार त्रिलिंग में जाकर पूजन करते हैं। इसलिए उनके चंद्रमा को बल की प्राप्ति हुई है। जो चंद्र प्राप्त कर लिया है वो राजा बन जाता है, अपने कर्म क्षेत्र में, क्षेत्र में न्याय क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हो उसी जय की प्राप्ति होती है। 75 पर के जो उपलक्ष मना रहे हैं, इस चीज को पुराना देखें तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सोमनाथ जाकर तपस्या किए और केवल से अपने व्यक्ति की प्रति की है, वो ज्योतिर्लिंग मनाए, अपने बच्चों को जीवन के भी करने लिए दांपत्य जीवन में मधुरता से लेके गाय का दो दही हो, घी हो, शहद हो, इसी के द्वारा इसे किया जाता है।
0: जी पंडित जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं सोमनाथ की, जहां से हमारे सहयोगी ब्रजेश हमसे जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, एक बार फिर से जरा रौनक दिखाइए और जरा श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश कीजिए, जो देश से ही नहीं विदेशों से भी यहां पहुंचे हैं सोमनाथ के दर्शन के लिए, कि कितने एक्साइटेड वो हैं, कितनी श्रद्धा से पूर्ण वो लोग हैं।
2: देखिए, ये जो मंदिर परिसर के जो कार्यक्रम है उसकी वजह से मीडिया को जो है एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पे रख दिया है, तो श्रद्धालुओं तक जो है श्रद्धालु जो है वो वहाँ मंदिर का जो मुख्य गेट है वहाँ से अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है। और यहाँ पे जो एक कार्यक्रम किया जाएगा, अलग अलग जो मंडल है यहाँ पे आए हैं, सबको यहाँ बुलाया गया है, अलग अलग नृत्य प्रदर्शनी यहाँ पे की जाएंगी, कुछ गरबा के कार्यक्रम है, साथ ही मडुली नृत्य है, उसके अलावा जिस तरह से ये दिख रहे हैं रास किया जाएगा, अलग अलग नृत्य जो है यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे। उसके साथ जो मंदिर की बात की जाए, जो आपको रोड शो की झलक जहाँ पे आपको दिख रही है, वहाँ पे मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाए कि डमरू लेके मंदिर के गेट के पास जो खड़े हैं वो VIP गेट है, जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो अंदर मंदिर में जाएगा। तो वहाँ पे जो है पूरी व्यवस्था की गई है कि लोग वहाँ पे खड़े रहे, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करने के बाद प्रधानमंत्री जो है ये हमीरजी सर्कल पे पुष्पांजलि करने के बाद अंदर जाएंगे और वहाँ पर जो है पूरा कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। सूर्य किरण का एयर शो भी 11 बजे के आसपास होना है। उसके अलावा कलश के द्वारा जो कुंभाभिषेक होगा, वो कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण ये मुख्य है, जो यज्ञ चल रहा है उसका समापन, ये सारी चीजें सोमनाथ में जो है कुंभाभिषेक पहली बार हो रहा है। आमतौर पे सोमनाथ में कभी कुंभाभिषेक नहीं हुआ, पर ये 75 साल का अवसर है, उसको विशेष तौर पे यादगार बनाया जा रहा है कि अमृत महोत्सव का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो अमृत महोत्सव की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से ये विनाश पर विकास के 75 साल है वो दिखाने की कोशिश यहां से प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री खुद इस पूजा में शामिल होंगे, यज्ञ में शामिल होंगे और उसके बाद वो खुद ध्वजारोहण करेंगे। कल कुंभाभिषेक होगा तब प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में ही मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा मैसेज जो सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर की बात मोदी सरकार करती है, जो हमने हर जगह देखा है, चाहे वो उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर की बात हो या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, इसी तरह सोमनाथ में भी अब सोमनाथ कॉरिडोर बनने वाला है, तो लोग यहाँ पे श्रद्धालु जब भी आते हैं तो श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, तो अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे जो विकास कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा भी उनको करनी होती है, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसे मिल पाए और सोमनाथ का गौरवशाली इतिहास लोगों तक कैसे पहुंचे जो पूरा नहीं पहुंच पाया। पिछली बार सोमनाथ स्वाभिमान वर्मा ने उन्होंने वही बात की थी कि ये जो 1000 साल का इतिहास है जिसमें विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ पे हमले किए थे, वो बात लोगों तक नहीं पहुंच पाई, किस तरह से स्थानीय लोगों ने उसमें रक्षा की थी, अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान वर्मा में कही थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इस तरह से किस तरह से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ उस पर वो बात करेंगे।
0: क्या आज शिखर पर पुष्प वर्षा भी होगी और एयर शो भी होगा, उसकी तैयारी कैसी है ये भी बताइएगा ब्रजेश।
2: बिल्कुल, देखिए बिल्कुल पुष्प वर्षा भी होगी और साथ ही एयर शो होगा। सूर्य ग्रहण की टीम जो भारतीय वायुसेना की है उसके द्वारा 2 दिन से लगातार प्रैक्टिस की जा रही थी और 11 बजे का टाइम है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री के आने का समय हो चुका है, 10:15 बजे के बाद प्रधानमंत्री कभी भी जो है उनका चॉपर हेलीपैड पे लैंड होगा, तो उनका आने का वक्त हो चुका है, इसलिए अभी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। पर जो मंदिर परिसर है वो परिसर में फिर से एक बार कैमरामैन को कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जो मंदिर का शिखर का भाग है, जो कलश वहां पे दिख रहा है, वहां पे क्रेन भी है, उसी क्रेन से कुंभाभिषेक होना है और उसके ऊपर सूर्य सूर्य ग्रहण की टीम जो है वो एक एयर शो करेगी, जिसमें सोमनाथ के ऊपर पुष्प वर्ष, मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो ये सारी चीजें तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। रोड शो के लिए सभी लोग यहाँ पे मौजूद, स्थानीय लोग आए हुए हैं और 10 मिनट का ये रोड शो रहेगा प्रधानमंत्री का। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पूजा है वो मंदिर के अंदर होगी, जब पीएम मंदिर परिसर में होंगे और वहां पे वो पूजा करेंगे। पिछली बार उन्होंने देखा था किस तरह से विशेष पूजा अर्चन सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत में उन्होंने करी थी, तो आज भी वही विशेष पूजा अर्चन, साथ ही यज्ञ में आहुति देने के बाद यज्ञ का समापन होगा और उसके बाद कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण, ध्वजा चढ़ाना और संकल्प देश के लिए करना। कल प्रधानमंत्री, हमने देखा है कि किस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कही थी कि हैदराबाद में उन्होंने जो संदेश दिया है जनता को कि आने वाले दिनों में लोगों को किस तरह से काम करना है, अपने काम में बदलाव करना है, ऊर्जा संकट का सामना जो पूरा विश्व कर रहा है, तो वही चीज यहाँ से अब भगवान के पास भी प्रार्थना करेंगे प्रधानमंत्री की, लोगों का कल्याण हो जो हर बार वो करते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, तो उसी तरह जो है वो यहाँ पे उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद संबोधन होगा, संबोधन पे सबकी नजरें रहेंगी कि किस तरह से 1951 में इस मंदिर का लोकार्पण हुआ, पुनर्निर्माण के बाद उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, वो सारी इतिहास की बात भी प्रधानमंत्री आज यहाँ से करेंगे। आज ही का वो दिन था जिस दिन देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस मंदिर का लोकार्पण किया था और उसी के 75 साल का जो है वो आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
0: जी ब्रजेश, आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि अमृत महोत्सव आज के दिन मनाया जा रहा है और आपके पीछे हम देख रहे हैं कि लोक कलाकार भी हमको दिख रहे हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी गरबा और डांडिया भी होगा, उसके अलावा भी और क्या क्या नृत्य हैं जो कलाकार जो है यहाँ पेश करने वाले हैं, किस तरह से माहौल जो है पूरा रंगमय होने वाला है?
2: देखिए, प्रधानमंत्री का जब रोड शो शुरू होगा और प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद ये जो नृत्य मंडलियाँ हैं वो अलग अलग नृत्य मंडलियाँ हैं। यहाँ पे जो है मधुली नृत्य जो है वहाँ से शुरुआत होगी, उसके बाद रास है, हर अलग अलग तरीके के नृत्य जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लोग जो गरबा कर रहे हैं, उसके अलावा मधुली नृत्य भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है। रास जो है सबसे आखिर में, जो सौराष्ट्र की पहचान है, मणियारो रास कहा जाता है, वो रास भी जो है वो वहाँ पे किया जाएगा। पारंपरिक वेशभूषा जो सौराष्ट्र की है उसमें आपको लोग वहाँ पे दिख रहे हैं, तो अलग अलग नृत्य जो है वो यहाँ पे मंडलियाँ करेंगी और प्रधानमंत्री का स्वागत होगा उसी वक्त ये किया जाएगा। और उसके बाद मंदिर में सारे कार्यक्रम होंगे, मंदिर में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसके अंदर जो बात है वो बात की जाएगी कि प्रदर्शनी किस तरह की रहेगी, किस तरह से वहाँ पे प्रदर्शनी में जो है वो सरदार पटेल ने जिस तरह से संकल्प किया था इस मंदिर के पुनर्निर्माण का, तो वहां से लेकर आज पुनर्निर्माण तक वो सारी चीजें जो हैं वो प्रदर्शनी में रखी गई है, जिसको प्रधानमंत्री जो है वो देखेंगे भी। और उसके बाद जो है वो पूरा यहाँ पे कार्यक्रम होगा, जो यज्ञ और वो सब है उसी के अंदर ये सारे कार्यक्रम होंगे। तो ये सारी चीजें पूरी अंदर मंदिर परिसर में होगी, महिलाएं कलश यात्रा लेकर जो है पहुंचेंगी, वहाँ पे महिलाओं की कलश यात्राएं भी होंगी, तो ये सारे कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। करीब 1.5 से 2 घंटे का ये कार्यक्रम है और 12 बजे प्रधानमंत्री जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे।
0: बस थोड़ा सा समय बचा है ब्रजेश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। इस कार्यक्रम में एक खास बात ये भी है ब्रजेश कि आज क्रेन की सहायता कुंभ अभिषेक के दौरान ली जाएगी, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा।
2: देखिए, जो कुंभाभिषेक है उसमें एक विशेष ध्यान रखा गया है। जो क्रेन है, फिर से एक बार कैमरामैन को कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाए क्रेन की, वो जो क्रेन है उसी क्रेन के जरिए वहां पे जो कुंभ लाया गया है, वो कुंभ का जो कद है जिसमें 1100 लीटर करीब जो है वो जल रहेगा, 11 जगहों से आया हुआ ये जल है, उस जल को जो है वो उस जल के द्वारा कुंभाभिषेक किया जाना है। 11 तीर्थ स्थानों का वो जल है जिसके माध्यम से ये कुंभाभिषेक किया जाएगा। आमतौर पर सोमनाथ या किसी भी उत्तर भारतीय मंदिर में इस तरह के कुंभाभिषेक का महत्व नहीं है, ये खास तौर पर दक्षिण राज्यों में देखा जाता है कि दक्षिण राज्यों में हर 10 या 12 साल में तेल के द्वारा जो है वो अभिषेक किया जाता है मंदिर के कलश में या फिर मंदिर की जो शिखर होता है वहां पे जो है इस तरह का अभिषेक किया जाता है। सोमनाथ में ये प्रयोग पहली बार हो रहा है क्योंकि ये अमृत महोत्सव है और उसी अमृत महोत्सव के लिए पहली बार जो है ये कुंभाभिषेक किया जा रहा है, तो इसका जो महत्व है वो आज देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री इसकी बात भी करेंगे कि ये कुंभाभिषेक क्यों महत्वपूर्ण है और जिस तरह से इस कुंभ को बनाया गया है, एक विशेष रचना बनाई गई है और 1100 लीटर उसकी क्षमता है जिसके अंदर ये जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा, तो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो रहेगा। इसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि अभी तक ये कभी नहीं हुआ, पहली बार सोमनाथ में कुंभाभिषेक किया जा रहा है और 11 पवित्र जगहों से जल लाया गया है, जिसकी जानकारी अभी तक वो जगह कौन सी है उसकी जानकारी साझा नहीं की गई है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, दिन भर गुड न्यूज टुडे आपको सोमनाथ की हर एक अपडेट दिखाता रहेगा, लगातार महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर जारी रहेगी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: सोमवार के दिन जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य कैसा होता है? क्या मंगलवार के दिन जन्म लिए हुए लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं? किस दिन के जन्म का आपकी किस्मत से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
8: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
7: Big 12 Radio.
9: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
7: and
9: down.
7: Talk sports.
10: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
7: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
11: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
17: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
0: सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होने पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेकम। सूर्य किरण शो के दौरान आसमान से होगी पुष्प वर्षा। वडोदरा में आज सरदार गौरव रत्न से सम्मानित होंगे पीएम। सामाजिक सुधार और राष्ट्र विकास में सराहनीय योगदान, नवनिर्मित सरदार धाम भवन 3 का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। हीटवेव और बाढ़ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, आपदा प्रबंधन पर कड़े निर्देश। शाह ने दिया गर्मी के विरुद्ध 0 कैजुअल्टी का मंत्र। भोपाल बना ग्रीन टेक का नया चेहरा, लॉन्च हुआ एलगी ट्री। शहरों में ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मिलेगी मदद। एक एलगी ट्री में है 25 पेड़ों के बराबर हवा साफ करने की क्षमता। दुनिया के सामने आई कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता की सफलता की कहानी। शॉर्ट फिल्म में दिखा मादा चीता की ममता और शावकों का संघर्ष। 3 साल में जन्मे 49 शावक, अब तक 57 हुई संख्या।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन का आपके भाग्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या वो दिन आपकी किस्मत पर कोई असर डालता है। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आपके भाग्य को चमकाने के लिए एक लकी टिप। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर 3:24 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए ज्योतिष में ये भी बताया जाता है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसका आपके भाग्य पर, जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। जिस तिथि को हुआ है, जिस नक्षत्र में हुआ है, वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन आपका जन्म जिस दिन हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसका भी आपके भाग्य से संबंध है और वही आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं।

अपने रिश्तों में सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में रिश्तों के मामले में अक्सर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अगर आपका जन्म सोमवार के दिन का है तो आप ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की उपासना करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा, जीवन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। अगर आपका जन्म हुआ है मंगलवार को तो इसका आपके भाग्य से क्या संबंध है? मंगलवार का मतलब हुआ कि आपके ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव जरूर होगा, थोड़ा या ज्यादा। क्या प्रभाव होगा? आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ होता है, ऐसे लोग स्वभावतः बड़े क्रोधी होते हैं, बड़े डोमिनेटिंग, बड़ा शासन करने वाले, बड़ा रूल करने वाले होते हैं। और आम तौर पर बचपन में बीमार रहते हैं। जिन भी बच्चों का जन्म या लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है उनसे पूछिए तो पता चलेगा कि बचपन में बीमार रहते थे या बचपन में बार बार चोट चपेट लगती थी। जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है ऐसे लोगों को पूरे जीवन में चोट चपेट का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके साथ चोट चपेट की, इंजरी की संभावनाएं रहती हैं। अगर आपका जन्म मंगलवार के दिन का है तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। और अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा ही पढ़िएगा, आपको लाभ होगा। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, जिन लोगों का जन्म बुधवार के दिन हुआ है तो उनके ऊपर बुध ग्रह का प्रभाव थोड़ा बहुत जरूर होगा, क्योंकि बुधवार के

0: दिन का स्वामी है
1: बुध।
0: तो जिनका जन्म बुधवार को हुआ है ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः बुधवार के दिन जन्म लेने वाले लोग धनवान होते हैं। बड़ी मेहनत से बड़ी सफलता से काम करते हैं लेकिन हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, हर काम को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। याद रखिए हर काम परफेक्ट नहीं हो सकता। जिन लोगों का जन्म बुधवार को हुआ है उनके अंदर अहंकार आने की संभावना प्रबल होती है। तो जिनका जन्म भी बुधवार को है उन्हें अपने अहंकारी स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए वरना उनका डाउनफॉल हो सकता है। और अगर आपका जन्म बुधवार को हुआ है तो अधिक से अधिक श्री हरि विष्णु की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनका जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ है उनके ऊपर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव अवश्य होगा क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन के स्वामी हैं बृहस्पति। जिन लोगों का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इस दिन जन्म लेने वाले लोग भाग्यवान होते हैं। इस दिन जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य थोड़ा बेहतर होता है। इन लोगों को अपने कर्मों की वजह से और अपने स्वभाव की वजह से जीवन में मान सम्मान बहुत मिलता है। जीवन में पैसा भले ही कम पाएं लेकिन सम्मान बहुत होता है। अगर आपका जन्म बृहस्पतिवार का है तो आपको अपनी एक आदत पर ध्यान देना होगा। जीवन में दूसरों के ऊपर ज्यादा विश्वास करने से बचिएगा क्योंकि यहां पर आपके साथ धोखा हो सकता है। जिन लोगों का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है ऐसे लोगों को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर भगवान शिव की उपासना करें तो जीवन अच्छा रहेगा। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान से आपको सुख मिलेगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। रुका हुआ काम इस समय होगा आपका। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में नए अवसर मिलेंगे। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों की समस्या का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को हुआ है उनके ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन के स्वामी हैं शुक्र। तो जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को हुआ है ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनके मन में ईश्वर के प्रति, साधना पूजा के प्रति, उपासना के प्रति थोड़ा झुकाव होता है। ये थोड़े आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं। इनके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होती है और जीवन की बड़ी सारी मुश्किलों से ये ईश्वर की कृपा के कारण बच जाते हैं। जिन लोगों का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है वो थोड़े स्वभाव से लापरवाह होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो इनको लापरवाही से और अति विश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। और अगर आपका जन्म शुक्रवार का है, आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, पूजा उपासना करें, दान करें, तो आपके लिए जीवन बेहतर होगा। जिन लोगों का जन्म शनिवार के दिन हुआ है वो ये ना सोचें कि शनिवार को जन्म हुआ है तो अशुभ है। शनिवार को जन्म लेने से किसी का जीवन अशुभ नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर शनिवार के दिन का आपका जन्म है तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव शनि ग्रह का होगा। तो शनिवार के दिन जो लोग जन्म लिए हैं ऐसे लोगों को सामान्यतः जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन एक उम्र के बाद ऐसा देखा गया है कि लगभग 28-30 साल के बाद या तो घर से बहुत दूर जाते हैं या विदेश जाते हैं, और घर से दूर जा करके जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अगर शनिवार के दिन का जन्म है आपका, आप नशे के चक्कर में बहुत जल्दी आ सकते हैं, तो नशे के चक्कर से बचिए, इधर उधर के प्रेम के चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि प्रेम आपका असफल होगा और जीवन में कष्ट का कारण बनेगा। अगर आपका जन्म शनिवार के दिन का है तो जीवन में संघर्ष कम हो, जीवन की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, इसके लिए नियमित रूप से शनि देव की उपासना करिएगा। कम से कम रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। धनुराशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, धन का लाभ होगा, लेकिन दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काम का दबाव बना रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, अगर आपका जन्म रविवार के दिन का है तो रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन है, इस दिन के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है, तो जिनका जन्म रविवार के दिन का होता है उनके ऊपर सूर्य देव का प्रभाव थोड़ा बहुत अवश्य होता है। जिन लोगों का जन्म रविवार के दिन का है ऐसे लोग सामान्यतः बीमार रहते हैं, छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं इनके साथ लगी रहती हैं, लेकिन ये लोग जीवन में बहुत सारा नाम और यश पाते हैं, यशस्वी बहुत होते हैं, अपने करियर जीवन में सफलता बहुत पाते हैं, ऊंचाइयों पर बहुत जाते हैं, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य की दिक्कतें लगी रहती हैं। इनको अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का जन्म रविवार को हुआ है ऐसा देखा जाता है कि उनकी फैमिली लाइफ, उनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। तो एक तो पारिवारिक जीवन का ध्यान दीजिए और दूसरे नंबर पर नियमित रूप से सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपका जन्म दिन के समय का है यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का है तो चंद्रमा की उपासना करिए, और अगर रात का जन्म है यानी सूर्यास्त से लेके अगले दिन के सूर्योदय के पहले का जन्म है तो सूर्य देव की उपासना करिए। यानी दिन का जन्म है तो चंद्रदेव की और रात का जन्म है तो सूर्य देव की उपासना करें। ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष कम होता जाएगा। अगर आपके विदेश जाने में अड़चन आ रही हो तो क्या करेंगे, रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए, सुबह और शाम बृहस्पति मंत्र का जप करिए, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में धारण करिए, और एक कांच की शीशी छोटी सी लेकर उसमें पीसी हुई हल्दी भर लीजिए और इसको अपने सिरहाने रखिए और सोते समय भी सिरहाने रहने दीजिए। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
3: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
2: to live sports action.
4: To the near side corner, to wrap around. He scores!
2: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

लेकिन माताओं की आदत, अब आजकल वो चल गए कान में लगा लेती रोटी बनाती है, हे जय हो माता, फिल्मी गीत लगे हैं, फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए, और रोटी बन रही। अब बताओ वो प्रसाद जो पाएगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हनुमान जी ही बचाए। माता हमारी प्रार्थना है जब भोजन बनाए तो भोजन भोजन की तरह नहीं प्रसाद की तरह बनाए। अच्छा प्रसाद में कितने अक्षर हैं बताओ, बोलो बोलो, तुम तो पढ़े लिखे हो, कितने हैं? तीन। कौन कौन? प्रा सा, प्रामाने प्रत्यक्ष, सामाने साक्षात, दामाने दर्शन। जिसको पाकर के साक्षात दर्शन का अनुभव हो वही भगवान का प्रसाद है। इसीलिए जब भी प्रसाद बनाए तो प्रसाद ना बनाए पहली थाली। पहले के जमाने में माताएं रोटी बनाया करती थी तो पहली रोटी गाय को और लास्ट की रोटी कुत्ता को। आज का जमाना बड़ा उल्टा हो गया। आज के जमाने में पहली रोटी तो खुद ही खा जाती है, मतलब हम गाय हैं, और अंतिम रोटी स्वामी जी को। इससे आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें दो दिन रहना है, आपत मोल नहीं लेनी है। पहले के जमाने में गाय माता की रोटी, हमारी माता जी तो अभी भी निकालती, यहां भी बहुत माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके घर पे पहली रोटी गाय को निकलती होगी। हमें भरोसा है जो नहीं है वो आज से मान जाएंगे, ये भी हमें भरोसा है। हाँ ये भी हमें भरोसा है। तो अगर हम पहली रोटी गाय को निकालें फिर पहली थाली भगवान को लगा दें, घर में जो ठाकुर जी हैं, हनुमान जी हैं, बालाजी हैं, सन्यासी बाबा हैं, उसी थाली का प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबकी थाली में रख दें तो वो प्रसाद हो जाएगा। माता जानकी जी ने क्या कहा हनुमान जी से, दे

चौपाई का यदि अर्थ निकाला जाए तो लंका में भी जाना पड़े, पर दिल में यदि राम हो, मेरे पागलो ये संसार सागर है और संसार सागर में माया कंचन कामनी और काया तीनों खींचते हैं। कंचन का मतलब सोना, कामनी का मतलब भोग और काया का मतलब शरीर, ये तीनों खींचते हैं। और लंका में भी तीन है, कंचन मतलब सोना, सोने की लंका, कामनी मतलब भोग भोगने वाली स्त्रियां और काया बड़े बड़े भट सुभट और सुंदर नारियां, तीनों खींचती हैं लंका में। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, क्या अद्भुत सूत्र दिया कि यदि तुम्हें ऐसी जगह जाना पड़े तो घबराना मत, हृदय में राम रख करके जाना, राम जी को हृदय में रख करके जाओ तो लंका में भी डंका बजा करके आओगे। कितना अच्छा संकेत है। अच्छा विचित्र बात देखो, हम लोग लंका में नहीं है, भारत में है, फिर भी राम राम नहीं जप पा रहे, और विभीषण लंका में था फिर भी राम का भजन कर पा रहा था, बोलो सीताराम। तो रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ, राम जी के चरण हृदय में रखकर फल खाओ, बोलो सीताराम। इस पे एक बात और बोलें, कह दो बोलो, कहो सुनो, भगवान को सर्वस्व मानकर जो भी भगत जीवन जिएगा भैया, हम दावे के साथ कह सकते उसका कभी काम नहीं बिगड़ेगा। भगवान को सब कुछ मानो हृदय में, ये एक अच्छा सूत्र बनता यहां पर, जो माता जानकी जी ने कहा वो सूत्र ये बनता, बाहर से संसारी रहो अंदर से सन्यासी हो जाओ। हाँ, बाहर से संसारी रहो पर अंदर से सन्यासी हो जा, बाहर से संसार करो। किसी को हम कथा सुनाते, बोले गुरुजी अब तो हम बाबा बनेंगे, ना ना ना ठटरी के भरे बाबा काहे को बने, बाबा मत बनो, एक काम करो, हाँ बाहर से संसार के रहो, जगत के काम करो, जो कर रहे दुकान मकान नौकरी सब करो, पर अंदर से भगवान के हो जाओ कि हम जो भी कर रहे भगवान के लिए कर रहे हैं। हनुमान जी जो भी कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे, बोलो बोलो बोलो, किसके लिए कर रहे थे, राम जी के लिए कर रहे थे। हमें एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए, जल्दी तो नहीं है तुम्हें, हमें भी नहीं है, हम तो फ्री हैं।

जो जो भगवान को भुला रहे हैं, माया के चक्कर में, काम के चक्कर में, जगत के चक्कर में, जरा कान खोलकर सुन लो भैया।

सत्संग सुनने को मिलता। भैया संतों के संग में मीराबाई रम गई, गोविंद को पा गई। प्रयागराज के पागलो जो कथा में बैठे ना, जितना समय व्यर्थ गवा लिया सो गवा लिया। अब मौका है भगवान को भज लेने का, अब मौका है भगवान के हो जाने का, अब मौका है भगवान को पा लेने का।

सोफा वाले तुम भी हाथ उठा के ताली बजा लो। तुम लोग विदेशी हो क्या? हमें लगता है ऐसे हो जैसे तुम बांग्लादेश से आए हो। नाक ना कटवाओ, उठाओ।

क्या? अरे जोर से तो बोलो, जो पीछे वाले हैं तुम लोग पूरी खाने आएगा ठटरी के बरे हरा, जो कीर्तन नहीं गाएगा भजन नहीं गाएगा ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में उसको पड़ोसी बेकार मिलेगा। इसलिए दोनों हाथ उठा के गाओ।

0: Soul Groove Station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भव्य किले महलों के लिए मशहूर जयपुर इन दिनों एक अनोखे मिशन को लेकर सुर्खियों में है। ये मिशन है पिंक सिटी को साफ सुथरा और सुंदर रखने का। कहने को भले ही एक आम सफाई अभियान हो, लेकिन अपने उद्देश्यों और काम करने के तरीके को लेकर ये सफाई मिशन सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

0: रात को जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में होती है, उस समय जयपुर की गलियों में स्वच्छता के ये प्रहरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। झाड़ू, मशीनें और डंपरों के साथ मोर्चा संभाले हुए सफाई कर्मी, जिनका बस एक ही मकसद है, शहर को साफ सुथरा बनाना। दरअसल जयपुर में इन दिनों एक मेगा क्लीनिनेस ड्राइव चलाई जा रही है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। इसके तहत आधी रात को जब सड़कें सुनसान होती हैं और शहर की तंग गलियां खाली, उसी दौरान ये सफाई अभियान शुरू होता है। इस मिशन की समीक्षा करने पूरी रात गश्त लगाते हैं जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा। जहां एक तरफ सफाई कर्मी सड़कों गलियों को साफ करने निकलते हैं, वहीं ये दोनों अफसर अपनी स्कूटी पर बैठकर निरीक्षण करते नजर आते हैं।
1: ये जो है ये एक अभियान है, ये एक शुरुआत है जो जयपुर शहर को हमने क्लीन और ग्रीन बनाने का, क्लीन करने के लिए हमने पूरा अपने ताकत लगा दी है और ये हमारी जो प्रयास है वो आगे भी रहेगी। अभियान के रूप से हमने सभी को एक्टिवेट कर दिया, ये रहेगा।
0: जिन तंग गलियों में

0: जहां एक तरफ सफाई कर्मी सड़कों गलियों को साफ करने निकलते हैं, वहीं ये दोनों अफसर अपनी स्कूटी पर बैठकर निरीक्षण करते नजर आते हैं।
1: ये जो है ये एक अभियान है, ये एक शुरुआत है जो जयपुर शहर को हमने क्लीन और ग्रीन बनाने का, क्लीन करने के लिए हमने पूरा अपने ताकत लगा दी है और ये हमारी जो प्रयास है वो आगे भी रहेगी। अभियान के रूप से हमने सभी को एक्टिवेट कर दिया, ये रहेगा।
0: जिन तंग गलियों में सुबह की भीड़ भाड़ में कदम रखना भी मुश्किल हो, ऐसे में वहाँ सफाई के लिए वक्त और जगह निकालना एक टास्क है। यही वजह है कि आमतौर पर सुबह सवेरे होने वाली सफाई को रात के
2: समय हमारी हेल्प करे और कचरा उन ऐसे इधर उधर नहीं डाल के निर्धारित स्थान पर डाले।
0: इस ऑपरेशन क्लीन स्वीप में करीब 2000 सफाई कर्मी पूरी रात मैदान में डटे हैं। डीएम और नगर निगम आयुक्त की निगरानी में चलाया जा रहा है सफाई अभियान। शहर भर को 36 बीट्स में बांटकर निगरानी रखी जा रही है। सभी सफाई टीमें नाइट जैकेट, टॉर्च, गम्बूट, डंपर, हुपर जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस है। आने वाले समय में सड़क पर कचरा फेंकने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए खिलाफ सख्त जुर्माना लगाने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन इस सफाई मिशन को सिर्फ अभियान तक सीमित न रखकर नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने की कोशिश में है। विशाल शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।
3: बॉलीवुड की मसाला फिल्मों पर इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर भक्ति की बयार चल पड़ी है। हाल ही में रिलीज फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया बल्कि फिल्म की फैन लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल हो गया है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म देखते ही पूरे प्रदेश में इसे टैक्स फ्री करने का भी ऐलान कर दिया है।
4: श्री कृष्ण की उस पूरी कथा को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके कुछ प्रसंगों को लेकर के अद्भुत है।
0: संस्कृति और आस्था की गहराइयों को छूती मैथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 जमकर बॉक्स ऑफिस पर वाहवाही लूट रही है। देखने वाला हर दर्शक भगवान की लीलाओं से भाव विभोर है। वहीं दूसरी ओर फिल्म में इस्तेमाल हुए वीएफएक्स और तकनीक की भी तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म के प्रशंसकों में एक नाम और जुड़ा है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। सीएम योगी ने लोकभवन में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म का स्पेशल स्क्रीनिंग देखी और इस फिल्म से इतना प्रभावित नजर आए कि तारीफ किए बिना नहीं रह पाए।
4: श्री कृष्ण की उस पूरी कथा को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके कुछ प्रसंगों को लेकर के अद्भुत है, अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। इन सभी कलाकारों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं।
0: फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस दौरान सीएम ने फिल्म से जुड़े कलाकारों को सम्मानित भी किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके बाल्यकाल और मथुरा वृंदावन की लीलाओं को भव्य अंदाज में दर्शाया गया है। इस फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का मुख्य किरदार संस्कृति ने निभाया है, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नातिन है। फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। इसके अलावा सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण का किरदार निभाया है। पहले दिन 42 लाख का कलेक्शन किया, दूसरे दिन फिल्म की कमाई 1.15 करोड़ रुपए रही, तीसरे दिन कलेक्शन 2.25 करोड़ रुपए रहा और लगातार सफलता के झंडे गाड़ते हुए चौथे दिन 3.01 करोड़ की कमाई हुई। यानी अब तक फिल्म का नेट कलेक्शन करीब 7 करोड़ पहुंच चुका है और अब ये साल की पहली सरप्राइज बॉलीवुड हिट बनने के लिए तैयार नजर आ रही है।

0: SBI Report, Good News Today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Hop on board and settle in for an easy going cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होने पहुंचे पीएम, निकला भव्य रोड शो, लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत, सड़कों पर दिखी संस्कृति की भव्य झलक। सोमनाथ में जमीन से आसमान तक उत्सव का माहौल, अब से कुछ देर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा मंदिर के शिखर का कुंभ अभिषेक, सूर्य किरण या शो के दौरान आसमान से होगी पुष्प वर्षा। वडोदरा में आज सरदार गौरव रत्न से सम्मानित होंगे पीएम, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय विकास में सराहनीय योगदान, नवनिर्मित सरदार धाम भवन 3 का उद्घाटन करेंगे पीएम। हीटवेव और बाढ़ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, आपदा प्रबंधन पर कड़े निर्देश, शाह ने दिया गर्मी के विरुद्ध जीरो कैजुअलिटी का मंत्र।

0: का प्रतीक है। इसे अनेक बार तोड़ा गया लेकिन हर बार ये पहले से ज्यादा भव्य तैयार होकर खड़ा हुआ। हम आपको सोमनाथ धाम में चल रहे अमृत महोत्सव की ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। ये महोत्सव काफी ज्यादा अहम है, कई मायनों में अहम है। सोमनाथ महादेव की कहानी है इसके पीछे और ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, सोमनाथ धाम की ये तस्वीरें। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप सीधा जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। दिलीप, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइएगा सोमनाथ महोत्सव को लेकर, अभी वहां पर कितनी हलचल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, क्या चल रहा है अभी वहां?
1: जी, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री है वो सोमनाथ हेलीपैड पहुंचे थे और वहां से उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी समेत कई गुजरात के सीएम और कई और नेता है उसको उसका स्वागत किया। उसके बाद यहाँ से रोड शो की शुरुआत हुई थी जो हेलीपैड से है वहाँ के हमीद जी सर्कल, जो 1.5 किलोमीटर का ये था। ये प्रधानमंत्री ने ओपन जीप में सबका, जो लोग आए थे उनका अभिवादन किया है और अभी रोड शो है वो सोमनाथ मंदिर पहुंचा है और अब प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं। वहां पर आज उसका पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर और भी कार्यक्रम है। एयरफोर्स का सूर्य किरण शो है, इनके अलावा ये जो कुंभ है यहाँ पर होने वाला है। तो इसके बाद प्रधानमंत्री का एक सभा भी है वहाँ पर, बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बंगाल चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पहली बार सोमनाथ आए हैं और ये रोड शो में जय सोमनाथ के नाद से गूंज उठा था, लेकिन मोदी मोदी का भी नारा लोगों ने लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। जी
0: चलिए ठीक है दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जब सोमनाथ महादेव मंदिर के पास पहुंचे उसकी तस्वीरें, भव्य रोड शो इससे पहले निकाला गया और ये तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ऐतिहासिक कुंभ अभिषेक और ध्वजारोहण की तैयारी पूरी हो चुकी है, हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण है मंदिर के शिखर पर होने वाला पहला कुंभ अभिषेक, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह अभिषेक 11 पवित्र तीर्थों के जल से किया जाएगा। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई, पीएम मोदी के रथ के आगे डमरू बजता हुआ दिखाई दिया, डमरू बजाता भैरवनाथ डमरू मंडल, उसकी भी तमाम तस्वीरें काफी तेजी से अब वायरल भी हो रही है। और आज अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है जिसके लिए पीएम मोदी खुद वहां पर पहुंचे हैं। भव्य रोड शो निकाला गया, लंबा रोड शो ये था। सोमनाथ मंदिर में भूदेव यज्ञ कुंड में हवन भी किया जा रहा है एक तरफ, और तैयारी यानी पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसके साक्षी बनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। कई धार्मिक अनुष्ठान सोमनाथ धाम में हो रहे हैं और आज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे हो गए हैं। अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ जिसमें खुद भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे और तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो हर्ष सांघवी हो, वो भी सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं। सोमनाथ हेलीपैड से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हुआ जो कि काफी लंबा था, लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो पीएम मोदी का था और उसी के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी प्रधानमंत्री के साथ नजर आए। इस शुभ अवसर पर सोमनाथ मंदिर को भव्य तौर पर सजाया गया है, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रवेश कर रहे हैं अभिवादन करते हुए और कई कला का प्रदर्शन भी वहां पर किया गया। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थों के जल से कुंभ अभिषेक होगा। वायुसेना की सूर्य किरण टीम भी एक एयर शो करने वाली है। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और इससे पहले उन्होंने हेलीपैड से मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। थोड़ी देर में मंदिर के शिखर के अभिषेक की रस्म शुरू हो जाएगी जिसकी तस्वीरें जीएनटी पर आप देख पाएंगे। वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभ अभिषेक किया जाएगा। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद इसमें ली जाएगी जिसकी तस्वीर हम सुबह से ही आपको दिखा रहे थे, क्योंकि क्रेन की सहायता से ही कुंभ अभिषेक संपन्न हो पाएगा। तो क्रेन की एक अहम भूमिका है आज के कुंभ अभिषेक को लेकर। पीएम मोदी अब सोमनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल उनके साथ नजर आए और साथ ही हर्ष सांघवी भी इससे पहले पीएम मोदी के आगमन से पहले वहां पहुंच चुके थे। और इस अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम पुष्प वर्षा करेगी। मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एक एरोबेटिक शो भी किया

0: जाएगा, जिसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थी और आज वो तस्वीरें सामने आएंगी जब मंदिर के ऊपर वो 15 मिनट तक एरोबेटिक शो करेगी। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल की वर्षा भी की जाएगी, यानी फूल बरसाए जाएंगे। सोमनाथ अमृत महोत्सव की शुरुआत आज के दिन हो चुकी है और इसके पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो चुके हैं। अब एक ऐसा शख्स से आपको मिलवाते हैं जो कि 75 साल पहले हुए लोकार्पण उत्सव के साक्षी आज बने और आज अमृत महोत्सव का भी गवाह बन रहे हैं। सोमनाथ के भास्कर वैद्य ने सोमनाथ धाम के 75 साल की इस गौरवशाली यात्रा को बहुत करीब से देखा है।
1: जब मंदिर पुराना मंदिर था, जिसका फोटोग्राफ अवेलेबल है, उस समय मैं अपने फादर के साथ एक गांव में कुछ उत्सव मना था, इसी दिखाते के लिए मुझे अंगुली पकड़ कर ले आए थे और मैं उस मंदिर के पुराना मंदिर जो फोटोग्राफ में देखते हैं वहाँ उसकी जगह पर एक सिर्फ खाड़ा था, गड्ढा था जिसमें कोई मूर्ति सही नहीं, पर हरेक स्थलों उस जगह पर भी कुछ पानी चढ़ाकर, कुछ चंदन चढ़ाकर, कुछ गलाल छांट कर भगवान उसमें ही ऐसा महसूस कर उसकी पूजा तो करते ही थे। उस समय जब प्राण प्रतिष्ठा सरदार वल्लभ भाई पटेल जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तब ने उसने उस समय वो नायब होम मिनिस्टर थे इंडिया का, उसने पहला काम 13 नवंबर को सीधा सोमनाथ आए और उस समय हेलीकॉप्टर की जैसी व्यवस्था नहीं थी मगर ट्रेन में आए, उस ट्रेन का भी फोटो अब लाइब्रेरी में अवेलेबल है। और उसने मंदिर की ये जीर्ण दशा देखी तो उसकी लोखंडी पुरुष मानते हैं, उसकी आंख भी आंसू से दिखाई गई है, उसका दर्द उसके चेहरे में और आंखों में दिखाई दिया। उसने पहला ही काम उस समय जब पुराना मंदिर था वहाँ से समुद्र में जाने के लिए एक सीढ़ी थी, पत्थर की सीढ़ी थी, वहाँ से सीधा उतरे और उसने हाथ में सूर्य का समुद्र का जल लेकर उसने प्रतिज्ञा ली कि जहाँ मैं सोमनाथ का पुनरुद्धार करूँगा और बिना सोमनाथ का पुनरुद्धार आज़ादी मिली तो ये आज़ादी अधूरी है, उसका दृढ़ निर्धार था। और उसने कन्हैयालाल मुंशी राम साहेब और कई लोगों ने उसके बाद अपने अपने तरीके से सोमनाथ ट्रस्ट की रचना हुई और आगे बढ़ता गया और 11/5/1951 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस हाल जब दर्शन करते हैं इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, वहां से मंदिर अब शुरू हुआ 11/5/1951 से।
0: तो सोमनाथ के बारे में आप सुन रहे थे, भास्कर वैद्य ये थे जिन्होंने सोमनाथ धाम के 75 साल की इस गौरवशाली यात्रा को बहुत करीब से देखा और आप तक इसके बारे में हमने जानकारी भी पहुंचाई। आप उन्हें उस शख्स से तो मिल लिया, अब ये तस्वीरें आप देखें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंच चुके हैं और सबसे पहले एक भव्य रोड शो निकाला गया जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो था, उसकी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब 90 मीटर ऊंचे शिखर पर आज मंदिर के ये कार्यक्रम पूरा होने वाला है, कुंभ अभिषेक के साक्षी हम सभी बनेंगे। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है और देश भर से श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए सोमनाथ भी पहुंच रहे हैं, यानी श्रद्धालुओं के लिए जो सोमनाथ मंदिर पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उसके कपाट बंद नहीं किए, अभी थोड़ी देर के लिए फिलहाल रोक दिया गया है श्रद्धालुओं को, लेकिन पूजा अर्चना श्रद्धालु भी पा रहे थे, उसकी सुबह तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक कुंभ अभिषेक के साक्षी बनने के लिए और ये लाइव तस्वीरें आप सोमनाथ धाम से देख रहे हैं। पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में पीएम मोदी अमृत महोत्सव के साक्षी बनते हुए ऐतिहासिक कुंभ अभिषेक किया जा रहा है, उसकी शुरुआत।

अभिषेक की तस्वीरें 11 पवित्र तीर्थों के जल से किया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से विशाल कलश भी एक तैयार किया गया है जिसमें पवित्र जल भरा हुआ है और इस अनुष्ठान की प्रक्रिया विशेष शुभ मुहूर्त में शुरू हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। आपको मंत्रोच्चारण की आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अभिषेक कर रहे हैं। एक क्रेन की सहायता भी इससे पहले ली गई है। कलश को मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर तक पहुंचाया जाएगा जिसमें जहां पर पुरोहितों और वेदाचार्यों द्वारा विधिवत अभिषेक किया जा रहा है। तो कुंभ अभिषेक हिंदू मंदिर परंपरा का बहुत ही प्राचीन और पवित्र अनुष्ठान माना जाता है जिसके खुद साक्षी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बने। खुद सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं। यह अनुष्ठान मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा को फिर से जागृत करने के उद्देश्य से माना जाता है। इसका आध्यात्मिक महत्व भी कई ज्यादा है। मंदिर के शिखर कलश और गर्भगृह में स्थापित देव प्रतिमा पर पवित्र जल औषधियों और मंत्रों के साथ यह अभिषेक किया जा रहा है।

सोमनाथ मंदिर का इतिहास काफी पुराना है और वो हम सभी जानते हैं, हजारों वर्षों पुराना इतिहास है, पौराणिक कथाएं हैं उसकी। और माना ये जाता है कि चंद्रदेव यानी कि सोम ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। ऋग्वेद और कई प्राचीन ग्रंथों में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इतिहास में कई बार आक्रमणों के कारण मंदिर को क्षति पहुँचाई गई, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ और काफी अच्छे तरीके से हुआ।

0: तो हमारे सहयोगी दिलीप मोरी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, देखिए वो तस्वीरें सामने आ चुकी है अभिषेक की, और अब कुंभ अभिषेक की शुरुआत हो गई है, आगे और क्या कार्यक्रम होगा, लगभग कितना समय इसमें लगेगा, दिलीप बताइएगा।
1: जी, ये कुंभ अभिषेक है वो लगभग 90 मिनट का है, डेढ़ घंटे के आसपास का ये चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एयर शो है सूर्य किरण का, वो एयर शो है, एयरफोर्स है वो अभी करने वाली हो। इनके अलावा यहाँ पर मोदी जी की सभा है, लेकिन इससे पहले ये सोमनाथ महादेव मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्पों की बारिश भी की जाएगी। तो ये पहला कुंभ अभिषेक है जिसमें 11 तीर्थों का जल है वो एकत्रित किया गया था, और इसी जल से अभी महादेव का जो टॉर्च शिखर है उन पर अभिषेक शुरू हुआ है। लगभग 90 मिनट तक चलेगा। जी,
0: जो एयर शो का दिलीप आप जिक्र कर रहे थे, उसकी तैयारियां कैसी है? एयर शो के दौरान फूलों से बरसात तो की ही जाएगी, फूलों की बारिश होगी, लेकिन उसी के साथ और क्या कुछ चीजें एयर शो के दौरान देखने को मिलेगी? लगभग कितना लंबा वो एरोबेटिक शो होगा?
1: जो इसका रिहर्सल कल हुआ था तो उसमें लगभग 15-20 मिनट तक ये एयर शो है वो हुआ था, जिनमें अलग अलग ये एयरफोर्स है उसके जो सूर्य किरण की टीम है वो करतब दिखाएंगी, अलग अलग कृतियां है वो बनाई जाएगी, जो सोमनाथ महादेव मंदिर के इर्द गिर्द ये जो जेट है वो घूमेंगे, और इनसे अलग अलग वो कृतियां है वो बनेंगी। इसके अलावा दो हेलीकॉप्टर थे कल जब रिहर्सल हुई थी, उसी की तरह आज भी ऐसा है, दो हेलीकॉप्टर से महादेव पर पुष्पों की बारिश होगी। जी
0: दिलीप, क्योंकि 11 तीर्थों के जल से शिखर पर ये पहली बार कुंभ अभिषेक हो रहा है, जिसके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ साक्षी बन रहे हैं, इस जो जल वहां से लाया गया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा।
1: जी, मैं आपको बता दूं कि करीब 75 साल पहले जब सोमनाथ महादेव का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, जब ये मंदिर बनकर खड़ा हुआ था पहली बार 1951 में, तब 11 समुद्रों का जल था जो पूरे विश्व में से इकट्ठा किया गया था, और इस बार भी 75 साल के बाद 11 तीर्थों के जल है उसको एकत्रित किया गया है, और इस कुंभ में ये जल है वो डाला गया है। जो क्रेन से ये कुंभ है वो महादेव के शिखर पर अभी रखा गया है, लेकिन अभी ये सामने नहीं आया कि ये 11 तीर्थ है वो कौन कौन से तीर्थ है, गुजरात के है या गुजरात के बाहर के है, वो अभी तक स्पष्टता नहीं हुई है। जी,
0: क्योंकि क्रेन की सहायता भी इस बीच ली जाएगी दिलीप, तो लगभग कितनी मीटर ऊंची क्रेन होगी जिसकी मदद से ये कलश के जल जो जल है उससे मंदिर का अभिषेक किया जाएगा?
1: जो ये कलश में जल है वो काफी तादाद में है, मतलब ये कलश है वो काफी बड़ा है, तो हजारों लीटर के आसपास होगा, लेकिन हाइट की बात करें तो सोमनाथ महादेव मंदिर है वो भी काफी ऊंचाई पर है, इसीलिए इसको क्रेन से काफी दिनों से ये रिहर्सल भी हो रही थी कि कैसे करेंगे। कल ये रिहर्सल पूरी हुई थी, जल कैसे महादेव के शिखर पर डालेंगे, ऐसे कुछ दिनों से, पिछले 4 दिनों से ये जो प्रशासन है या तो सोमनाथ ट्रस्ट है उनकी ओर से ये जल कैसे महादेव पर अभिषेक कराया जाएगा इसका रिहर्सल हो रहा था। जी,
0: दिलीप, अगर हम सोमनाथ महादेव ये जो मंदिर है इसके इतिहास के बारे में समझे तो देखिए बहुत बड़ा इतिहास इसका रहा है, वो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी क्षति सोमनाथ को पहुंची और उसके बाद ये मंदिर बार बार टूट कर बिखर कर फिर से खड़ा हुआ।
1: यहाँ के पंडितों की बात सुने या फिर शास्त्रों की बात करें तो ये मंदिर है वो हजारों लाखों साल पहले ही बन चुका था, स्वयंभू महादेव है वो यहाँ पर प्रकट हुए थे। पिछले 4 युगों में ये मंदिर है वो 4 बार टूटा फिर बना, और 1000 साल पहले जब मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर हमला किया था पूरा मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था, और 1950 के आसपास सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर संकल्प लिया था ये मंदिर फिर से खड़ा होगा, और 1951 में ये मंदिर है वो बन के तैयार हो चुका था, लेकिन इनका इतिहास है वो काफी सालों पुराना है। देश का पहला ज्योतिर्लिंग है ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रदेव है उसको अपने श्राप के निवारण के लिए यहाँ पर उसने तपस्या की थी, और महादेव यहाँ पर प्रकट हुए थे हजारों साल पहले। जी,
0: चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये तस्वीरें आप कुंभ अभिषेक की देख रहे हैं, अब कुंभ अभिषेक शुरू हो गया है, चूंकि हिंदू मंदिर परंपराओं का बहुत ही प्राचीन और पवित्र अनुष्ठान माना जाता है, इससे पहले एक भव्य रोड शो भी प्रधानमंत्री का हुआ जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो था। और इसके बाद
2: ओम विष्णुरा विष्णुरा,
0: इसके बाद भी तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल कुंभ अभिषेक की तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। 90 मीटर ऊंचे शिखर पर कुंभ अभिषेक के साक्षी वो बनेंगे। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है, सजावट इन तस्वीरों के जरिए काफी भव्य लग रही है। देश भर से श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए सुबह से ही सोमनाथ पहुंच चुके हैं। तो 11 तीर्थों के जल से शिखर पर पहली बार कुंभ अभिषेक किया जाएगा। जैसा कि हमारे सहयोगी दिलीप भी बता रहे थे, सोमनाथ अमृत पर्व का ये सबसे बड़ा आकर्षण मंदिर के शिखर पर होने वाला कुंभ अभिषेक ही होगा, जो कि 11 पवित्र तीर्थों के जल से किया जाएगा। और इसके लिए विशेष रूप से विशाल कलश भी एक तैयार किया गया है जिसमें पवित्र जल भरा गया। और इस अनुष्ठान की प्रक्रिया विशेष शुभ मुहूर्त में अब शुरू हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं जिसके बाद ये संपन्न होगी। विशाल क्रेन की सहायता से कलश को मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां पुरोहितों और वेदाचार्यों द्वारा विधिवत अभिषेक किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 75 साल पहले पुनर्निर्माण हुआ था सोमनाथ मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। हमारे सहयोगी दिलीप भी बता रहे थे, क्योंकि जब जब सोमनाथ का जिक्र होता है चंद्रदेव का भी जिक्र किया जाता है, क्योंकि सोम ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी, यानी कि चंद्रदेव ने, जिसके कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा।
2: पुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तः।
0: इसका काफी धार्मिक महत्व भी है अनुष्ठान का भी और सोमनाथ मंदिर का भी, क्योंकि हिंदू आस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र सोमनाथ माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग ये माना जाता है। और धार्मिक मान्यता है इसके पीछे कि यहाँ पर दर्शन पूजन करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, तो इसीलिए सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। और आज भी इस पल के साक्षी बनने के लिए विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए। पूजा करने से यहाँ पर भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन के लिए हर साल पहुँचते हैं। ऐसे में सोमनाथ अमृत पर्व 2026 इस ऐतिहासिक मंदिर की एक गौरव गाथा में एक नया अध्याय अब जुड़ने वाला है। और इसके बाद पुष्प वर्षा भी मंदिर पर की जाएगी। 75वीं वर्षगांठ पर सूर्य किरण एयर शो भी होगा। एरोबेटिक फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे जेट, उसकी रिहर्सल की तस्वीरें भी पहले सामने आई थी और आज वो दिन आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस ज्योतिर्लिंग में से एक यानी सोमनाथ, जो भारत के अटूट आस्था और इसका एक प्रतीक माना जाता है सोमनाथ मंदिर, वहां पर मौजूद है। उसकी तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभिषेक करती हुई तस्वीरें। इन तस्वीरों के साथ छोटे से एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।

0: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits...
3: Somebody save me.
2: ...to timeless favorites... and new discoveries.
3: So much more than a history. Wake up.
2: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: So much more than a history.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: सोमनाथ अमृत महोत्सव के साक्षी बने पीएम मोदी, विधि विधान से की महादेव की महापूजा, भक्तों में दिखा भारी उत्साह। सोमनाथ में जमीन से आसमान तक उत्सव का माहौल, अब से कुछ देर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक। सूर्य किरण यशो के दौरान आसमान से होगी पुष्प वर्षा। वडोदरा में आज सरदार गौरव रत्न से सम्मानित होंगे पीएम, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय विकास में सराहनीय योगदान, नवनिर्मित सरदार धाम भवन 3 का उद्घाटन करेंगे पीएम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है सोमनाथ धाम में। चार दिन से चल रहे अमृत महोत्सव का आज समापन कार्यक्रम यहां चल रहा है, जिसका साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। कई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, अभिषेक किया जा रहा है। आज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस शुभ अवसर पर सोमनाथ मंदिर को भव्य तौर पर सजाया गया है। उसकी तमाम तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। इससे पहले लगभग 2 किलोमीटर का भव्य रोड शो पीएम मोदी ने किया। पूरे साल वैसे सोमनाथ का अमृत पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज यानी 11 मई 1951 की इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जो कि ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान, आस्था और अदम्य चेतना का प्रतीक है। इसे अनेक बार तोड़ा गया लेकिन हर बार ये पहले से ज्यादा भव्य होकर खड़ा हुआ। ये तस्वीरें देखिए, सोमनाथ मंदिर से सीधी लाइव तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अभिषेक किया जा रहा है। काफी लंबा अभिषेक, ये समय काफी लंबा है इसका, जिसका ये अभिषेक हो रहा है। और सोमनाथ धाम में चल रहे इस अमृत महोत्सव की ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये महोत्सव काफी ज्यादा अहम है, कई मायनों में अहम है। 2021 में फिर से कायाकल्प हुआ, 2026 में शान से सोमनाथ मंदिर खड़ा हुआ और आज पीएम मोदी यहां पर मौजूद हैं सोमनाथ पर। पीएम ने इससे पहले एक लेख भी लिखा था। सोमनाथ अमृत महोत्सव की तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। इसके बाद मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी, तो आज कई कार्यक्रम वहां पर होने वाले हैं। और पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अब अभिषेक की शुरुआत हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक भी किया जा रहा है। वहीं 90 मीटर ऊंचे क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक किया जाएगा, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ऐतिहासिक कुंभाभिषेक की शुरुआत हो चुकी है, पीएम मोदी यहां पर मौजूद है और इस अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एक एरोबेटिक शो भी करेगी। पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो चुके हैं, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। उसकी भी तमाम तस्वीरें सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे। तो कुंभ अभिषेक की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब क्रेन से, स्क्रीन की सहायता से वो होगा। और अभी रुद्राभिषेक की तस्वीरें आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर पे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राभिषेक कर रहे हैं। अमृत महोत्सव की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और आज समापन कार्यक्रम है, पूरे मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया जा रहा है। सबसे पहले पीएम मोदी पहुंचे, एक भव्य रोड शो किया गया और उस रोड शो के बाद पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचते ही सरदार पटेल की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हुए भी नजर आए। 2 किलोमीटर का लगभग लंबा रोड शो था, फिर मंदिर पहुंचे और अब रुद्राभिषेक की तस्वीरें आप देख रहे हैं।

तस्वीरें भी सामने आएंगी कुछ समय बाद, जब वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभ अभिषेक किया जाएगा। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक होगा और अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एरोबेटिक शो भी करेगी। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल बरसाए जाएंगे। तो सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से 2026 खास है, क्योंकि

पीएम मोदी भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज महापूजा की जाएगी, कुंभ अभिषेक की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अभी फिलहाल जलाभिषेक किया जा रहा है भगवान सोमनाथ का, पूजा अर्चना की जा रही है। सोमनाथ मंदिर जब पीएम मोदी पहुंचे, जिसका इंतजार सुबह से ही किया जा रहा था, वहां पहुंचने से पहले सरदार पटेल की मूर्ति पर पीएम मोदी फूल चढ़ाते नजर आए। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया पीएम मोदी ने, जहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह काफी ज्यादा हाई नजर आया। जो इंतजार श्रद्धालु कर रहे थे पीएम मोदी के पहुंचने का और आज उसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का, वो आज मानो खत्म हो गया है। समापन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और मोदी अमृत महोत्सव के साक्षी बनते हुए यहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं।

जलाभिषेक के बाद कुंभ अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद 15 मिनट का एयर शो होगा जो कि 182 किलोमीटर दूर से वायुसेना के विमान तबाएंगे। फूलों से मंदिर के शिखर पर बरसात की जाएगी। सोमनाथ में सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था जब पीएम मोदी पहुंचे थे। रोड शो पीएम का निकला तो भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे और अब ये जलाभिषेक पूरी प्रक्रिया एक एक प्रक्रिया जलाभिषेक की यहां पर पूर्ण की जा रही है। पीएम मोदी खुद जलाभिषेक कर रहे हैं।

गुजरात के विरावल में स्थित पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम में चार दिन से चल रहे समृद्ध महोत्सव का आज समापन कार्यक्रम चल रहा है, जिसका साक्षी प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बने हैं। कई धार्मिक अनुष्ठान सोमनाथ धाम में हो रहे हैं। राज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस शुभ अवसर पर सोमनाथ मंदिर को भव्य तौर पर सजाया गया है। पूरे साल से सोमनाथ का अमृत पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन आज का दिन बहुत खास है क्योंकि 11 मई 1951 इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और काफी खास ये दिन है क्योंकि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान, आस्था और अदम्य चेतना का प्रतीक है। इसे इतनी बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये पहले से ज्यादा भव्य होकर खड़ा हुआ। सोमनाथ धाम में चल रहे अमृत महोत्सव की ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। महोत्सव कई मायनों में खास है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, अभी जलाभिषेक किया जा रहा है।

तो गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी हैं, जहां पर सुबह सबसे पहले हेलीपैड से सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी। हेलीपैड से मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ, जहां पर श्रद्धालु भी नजर आए और काफी उत्साहित श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे। और अब जलाभिषेक की हमने आपको प्रक्रिया दिखाई। जलाभिषेक पीएम मोदी ने किया, अब पूजा अर्चना पीएम मोदी यहां पर कर रहे हैं। इसके बाद कुंभ अभिषेक की तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। लोगों का हुजूम सोमनाथ मंदिर के पास उमड़ा हुआ है।

और अब पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है। पुष्प वर्षा की तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले जलाभिषेक चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और अब पुष्प वर्षा की जा रही है मंदिर के शिखर पर।

0: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। शिवलिंग पर जल उन्होंने चढ़ाया, पूजा की। अमृत पर्व के लिए मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिलीप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, अब देखिए पुष्प वर्षा की शुरुआत भी हो चुकी है,
1: पार्वती पाता है।
0: आगे क्या अभी कार्यक्रम और होगा दिलीप, बताइएगा।
2: जी अभी हेलीकॉप्टर से सोमनाथ महादेव मंदिर पर पुष्पों की बारिश हो रही है। इसके अलावा ये जो कुंभ है, कुंभाभिषेक, उसमें महादेव के शिखर पर जो जलाभिषेक है वो हो रहा है। 11 तीर्थों का ये जल है, अलग अलग तीर्थों का। करीबन ये कुंभ है वो 8 से 9 फीट लंबा है और इसकी 90 मीटर ऊंचाई पर ये शिखर है, जहां पर ये क्रेन से अभी जलाभिषेक हो रहा है। पिछले 4 दिन से ये कार्यक्रम हो रहे थे। 51 ब्राह्मण है जो यहाँ पर अति रुद्र पाठ और वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं, वो भी 3 दिन से यहाँ पर शुरू है। इनके अलावा 1.25 लाख जो आहित की है वो भी ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। अभी मोदी जी है वो यहाँ पर पूजा करके फिर जो सद्भावना ग्राउंड है वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ हजारों की तादाद में लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों को ये संबोधित करेंगे। जी
0: लगभग दिलीप कितना समय और लगेगा कुंभ अभिषेक की शुरुआत? ब्रजेश दोषी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप आप हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रजेश तस्वीरें दिखाइएगा कि अभी तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ब्रजेश बताइएगा अभी आगे और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है।
2: देखिए अभी कुंभाभिषेक हो चुका है। 1000 लीटर जो जल था 11 पवित्र जगहों से लाया, धामों से, उस जल से कुंभाभिषेक किया गया है। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, सूर्य किरण का एयर शो होगा और ये कार्यक्रम खत्म करने के बाद सद्भावना मैदान में जाकर संबोधन करेंगे। सोमनाथ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के महत्व की बात करेंगे, किस तरह से सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प सरदार पटेल ने लिया था और उसको साकार होने के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस वक्त में क्या कहानियां हुई थी, किस तरह से बात हुई थी, इतिहास के वो जो पन्ने हैं जिसकी जानकारी लोगों को तक ज्यादा नहीं है उसको पहुंचाने का प्रोग्राम करेंगे। साथ ही परिसर में जो एक्सिबिशन बना हुआ प्रदर्शनी है कि सोमनाथ की सांस्कृतिक विरासत जुड़ी हुई किस तरह से इस मंदिर का कायाकल्प हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, उसको भी प्रधानमंत्री निहारेंगे और उसके बाद वो सभा स्थल पे पहुंचेंगे और उस महापन के बाद उनका विशेष का समय है और 3 बजे के बाद वडोदरा के लिए रवाना होंगे।
0: ब्रजेश एक बार जो एयर शो आज होने वाला है, क्योंकि पुष्प वर्षा हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाभिषेक कर चुके हैं, थोड़ा उस एयर शो के बारे में जानकारी दीजिएगा, कैसा होगा? लगभग 15 मिनट तक होने वाला है एयर शो।
2: बिल्कुल, देखिए 10 मिनट का ये एयर शो होता है। सूर्य किरण की टीम जो है वो हर बार अपने कर्तव्य दिखाती है, वायुसेना की ये विशेष।
0: चलिए ब्रजेश आपके पास लौटेंगे, अब वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, कुंभ अभिषेक किया जा रहा है, ध्वजारोहण हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले जलाभिषेक की तस्वीरें दिखाई, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये कुंभ अभिषेक किया जा रहा है। तो ब्रजेश अब कुंभ अभिषेक शुरू हो गया है, लगभग कितना समय लगेगा? तो ऐतिहासिक कुंभ अभिषेक और ध्वजारोहण की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है जिसका 75 साल पर इस उत्सव को मनाया जा रहा है। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस उत्सव को मनाया जा रहा है। जैसे ही मंदिर में भगवान

यारा पवित्र तीर्थों के जल से किया जा रहा है। विशेष रूप से विशाल कलश तैयार ये किया गया था, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पवित्र जल इसमें भरा गया और इस अनुष्ठान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये प्रक्रिया संपन्न होगी। विशाल क्रेन की सहायता से कलश को मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर तक पहुंचाया गया, जहां पर पुरोहितों और वेदाचार्यों द्वारा विधिवत अभिषेक किया जा रहा है। कुंभ अभिषेक काफी ज्यादा अहम है हिंदू मंदिर की परंपरा के लिए, क्योंकि प्राचीन और पवित्र अनुष्ठान ये माना जाता है। आप ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर यहाँ खड़े हैं और कुंभ अभिषेक की ये प्रक्रिया चल रही है। मंत्रोच्चार की गूंज पूरे मंदिर परिसर में सुनाई दे रही है। मंदिर के शिखर, कलश और गर्भगृह में स्थापित देव प्रतिमा पर पवित्र जल, औषधियों और मंत्रों के साथ ही अभिषेक किया जा रहा है।

सोमनाथ मंदिर के 75 साल पूरे हो चुके हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। मंदिर के शिखर का 11 तीर्थों से के जल से अभिषेक किया जा रहा है। सूर्य किरण टीम एयर शो इसके बाद करेगी, उसकी भी तमाम तस्वीरें सामने आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो भी हुआ सोमनाथ मंदिर के लिए। कुंभ अभिषेक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर के शिखर पर पूरी रस्म प्रक्रिया के साथ कुंभ अभिषेक किया जा रहा है। वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभ अभिषेक किया गया है। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक किया जा रहा है और इस अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एरोबेटिक शो भी करेगी, जिसकी रिहर्सल इससे पहले हो चुकी है। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल बरसाए जाएंगे।

के विंग्स पर, और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन।

0: भगवान सोमनाथ की।
1: के विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन।

0: की।
1: विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन।

0: देखिए किस तरह से हम आपको लगातार सोमनाथ से तस्वीरें दिखा रहे हैं और कुंभाभिषेकम के बाद की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उत्सव के साक्षी बने और गुजरात के वेरावल में स्थित पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम में चार दिन से चल रहे अमृत महोत्सव का आज समापन कार्यक्रम चल रहा है, जिसके साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बने। आज कई धार्मिक अनुष्ठान सोमनाथ मंदिर में हुए, तो आज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इस शुभ अवसर पर सोमनाथ मंदिर को भव्य तौर पर सजाया गया। वैसे तो पूरे साल से सोमनाथ का अमृत पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 11 मई 1951 इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान, आस्था और अदम्य चेतना का प्रतीक है। इसे अनेक बार तोड़ा गया लेकिन हर बार ये पहले से ज्यादा भव्य होकर खड़ा हुआ। हम आपको सोमनाथ धाम में चल रहे अमृत महोत्सव की ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये महोत्सव क्यों अहम है, इसके क्या मायने हैं और क्या है सोमनाथ महादेव की कहानी, ये भी हम जानेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए जो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। सोमनाथ धाम का ऐतिहासिक महत्व, भारत के स्वाभिमान से जुड़ी आस्था, सोमनाथ महोत्सव का उल्लास और 75 साल का ये महोत्सव। सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई, कुंभाभिषेक किया गया। देखिए किस तरह से क्रेन की सहायता से कुंभाभिषेक हुआ, 11 तीर्थ स्थलों से पावन जल लेकर कुंभाभिषेक किया गया और उसी के साथ आसमान से पुष्प वर्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पल के साक्षी बने, इस पल के गवाह बने जब ये कुंभाभिषेक किया गया सोमनाथ मंदिर में। तो ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सोमनाथ से कि किस तरह से आज का ऐतिहासिक दिन, आज का ऐतिहासिक पल अपने आप में इसी के साथ पूर्ण हुआ जब 75 साल के पुनर्निर्माण को आज मनाया गया।
1: धार्मिक अनुष्ठान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हाथ संपन्न हुआ है। किसी भी तीर्थ स्थल या फिर मंदिर की पवित्रता या फिर आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से जागृत करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को किया जाता है। जब कोई मंदिर नया बनता है तब सबसे पहले नूतन कुंभाभिषेकम नाम का एक विशेष अभिषेक उसमें किया जाता है। इस पूरे अनुष्ठान का उद्देश्य होता है कि मूर्तियों में देवताओं की ऊर्जा को स्थापित करना। इसके बाद 10 से 12 सालों के अंतराल पर इस ऊर्जा को फिर से जागृत करने के लिए ये कुंभाभिषेक किया जाता है, जो आज हमने आपको तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखाई हैं। तो कुंभाभिषेक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, कुंभ यानी कलश या पवित्र पात्र या अभिषेक यानी पवित्र स्थान। जब विशेष वैदिक मंत्रों विधियों से अभिमंत्रित जल को मंदिर के शिखर, कलश या देवी देवताओं की मूर्ति पर चढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं कुंभाभिषेक। चलिए तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे, फिलहाल यहां पर होंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी ये कवरेज लगातार जारी है।
2: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when Home Serve is here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
3: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: Sage University, transforming your passion into profession.
1: वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सोमनाथ मंदिर का हुआ भव्य ध्वजारोहण। कुंभाभिषेक सोमनाथ के इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से किया गया कुंभाभिषेक। सोमनाथ अमृत महोत्सव में देखने को मिली भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण टीम का भव्य शो। सेना के हेलीकॉप्टर से की गई सोमनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा। सोमनाथ अमृत महोत्सव के साक्षी बने प्रधानमंत्री मोदी। विधि विधान के साथ की महादेव की पूजा अर्चना। भक्तों में दिखा भारी उत्साह। फूलों से किया गया मंदिर का भव्य श्रृंगार। महापूजा से पहले प्रधानमंत्री ने निकाला

0: नमस्कार, गुड न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत।
0: तो चलिए आज की खास कवरेज की तरफ रुक कर लेते हैं। जो तस्वीरें सुबह से जीएनटी पर आपको दिखा रहे हैं वो देख लीजिए एक बार फिर से। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम कहे जाने वाले सोमनाथ महादेव के दरबार में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ अमृत पर्व यहां पर मनाया गया। सीधी तस्वीरें आज आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 4 दिन से चल रहे अमृत महोत्सव की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको सोमनाथ मंदिर से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है। आकृतियां फॉर्मेशंस यहां पर क्रिएट की जा रही हैं सोमनाथ मंदिर के आसमान में, वो भी आप देख पा रहे हैं।
1: देखिए, सोमनाथ मंदिर पर वायुसेना द्वारा सूर्य किरण शो जो है वो देखा जा सकता है और मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा

0: देखिए तस्वीरें सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष पूजा अर्चना की और इस वक्त जो है ये अशोक की तस्वीरें जो आसमान पर आप देखिए अपना दमखम दिखाते हुए। ये तस्वीरें अपने आप में दिव्य और भव्य हैं क्योंकि मंदिर के शिखर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कुंभाभिषेकम अभी थोड़ी देर पहले हुआ है और जो विजय पताका आप देख रहे हैं मंदिर के शिखर पर लहराते हुए और 11 तीर्थ स्थलों के जल से मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेकम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वहां मौजूद हैं और ये तस्वीरें देखिए आप किस तरह से वायुसेना के जवान जो हैं वो करतब करते हुए एयर शो दिखाते हुए इन तस्वीरों में।
1: देखिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम है SK-80 अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं इनको इस एयर शो में। आपको बता दें 6 Hawk MK-132 विमान ऐतिहासिक मंदिर परिसर के ऊपर अपने एरोबैटिक फॉर्मेशंस बना रही हैं। विंग कमांडर हैं जनमीत शर्मा जिन्होंने इससे पहले कहा था कि एयर शो 11 मई को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में किया जाएगा। वही तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 6 Hawk MK-132 विमान इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं जो सोमनाथ में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के प्रदर्शन का इस वक्त हिस्सा बन रहे हैं और तमाम तरह की फॉर्मेशंस आपके सामने इस वक्त ये कर रहे हैं। टीम की कमेंटेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल संधु हैं जिन्होंने कहा कि ये एयर शो सोमनाथ मंदिर के ऊपर अपनी तरह का पहला प्रदर्शन है जिसमें ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी के नेतृत्व में 6 विमान समन्वित हवाई अभ्यास कर रहे हैं। पायलटों की ट्रेनिंग हॉक विमानों पर होती है जो आपातकालीन और युद्ध की स्थितियों में यहाँ की मुश्किल इलाकों और युद्ध के समय में ऑपरेशनल तैनाती के लिए भी काबिल हैं। लेकिन सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर फॉर्मेशन तरह तरह की यहाँ पर बनाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं।
0: तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महा उत्सव का हर रंग गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर पहले जो है मंदिर शिखर पर कुंभाभिषेकम किया गया। 11 तीर्थ स्थलों का जल जो है उससे सोमनाथ के शिखर का कुंभाभिषेकम हुआ और उस पर ये देखिए वायुसेना का जो ये कर्तव्य है वो आप देख सकते हैं। वायुसेना के जवान लगातार आसमान में अपना दमखम दिखाते हुए किस तरह से आज जो आसमान है सोमनाथ का वो आपको दिखेगा। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज का दिन अपने आप में भव्य और दिव्य बन जाता है। 75 साल का जो इंतजार है जो आप देखिए 75 साल पहले आज पुनर्निर्माण की तस्वीरें मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थों के जल से कुंभाभिषेकम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां मौजूद हेलीकॉप्टर से सोमनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का शानदार प्रदर्शन आप देख सकते हैं किस तरह से एयर शो इस वक्त सोमनाथ के आसमान पर दिखा जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद हैं।
1: और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और चीज गीतिका जो इस वक्त मैं पढ़ पा रही हूँ ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जी। इसमें इन्होंने एक और चीज कही है कि बर्ड हैजर्ड कंट्रोल यूनिट भी यहाँ पर अलर्ट की गई है ताकि आसमान में अगर पंछी आते हैं पक्षी आते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सभी 6 विमान है एक साथ उड़ान इन्होंने भरी है जिसके बाद अलग अलग टुकड़ियों में ये बंटे हैं। हवा में कई तरह के कर्तव्य इस वक्त कर रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर हैं अमन गोयल जमीन से तालमेल बिठाने में ये काफी मदद कर रहे हैं। इस वक्त पायलटों को हवा की स्थिति विमानों के बीच की दूरी ऑपरेशन सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां इस दौरान जिस वक्त फॉर्मेशंस बन रही हैं उस वक्त वो दे रहे हैं। इलाके में पक्षियों की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मंदिर परिसर का पूरा जायजा ले रहे हैं पूरी जानकारी ले रहे हैं बातचीत कर रहे हैं जो भी उनके साथ मौजूद हैं और समझ रहे हैं कि इस मंदिर का इतिहास और इसके बारे में।
0: बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में आप देखिए कुंभाभिषेकम के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान ध्वजारोहण भी किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया है कुंभाभिषेकम की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद रहे सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आसमान पर पुष्प वर्षा भी की गई और सोमनाथ के शिखर पर यह पुष्प वर्षा हुई जो अपने आप में बेहद खूबसूरत नजारा जो था वो उस वक्त का था। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सोमनाथ से अमृत महोत्सव का जो ये समापन कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें कि किस तरह से कुंभाभिषेकम के बाद ध्वजारोहण किया गया मंदिर के शिखर पर।

0: और चलिए तस्वीरें तो लगातार आपको दिखा रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पे बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। आचार्य राज मिश्रा जी, राज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। और साथ ही हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर नितीशा मल्होत्रा जी। नितीशा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों के पास ही आते हैं। राज जी सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करती हूँ। कुंभाभिषेकम की तस्वीरें सुबह से हम जेएनटी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बार शाब्दिक अर्थ क्या है कुंभाभिषेकम का, ये क्यों किया जाता है, ये धार्मिक अनुष्ठान इतना महत्व क्यों रखता है, इसके साथ शुरुआत कर लेते हैं।
1: देखिए सबसे पहले कुंभ जो है पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। एक कुंभ के अंतर्गत शास्त्र में श्लोक आता है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता अमूलो मूले स्थितो ब्रह्मा। कुंभ के अंतर्गत भगवान का कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का जो मुख है ना, वहां भगवान विष्णु का जो है वो स्थान माना जाता है, भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। कलश का जो कंठ है वहां पर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का स्वयं का निवास माना जाता है। कलश का जो मूल है वो सृष्टि का जो सृजन है। जिस प्रकार से भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का क्रिएटर माना जाता है, भगवान विष्णु को सृष्टि का जो संरक्षण करने वाला है, चलाने वाला है वो माना जाता है, और देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को इस सृष्टि का संहारक माना जाता है। तो ये कलश ही पूरी सृष्टि है एक प्रकार से, जहां पर सृष्टि की संरचना और उसके साथ सृष्टि का पालन और सृष्टि का पूरा संहार ये कलश के अंतर्गत ही माना जाता है। कलश के अंतर्गत वसुंधरा यानी धरती का जो निवास है वो कलश के अंतर्गत माना जाता है। कलश की आकृति गोल होती है, आप सभी लोग जानते हैं, और ये धरती गोल है ये शास्त्रों के अंतर्गत, और आज साइंस भी इस चीज को प्रूव करता है। कुछ दिन पहले साइंस मानता था, लोग मानते थे कि ये धरती चपटी है, गोल नहीं, लेकिन आज हम सभी लोग इस विषय को मानते हैं। तो कलश का, क्योंकि कलश का जो स्वरूप है एक गोलाकार स्वरूप होता है, तो कलश धरती को रिप्रेजेंट करता है। कलश के अंदर सप्त द्वीप वसुंधरा श्लोक जब आता है कि सप्त द्वीप जो है उसके अंतर्गत उसका निवास है, सागर का निवास जो है उसके अंदर माना जाता है, सभी नदियों का निवास उसके अंदर माना जाता है। तो एक प्रकार से जो कलश है वो पूरा ब्रह्मांड है। जब आप कलश का पूजन करते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड का पूजन करते हैं, जब आप कलश का पूजन करते हैं तो आप सभी देवताओं का पूजन करते हैं, जब आप कलश का पूजन करते हैं तो सभी मातृगण जो है उनकी पूजा करते हैं, जब आप कलश का पूजन करते हैं तो आप देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा सभी का एक साथ पूजन करते हैं। तो जब आप कुंभाभिषेक करते हैं, जब कलश का अभिषेक करते हैं, कलश का पूजन करते हैं, तो पूरे सृष्टि की और सभी देवताओं का एक साथ आप आराधना कर रहे होते हैं। ये कलश को एक दिखाता है, एक उसकी जो परिस्थिति है उसको पूरी तरीके से दर्शाता है। कलश की जब आप आकृति को देखेंगे तो कलश की आकृति बड़ी डिफरेंट होती है। कलश का जो मुख होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो नीचे का पार्ट है कलश का, जिसको हम उदर कह सकते हैं, वो बड़ा होता है। और ये समाज को एक ज्ञान की तरफ लेकर के जाता है कि आपके मुख में जो प्रवेश करे उसको पचाने की शक्ति आपके उदर में होनी चाहिए। किसी की बात को सुन करके भी उसको पचाने की शक्ति आपके उदर के अंतर्गत होनी चाहिए। इसीलिए शास्त्र के अंतर्गत विशेष रूप से कुंभा अभिषेक का वर्णन है। और क्योंकि जो मंदिर का शिखर है उस पर कलश क्यों रखा जाता है, मंदिर के शिखर पर जो है वो कलश रखा जाता है, क्योंकि मंदिर का जो शिखर है वो भगवान का मस्तिष्क कहा जाता है, और जब वहां पर हम कलश रख करके उसका अभिषेक करते हैं तो एक प्रकार से हम भगवान के मस्तिष्क का अभिषेक कर रहे होते हैं, जिसके दर्शन करने से लोगों को सुख प्राप्त होता है, समृद्धि प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होता है। क्योंकि सुगुप्ता जी, भगवान शंकर को कहा गया है कि इच्छित फल भिन्न शिव औराधे और लाहिन जोग यज्ञ जप साधे। इस संसार के अंतर्गत यदि अपने इच्छा के अनुसार आप फल प्राप्त करना है तो बिना भगवान शंकर की कृपा के वो संभव ही नहीं है। तो जब भगवान शंकर की कृपा विशेष प्राप्त करनी हो वो तभी संभव है जब कुंभ की तरह अपने मन को एकाग्र करके और मन की जो समस्त भावनाएं हैं उसके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए, तो जाकर के भगवान शिव की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है।
0: बिल्कुल राजी, बहुत ही सुंदर वर्णन आपने बताया कि कुंभाभिषेक का महत्व क्या है, और राजी ने जैसा कि बताया उसके वर्णन के बारे में भी। लौटूंगे आपके पास, और चलिए नीतिशा जी से भी जान लेते हैं। नीतिशा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सोमनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और मान्यता है कि वहां पर महामृत्युंजय का जप करने से जो है अपार फल की प्राप्ति होती है, तो जरा इस महत्व के बारे में बताइए।
2: जी, थैंक यू गीतिका जी, और बहुत ही प्यारा प्रश्न आपने किया। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को ओम महादेवाय च विद्महे तत्पुरुषाय च धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। तो सोमनाथ मंदिर का आज पुनर्निर्माण का 75वां दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जब जो सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रमा के द्वारा किया गया, और चंद्रमा ने अपने पुनर्निर्माण के लिए, क्योंकि उन्हें जैसे श्राप मिला था उनके ससुर जी के द्वारा, और उस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने अपने पुनर्निर्माण के लिए शिव जी की तपस्या लाखों वर्ष की, और शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो क्षय रोग, जो उन्हें क्षय रोग हो गया था, वो उनका समाप्त हुआ। उसी के बाद से 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, यानी वो श्राप 15 दिन उन्हें कृष्ण पक्ष की तरफ ले जाता है, और वो आशीर्वाद वो 15 दिन उन्हें शुक्ल पक्ष यानी बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये पूरा जो हमें जो इतिहास मिलता है मंदिर का, वो भी इसी से मिलता है कि जब हमारे जीवन में कठिनाई आ जाती है, चाहे वो हेल्थ संबंधित है, चाहे वो कोई पीड़ा है, तो हम वहां पर बैठकर जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उसका जाप करके अपने जीवन से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आयु, क्योंकि पहले आयु को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, अगर हम हैं तभी आप पैसा है, तभी रिश्ता है, तभी सब चीजें, अगर हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है गीतिका जी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए सोचे, सफलता के लिए सोचे, तो ये जरूर सोचे कि हमारी हेल्थ भी उतनी अच्छी रहनी चाहिए, ताकि हम उस सफलता को प्राप्त करने के बाद उसके सुख को भी भोग सके। महामृत्युंजय मंत्र का जो रहस्य है, ये आपके सभी तरह के प्रॉब्लम्स से भी आपको छुटकारा दिलवाता है, और हेल्थ संबंधित जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है उसमें भी आयु आपकी लंबी करता है। ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपनी एज को, अपनी उम्र को भी बढ़वा दिया था, और उन्होंने चंद्र देवता ने, जिन्हें क्षय रोग हुआ था, उन्होंने भी महामृत्युंजय का जाप करके अपनी हेल्थ, जो उनकी हेल्थ बिल्कुल डाउन जा रही थी, उसको भी प्राप्त किया था, अपने सौंदर्य को प्राप्त किया था, अपने आकर्षण को प्राप्त किया था। तो सभी को कहूंगी कि जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हमें मानसिक शांति तो मिलती है, सौंदर्य और आकर्षण, क्योंकि उन्हें सोमनाथ, चंद्र के देवता भी कहा गया है, और चंद्रमा को हम आकर्षण का देवता भी कहते हैं, तो हमें उनकी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये बहुत सुंदर आयोजन है, और जो हम देख रहे हैं ध्वजा का पूजन, कुटुंब कुंभ पूजन, ये सब कुछ जो हो रहा है वो बहुत विशेष है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राजा का वहां पे उपस्थित होना, ये बताता है कि जो ये 2026 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में भारत बहुत अच्छे विजय को प्राप्त करेगा, और बहुत पॉजिटिव जो एनर्जीज है वो चारों तरफ फैलाएगा। जी
0: बिल्कुल, पॉजिटिव ऊर्जा के बारे में तो अक्सर हम बात करते हैं कि ऐसे अनुष्ठान जब भी किए जाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राज्य आपके पास आते हुए, राज्य एक सवाल तो ये कि जब भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है तो जो मुहूर्त तय किया जाता है वो किस आधार पर तय किए जाते हैं, और वक्त कैसे निर्धारित किया जाता है?
1: देखिए, सबसे पहले सर गुप्ता जी, तो मुझे लगता है एक सबसे सुंदर है कि जब भी एक, आप लोगों ने शायद एक भजन सुना होगा, ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे वश की नहीं है, है ना। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, राइट। तो जब भगवान की आराधना हम कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो ओकेजन है, जो इस प्रकार के प्लेसेस हैं, वहां पर बिना किसी मुहूर्त के भी अगर भगवान की आप आराधना करते हैं तो फिर उस परिस्थिति में आपकी आराधना स्वीकार्य हो। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम जब भी किए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले पंचांग है, 5 चीजें होती है पंचांग के अंतर्गत, जिसमें तिथि है, नक्षत्र है, योग है, करण है और दिवस है। इन 5 चीजों को देखा जाता है, सभी चीजें जब अनुकूलता से प्राप्त हो जाती हैं, ग्रह की परिस्थिति अनुकूल हो जाती है तब जाकर के इस प्रकार के नक्षत्र पूजन का होना चाहिए, नक्षत्र ध्यान वाना होना चाहिए, नक्षत्र इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें पूजा करने से फल अच्छा प्राप्त हो, तिथियों का एक पूरी तरीके से उसका ध्यान रखा जाता है, तिथियां जो है वो अनुकूल हो, रिक्ता इत्यादि तिथि ना हो, इस प्रकार की तिथियों का ध्यान रखा जाता है, तिथि के साथ फिर वार का ध्यान रखा जाता है, फिर देखा जाता है कौन सा लग्न बेहतर है, तो इन सभी चीजों को फिर योगों का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। इन सभी चीजों को देखने के बाद फिर निर्धारित किया जाता है कि ये समय पूजन के लिए बेहतर है या नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं सुगुप्ता जी जब मैं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि हम लोग ग्रहों के अधीन हैं, हम लोग समय के अधीन हैं, देवता समय से ऊपर हैं। देवता अगर ग्रह की परिस्थिति को लेकर के बात की जाए तो उससे ऊपर है, खैर ग्रह कोई और नहीं है। अगर हम जिन लोगों ने बृहस्पतिवार होरा शास्त्र का अध्ययन किया है ज्योतिष के अंतर्गत वहां बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि दैत्यानाम बल नाशाय देवानाम बल वृद्धाय धर्म संस्थापनार्थाय ग्रह जाता स्वभावयात् और अवतारन अनेकानि है जस परमात्मना जीवानाम कर्म फलदो ग्रह रूपी जनार्दना। ग्रह कोई और नहीं है बल्कि ग्रह भगवान विष्णु स्वयं है, इस प्रकार का वर्णन आता है। और जब देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के लिए कोई आराधना की जा रही हो, भगवान शंकर जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में जिसको सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, उस ज्योतिर्लिंग पर जब उत्सव मनाया जा रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत मैं कह सकता हूं कि बिना मुहूर्त के भी हमें जीवन में अपने सौभाग्य की वृद्धि करने का मौका प्राप्त होता है। हम धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता हूं द्वारा इस विषय को लेकर के कि हम सौभाग्य साथ दिखते हैं जिनकी हम लोग फॉलो करते हैं, जहां पर अपने अपने घर में बैठ करके विश्व के सबसे प्रथम शिवलिंग जिसको ब्रह्मांड का कहा जा रहा है सोमनाथ का, उसके हम श्रद्धापूर्वक दर्शन कर पा रहे हैं। तो मुहूर्त इत्यादि निर्णय में सगुप्ता जी बहुत सारे चीजों का ध्यान रखा जाता है, इस प्रकार की आराधना में सब कुछ ध्यान रखा जाता है, लेकिन मुझे लगता है भगवान शंकर की आराधना में कुछ ना भी ध्यान रखा जाए तो फायदा होगा। जी
0: बिल्कुल राज जी, नीतीशा जी भी इस पर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। नीतीशा जी, जी
2: जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो अभिजीत मुहूर्त है, जो पूरी तरह से ब्रह्म मुहूर्त है, और ये जो दिन है वो इतनी ऊर्जात्मक, इतनी सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ा है, जो पुनर्निर्माण के साथ साथ पुनर्जागरण के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो पुनर्निर्माण चंद्रमा जी के साथ भी हुआ, मंदिर के साथ भी हुआ, लेकिन पुनर्जागरण हम सब लोगों के अवचेतन मन में हर दिन हो रहा है। तो सोमनाथ मंदिर का ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे मन में भी हमारा अवचेतन मन उस पुनर्जागरण के लिए तैयार हो रहा है। बहुत ही विशाल भव्य आयोजन और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर और बहुत ही निर्मल इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी हुई है।
0: जी बिल्कुल राज जी, नीतीशा जी, आप दोनों से ही मेरा सवाल है, कोई भी आंसर दे सकता है। इस प्रक्रिया की बात करें, इस अनुष्ठान की बात करें, या इसको मैं रस्म कहूं, ये ना दक्षिण भारत के मंदिरों में अक्सर हमने देखी है 10 से 12 साल या 15 सालों के अंतराल पर शुद्धिकरण के रूप में वो मंदिर में अक्सर इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। कहां तक सत्य है और ये क्यों किया जाता है?
1: ये सबसे पहले रस्म नहीं हो सकती है, ये सब शास्त्रोक्त एक पूरी तरीके से विधान है, शास्त्रोक्त एक पूरी विधियां है जिसका पूरी तरीके से पालन किया जाता है। ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये 10 जो हमारी प्रॉपर इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के हिसाब से इसको काउंट किया जाता है। कई जगह पर इस प्रकार का वर्णन शास्त्रों के अंतर्गत आता है कि 5 वर्ष या 10 वर्ष के बाद एक मंदिर के पुनर्निर्माण का, एक मंदिर के उस विग्रह में पुनर् उसकी जागृति का या उसकी प्रतिष्ठा का पूरी तरीके से जो ध्यान है, आवाहन है, वो करना चाहिए। जैसे आप लोग एक बार ध्यान रखते, एक वो श्रीरामचरितमानस के अंदर एक चौपाई आती है कि माघ मकर गत जब रवि होई और तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुष किन्नर नरसेनी सादर मज्जे सकल त्रिवेणी। यानी प्रति वर्ष के अंदर जब माघ का महीना होता है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब सभी जो तीर्थ हैं वो तीर्थराज प्रयाग के अंतर्गत आते हैं, और जो उनका पाप है, जो लोगों ने उनका दर्शन किया है, जो वहां करके स्नान किया है, जो अपनी नकारात्मकता वहां तक छोड़ करके गए हैं, उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए आकर के प्रयाग में स्नान करते हैं। इसी प्रकार जो लोग वहां पर जाते हैं, जब हम किसी प्लेस पर पहुंचते हैं, तो जनरल सी बात है कि हम अपनी नकारात्मक शक्ति को वहां छोड़ते हैं और वहां की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो फिर वेद मंत्रों के द्वारा देवता की जागृति, देवता की प्रार्थना, उस प्लेस को दोबारा एनर्जाइज करने के लिए, उस प्लेस को पॉजिटिव करने के लिए इस प्रकार की परंपरा है जिसका बार बार वहां पर पूजन किया जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। साथ में अगर देखा जाए प्रत्येक वर्ष भी इस प्रकार की प्रक्रिया है कि जो उसका वार्षिक उत्सव है, जिस वर्ष में जिस तिथि के अंतर्गत, जिस महीने के अंतर्गत उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि हुई है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो प्रत्येक वर्ष भी उसकी बाकायदा श्रद्धा पूर्वक प्रतिष्ठा इत्यादि दिवस मनाया जाता है, वहां पूजन किया जाता है, इस प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। तो जब आप आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी को आप स्क्रीन पर जब आप लोग दिखा रहे हैं, हम लोग सौभाग्यशाली कि उस समय को देख रहे हैं जहां पर वो शिव जी का पूजन कर रहे हैं, तो रख करके जिसके ऊपर रुद्र सूक्त के द्वारा श्रद्धा पूर्वक उसका पाठ करते हुए और का नियम है, जहां पर सबसे पहले जो देश का राजा है वो श्रद्धा से प्रार्थना करता है कि मैं अपने देश की प्रसन्नता के लिए, अपने देश की शांति के लिए, अपने देश के जो हमारी जनता है उसके शरीर की आरोग्यता के लिए देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की प्रार्थना करता हूँ। फिर वो राजा जो है, राजा को कहा जाता है, राजा प्रजा का जो है प्रतीक होता है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए प्रार्थना कर सकता है, माता अपने पुत्र पुत्री के लिए प्रार्थना कर सकती है, उसी प्रकार एक राजा अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो जब दुग्ध का अभिषेक किया जाता है भगवान शंकर को, तो दुग्ध के अभिषेक से भगवान शंकर प्रजा के अंतर्गत शीतलता प्रदान करते हैं, प्रजा के मानसिक जो शक्ति है उसकी वृद्धि को प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब हम दधिका अभिषेक करते हैं तो पारिवारिक प्रेम को भगवान शंकर प्रदान करते हैं, जब हम शहद का अभिषेक करते हैं तो फिर उसके साथ देवादिदेव महादेव भगवान शंकर प्रजा में शरीर के जो रोग है उसको दूर करते हैं। तो हम सब लोग ये विषय को देख पा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया जनरल है, हर वर्ष भी मनाई जाती है और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतर्गत भी मनाई जाती है। परंपरा नहीं कहा जा सकता, परंपरा ये होती है जिसको किसी ने तैयार किया हो, ठीक है, और ये नियम है, शास्त्रोक्त नियम है, वेदोक्त नियम है कि इस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए। जी सर गुप्ता
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल राज जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि देवादिदेव महादेव जो है पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, और ठीक उसी तरह शगुफ्ता जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो प्रजा के राजा हैं, और उनकी मंगल कामना के लिए वो ये सब कार्य जो है वो कर रहे हैं। कुंभाभिषेकम आज हुआ, और नितिशा जी आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे पूछा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो सोमनाथ को माना गया है, तो ऐसा क्यों, बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति है वो सोमनाथ को क्यों दी गई है, और दूसरा ये कि गंगा दशहरे वाले दिन खास तौर पे सोमनाथ में पूजा अर्चना की जाती है, तो क्या इसका कोई कनेक्शन है?
2: जी गीतिका जी, लेकिन मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि जैसे कि पहले शगुफ्ता जी ने एक प्रश्न किया था, देखिए जो पिरामिड और मंदिरों को हमारे मानव समाज के कल्याण के लिए ही धरती पर बसाया गया, धरती के 7 तल ऊपर है और 7 तल नीचे है, तो जो धरती का जो तल है वो पूरी तरह से मानव समाज के लिए बसाया गया। इसलिए मंदिरों में हर 12 वर्ष के बाद या 13 वर्ष के बाद ये जो आप पूरा एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह या एक तरह से पुनर्निर्माण का समारोह, पुनर्पूजन या कलश पूजन को हम लोग जो देखते हैं जो साउथ इंडिया से आ रहा है, ये जुपिटर का एक जो चक्र है उस पूरा करने के बाद, क्योंकि जुपिटर को जीव कल्याण, जीव आत्मा से जोड़ा गया है, जीवन से जोड़ा गया है, प्रॉस्पेरिटी से जोड़ा गया है, और मंदिर कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमें सकारात्मक ऊर्जा, उसकी जो वाइब्रेशन है पिरामिड की, मंदिरों की, वो हमारी वाइब्रेशन को चेंज करती है। इसलिए देखिए वहां पे डेली सफाई, स्नान इत्यादि, पूजा आरती तो होती है, लेकिन जब गुरु का एक चक्र पूरा होता है तो उसके बाद वो जो एक स्पेशल पूजा रहती है वो जीव कल्याण से पूरी तरह जुड़ी हुई है, जीवन के समाज के, जो मानव समाज है उसके साथ पूरी तरह जुड़ी हुई है। दूसरा आपने जैसे कि पूछा सोमनाथ ही इतना ज्यादा विशेष क्यों है, चंद्र देवता को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, और हम ये सब जानते हैं कि शिव जी का जो मन है वो पूरी तरह से चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, उनको वो बहुत विशेष स्थान दिया है। पार्वती जी को भी हम बहुत से रूपों में देखते हैं जहाँ पे वो चंद्र को उन्होंने धारण किया हुआ अपने मस्तक पर, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो जो मंदिर है वो चंद्र देवता जी के द्वारा पूजित किया गया, बनाया गया, शिवलिंग चंद्र देवता ने बनाया, और चंद्र देवता की उपासना से ही प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी तुम्हारे रोग है, जो भी तुम्हारे कष्ट है वो दूर हो जाएंगे, और जो भी मानव कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए इस जगह पर आकर मेरी पूजा करेगा उसका भी मैं कल्याण करूंगा, उसके भी सभी रोगों का, सभी कष्टों का, चाहे आपको मानसिक कष्ट है वो भी मैं हर लूंगा। हर ज्योतिर्लिंग अपनी एक कथा से जुड़ा हुआ है, लेकिन सोमनाथ स्पेशली देवताओं से जुड़ा होने के कारण और भी ज्यादा शिव जी के करीब हो जाता है। जैसे बैद्यनाथ जी है वो रावण ने बसाया, काशी विश्वनाथ तो शिव जी ने खुद अपनी नगरी को बसाया है और उसके द्वारपाल भी वो खुद बने हैं, लेकिन सोमनाथ देवताओं के बहुत ज्यादा करीब होने के कारण सबसे ज्यादा शिव जी को प्रिय है। और एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जो चंद्र देवता है उन्हें हम मन का देवता भी मानते हैं। मानव जीवन के लिए मन और आत्मा दोनों बहुत विशेष तत्व है जो हमें दिख रही है और हमारे ह्यूमन बॉडी में नहीं दिखती है। बायोलॉजिकली हम इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन अगर साक्षात देखने की बात की जाए तो नव ग्रहों में सबसे साक्षात्कार सूर्य और चंद्रमा का ही हम देखते हैं। तो चंद्र देवता को मन से जोड़ने के कारण, बुद्धि से जोड़ने के कारण, विवेक से जोड़ने के कारण सबसे ज्यादा ऊर्जात्मक प्लैनेट भी बोला गया। फ्लक्चुएटिंग है, बहुत जल्दी फास्ट मूविंग है, लेकिन ऊर्जात्मक भी है। इसे क्वीन एनर्जी भी बोला जाता है हमारे हमारे ज्योतिष में, और कहा जाता है कि जब हम किसी भी चीज को पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, किसी का सृजन करना चाहते हैं, क्योंकि गर्भधारण एक क्वीन एनर्जी कर सकती है, तो सृजन और पुनर्निर्माण के साथ चंद्रमा को जोड़ा गया है। जी
0: चलिए लौटते हूँ आप दोनों के पास, आप बने रहिए। फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, लौटते हैं।

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में हुआ सोमनाथ मंदिर का भव्य ध्वजारोहण और कुंभाभिषेक। सोमनाथ के इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से किया गया कुंभाभिषेक। फूलों से हुआ मंदिर का भव्य श्रृंगार।
5: सोमनाथ अमृत महोत्सव में देखने को मिला भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण टीम का भव्य शो। सेना के हेलीकॉप्टर से की गई सोमनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा।
4: सोमनाथ अमृत महोत्सव के साक्षी बने प्रधानमंत्री मोदी। विधि विधान के साथ की महादेव की पूजा अर्चना, भक्तों में दिखा भारी उत्साह। मंदिर पुनर्निर्माण पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन हुआ।
5: महापूजा से पहले प्रधानमंत्री ने निकाला भव्य रोड शो। फूल बरसाकर हुआ पीएम का स्वागत। सड़कों पर दिखी संस्कृति की भव्य तस्वीर।
4: हीट वेव और बाढ़ को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। आपदा प्रबंधन पर कड़े निर्देश। शाह ने दिया गर्मी के विरुद्ध जीरो कैजुअलिटी का मंत्र।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम कहे जाने वाले सोमनाथ महादेव के दरबार में सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। सोमनाथ धाम में 4 दिन से चल रहे अमृत महोत्सव का आज समापन कार्यक्रम चल रहा है, जिसके साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। हेलीपैड से मंदिर तक 2 किलोमीटर का रोड शो कर पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे।
1: बिल्कुल, मंदिर के अभिषेक की रस्म यहां पर की जा रही है। पीएम मोदी का मंदिर में शंख और डमरू वादन से भव्य स्वागत हुआ। मंदिर पहुंचने पर पीएम मोदी ने पहले सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की, फिर पुजारियों ने मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। इस अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण मंदिर के 90 फीट ऊंचे शिखर पर किया गया पहला कुंभाभिषेक है। सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार है जब मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थों के पवित्र जल को कुंभाभिषेक में शामिल किया गया। अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम पहुंची। 15 मिनट का एरोबैटिक शो यहां पर किया गया। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल बरसाए गए।
0: तो वैसे तो पूरे साल सोमनाथ का अमृत पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 11 मई 1951 इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान, आस्था और अदम्य चेतना का प्रतीक है। इसे अनेक बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये पहले से ज्यादा भव्य होकर खड़ा हुआ।
1: चलिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, सृष्टि के पहले ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ मंदिर पर पहली बार कुंभाभिषेक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये पूरी प्रक्रिया यहां पर संपन्न की गई। इस शिखर पर किए गए इस पवित्र अभिषेक के मायने क्या हैं वो आपको समझा रहे हैं। इनमें किन तीर्थों के जल का प्रयोग किया गया वो भी आपको बता रहे हैं। और गुजरात में देखिए, अरब सागर के किनारे बसे देश के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने पर पूरे सोमनाथ में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक उत्सव ने एक बार फिर से सोमनाथ महादेव मंदिर की 11 मई 1951 की शानदार कहानी को ताजा कर दिया।

0: सोमनाथ की गौरवशाली विरासत पुनर्निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका और 1991 की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर आज मनाए जा रहे सोमनाथ अमृत पर्व तक एक पूरे युग का शानदार इतिहास से हर किसी का रोम रोम खिल जाता है। तो सोचिए, जिन्होंने उस वक्त को देखा है, उनकी स्मृतियों में सोमनाथ का इतिहास उनके शब्दों में धधकते दिल से कम नहीं। ये है 84 साल के भास्कर भाई वैद, जिनके सामने अमृत पर्व ने 75 साल पहले यानी 11 मई 1991 की कहानी को जीवंत कर दिया है और उनकी स्मृतियों ने फिर सोमनाथ मंदिर की कहानी याद दिला दी है, उस कहानी को फिर जिंदा कर दिया है। भास्कर भाई याद करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में वो महज 10 साल के थे और जब पूरा प्रभास पाटन जय सोमनाथ की आवाज से गूंज रहा था और चारों ओर भक्ति का सागर हिलोरे ले रहा था।
1: मुझे अंगुली पकड़कर ले आए थे और मैं उस मंदिर के पुराना मंदिर जो फोटोग्राफ में देखते हैं वहाँ उसकी जगह पर सिर्फ खाड़ा था, गड्ढा था जिसमें कोई मूर्ति थी नहीं, पर हरेक स्थलों उस जगह पर भी कुछ पानी चढ़ाकर, कुछ चंदन चढ़ाकर, कुछ गलाल छांटकर भगवान उसमें ही ऐसा महसूस कर उसकी पूजा तो करते ही थे।
0: वो बताते हैं कि उस दौरान पूरा प्रभास पाटन भक्ति और गौरव की भावना से ओतप्रोत था, क्योंकि 11 मई 1991 के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पवित्र पल में पूरा प्रभास पाटन 101 तोपों की सलामी से गूंज रहा था। तोपों की गर्जना पूरे इलाके में गूंज उठी। समुद्र में 101 नावों की अद्भुत जयकार उस पल को विशेष बना रही थी। उस दौरान अरब सागर में 101 से ज्यादा नावों में मछुआरे समुदाय के लोग घूमते नजर आए। हर नाव से जय सोमनाथ की गर्जना की गूंज सुनाई दे रही थी। समुद्र की लहरों और जयकारों के बीच बना मनोहरी दृश्य सबको भाव विभोर कर रहा था।
1: 75 साल हो गए मंदिर को पूर्ण हुए, तो इतना बदलाव है कि जिसने मंदिर की पुनरुद्धार किया उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे ड्रीम से भी पार कोई अच्छा मंदिर बन गया जिसे राष्ट्र के सम्माननीय व्यक्तियों उसके साथ जुड़ी है, श्रद्धालु व्यक्ति जुड़ी हुए और देश विदेश से, विदेश में से भी आने वाले जुड़ते हैं।
0: वहीं उस वक्त में इंतजामों की बात करें तो प्रसाद का कभी न खत्म होने वाला भंडारा जमा था। भाटिया धर्मशाला के कई कमरों में बूंदी के लड्डू और गाठिया के प्रसाद से भरे रहते थे। देश में कई कोनों से आए लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बांटने का काम दिन रात लगातार चलता रहा था। भक्तों को पीने के साफ पानी की सुविधा के लिए हर जगह टंकियां बनाई गई थी। सेवाभावी लोग लगातार पानी और प्रसाद बांटते थे। 11 मई 1991 को सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देश विदेश की 101 पवित्र नदियों, झरनों, समुद्रों और झीलों के पवित्र जल से मंदिर का अभिषेक किया गया। उस वक्त से ये अभिषेक राष्ट्र एकता का प्रतीक बन गया और आज 11 मई 2026 को मंदिर शिखर का कुंभाभिषेक फिर देश को एकता, स्वाभिमान, भक्ति और गर्व के धागों में एक साथ बांध रहा है। गिर सोमनाथ से दिलीप भाई मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी मास्टर जुड़ गए हैं। संजय जी, आपने तो ये पूरा अनुष्ठान सुबह से देखा है, आप अपने शब्दों के माध्यम से किस तरह से बयान करेंगे इस अनुष्ठान को?
3: ये मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति की जो अमृतमयी धारा है, जो अमृत तत्व है, ये उसका प्रवाह है, सतत प्रवाह है जिसमें 17
2: बार संजय जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। जी जी बोलिए संजय जी।
3: के बावजूद उठाकर कर जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, यूनान, मिस्र और रोमा सबमिट गए जहां से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, लेकिन इसके बावजूद हम हमारे मिटाने वाले, हमारे मिटाने की कोशिश करने वाले मिट गए। आज ये देखिए कि उसका महमूद गजनबी का नाम कहाँ है, और सोमनाथ अभी भी सर उठाए वहां खड़ा है, आसमान की ओर देख रहा है। जिस तरह से उसका कुंभाभिषेक हुआ उसे देखते हुए यही लगा, और फिर भारतीय वायुसेना के विमानों ने अपने कर्तव्य दिखाए उसे देखते हुए यही लगा। ये अजस्र शिव की ऐसी परंपरा है जो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम की तरह है, जिसमें जब विमान के धुएं से एक सफेद चक्र बना उस समय लगा कि कर्पूर गौरम जो सांवले शिव जी हैं, जो आसमान नीला आसमान है उस पर वो जो त्रिपुंड की तरह वो तीनों रेखाएं दिखाई पड़ी। और उसके बाद पहले वाई शेप में विमान आए, और फिर इसके बाद सूर्य किरण विमानों ने चंद्रधर महादेव की यानी सूर्य किरण विमानों ने और सोमनाथ की अर्चना की, जिसमें हार्ट शेप बनाया, जिससे इस स्तुति का अंत होता है कि सदा वसंतम हृदयारविंदे, मेरे हृदय रूपी अरविंद में कमल में आप विराजमान हो, भवंग भवानी शिव और पार्वती दोनों सहित नमन। तो युवा वर्ग से शुरू होती है वैमानिक परंपरा, और जो विमान का शो था वो हृदय से आकर संपन्न होता है। तो एक अपने आप में एक परंपरा है कि आप युवा पीढ़ी अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में अपनी संस्कृति के गौरव को धारण करिए, तो आप सोमनाथ की तरह हमेशा सिर उठाए गर्व से अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करते हुए वर्तमान रहेंगे, विराजमान रहेंगे हर पीढ़ी में, हर युग में। तो ये एक चेतना है। और जो अमृत महोत्सव है, तो आम तौर से भारतीय परंपरा ये कहती है कि जब भी कोई मनुष्य 60 साल का हो जाए तो उसकी षष्ठी पूर्ति होती है, और जब 75 साल का हो जाए तो वो अमृत महोत्सव होता है उसका, और जब वो 100 साल का हो जाए तो कहते हैं जीवेम शरदा शतम, हमने 100 शरद देखे, या आशीर्वाद देते हैं कहते हैं आप 100 शरद देखें। शरद ही क्यों देखें, वसंत क्यों नहीं, क्योंकि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अमृत बरसाने वाला होता है। और ऐसे ही आप 100 साल तक पूर्णिमा के, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में आप अमृत तत्व तो ग्रहण करें, ये उसकी कामना है। जो ऋषि वैज्ञानिक है हमारे, उनकी ये कामना है, उनका ये विश्वास है। और जिस तरह ये सोमनाथ का मंदिर 17 बार टूटने के बावजूद, उस समय तो आक्रांत था, विदेशी आक्रांत था, और विधर्मी वो सिर्फ यहाँ की भौतिक संपत्ति लूटने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अभी भी आध्यात्मिक संपत्ति और अमृतमयी सांस्कृतिक संपत्ति अभी भी वहां वर्तमान है। बस उसे पहचानने वाला चाहिए, उसे वहां से, वहां का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाने वाला चाहिए, ताकि उस अजस्र परंपरा को, उस विद्या वैभव और संस्कृति और अध्यात्म की उस ऊर्जा को महसूस करके आप अपने साथ ला सकें। सोमनाथ यात्रा का यही महत्व है। और सोमनाथ मंदिर कुछ ऐसे चुनिंदा मंदिरों में से है जिनमें रोज रोज ध्वज बदला जाता है। वो ये परंपरा मेरे ज्ञान में पुरी में है, जगन्नाथ मंदिर का ध्वज, द्वारका में है द्वारकाधीश का ध्वज, और यहाँ सोमनाथ में सोमनाथ का ध्वज रोज बदलने की परंपरा है। ये नया ध्वज रोज लगाया जाता है, एक व्यक्ति चढ़ता है और वो चढ़कर वहां पर पुराना ध्वज उतारता है, नया ध्वज लेकर जाता है, नया ध्वज लहराता है। यानी हमारी संस्कृति नित नई है, रोज नई है, रोज उसमें नई नई चीजें उत्पन्न होती है, नई नई चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। वो चीजें तो रहती हैं, लेकिन हमारी दृष्टि चूंकि सूक्ष्म है इसलिए हम रोज सर सभी चीजों को नहीं देख सकते, तो रोज हमें एक नई दृष्टि, नई सृष्टि, नई चीज दिखाई पड़ती है। यही हमारी संस्कृति का सातत्य है, यही हमारी संस्कृति का प्रवाह है, और यही हमारी संस्कृति का एक उत्कर्ष है और एक चमक है, जिसमें कहते हैं काश्याम काश्यते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, काशी इसलिए प्रकाशित है क्योंकि काशी के अंदर प्रकाश है, और अंदर का प्रकाश जब बाहर तक जाता है तो वो लगता है कि काशी स्वयं प्रकाशिका है। ऐसे ही हमारे ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग में रोशनी अंदर से होती है, जब वो बाहर तक आती है तो इंसान को लगता है कि वो ज्योति उसके अंदर भी है, उस ज्योति को महसूस करने की बात है। यही हमारी संस्कृति के चार अध्याय है, यही हमारी संस्कृति का उद्गम है, और यही हमारी संस्कृति का संगम भी।
2: बिल्कुल संजय जी, क्या आपको लगता है कि 75 साल पहले जब 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर परिसर में, तब पूरा मंदिर परिसर जो है वो गूंज उठा था, और वही कहीं ना कहीं उसी कमी को आज इंडियन एयरफोर्स की टीम सूर्य किरण ने पूरा किया है अपना दमखम दिखाकर।
3: उस समय जब 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लोकार्पण किया था इस मंदिर का, और मंदिर में भगवान ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी शिवलिंग विग्रह की, तो उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई। तब उस समय इतना बढ़िया गलियारा नहीं था, उस समय सिर्फ ये पुनर्निर्माण था, लेकिन मंदिर बनाने वालों ने एक चीज ध्यान में रखी कि इस विनाश का साक्षी यहाँ कुछ होना चाहिए। तो देवी पार्वती का जो मंदिर था उस मंदिर को भी तोड़ा गया था और उस मंदिर के भग्नावशेष अभी भी वहां मौजूद हैं और वो नई पीढ़ियों को याद दिलाएंगे, क्योंकि नई पीढ़ियां तो प्रमाण मांगती हैं। उनका तो ये कहना है कि ये सब कुछ जितने वेद पुराण है ये सब काल्पनिक हैं, ऋषि ने ऐसे ही लिख दिए हैं। तो जब प्रमाण की मांग करेगी अगली पीढ़ी तो प्रमाण भी वहां मौजूद है, पार्वती मंदिर के भग्नावशेष वहां मौजूद है और देवी पार्वती की प्रतिमा भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के ठीक पीछे उनके दर्शन होते हैं। लेकिन ये प्रमाण ये बताएगा कि कैसे आक्रांताओं ने, विदेशी विधर्मियों ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार आक्रांत किया, तोड़ा और वहां से जितना खजाना था वो खजाना लूट के ले गए। वो खजाना भी कहाँ नष्ट हो गया उनको खुद नहीं पता, वो खुद नष्ट हो गए, वो धूल में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी अपना सिर ताने खड़ा है, अपने अमृत तत्व की व्याख्या कर रहा है, अपने अमृत तत्व का प्रमाण दे रहा है। क्योंकि सोम चंद्रमा में अमृत है ऐसा भारतीय वांग्मय मानता है और सोमनाथ का मंदिर उसी अमृत तत्व की गवाही देता है, उसी का साक्षी है और उसी का एक जीवंत प्रमाण।
2: बिल्कुल संजय जी, एक सवाल है आपसे मेरा ये कि आने वाली जितनी भी जनरेशन्स है ना, जिन पीढ़ियों के हम बात करते हैं, अब मैं उसमें ऐड कर दूंगी जेन जी, अल्फा, बीटा, जिनको हमने डिफाइन किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, इन पीढ़ियों को इस पूरे अनुष्ठान से क्या सीखना चाहिए, इन चीजों से उनको क्या सीखना चाहिए और किस दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए?
3: मेरा अपना मानना है कि नई पीढ़ियों को अपनी संस्कृति के वैभव पर गर्व करना चाहिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता पर हीन भावना लाने के बजाय, दूसरे, मदर्स डे अभी कल ही था, दूसरे की माँ को देखकर अपनी माँ को हीन बताना ये सबसे निकृष्ट कार्य है। और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए और ये करना चाहिए कि इतिहास ने जो सबक सिखाए हैं कि जैसे भी हम कटे हैं वैसे ही कटे हैं, तो ये सोमनाथ का मंदिर इसका प्रमाण है कि उस समय बहुत सारे लोग, अगर सारे लोग एक साथ महमूद गजनवी की सेना का सामना करते तो महमूद गजनवी को दिल में मिला सकते थे, लेकिन वहाँ हमारे आपस में एकता नहीं थी और जब जब हमारी एकता खंडित हुई तब तब हम विखंडित हुए, तब तब सोमनाथ के मंदिर की तरह हम हमारा ध्वंस हुआ, लेकिन जब जब हम एक हुए तब तक हमने अमृत तत्व की प्राप्ति की और तब तक हम सोमनाथ की तरह अपनी संस्कृति को उन्नयन तक लेकर गए। और ये आज का जो कुंभाभिषेक है वो कहता है कि जब आप सिर उठा कर रहेंगे तो संस्कृति का, सभ्यता का, आने वाली पीढ़ियों का कुंभ आपका अभिषेक करेगा, लेकिन सबसे पहले आवश्यक है हम अपने ज्ञान पर, हम अपने अध्यात्म पर, अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखें। जब ये गर्व हमारी पीढ़ियों में आएगा तो हम जापान की तरह और बाकी अन्य देशों की तरह हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, पुनः विश्व गुरु बनने। विश्व गुरु तो हम थे, लेकिन अब जब दुनिया अंधकार में थी उस समय हमारे शिल्पियों ने सोमनाथ मंदिर जैसे मंदिर का निर्माण किया जिसमें शिवलिंग हवा में झूलता था, वो स्पर्श लिंग नहीं था, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता था, वो हवा में झूलता था क्योंकि उसके अंदर जो शिवलिंग जिस तत्व का बना था उस शिवलिंग में चुंबकीय तत्व मौजूद थे और अलग अलग चुंबकों को नॉर्थ और साउथ पोल के कॉम्बिनेशन से उनको ऐसे फिट किया था हमारे शिल्पकारों ने, जिस समय सारी दुनिया अंधेरे में थी, इस समय अरब देशों में सिर्फ धूल भरी आंधियां चलती थी, मिट्टी के घर भी बहुत मुश्किल होते थे, उस समय हमारे शिल्पियों ने ऐसे शिल्प का चमत्कार दिखाया जिसे देखकर ओम नमस्ते जैसा उसे वहां से इसकी भनक लगी और इसकी तलाश करता करता इसके आकर्षण में बंधा हुआ वो यहाँ तक आया और हमारे बीच फूट का फायदा उठाकर, हमारे बीच विखंडन का फायदा उठाकर हमारे इस मंदिर को खंडित किया। लेकिन उसके बाद अब जब जब हमने अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं किया, हमें अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ, तब तक आक्रांताओं ने हमें परेशान किया, हमारी संस्कृति का विध्वंस किया। लेकिन हमारी संस्कृति उस फिनिक्स की तरह है जो अपनी राख से फिर उत्पन्न होता है, उस मायावी जीव है जिसका अस्तित्व तो नहीं है लेकिन जिसको एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं, वैसे ही हम अर्श से अर्श तक तो पहुंचने में कामयाब हुए और हमेशा होते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, हमें अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए, ना कि हीन भावना लानी चाहिए।
2: बिल्कुल संजय जी, हमें अपनी संस्कृति पर बिल्कुल गर्व करना चाहिए। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राज मिश्रा जी है। राज जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक कथा बड़ी प्रचलित है सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। जब चंद्रदेव ने ये मंदिर बनाया तब ये सोने का बनाया, इसका पुनर्निर्माण रावण द्वारा किया गया, तब ये चांदी का बना, उसके बाद श्री कृष्ण ने इसे लकड़ी का बनवाया और उसके बाद राजा भीमदेव ने इसे पत्थर का बनवाया। तो ये कथा जो है इसके बारे में जरा हमें बताइए।
4: एक तो बड़ा मतलब बड़ा विचित्र है और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं ना, तो एक तो आप लोग धर्म के इतने बढ़िया जानकार है ना, इतने सारे धार्मिक कार्यक्रम जीएनटी ने किया है, संजय जी जैसे लोग जब बैठे होते हैं आपके चैनल के, तो फिर कुछ कहने को बचता नहीं है। मतलब ऐसे हो रहा होता जैसे हम किसी धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत बैठे हुए और कथाएं और शास्त्रार्थ
2: स्टूडियो आना चाहिए स्टूडियो में आना चाहिए आपको।
4: तो नहीं मतलब सुन करके आप सबको टोटल हिस्ट्री आप लोग बताते हैं और बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है कि मीडिया में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है, संजय शर्मा जी जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, कि जो लोग इतिहास का, धर्म का और इसकी इतनी सुंदर जानकारी रखते हैं। आई एम सॉरी, मतलब मैं जो आपके क्वेश्चन पर आ रहा हूं, लेकिन जब मैं संजय शर्मा जी को बैठ करके सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि मतलब कितना शानदार है कि एक व्यक्ति जो जेंजी अल्फा जो भी बीटा गामा सीमा जो भी है उनकी जो चर्चा कर रहे थे आप, तो वो क्योंकि समाज तक सही जो सनातन की नॉलेज थी वो पहुंच नहीं पाई, इसलिए आज जो परिस्थितियां हैं धीरे धीरे भ्रमित होते चले गए। और क्योंकि सर्वे भवन्ति सुखिना की बात जो थी और जहां सुमत्ता संपत्ति नामा की जो जानकारी थी वो समाज तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए समाज के अंदर बिखराव उत्पन्न हुआ। और तो जब वो फिर जब वो आताताई आए तो उन्होंने हमको बिखेर करके
2: रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। एक लास्ट कमेंट नितिशा जी आपसे भी लेना चाहूंगी, बहुत ही कम शब्दों में।
5: जी शगुप्ता जी, बस मैं तीन चीजों पर ध्यान देना चाहूंगी कि समय की शुरुआत से ये मंदिर हमारे पृथ्वी तल पर है, इसलिए बहुत ज्यादा विशेष है। दूसरा, इस पृथ्वी तल से हमारे दक्षिण पोल को 11,000 किलोमीटर तक कोई भी पृथ्वी का एक भी तल नहीं है, इसको पहले से देख लिया गया था और मंदिर को मेंशन भी किया गया। दूसरा, पृथ्वी के जो समुद्र का जो किनारा है, तीन नदियों का जो किनारा है, मिलन जो हो रहा है तीन नदियों का, और साथ में सोमनाथ मंदिर पूरी तरह से जल तत्व को, हमारे मन तत्व को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है। तो जब भी हम इस मंदिर में जाते हैं तो मानसिक शांति तो प्राप्त करते ही करते हैं और साथ ही साथ
2: पॉजिटिविटी भी मिलती है हमें जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए संजय जी, नितिशा जी और राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन गुड न्यूज टुडे पर लगातार आपको अपडेट और ये महाकवरेज सोमनाथ से जुड़ी मिलती रहेगी।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
7: Owning a home is full of surprises, some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
8: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.

0: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में शुरू हुआ सोमनाथ मंदिर का भव्य ध्वजारोहण और कुंभाभिषेकम। सोमनाथ के इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से किया गया कुंभाभिषेक, फूलों से मंदिर का भव्य श्रृंगार। सोमनाथ अमृत महोत्सव में देखने को मिला भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण टीम का भव्य एयर शो। सेना के हेलीकॉप्टर से की गई सोमनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा। सोमनाथ अमृत महोत्सव के साक्षी बने प्रधानमंत्री मोदी। विधि विधान के साथ की गई महादेव की महापूजा, भक्तों में देखा भारी उत्साह। मंदिर पुनर्निर्माण पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन।

महापूजा से पहले पीएम ने निकाला भव्य रोड शो, फूल बरसाकर हुआ पीएम का स्वागत, सड़कों पर दिखी संस्कृति की भव्य तस्वीर। हीटवेव और बाढ़ को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, आपदा प्रबंधन पर कड़े निर्देश, शाह ने दिया गर्मी के विरुद्ध जीरो कैजुअलिटी का मंत्र। भोपाल बना ग्रीन टेक का नया चेहरा, लॉन्च हुआ एलगी ट्री, शहरों में ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मिलेगी सहायता, एक एलगी ट्री में है 25 पेड़ों के बराबर हवा साफ करने की क्षमता।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: भव्य दिव्य और भगवामय हुआ प्रभास पाटन का हर कोना, सोमनाथ अमृत महोत्सव पर बिखरी सांस्कृतिक विरासत की छटा। पीएम मोदी का हेलीपैड से लेकर मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो, डमरू की डुगडुग और परंपरागत वाद्य यंत्रों के नाद के बीच में निकली यात्रा। शंख और डमरू की गूंज के साथ किया गया पीएम मोदी का स्वागत, 100 कन्याओं ने कलश नृत्य पेश किया। पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने लगाए जयकारे, रोड शो के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे साथ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दुल्हन की तरह सजाया गया पूरा मंदिर परिसर। प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में किया गया रुद्राभिषेक। सूर्य किरण की टीम ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर की पुष्प वर्षा, आसमान में किया गया शौर्य संतुलन का बेजोड़ प्रदर्शन। सोमनाथ मंदिर में फहराई गई धर्म ध्वजा, भव्य समारोह में मंदिर के इतिहास को किया गया याद।

सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार कुंभाभिषेक, 11 तीर्थों के पवित्र जल का इस्तेमाल हुआ। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में लगी एक विशेष प्रदर्शनी में लिया हिस्सा। सोमनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई जानकारियों का किया गया संग्रह। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का जनसैलाब, भक्तों का आंकड़ा पहुंचा करीब 10.5 लाख।

सरना धाम रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। अब तक करीब 4,42,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे इस धाम। बद्रीनाथ धाम में रविवार को 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। अब तक का आंकड़ा 2,68,000 के पार। यमुनोत्री धाम में कल 12,560 भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 1,68,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे दरबार। गंगोत्री धाम में 10 मई को करीब 12,000 भक्तों ने किए दर्शन पूजन। अभी तक 1,66,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं भक्त। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती। भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे।

भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती हुई, डमरों दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंजी।

अयोध्या में शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने की पहल, बच्चों को सिखाया जा रहा है ये संगीत। प्रसिद्ध कलाकार बच्चों को सिखा रहे संगीत, बड़ी संख्या में बच्चे भी ले रहे हिस्सा।

कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता को एक और बड़ी सफलता, खुले जंगल में दो मादा चीतों को आजाद किया। अफ्रीकी देश बोत्सवानिया से भारत लाए गए थे दोनों चीते, भारत में चीतों की वापसी को लेकर बड़ी उपलब्धि। श्योपुर में सीएम मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया, चीता सफारी, चीता अस्पताल, निगरानी केंद्र का निरीक्षण किया। मदर्स डे पर कूनो नेशनल पार्क की चीता माताओं पर बनी शॉर्ट मूवी हुई रिलीज, फिल्म में चीता मदर्स और उनके शावकों के संघर्ष मातृत्व की झलक दिखी। तीन साल में जन्मे 49 शावक, अब तक 57 हुई इनकी संख्या।

जयपुर की 2 साल की नन्ही परी ने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को हैरान किया। अपनी अद्भुत याददाश्त से सुपर टैलेंटेड किड का खिताब अपने नाम किया। त्रिशा शर्मा ने 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र और श्लोक याद किए। 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स को पहचानने की प्रतिभा रखती है। रामबन जिले में महाराणा प्रताप रन का हुआ आयोजन। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना इसका मकसद रहा। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की मामा कोचिंग। फ्री होगी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी। उधमपुर में नशे के खिलाफ प्रशासन ने चलाया जागरूकता का अभियान। महिलाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया। भोपाल बना ग्रीन टेक का नया चेहरा। लॉन्च हुआ एल्गी ट्री। शहरों में ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मिलेगी सहायता। एक एल्गी ट्री में है 25 पेड़ों के बराबर कार्बन अवशोषण की क्षमता। इस तकनीक को विकसित करने में लगे हैं करीब 2 साल। 50 से ज्यादा विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, इंजीनियर्स की टीम ने इस पर काम किया। कोडरमा के अंशुमन ने यूपीएससी में किया कमाल। यूपीएससी आईएफएस परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। पुष्कर के कड़ेल गांव पहुंचे सीएम भजन लाल। किसानों के साथ की बातचीत। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई विकास परियोजनाओं का

उद्घाटन किया। 194 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास किया। मुंबई को मिला 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया इसका उद्घाटन। मुंबई में अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहां पर आयोजन हुआ। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के प्रथम वर्षगांठ पर शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। बगहा में ग्रामीणों ने बचाई अजगर से सियार की जान, जंगल की ओर अजगर को छोड़ा। स्विट्जरलैंड में क्वींस फाइट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, हजारों की संख्या में दर्शकों ने यह खेल देखा। पारंपरिक गायों ने एक दूसरे से की जोर आजमाई, से भिड़ाकर एक दूसरे को पीछे धकेलने पर मिलती है जीत। करीब 40 मिनट तक चलती है ये प्रतियोगिता, विजेता को मिलता है क्वीन ऑफ द क्वींस का खिताब। 1920 के दशक में शुरू हुई थी ये खेल की परंपरा, अल्पाइन संस्कृति बन चुकी है इसका अहम हिस्सा। इस प्रतियोगिता के साल भर किसान गायों को तैयार करते हैं, मेहनत धैर्य और पशुओं से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है ये खेल। स्लोवेनिया में अर्काडियन महोत्सव की धूम, एक साथ सैकड़ों कलाकारों ने बजाया अर्काडियन वाद्य यंत्र। लेक ब्लेड के किनारे हुए 450 कलाकारों ने पेश की लोक धुन, संगीत संगीतमय हुआ पूरा माहौल। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 2026 यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के 35 प्रतिनिधिमंडलों ने हिस्सा लिया, वियना के टाउन हॉल में समारोह का आयोजन हुआ। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट विश्व के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्रतियोगिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं अरबों व्यूज। चीन ने तियानझू 10 कार्गो यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, वेनचांग लॉन्च साइट से हुई इसकी लॉन्चिंग। लॉन्च के करीब 10 मिनट के बाद तियानझू 10 अपने निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा, यान के सोलर पैनल खुलते ही मिशन को पूरी तरह सफल घोषित किया। त्यांगयोंग स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो यान में भेजे गए बेहद जरूरी सामान, इसमें स्पेस सूट, ईंधन, वैज्ञानिक प्रयोगों के उपकरण शामिल। तियानझू 10 जल्द ही त्यांगयोंग स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग प्रक्रिया करेगा, पूरी चीन की मानव अंतरिक्ष परियोजना के तहत ये 5वां कार्गो रीसप्लाई मिशन। मिशन के साथ लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट ने अपना 641वां अभियान पूरा किया, चीन लगातार अपने स्पेस स्टेशन मिशन को विस्तार दे रहा। चीन के वुहान में यांगसी नदी किनारे हरियाली की नई तस्वीर सामने आई, 10 साल में भारी उद्योगों की जगह ग्रीन डेवलपमेंट ने ली। वुहान प्रशासन ने नदी बचाने के लिए 150 पर्यावरण प्रोजेक्ट शुरू किए, नदी किनारे के 26 डॉक बंद कर उन्हें हरित पार्कों में बदला। कभी प्रदूषण से जूझ रही यांगसी नदी का पानी अब काफी हो चुका है साफ, लंबे समय बाद नदी में लौटने लगी मछलियां। चीन के रिवर इकोनॉमिक बेल्ट यहां की लगभग आधी जीडीपी को करता है ये सपोर्ट। ये अभियान सिर्फ रोक लगाने का अभियान नहीं, इसमें सफाई, पुनर्स्थापन, प्रकृति को उसका क्षेत्र वापस देना मकसद। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट को लेकर इजराइल में फैंस का उत्साह बरकरार, बायकॉट और विवादों के बावजूद लोग शो का कर रहे इंतजार। इजराइल एक बार फिर से एनर्जेटिक और खुशियों से भरा गाना प्रतियोगिता में भेज रहा है, फैंस का कहना ये देश की पॉजिटिव स्पिरिट को दिखाता है।
इजराइल फैंस ने यूरोविजन को लोगों को जोड़ने वाला मंच बताया, संगीत को रखा राजनीति से ऊपर। २०२६ प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा इसराइल, यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की पुष्टि के बाद फैंस ने खुशी। २०२५ में ऑस्ट्रेलियन सिंगर जे जे की जीत के बाद अगला यूरोविजन वियना में, इसराइल 12 मई को सेमीफाइनल में उतरेगा। बीटीएस के कॉन्सर्ट के लिए मैक्सिको सिटी के जीएनपी स्टेडियम में हजारों प्रशंसक जुटे, पटाखों और रंग बिरंगी रोशनी के बीच बैंड का जोरदार स्वागत। मैक्सिको में के पॉप कॉन्सर्ट की प्री सेल में घंटे से भी कम समय में 1,36,000 टिकट बिके, 1.5 लाख सीटों के लिए 21 लाख से ज्यादा लोगों ने कोशिश की। मैक्सिको में के पॉप की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता, युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। बीटीएस ने 2020 में अपने हिट गाने डायनामाइट से मैक्सिको में के पॉप को दी धार, बैंड की लोकप्रियता अमेरिका में तेजी से बढ़ी। बीटीएस ने मैक्सिको सिटी में किया अपना अंतिम कॉन्सर्ट, चौथी बार शहर में हुआ शो। कैटरीना कैफ ने अपने बेटे विहान के साथ शेयर की प्यारी सी फोटो, मम्मी संग 6 महीने के लाडले ने मनाया पहला मदर्स डे। खतरों के खिलाड़ी 15 में दिखेगी फरहाना भट्ट, बोली असली लड़ाई कंटेस्टेंट से नहीं अपने डर से। तमिलनाडु के सीएम विजय की आखिरी फिल्म जननायकन 2 सप्ताह में रिलीज होने की उम्मीद, कहा सर्टिफिकेट मिलते ही जल्द होगी रिलीज। राजा शिवाजी का दूसरा संडे भी मचाया इसने धमाल, 10 दिनों में की 75 करोड़ से ज्यादा की कमाई, बनी तीसरी सबसे बड़ी मराठी फिल्म। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे फिल्म निर्माता डीवीवी दानैया, विधि विधान के साथ भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। यूपी में कृष्णावतारम टैक्स फ्री, फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने किया ऐलान।

0: उज्जैन महाकाल के दरबार में पहुंचे फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल बाबा के दर्शन। जून को सिनेमाघर में रिलीज होगी फिल्म बालन द बॉय, मां बच्चे के भावनात्मक रिश्ते पर आधारित ये फिल्म। आज रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर आउट, अनन्या पांडे लक्ष्य लालवानी मुख्य भूमिका में, 22 मई को होगी रिलीज। सलमान ने मदर्स डे पर शेयर की पुरानी तस्वीरें, दोनों माओं के साथ नजर आए। यूलिया ने भी खान फैमिली संग तस्वीरें पोस्ट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुआ सोमनाथ मंदिर का भव्य ध्वजारोहण और कुंभाभिषेक। सोमनाथ के इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से किया गया कुंभाभिषेक। फूलों से हुआ मंदिर का भव्य श्रृंगार। सोमनाथ अमृत महोत्सव में देखने को मिला भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण टीम का भव्य रोड भव्य एयर शो। सेना के हेलीकॉप्टर से की गई सोमनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा। सोमनाथ अमृत महोत्सव के साक्षी बने प्रधानमंत्री मोदी। विधि विधान के साथ की महादेव की पूजा अर्चना। भक्तों में दिखा भारी उत्साह। मंदिर पुनर्निर्माण पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन हुआ। महापूजा से पहले पीएम ने निकाला भव्य रोड शो। पूर्व बरसाकर हुआ पीएम का स्वागत। सड़कों पर दिखी संस्कृति की भव्य तस्वीर। भोपाल बना ग्रीन टेक का नया चेहरा। लॉन्च हुआ एलजी ट्री। शहरों में ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मिलेगी सहायता। एक एलजी ट्री में है 25 पेड़ों के बराबर हवा साफ करने की क्षमता।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर है फिर एक बार सास बहु और बेटिया का ये फ्रेश एपिसोड। आज तो एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज के साथ साथ हम बात करेंगे स्किन केयर की। मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ स्किन केयर टिप्स। अब देखिए, मेकअप तो है हमारी ग्रूमिंग का अहम हिस्सा, लेकिन जितना जरूरी मेकअप लगाना है उतना ही जरूरी उसे उतारना है। तो आज तो इन क्लेंजिंग वाइप्स और क्लेंजर्स के आसपास ही होंगे एंटरटेनमेंट की बातें। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का यह सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
1: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, खतरे में पड़ेगी विक्रांत की जान, मन्नत होगी परेशान। शादी के बंधन में बंधेंगे वीर और राधिका, जुड़ेगा किस्मत कनेक्शन।

के लिए सरप्राइज प्लान करेगी रूहानी, टूटेगा रूहानी का दिल। तो सिनेमा मिलाई के 2 का लास्ट डे शूट होगी सीरियल की हैप्पी एंडिंग।

और इश्क दम और इडली रसम की कास्ट से होगी खास मुलाकात। जानेंगे इनके बारे में कई बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कहां एक जमाना था जहां मैंने की थी अपने करियर की शुरुआत। उस टाइम पर मेकअप रिमूवर के नाम पर बस होता था बेबी ऑयल और उसके साथ साथ ड्राई टिश्यूज। रियली इसी तरह करता था हर एक्टर और हर मॉडल अपने मेकअप का सफाया। और आजकल देखिए आ गई हैं इनमें कितनी सारी वैरायटी। ओह माय गॉड, मेकअप रिमूवर फॉर एवरी स्किन टाइप। और बिल्कुल ऐसी ही है हमारे पास आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी हमारी अगली खबर, जिसमें है एंटरटेनमेंट का हर रंग, यानी एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा, सब कुछ एक साथ।
1: अवंतिका का हुआ खुलासा, घरवालों ने अपनाया पीहू को, हुई सीरियल की हैप्पी एंडिंग। दंगल टीवी के सीरियल तो से नैना मिलाई के 2 जल्द ही खत्म होने वाला है और ऐसे में हुआ इसका लास्ट डे शूट, जिसके सारे नजारे आपके लिए लेकर आया है सास बहू और बेटियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीन की। पर यहां पर आज अवंतिका का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि ईशान की मौत हो चुकी है, जिसका इल्जाम वो लगा रही है पीहू पर। असल में पीहू का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। अवंतिका पीहू को ही मारने गई थी, लेकिन एक्सीडेंट ईशान का हो गया। लेकिन पीहू को ये सारा सच पता चल चुका है, इसीलिए अवंतिका घर में तमाशे पर तमाशे कर रही है ताकि सारा इल्जाम पीहू पर लग जाए। पीहू भी शांत नहीं रही, उसने भी प्लान किया और बुला लिया पुलिस को। पुलिस ने खुद अवंतिका के मुंह से ही ये सारा सच सुन लिया है और वो उसे गिरफ्तार कर ले जा रही है, यानी कि फिर एक बार हुई बुराई पर अच्छाई की जीत।
2: नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ।
3: और हमारे पापा के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी तो लगेगा इस पे। तुम्हारे पापा के नॉर्मल होते हैं, हम उनका स्टेटमेंट दिलवा देंगे।
4: ज्योति,
5: एक्चुअली इसलिए हुआ है, मतलब खुद से तो उसने एक्सेप्ट किया है, बट उससे पहले क्या हुआ है ना कि पीहू को ये सब चीज़ें पता चल गई है, तो बेसिकली पीहू ने ये सब कुछ किया है। लेकिन जब उसे पता है कि अब सब कुछ पता है, तो एट अ पॉइंट शी इज़ इन दैट स्टेज कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मतलब जो भी उसने किया था उसने अपने प्यार के लिए किया था, उसका कुछ इंटेंशन ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे इसे मारना है, मुझे ये करना है, वो करना है। बट एट द एंड हाँ, जो उसने गलत किया है तो वो गलत है, वो बस उस चीज को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और मे बी इन द एंड वो एक्सेप्ट कर भी लेकिन नहीं यार, जो भी था वो गलती तो मेरी थी, पहले पुलिस मैं बुलाती हूँ सब कुछ तो प्लान करके, एंड देन उसके बाद पुलिस पीहू बुलाती है वो भी कुछ प्लान करके। बट हाँ, पुलिस को ऑलरेडी सारी चीजें पता चल जाती हैं जब वो घर आती है, तो उसके बाद जो मैं करना चाह रही थी वो तो नहीं होता है, बट जो पीहू करना चाह रही थी समहाउ वो हो जाता है, बुराई का अंत हो जाता है। एट लाइक एट अ पॉइंट सच आप बहुत नहीं छुपा सकते, सच तो कभी ना कभी सामने आते ही है, बट उसके बाद सपनों की बात थी, प्यार की बात थी, तो कहीं ना कहीं वो एक हैप्पी नोट पे जा रहा है कि हाँ किसी के सपने पूरे हो रहे हैं, किसी को प्यार मिल रहा है, एंड मे बी जो फैमिली एक साथ नहीं थी ना वो फैमिली साथ होने वाली है। सो मतलब फैमिली तो साथ अभी भी हो ही गई है, बट नाउ इट्स अ वेरी गुड एंडिंग।
1: इसी के साथ आ गई है गुड न्यूज भी, भाई पीहू एग्जाम में पास हो गई है और काफी खुश है। यही गुड न्यूज वो युवराज को सुनाने जा रही है

0: भाभी ने टॉप किया है, भाभी आपका सपना पूरा हो गया है और भैया का सपना भी।
1: अरे मेहनत तो रंग ले ही आई हो। हाँ

0: जल्दी जाइए।
1: सीन में तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो गया है और इसी के साथ शो भी बंद हो जाएगा। वही हाल ही में इस शो में कई चेंजेस हुए, लीड्स बदले गए और बहुत फेर बदल हुई, लेकिन फाइनली इस शो को बंद ही कर दिया गया। तो आइए कास्ट से ही जानते हैं कि उनका क्या कहना है और कितनी यादें वो इस छोटे से समय में बटोर कर ले जा रहे हैं।
2: छोटे वक्त में लंबा सफर था और हमने बहुत अच्छी बॉन्ड बना दी, हमारी टीम बड़ी अच्छी हो गई छोटे वक्त में, लेकिन आई थिंक हम लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है। और कभी कभी छोटे सफ़र वैसे बड़े लंबे होते हैं, है ना। हाँ। हम लोग बहुत कनेक्ट हो गए और पहली बार ऐसे हुआ कि इस शो पे हर कोई बहुत अच्छा है, हर टीम से लेके हमारे को एक्टर्स, क्रू मेंबर्स, एवरीवन इज़ वेरी गुड। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, कई बार हमको अपने स्पेस में रहना होता है, नहीं नहीं डोंट वांट टू इंटरैक्ट, डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स दैट मच, आओ जस्ट कीप अ वर्क रिलेशनशिप। पर यहाँ ऐसा नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज़ वेरी नाइस, आपको वो वाइब पता चलती है, एवरीवन इज़ लाइक ओपन एंड दे आर सेल्फ विथ ईच अदर, अदरवाइज यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ नो समटाइम्स, यहाँ वैसा नहीं। तो दैट इज़ द रीज़न आई फील दैट छोटे वक्त में लंबा सफ़र तय किया हमने और ये बॉन्ड हम बहुत मिस करेंगे। और ये आखिरी वक्त इस शो पे हम मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप लोग टकराते रहोगे और भी हम सब आगे काम करेंगे।
3: मुझे भी बहुत टाइम के बाद एक संस्कार शो कर रही थी मैं कलर्स का, जिसमें हम सब जो को एक्टर या टेक्नीशियन में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और वो बॉन्डिंग जो आप बोले लंबा सफर, हम अभी तक वो सफर तय कर रहे हैं, मतलब हम सब है अभी भी, हम सिक्स मंथ में एक बार गेट टुगेदर करते हैं, हम मिलते हैं क्योंकि सब बहुत बिजी हैं सब लोग। तो सेम मुझे बहुत सालों के बाद ये सेट, पहले मैं भी आई थी तो यही होता है, कई बार होता है कि आपको शो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन आप अंदर से वैसा फील नहीं करते हो। तो ये जो टीम थी, चाहे टेक्नीशियन हो, जो भी हो, जो हेयर मेकअप, कैमरा, लाइट, सेटिंग, आर्टिस्ट, सबसे ज्यादा आर्टिस्ट में किसी में कभी भी एक परसेंट भी किसी में ऐसा ईगो जैसा नहीं हुआ
2: नहीं।
3: और मतलब फर्स्ट डे से ही ऐसा लगा कि सब सिर्फ काम करके अच्छे रिलेशन बनाने आए।
4: हाँ, मैं भी वही कहूँगी जो हेतल मैम ने और पीहू ने कहा कि हाँ, नहीं होता कि जेन्युइनली आप बहुत लोगों से ऐसे मिलते नहीं हो, तो आप मिलते हो तो दोस्त बहुत कम बनाते हो, बट यहाँ पे आके मैंने जेन्युइनली दोस्त बनाए हैं। और लाइक सेट वाले दोस्त लोग बोलते टिकते नहीं है, बट एवरीवन इज़ वेरी नाइस, सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सब बहुत ऑनेस्ट है एंड बहुत रियल थे। तो हाँ, बहुत अच्छा सफ़र था हमारा।
3: मेरे लिए है क्योंकि मैंने काफ़ी शोज़ किए, काफ़ी टाइम हो गया, तो ऐसा टीम बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वो मेरे लिए बहुत बुरा था। मैं कल ही बोल भी रही थी किसी को कि यार बहुत सालों के बाद ना एक ऐसा माहौल मिला था जिसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं हो रही थी कि वो मेरे बारे में वहाँ बैठ के कोई तो नहीं कर रहा है। सॉरी टू से, मैं बहुत फ्रैंकली बोला है तो हाँ, और ये मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे या मेरे पर तो नहीं हंस रहे ना, या अभी आएंगे तो अगर मैं उसका हाथ पकड़ लूँ सीन में तो कहीं ये ना बोल दे कि मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया, दबा दिया। ये मैंने बहुत फेस किया है अभी। हाँ, और तो वो एक मेरे लिए
2: नहीं होते, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल,
3: और हर दिन शूट पे जब जा रहे होते हैं तो वो अलग स्ट्रगल होता है घर से निकलने का, यार आज आज आज ऐसा कुछ मत होना, भसड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, भसड़ नहीं होना चाहिए, मैं बहुत ऐसे देसी मेरे वर्ड है, तो भसड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि हम आराम से, वो बोलते हैं 9 to 5 तो नहीं था, 9 to 9 का जो जॉब था वो बहुत अच्छे से निभा रहे थे हम। अब वो शायद शो का बोलते ना लिखा होता नसीब, तो वैसा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता जिन्होंने बोला लंबा, तो लंबा अगर हम सब एफर्ट लेना तो शायद ये लंबा क्या लाइफ टाइम चल सकता है।
5: डेफिनेटली ये पोजीशन से समझ में आ रहा है हम लोगों का, ये तो सच में मम्मी सच में मतलब ये ऐसे ही आके गोद में चढ़ती है और मम्मा मम्मा करती है। नहीं रियली यहाँ कोई ग्रुपिज्म नहीं है, सब बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, वही वो वसुंधरा जी मुझे प्रॉपर वो दीदी वाला फील देती है, मतलब सब बहुत अच्छे, काम करने में मजा आ रहा है बहुत, विश की चलता अच्छा, बट ठीक है अभी शॉर्ट हो गया, बट शॉर्ट में मेमोरीज बहुत लेके जा रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा
3: कि हमारे तरफ से कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एक तो आईपीएल चल रहा था और दूसरी बात स्टोरी पहले कुछ और थी, मुझे आए 1 मंथ भी नहीं हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आप दो से तीन महीने तो बनता है किसी भी एक्सपायरी, जब हम वारंटी भी खरीदते हैं तो 6 महीने की वारंटी होती है, तो आई थिंक 3 महीने की तो वारंटी देनी चाहिए थी। तो मैं, मेरा यही है कि अगर थोड़ा टाइम मिलता, और हमारा स्लॉट भी 10 बजे का है, तो वो अब आप मैसेज आप पढ़ोगे तो फैंस बोल रहे हैं कि हम सो जाते हैं, जहाँ दंगल टीवी में तोसे नाना देख रहे हैं वहाँ के लोग सो जाते हैं 10 बजे, और जब फिर आप यूट्यूब पे डाल रहे हो तो वो बहुत लेट नाइट हो जा रहा है, और जब आप सुबह उठते हो तो अपने दिनचर्या में लग जाते हो, अपने काम में लग जाते हो, तो आप वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप देखें। तो दो तीन चीज़ें थी जो थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, तो आई थिंक अगर वो थोड़ा एडजस्ट होता तो शायद हम अभी और लंबा चल सकते।
1: तो भाई हम तो यही कहेंगे कि ये कलाकार जल्द ही नए किरदार में लौटे और अपने दर्शकों का फिर एक बार मनोरंजन करे। फिलहाल हम कहते हैं इन्हें अलविदा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: प्राध्या और प्रथम, वैसे आप दोनों का साथ भी है बिल्कुल इन वाइप्स और क्लेंजर्स की तरह, क्योंकि हैं ये दोनों एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे, और बिल्कुल ऐसी ही है आपकी ये जोड़ी। तो जल्दी से मुझे भी बता दीजिए कि क्या कुछ हो रहा है आपकी कहानी में आज, क्योंकि हमारे ऑडियंस तो बेसब्री से कर रहे हैं आपकी कहानी के अपडेट का इंतजार। लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर।
1: बिगड़ी प्रथम के पापा की तबीयत, और घर वाले हुए परेशान। पापा के लिए लौट कर आया प्रथम। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज आ गया है कहानी में नया ट्विस्ट, जहां घर में काफी परेशानियां चल रही हैं। एक तरफ प्रथम जेल में बंद है तो दूसरी तरफ प्रथम की चिंता में प्रथम के पापा की तबीयत बिगड़ चुकी है और उन्हें आ गया है माइनर हार्ट अटैक। ऐसे में सभी घर वाले देखिए कैसे परेशान हो रहे हैं, और दादी तो रोने ही लगी।
6: लगी है माइल अटैक, मैंने इंजेक्शन दे दिया है ताकि ये आराम कर सके, और इनका ब्लड फ्लो एक्टिव है। I think ये काफी स्ट्रेस जिसकी वजह से ये हुआ है।
7: हम भी कैसे कर्म लिखा कर आए, वो था जेल में और बेटे को हार्ट अटैक। हे भगवान, हमारे बूढ़े शरीर में अब और कुछ झेलने की हिम्मत नहीं बची है। हे महादेव, घर में खुशियां लौटा दे, भले ही इसके बदले हमारा जीवन ले ले।
1: ऐसे में राध्या कर रही है प्रथम को वीडियो कॉल और उसे घर आने के लिए कहती है, क्योंकि प्रथम भी छूट चुका है। तो भाई घर में खुशियां तो तब आई जब प्रथम लौट कर आ गया और आते ही अपने पापा के गले लग गया। ऐसे में प्रथम की माँ, दादी और सभी घर वाले काफी खुश हैं। हालांकि प्रथम अपनी दादी से थोड़ा हिचकिचा रहा है, लेकिन बाकी घर वालों से मिलकर वो भी काफी खुश है।
6: ठीक तो है ना बेटा? मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे।
1: तो भाई प्रथम तो लौट आया है, लेकिन अब कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा ये देखना होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: जब बात करें हम क्लेंजिंग वाइप्स की, तो देखिए इनमें है कितनी सारी वैरायटी, राउंड वाइप्स, रेक्टेंगुलर वाइप्स, कॉटन वाइप्स, टॉवल वाइप्स, और इसी तरह है हमारे पास भी आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी, जिसे लेकर हाजिर है हमारी सास बहू और बेटिया की एयरलाइन। तो आप भी हो जाइए इस पर सवार, बांध लीजिए एंटरटेनमेंट की पेटी, क्योंकि हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। गेट सेट गो।
1: टीवी के सीरियल जगधात्री में आज देखने को मिला जगधात्री और माया के बीच का बॉन्ड। भाई माया की तबीयत खराब है, ऐसे में जगधात्री पहुंच गई है माया की केयर करने के लिए। देखिए कैसे वो उसे दवाई दे रही है। भाई दोनों में गलतफहमियां तो बहुत है लेकिन इनका बॉन्ड अटूट है।

वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार माया किचन में पहुंचती है, लेकिन अब भी उसकी तबीयत खराब है। ऐसे में जगधात्री पहुंच जाती है उसकी मदद करने के लिए। भाई यही तो है इनका सुलझा अनसुलझा रिश्ता।

0: थिंक बिकॉज एक तो माया की तबीयत एक दिन पहले खराब थी, बुखार था, इसीलिए नेक्स्ट मॉर्निंग जब माया किचन में आती है गुंजन के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, जेडी ऑब्वियसली बीइंग द नाइस पर्सन दैट शी इज सेज कि माया ताई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेट मी हेल्प यू, बट माया रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अर हेल्प, क्योंकि हमने देखा है माया एज अ कैरेक्टर, नॉट ओनली माया, आई थिंक हम सभी ऐसे होते हैं ना, बहुत बार जब हम उठे हुए होते हैं बाहरी दुनिया में या एक्सटीरियर में हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अंदर अंदर हम फील करते हैं, हम वो हेल्प मांगते भी है, ऐसा ही कुछ है सीक्वेंस में कि माया ऑन द एक्सटीरियर लेवल ऑफकोर्स रिफ्यूज़ करी है, प्लस जेडी और उसके पीछे कोल्ड वॉर भी चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर शी इज़ सीकिंग दैट हेल्प, क्योंकि वो खुद बीमार है, उसे हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो जता नहीं रही है। और एक बहुत ही मज़ेदार ये सीक्वेंस था, ज़्यादा डायलॉग्स थे नहीं, देवर ऑल मोमेंट्स कि आई वॉज बेकिंग पैनकेक फॉर गुंजन, एंड इवन बिफोर आई कुछ से आई नीड दिस, जेडी वो आके जगाती आके मुझे वो प्रेजेंट कर रही थी। सो एक अनस्पोकन लव, अनस्पोकन बॉन्ड इस सीक्वेंस में देखने को मिलेगा, एंड इट वॉज अ रियली फन सीक्वेंस टू शूट।
1: कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में विहान हो गया है किडनैप, और ऐसे में देखिए कैसे किडनैपर विहान को जबरदस्ती खाना खिला रहा है, लेकिन विहान को तो बस अपने घर जाना है।
2: मत कर, जब मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो क्या खाना था? अगर अपने पीछे खाना नहीं खाया तो 2 मिनट लगेगा मुझे, अभी तुझे चुप कर दूंगा।

0: लेकिन विहान भी बड़ा चालाक निकला, वो यहाँ से भाग गया है। ऐसे में दूसरी तरफ अवंतिका का फोन किडनैपर को आता है, क्योंकि विहान का किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि अवंतिका ने ही करवाया है। ऐसे में जब किडनैपर उसे बताता है कि विहान तो भाग गया है, तो अवंतिका भड़क जाती है।
1: विहान का वीडियो भेजा जाती
2: है। मैडम वो बच्चा कब्जे में था लेकिन वो फिर से भाग गया।
1: तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे? रतन तुम मर क्यों नहीं गए? एक बच्चा नहीं समझ जा रहा तुमसे? उसे ढूंढो, उसे ढूंढो, उसे खोजो, उसे बनाओ। मैं नहीं चाहती तुम क्या करोगे। मुझे वो बच्चा किसी भी कीमत पर चाहिए।
2: मैडम ढूंढ ही रहा हूँ, उसके पीछे भाग रहा था, बीच में गाड़ी आ गई, गिर गया मैं।
0: तभी वहाँ पर पहुँच जाता है विश्वास, लेकिन अवंतिका बात को पलट देती है। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ी गड़बड़ हो रही है। देखिए कैसे विश्वास भी अवंतिका पर भड़क रहा है।
2: किसे बात कर रहा
1: हूँ? कोनिका जी को।
2: What? कोनिका जी मिली कि नहीं अब तक?
1: मैं वही तो बॉट बॉय से बातें कर रही थी कि कोनिका जी एक बार मिल जाए उन्हें पकड़ के रखना, वरना वो फिर से को।
2: अभी पाए बात क्या रखोगे उन्हें? बॉट बॉय को बोलो जल्दी से उन्हें ढूंढे, बस वो किस हाल में है। कुछ कहो, तुम तो आर्मी में नहीं हो ना? सब कुछ प्लान किया ना तुमने, तो पेशेंट गायब क्यों है? और वो भी कोई रैंडम पेशेंट नहीं, ध्रुव चावला की दादी गायब है। ट्रस्टी है वो हॉस्पिटल की, डायरेक्ट उनके पोते के साथ मर्जर डिस्कस कर रहे हैं। सारी फंडिंग वहां से आने वाली है अवंतिका, तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? पता चला कोनिका जी गायब है तो सब खत्म हो जाएगा अवंतिका, सब खत्म। तुम्हारी वजह से मेरे बिजनेस, रिश्ते, करियर, हॉस्पिटल सब दांव पे लग के आया। विहान कैसा है अवंतिका? एक वीडियो तो मंगवा लो उसका, कम से कम देख तो ले हम कि वो ठीक है नहीं।
3: मैं स्कूल से किडनैप हुआ हूँ, मीन्स मेरी बाइक से ही। तो मैं स्कूल में था, मैं स्कूल से किडनैप हुआ हूँ और फिर मैं एक डांस रूम में बंद था और ये प्लान था अवंतिका मैम का, मीन्स ये जो प्लान है किडनैपिंग करने वाला वो था अवंतिका मैम का। तो उन्होंने मुझे किडनैप किया है। इससे पहले भी एक सीन हुआ है जिसमें मैं मिस हो गया था, तो जो मेरे डैड है उन्होंने सानिया को कान में बंद किया रहा था, तो अवंतिका मैम ने उसका बदला मुझसे लिया। तो मैं किडनैप हो चुका हूँ अभी और फिर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से निकलने की। मैं मेरे बाजू में मम्मा भी बैठी हुई थी, मीन्स मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने एक आइडिया दिया और भाई एक कांच भी पड़ी हुई थी बहुत सारी, तो मुझे कांच दिखी तो मैंने कांच लेके वो जो रस्सी थी मेरे हाथों पे वो मैंने काटी। फिर उसके बाद मैंने देखा तो वो रिटर्न उड़ गए। फिर उसके बाद मैं ऊपर रिटर्न देख के रो रहा था। फिर उसके बाद मैंने हाथों से किया काटा और फिर हाथों से पैर की रस्सी खोला और फिर उसके बाद हम सबके वो क्लोजेस और वो सब।
0: तो भाई अवंतिका की जिंदगी में काफी मुश्किलें आ गई है और वो पूरी तरह से फंस चुकी है। अब देखना होगा इन मुश्किल से वो कैसे बाहर निकलती है। टीवी के सीरियल मन सुंदर में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर रूही लगा रही है नाहर पर इल्जाम कि नाहर ने रूही से बदतमीजी की है। ऐसे में घर में तमाशा शुरू हो चुका है, जहाँ दादी भी रूही को ही खरी खोटी सुना रही है और ऐसे में नाहर भी रूही को झूठा ठहराने पर लगा हुआ है। इन सब में अग्नि क्या, दादी क्या, सभी लोग बस नाहर का ही साथ दे रहे हैं, लेकिन सच तो रूही को पता है कि ये नाहर है ही नहीं। तभी तो देखिए कैसे घर में शुरू हो गई है बहसबाजी।
4: आज मैं तुमको छोड़ूंगा। चिल्लाने वाली बात है पापा, इसलिए चिल्ला रहा हूँ। आपको बताऊंगा ना इसने क्या किया है, इसके उत्तर क्या है। बस एकदम रह जाएंगे।
5: बात क्या है?
4: बात बस ऐसे रुलो जैसे सब झूठे हाथ मत पाओ, ठीक है? बताया मुझे सब कुछ, इस रोगी ने मुझ पर हाथ उठाया।
5: तुमने रात को थप्पड़ मारा, तुमने मेरे पति पर हाथ उठाया, पागल हो गए हो क्या?
0: किसी को भी रूही पर विश्वास नहीं। अब देखना होगा कि रूही कैसे सच का खुलासा करेगी।

0: आज तो इन मेकअप रिमूवर्स और इन क्लेंजिंग वाइप्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें। आज तो शेयर कर रहे हैं हम अपने ऑडियंस के साथ स्किन केयर टिप्स। तो आज का हमारा एपिसोड है काफी स्पेशल। वैसे स्पेशल तो है हमारी ये स्पेशल स्टोरी जिसे संभाल कर रखा है हमने खास आपके लिए। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
1: मीरा नायर के दक्षिण इल्लम की सैर।

नया शो, नई कहानी। इश्क दम इडली रसम के सेट का टूर। बालाजी टेलीफिल्म्स बहुत जल्द लेकर आ रहा है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक नया शो जिसका नाम है इश्क दम इडली रसम, और इसमें नजर आएंगे आप सबको शाइनी दोषी और अभिषेक कुमार।

0: तुम्हें जितने भी गेम्स खेलने हैं ना अर्जुन ठाकुर, तुम खेलो।
1: मिस मीरा, ये सिर्फ गेम नहीं है, इट्स अ वॉर।
2: ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इश्क दम इडली रसम के दक्षिण इलम के सेट पर, जहां शाइनी दोषी यानी कि मीरा करवा रही है हमें उनके प्यारे से सेट की सैर। तो आइए करते हैं उनसे मुलाकात और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ खास है उनके इस नए सेट पर।
3: इश्क दम और इडली रसम, और हमारे साथ है शाइनी और दक्षिण इलम के बाहर है, राइट? मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है?
4: बिल्कुल, दक्षिण इलम।
3: तो यहाँ जो है मीरा नायर हमारे साथ है और अपना रेस्टोरेंट जो है वो दिखाने वाली है, और कितना दम लग रहा है, कितना इश्क भी हो रहा है यहाँ पे इस इडली रसम के साथ।
4: बिल्कुल, ये हमारा एक्चुअली एक जो दक्षिण इलम का एक्सटीरियर पार्ट है वो है, जो हमारा मेन किचन है वो सेट अलग लगा हुआ है, बट मैं आपको एक्सटीरियर पार्ट दिखाऊंगी आज। सो कम जॉइन मी एंड सी हाउ आर little small parts of set look like. Follow me. So it's a South Indian restaurant. Kerala ke ek chote se jagah mein ye restaurant sthit hai. So hamare Kerala mein Dakshin Illam hai aur ye hamara restaurant ka jo exterior part hai jahan pe hum apne customers ko khana khilate hain, ye this is that part. And this is one of the cabin जो मैं और मेरी जो बिजनेस पार्टनर है उसका केबिन है। सो हम छोटे मोटे जो हमारे केबिन के सीन्स होते हैं वो हम यहाँ पर शूट करते हैं। लेट मी टेक यू टू दी अनदर एक्सटीरियर पार्ट। यस, ये जो दक्षिण इलम का हमारा मेन्यू है, देखिए, साध्य थाली, इडली रसम, पजम पोरी, पजम खंजी, इडली रसम। आई लव इडली रसम, आई लव रसम इन जनरल, एंड आई लव साउथ इंडियन क्यूजीन, लाइक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। बनाती तो मैं घर पर भी हूँ, खुशी भी बहुत हो रही थी, बिकॉज एक तो आई हैव नेवर प्लेड अ साउथ इंडियन कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। टू शो का कॉन्सेप्ट और शो की स्टोरी बहुत अलग थी, एंड द वे द होल टीम इज कमिंग इन टुगेदर टू पुट इन समथिंग विच इज रियली पावरफुल, दैट काइंड ऑफ एक्साइटेड मी। मुझे लगा कि नहीं, ये शो कुछ अलग है और ये कुछ अलग बनने वाला है, और आई होप आप लोगों ने ट्रेलर निकल चुका है बाहर, इट्स आउट, एंड आपको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको हमारे दक्षिण इलम के और एक्सटीरियर पार्ट में ले जाती हूँ, हमारा आउटडोर एरिया। दिस इज द एक्सटीरियर पार्ट। आ जाइए, आइए, हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है, प्लीज आइए और खाइए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, प्लीज प्लीज, बस है ना। नहीं, हमारे रेस्टोरेंट वाला नहीं है ये, तो यूनिट वाला खाना है, बट ये हमारा एक्सटीरियर पार्ट है जहाँ पे हम शूट करते हैं। अब मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ, जो हमने छोटी छोटी सी डिटेलिंग करी हुई है। वी हैव केप्ट इट वेरी ऑथेंटिक, वी हैव केप्ट इट वेरी ऑथेंटिक, वेरी ओरिजिनल, जैसे केरला का फील दे। जो हमारी ये बॉल है, दैट्स माय अप्पा देयर, सो दिस इज माय अप्पा, ही इज प्लेइंग माय ऑन स्क्रीन फादर, एंड ये हमने छोटी सी एक वॉल डेकोरेट की है यहाँ पर। देन दिस इज आवर मेन्यू कार्ड ऑफ दक्षिण इलम, जहाँ पे आपको सारा साउथ इंडियन खाना, ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना मिलेगा। सो ये बेसिकली हमारा छोटा सा दक्षिण इलम का पार्ट है, एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सटीरियर पार्ट ऑल्सो, जहाँ पे मैं आपको ले जाऊंगी। और ये हमारे दक्षिण इलम का बाहर का एक्सटीरियर पार्ट है, यहाँ पे भी हमारे काफी सारे सीन्स होते हैं, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस। जैसे आप मेरा घर देख रहे हैं, जो हमारा ऊपर एक्सटीरियर घर का पार्ट भी है, जहाँ पे सनी और मीरा रहते हैं। सो हमारा ये घर दिखाया गया है, और यहाँ पर नीचे हमारा रेस्टोरेंट है, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली एंड हाउ रॉल इट लुक्स लाइक। व्हेन आई सॉ दिस लोकेशन, लाइक इन पिक्चर्स आल्सो, वे बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, इट लुक ब्यूटिफुल, लुक एट दिस ट्री हियर। तो ये था हमारे दक्षिण इलम का एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट जो आपने देखा, तो जो छोटा सा पार्ट है, क्योंकि हमारे सेट सब अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, तो आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। मैंने आज आप सबके लिए कुछ बनाया है, बिकॉज शेफ मीरा इडली और रसम बना चुकी है, तो चलिए आइए मेरे साथ Let's have idli and rasam.
3: Okay, the plate.
4: Surprise! Idli, chutney or sambar.
3: यहाँ पर जो है तड़का नहीं है, लेकिन एक जो तड़का है वो आपकी लाइफ में, आपके रेस्टोरेंट में आ गया है या है, वो उसका नाम जरा बता दीजिए.
4: शेफ अर्जुन इज द तड़का हियर. नो, एक्चुअली हम सब तड़का हैं. शेफ अर्जुन हमारा तड़का बदलने आए हुए हैं.
3: रेसिपी में कुछ और एड ऑन करने आए.
4: एड ऑन करने के लिए आए, वो हमारा मेन्यू चेंज करने के लिए आए हैं. उनको लगता है कि हमें सिर्फ साउथ इंडियन क्यूजीन नहीं रखनी चाहिए. ही इज बेसिकली अ मिशलिन स्टार सेलिब्रिटी शेफ, तो ही हैज हिज ओन ओपिनियंस एंड ही हैज हिज ओन थिंग्स एंड मॉडिफिकेशंस दैट ही वांट्स टू ब्रिंग इनटू दिस रेस्टोरेंट. और उनका कहना है कि हम सिर्फ ये नहीं बेचेंगे, हम कुछ और भी बेचेंगे ताकि ज्यादा लोग आए. नाउ ही इज थिंकिंग फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव, जहाँ पे मीरा इज वेरी इमोशनल बिकॉज ये जगह मेरे अप्पा की है और मेरे अप्पा के जाने के बाद मैंने दक्षिण इलम को संभाला है अभी तक. बट दक्षिण इलम ऑफकोर्स इतना बिजनेस वाइज अमेजिंगली नहीं कर रहा है, इसीलिए अर्जुन ठाकुर जी आए हुए हैं हमारे रेस्टोरेंट में और उन्होंने तगड़ी रकम हमारे रेस्टोरेंट में लगा कर हमें फंसा दिया है कि हम ना उन्हें रख पा रहे हैं और ना हम उन्हें निकाल पा रहे हैं. सो या दैट्स द थिंग.
3: इन्हें धरा बन के पंड्या स्टोर पूरा संभाला है. एक आइडिया शानी को पहले से है, ऐसा कह सकते हैं.
4: वहाँ पे मैं अपनी दुकान बजा रही थी, यहाँ मैं अपना रेस्टोरेंट बजा रही हूँ. बट इट इज डिफरेंट, वे मोर डिफरेंट देन व्हाट आई हैव डन इन पांड्या एंड व्हाट दिस इज. ये कैरेक्टर भी बहुत अलग है. शी इज अ मतलब वनरेबल है, इमोशनल है, शी इज वेरी सेंसिटिव बट विथ दैट शी इज सुपर स्ट्रांग ऑल्सो. मीरा एक ऐसी लड़की है जब स्क्रीन पर आएगी तो सभी लोगों को मोहब्बत हो जाएगी इससे. मुझे भी मोहब्बत है.
3: तो यहाँ पर जो है क्या कहेंगे, क्या क्या नाम देना चाहेगी, कोई साथ इडली किसे बोलना चाहेगी?
4: इडली इज दिस जो हमारी चावल के आटे की बनी हुई है इडली. ये कोकोनट चटनी है और ये सांभर है. जो एक्चुअली मुझे रसम बनाना था बट अब शूटिंग के टाइम पे जो अवेलेबल था हमने यूज किया है. एंड चलिए टेस्ट करते हैं. आप टेस्ट करना चाहेंगी सबसे पहले?
3: ऑडियंस को टेस्ट करवाएंगे फर्स्ट.
4: चलिए तो गणपति बप्पा मोर या भगवान करे इश्क दम और इडली रसम सबसे ज्यादा पॉपुलर हो.
3: साउथ इंडियन पसंद है क्योंकि खाना
4: साउथ इंडियन फूड. आई लव साउथ इंडियन, ये मैं रोज खा सकती हूँ विदाउट यू नो फीलिंग एनीथिंग. दिस इज लाइक माई स्टेपल फूड. मेरे घर में हफ्ते में एटलीस्ट एक बार साउथ इंडियन बनता है, वो हम लंच में और डिनर में. मतलब या लंच में ऐसा होता है कि वील मेक इडली, इवनिंग वील मेक डोसा एंड उत्तपम. सो विद द सेम आटा वी डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बट दैट वन होल डे घर पे मेरे सिर्फ साउथ इंडियन खाया जाता है. केरला तो मैं जा चुकी हूँ एंड इट्स ब्यूटिफुल. आई लव्ड इट, लव्ड इट. लास्ट ईयर ही गई थी इनफैक्ट मैं केरला. एंड आई लाइक द कल्चर, आई लाइक द ट्रेडिशन, आई लाइक द पीपल देयर. दे आर वेरी सिंपल एंड द बेस्ट थिंग इज ऑफकोर्स द फूड. बट वहाँ का नारियल कोकोनट, वहाँ का कॉफ़ी, दे आर रिच इन कॉफीज ऑल्सो. दे आर रिच इन सैंडलवुड जो चंदन आता है. एंड वॉट एल्स, येस द बनाना चिप्स. वो जो बनाना चिप्स मैंने बनते हुए देखी है केरला में, जो प्रॉपर कोकोनट ऑयल में बनती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है. आई थिंक दैट बनाना चिप्स इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से लेकर आई थी अपने साथ.

0: इष्टम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप आप सबको इश्कदम और इमली रसम बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। ये कहानी हमारी बहुत, हमने बहुत मेहनत की है, सभी ने बहुत मेहनत की है इस शो पे, और आई एम श्योर आपको मेरा, मीरा और अर्जुन का काम बहुत पसंद आएगा। हमारे जितने भी बाकी शेफ हैं, हमारे रेस्टोरेंट में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, सबका काम आपको बहुत पसंद आएगा। सो प्लीज़ देखना ना भूलिए इश्कदम और इडली रसम, ओनली ऑन बालाजी यूट्यूब चैनल।
1: भाई मीरा से मुलाकात तो हो गई, अब करते हैं शो की प्रोड्यूसर साहिबा से मुलाकात, जो आप सबकी फेवरेट है। जी हाँ, सुरभि चांदना, जिनके प्रोडक्शन हाउस का बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ ये पहला शो है।
2: जो प्यार जो है, यस,
3: होंगे और मुझसे पूछा होगा मेरा फेवरेट खाना क्या है।
2: इष्टम के टाइम हम मिले हैं,
3: हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि इडली मेरी फेवरेट डिश है और मैं बहुत शौक से इडली खाती हूँ। और आई थिंक वो पहले शो का ही नाम हमने कहा कि चलो इडली पे होना चाहिए।
2: ये जो प्यार है वो क्या है, मतलब मैं जरूर जानना चाहूंगी।
3: जेन्युइन प्यार है, मैं हूँ पंजाबी पर मेरा साउथ इंडियन खाने से बहुत ज्यादा प्यार है एंड लगाव है। आई लव इडली एंड पता नहीं, लकीली हमारे झोली में आया ही कुकिंग बेस्ड शो शेफ रोमांस, और हमने कुछ 3-4 नाम निकाले थे जिसमें कुछ बिरयानी से रिलेटेड भी था, इडली से रिलेटेड था, डोसा से रिलेटेड था, बट देन वी एंडेड अप इडली ओनली। मैंने यही सोचा था अपनी लाइफ में, करण और मैंने यही सोचा था कि कल जाके जब हम खुद, बिकॉज ऑफकोर्स इवेंचुअल प्लान ये था कि म्यूजिक करने के बाद तो हम स्टोरी टेलिंग या शोज बनाएंगे या जो भी होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, चैनल्स के लिए, तो अगर मैं अपने ही दोस्तों को उसमें नहीं लूँगी और नहीं करूँगी तो मुझे फिर बहुत मिसिंग लगेगा। तो इसमें काफ़ी लोग हैं, आप नेहा लक्ष्मी जानते हो, बट इसमें मैंने वो मिली, बट उसमें नहीं नहीं और भी हैं, उसमें मैंने बीच
2: और भी सरप्राइजेस मिलने वाले दिखने वाले हैं।
3: देर इज वन मोर सरप्राइज, या जो बहुत लोग जानते भी हैं, एक वो सरप्राइज है। प्लस इसमें मैंने अभी बीच में थिएटर में कर रही थी तो उसमें से काफी एक्टर्स जिनसे मैं सीखी हूँ उनको भी कास्ट किया है इस शो में। सो मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है एंड आई फील उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। दोस्त के काम नहीं आएगा तो कब। सबसे पहला वाला है कि नो यलिंग, वी आर नॉट इन अ डेली सोप। हम एक शो बना रहे हैं जो YouTube पे आएगा, वेब पे है, सो इसलिए तो हम लोग जो सेट पे चिल्लाते चिल्लम चिल्ली करते हैं तो ये है। बहुत अच्छे हैं, इफ़ इट्स नॉट इन द स्क्रिप्ट कीप द वॉल्यूम डाउन, मतलब स्क्रिप्ट में नहीं है तो आप अपनी आवाज़ थोड़ी नीचे ही रखिए। दूसरा है अब्यूज़, बहुत अक्सर हम सेट पे गालियाँ सुनते हैं। एंड तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी, चाहे वो स्पॉट से लेके बड़े स्टार तक हो। सेट हम चाहते हैं कि हम जितने लेवल तक क्लीन रख सके, कोशिश हम यही करते हैं, कॉन्स्टेंट क्लीनिंग चलती रहती है। पंचुअलिटी, यस, हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर 9 की शिफ्ट है तो टाइम से रोल करें सारे एक्टर्स को। एक रात पहले स्क्रिप्ट्स भेजी जाती हैं और ताकि वो सेट पे एकदम प्रिपेयर्ड आए। सो कुछ चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उसमें नीचे कॉमेंट्स हैं। आई थिंक अब यही होता है ना कि एक शो करते हो फिर आप चाहते हो कि आप दूसरे पर जंप करो, यू वॉन्ट टू यू नो क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर द पीपल अराउंड यू। सो वही है, कोशिश मेरी यही है कि हम और शोज बनाएं, और एक्टिंग फ्रंट पे आई एम डूइंग समथिंग विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। तो मेरे पति ने अब मुझे, इनफैक्ट आई एम फ्लाइंग फॉर इट टुमारो ऑल्सो। सो यही है कि
2: सरप्राइज थोड़ा हिंट दे के जाओ,
3: ये शायद टीवी का प्रोजेक्ट होता तो मैं फिर हिंट दे देती थी, बट या अभी इससे तो समझ ही गए होगे। बट या आई एम ट्राइंग टू स्विच गियर्स, आई एम ट्राइंग टू काइंड ऑफ नेविगेट, और मैं अपने लिए कुछ जो मैंने कुछ इमेजिन किया है लाइफ में, मैं वो करना चाहती हूँ, जो तो उस जर्नी पे हूँ इस समय।
1: और अब बारी शो के अहम किरदार यानी कि अभिषेक कुमार की, उनसे मुलाकात कर जानते हैं कि भाई आखिर एक्टर से शेफ का ये सफर उनके लिए कैसा रहा।
4: अभिषेक से तो बिल्कुल अलग है, इमोशनलेस है, बहुत फोकस्ड है, करियर ओरिएंटेड है, बिजनेस माइंडेड है, पैसा कमाना है, बस उसको किसी भी हालत में पैसा कमाना है, अपना नाम बनाना है। तो वैसा सा अर्जुन ठाकुर, और मैंने बीएड रखी है इसमें, मैंने कभी नहीं रखी थी, मैंने शॉर्ट हेयर किए हैं और शेफ बनाऊँ, शेफ, और इसमें मैं ट्रेंड शेफ बनाऊँ जो कि मैं हूँ नहीं। तो स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छा है, और लिखा बहुत अच्छा, मुझे लिखावट बहुत अच्छी लगी थी यार, लिखा बहुत अच्छा आप लोगों ने।

0: यूट्यूब पे आ रहा है बट हम बना इसको नेटफ्लिक्स जा रहे हैं. मतलब अगर आप देखोगे आप बोलोगे क्या वेब अलग टाइप का फील देगा. ट्रेनिंग तो काम मतलब मुझे इतनी अच्छी कुकिंग आती नहीं है लाफ्टर में, बट एटलीस्ट मैं चॉपिंग कर लेता हूँ, मैं मसाले डाल लेता हूँ, है ना. वो कुछ कुछ करना आता है कि किस तरीके से डालना है, तो वो क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत काम आ रही है. तो
1: यहाँ पर जो है मतलब क्या है, किस इरादे से आया है ये अर्जुन, इसका इरादा जानने में सबको ज्यादा इंटरेस्ट है.
0: अर्जुन ठाकुर का इरादा है कि उसे सातवें रेस्टोरेंट का मालिक बनना है, और वो सातवां रेस्टोरेंट मीरा के हाथ में है, और मीरा से मुझे वो रेस्टोरेंट छीनना है. वो सबको धोखे में रख रहा है, एंड में जाके पता चलता है कि क्या हो रहा है. तब तक मैं सबको धोखे में रखता हूँ, सबको अपने वश में करता हूँ.
1: वश में करने के लिए कहेंगे खाने का जादू भी चला रहे,
0: खाने का जादू, अपने पैसों का जादू, अपने लुक्स का जादू, और अपने इरादों का जादू, बहुत जादू चला रहा हूँ सबको अपने वश में करने करना है. जी जी, पहले मैं लवर बॉय था, वो मैंने प्यार करना सीख लिया, अब मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ. शो के बारे में तो यही है कि यार प्लीज़ आप लोग, आपने हमेशा सच में हर प्रोजेक्ट को बहुत प्यार दिया है, और मैं इनको फैंस बोलता ही नहीं हूँ, मैं मेरी फैमिली, और मैं इनसे एक्चुअली कनेक्टेड रहता हूँ. वॉइस नोट्स पे मैसेज भेजता रहता हूँ, बात करता हूँ. तो प्लीज़ आप लोग इस शो को भी बहुत प्यार दो, और ट्रेलर देख के आओ, और पहला एपिसोड हमारा 11th मई को आ जाएगा बालाजी के यूट्यूब चैनल पे. देखो और बहुत ज़्यादा प्यार दो.
2: अभिषेक के अलावा लीड रोल्स में शो में नेहा लक्ष्मी भी नजर आ रही हैं, जो निभा रही हैं सौंदर्या का किरदार.
3: सो हाय, दिस इज नेहा लक्ष्मी अय्यर प्लेइंग सौंदर्या नायर उर्फ सनी. और ये पूरा सनी का गेटअप है, और आप
1: तो वही लुक चेंज में मिल रही है नेहा हमसे, तो कितना भारा है ये लुक, मतलब रेड रेड बरगंडी है, क्या कलर है क्या?
3: तो ये चेरी रेड है, और अब तो थोड़े से बढ़ गए हैं, तो ये बेसिकली पूरा शेव था, और ये लंबे थे बाल, तो बहुत बैडास लुक है, और काफी बैडास लड़की भी है, तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे प्ले करने में.
1: शेफ बन गई है यहाँ पे,
3: शेफ बनना पड़ रहा है, तो शेफ भी बनी हुई हूँ विद शेफ कोट एंड ऑल. तो काफी स्मार्ट लुक भी है, और जो मेरे कैजुअल वाला लुक भी है वो भी एकदम बहुत किकास है. इश्कबाज का कनेक्शन हम यहाँ पर भी लेकर आए हैं, सुरभि प्रोड्यूसर बनी है, और सुरभि के फर्स्ट शो में मैं एक्ट कर रही हूँ, और इश्कदम तो इश्क तो रखा हुआ है, इश्कदम और इडली रसम में हम साथ में हैं. एंड मुझे याद है हम लोग शूट भी करते थे बहुत इडली और रसम भी खाते थे ऑफ स्क्रीन, और अब साथ में काम भी कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है. एक्चुअली उसका ड्रीम हुआ करता था जब हम साथ में शूट करते थे, वो एक्चुअली ट्रू हो रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसके साथ भी साथ में कर रही हूँ.
2: तो भाई देखा आपने, ये था मीरा का एक छोटा सा प्यारा सा आशियाना, यानी कि उनका दक्षिण इलम, जो उनके दिल के सबसे करीब है, और इसी के इर्द गिर्द हमें देखने को मिलेगी मीरा की ये कहानी. उम्मीद करते हैं इश्क दम इडली रसम ये नया शो आप सबके दिलों में भी जगह जरूर बनाए. मुंबई से नुपुर माउजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.

0: अगर आपने जमकर की वीकेंड पर पार्टी और फिर बिना मेकअप रिमूव किए आप सो गए, फिर क्या होगा? फिर तो आएगा जिंदगी में ट्विस्ट, क्योंकि आपकी स्किन अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएगी और सुबह सुबह उठकर हो जाएंगे ब्रेकआउट्स। उप्स, कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों के साथ, जहाँ आते हैं जाने अनजाने ट्विस्ट जो बदलते हैं इन कहानियों का मोड। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ।
1: स्टारप्लस के सीरियल अनुपमा में भाई फिर एक बार अनुपमा के खिलाफ रचा गया है षड्यंत्र और फिर एक बार खतरे में पड़ी है अनुपमा की जान। भाई ये तो आने वाले कहानी का ट्रैक है, लेकिन आज देखिए कैसे भाई अनुपमा के एक थप्पड़ ने राही को सारे रिश्ते खत्म करने पर उतारू कर दिया है।
2: कहा था ना आपको, आप जब तक रहना चाहते उस घर में रह सकती हो, लेकिन क्या है ना एक किराएदार मिल गया है।
3: कितने दिन में खाली करना होगा?
2: बस 2 दिन में कर दीजिए।
3: गैस तो मैं बंद करके गई थी, गैस की बदबू नहीं आ रही आपको?
4: अनुपमा जी कैफे आई है कहीं वो?
5: अनुपमा जी,
6: और मम्मी के एक थप्पड़ ने मुझे इतना दर्द दिया कि मैं भी बेदर्द हो गई। अब मुझे समझ आ गया है कि उनसे उनसे प्यार की उम्मीद रखना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए आज से, अभी से, ना वो मेरी माँ है और ना मैं उनकी बेटी। जो दोस्ती निभाने के लिए बेटी का दिल तोड़ सकती है वो माँ नहीं हो सकती। दिल और उम्मीद उन्होंने तोड़े, रिश्ता मैं तोड़ रही हूं। आज मैं फिर से अनाथ हो गई प्रेम, फिर से अनाथ हो गई। इट्स ओके प्रेम, मैं रेडी हूं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तुम अपना कैफे खोलोगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं मिस अनुपमा जोशी को यह दिखाना चाहती हूँ कि अब मैं उन पर आंसू बहाने वाली राही नहीं रही, मैं बदल चुकी हूँ।
1: दूसरी ओर अनुपमा ने भी फैसला कर लिया है कि वो राही की गलती का एहसास उसे करा कर रहेगी।
3: पत्थर का हो क्या है और पता नहीं क्या क्या, पर ऐसा नहीं है सर, मैं बस थक गई हूँ। सबकी खुशियों के लिए हमेशा अपने मन को मारा, माँ को और उनके 4 लोगों को सफाई पे सफाई, सफाई पे सफाई देते रहे। बच्चों की बातें सुनती रही, समझ में आया सर कि जब तक बच्चों की बातें मानते हैं, जब तक उनके हिसाब से चलते हैं, जब तक उनकी हर जिद पूरी करते हैं, तब तक माँ बहुत अच्छी है। लेकिन जिस दिन माँ ने जिद पूरी नहीं की तो माँ बुरी हो जाती है, पर मैं पूरी मान नहीं हूं सर, और ये मैं पूरी दुनिया को साबित कर दूंगी कि मैं बुरी मां नहीं हूं। राही के गुस्से को प्यार में बदलूंगी, राही को उसकी गलती का एहसास दिलाऊंगी, राही को वो परवरिश याद दिलाऊंगी जो उसे अनुज ने और मैंने दोनों ने दी थी। बच्चों को अच्छा इंसान बनाना माँ का कर्तव्य है और राही की मम्मी ये कर्तव्य निभाएगी।
7: बाहर चलना चाहिए,
6: क्या कर रहे हैं आप? माहिद, आप बाहर नहीं जा सकते।
1: कलर्स टीवी के सीरियल शहर में भाई आखिरकार माहिद ने शहर की बात मानी और हुआ सबसे बड़े राज का खुलासा।
8: इंस्पेक्टर साहब, अपनी राग गए अपनी अर्जी मंजिल,
9: इन्हें हमने बुलाया। इस घर में कोई है जो हम पर हमला करना चाहता है?
10: क्या सबूत है इसके पास कि आपके ऊपर हमला होने वाला था?
6: वो नाचने वाली लड़की जिसके पाँव में मेहंदी लगी हुई है, उसके हाथ में चांद की शक्ल का खंजर, इससे वो माहिद पर हमला करना चाहती। वही चांद हमने इसे देखा था, उसकी नोक चमक रही थी।
1: इतना ही नहीं भाई, आज तो माहिद ने शहर से ये भी कह दिया है कि आखिर वो नाजिमा से क्यों मंगनी कर रहा है और क्यों शहर और माहिद को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए।
5: जज्बातों पर किसी का बस नहीं होता माहिद, जिनके भतीजे का भी नहीं।
9: हमारे बीच जज्बात नहीं, सिर्फ फासले होने चाहिए। जिस जज्बात ने हम दोनों को जोड़ रखा था, आपकी उम्र का एहसास होते हैं हम ये जज्बात हमें चुकने लगे। अब सिर्फ अफसोस और शर्मिंदगी है।
5: अगर आपने कभी हमारे लिए कुछ बुरा नहीं किया माहिद, हमेशा आपने हमारे दिल
9: हमारा और आपका कुछ भी होना नामुमकिन है सर।
5: ताने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि आप ये मंगनी हमसे दूर होने के लिए कर रहे हैं, नासिमा के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं।

0: कुछ ज्यादा ही बातें कर ली ना हमने, मैं चलना चाहिए।
1: हर बच्चा अपनी माँ के साथ बस एक नई अभागन हो जो आज के दिन अकेले।
2: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मैं फिर एक बार अभीरा विद्या और अरमान के रिश्ते को सुधारने की कोशिश करना चाहती है।
1: एक माँ सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन अपने बेटे की नफरत कभी सहन नहीं कर पाती है। तू से नफरत मत करना, मैं मर जाऊंगी।
3: तुम्हारी नाराजगी माँ और बेटे के रिश्ते से बढ़कर नहीं हो सकती। माँ इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है अरमान, वो तुम्हारे बिना जीते जी मर जाएंगी, इसलिए जाओ जाके उनसे बात कर लो।
2: असल में आज मदर्स डे का मौका है और देखिए यहाँ हर कोई अपनी मम्मा के लिए टियारा बना रहा है, लेकिन काजल हिचकिचा रही है क्योंकि मासा उससे नाराज है, लेकिन देखिए कैसे पूरा परिवार उसके साथ है।
4: मैं नहीं बना रही।
5: कुछ गलत करते वक्त आपने रिजल्ट की परवाह नहीं की तो सही करते वक्त भी सेम एटीट्यूड रखिए। जो हो चुका है उससे बुरा क्या होगा। अगर आपका गिल्ट असली है तो अपनों को मनाने की कोशिश करते रहिए।
6: रास्ता भटकने वाले अगर सही राह पर आना चाहेंगे तो मैं और मनोज उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं।
4: थैंक यू भाई सर। अभीरा बेटा तुम मेरी मदद करेगी
7: मासे के लिए तियारा बनाने में
4: प्लीज।
5: दादी साहब मेरे लिए मेरी मम्मा जैसी, आपकी मदद करूंगी लेकिन सिर्फ उनकी खातिर।
8: मन्नत अब आप भी शेयर कर दीजिए ना हमारे साथ कोई मेकअप रिमूवल टिप। मन्नत तो कह रही हैं कि वो तो करती हैं उस मेकअप रिमूवल टॉवल का इस्तेमाल, जी हाँ जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, बस उसे गीला करती हैं अच्छे से और अपनी स्किन को वाइप कर लेती हैं, पूरा का पूरा मेकअप आ जाता है उस टॉवल पर और फिर उस टॉवल को यूं ही वॉश कर देती हैं और ड्राई कर देती हैं। वाओ ये तो है एक अमेजिंग प्रोडक्ट। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इनकी कहानी में आज, क्या इस टॉवल की तरह इनकी जिंदगी से भी हो रहा है इस नई मुसीबत का सफाया। लेट्स चेक इट आउट।

जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता विक्रांत। मन्नत के बहे आंसू, नीतू का फूटा गुस्सा। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में विक्रांत संग हो गया है हादसा। विक्रांत का बेहद ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। ऐसे में देखिए कैसे खून में लथपथ विक्रांत को देखकर मन्नत के हाथ कांप रहे हैं। भाई उसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इतना खतरनाक एक्सीडेंट विक्रांत का कैसे हो गया है। भाई उसकी हालत इतनी गंभीर है कि उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां वो अपने जान के लिए मौत की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में अस्पताल पहुंच गए हैं नीतू, याशिका और धैर्य भी।

ऐसे में डॉक्टर्स तो पूरी कोशिश कर रहे हैं विक्रांत के जख्मों को ठीक करने की, लेकिन उसके घाव इतने गहरे हैं कि उसकी हालत बेहद गंभीर है और ये देखकर पूरे घर वाले परेशान हैं।

0: भाई इतना ही नहीं, जैसे ही नीतू धैर्य को देखती है, देखिए कैसे उसका गुस्सा फूट पड़ता है।
1: क्या कर रही हैं आप?
2: प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज, आज अगर परेशान हूँ ना तेरे पुत्र के लिए तो उसकी वजह मैं हूँ जी। मुझ पर ना केस कर लीजिएगा, मुझे समझ रख लीजिएगा। और
3: इनकी तो हार्टबीट रुक गई है, सावधान होगा।
2: क्या
0: ऐसे में विक्रांत का काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने से उसे खून की जरूरत पड़ी है। ऐसे में धैर्य उसका सगा भाई है, जिसके चलते उसने डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट की है कि वो उसका ब्लड लेकर ब्लड ग्रुप चेक करे।
4: लेकिन हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा पूरी रात। पेशेंट का काफी खून बह चुका है तो हमें उनके लिए खून की जरूरत पड़ेगी।
5: तो आप मेरा क्यों लीजिए, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों का ब्लड ग्रुप भी सेम ही होगा। आप चेक कीजिए ना, मुझे बताइए कहाँ चला।
6: कॉल आता है कि विक्रांत का एक्सीडेंट हो गया है और इस तरीके से हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। और जाहिर सी बात है सबके बीच में प्यारे सब बहुत ओपिनियनेटेड स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं, सबकी ओपिनियन अलग है और सबकी प्रायोरिटीज अलग हैं। तो इसीलिए एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में है ये परिवार, पर डेफिनेटली देर इज सो मच लव एंड केयर फॉर ईच अदर के अभी विक्रांत को कुछ हुआ है तो जितने वहाँ पे हम लोग खड़े हैं, मतलब यशिका तो फैमिली नहीं है तो उनको हटा के बाकी जो भी फैमिली है घर पे हो यहाँ पे हो, एवरीबडी इज वरिड फॉर हिम।
7: हाँ, बस प्यार जताने का तरीका अलग है, इनका अलग है, मेरा अलग है, लेकिन प्यार तो है। तो और बेटे के लिए है तो ज़्यादा है थोड़ा, बस वही बात है, बस यही है। और इमोशनल ड्रामा है पूरा और डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ कुछ और हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें चल रही है। काफ़ी इमोशनल सा एक ट्रीटमेंट है पूरा सीन का।
0: डॉक्टर्स की बातें सुनकर भाई मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई है, तभी तो देखिए कैसे वो यहाँ पर फूट फूट कर रो रही है। भाई मन्नत के आंसू है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई विक्रांत जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि मन्नत को भी सुकून मिले। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: ईशा, आज तो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए सुपर सॉफ्ट एक्चुअली बेबी सॉफ्ट कॉटन वाइप्स, जो आपकी स्किन पर एकदम जेंटल रहेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल कुछ भी जेंटल नहीं है इनकी कहानी में, क्योंकि फिर से आया है यहाँ पर एक हॉट एंड हैपिंग ट्विस्ट। ओ माय गॉड, अब ऐसा क्या होने वाला है कहानी में आज? आपका भी यही सवाल है ना, तो चलिए फिर लेते हैं अपने सवाल का जवाब, लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर।
9: मेहिका के स्कूल में पापा बन पहुंचे सूरज।

मीका ने बना दी सूरज और ईशा की जोड़ी। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज ने मीका को दिया हुआ प्रॉमिस निभाया और वो पापा बनकर उसके स्कूल में पहुंच गया है, जहां पर हो रहे हैं अलग अलग तरह के कंपटीशन। और ऐसे में मीका ने तो सभी को कह दिया है कि मेरे पापा सुपर हीरो हैं, इसीलिए तो कभी सूरज से पुशअप्स करवाए जा रहे हैं तो कभी वो लड़ा रहा है पंजा, और ये सब वो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मीका के लिए।

0: नहीं पता था एक्चुअली, सूरज को बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब होने वाला है. इट्स अ वेरी कॉमेडी काइंड ऑफ थिंग कि लाइक जैसे स्कूल में आता है सूरज और पता चलता है यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, और उसने चैलेंज लगाया कि मेरे पापा सबके पापा से 5 times बेटर करके दिखाएंगे. और पुशअप्स की बात आती है तो मेरे ऊपर मतलब कि एक 7-8 साल के लड़के को जो कि हेल्दी है उसको बैठा देते हैं एंड बोलते हैं कि पुशअप्स करो. सो इट्स अ वेरी पुशअप्स एक्चुअली या इट्स अ हॉट डे. एंड रियल में तो एक्चुअली मैं पूरा यू नो एग्जैक्ट 0 ground नहीं गया, बिकॉज 0 ground अगर मैं टच करता तो पॉसिबल नहीं था कि मैं उठ पाऊँ. तो इसलिए मैं 1/2 ground जाके एंड पुशअप्स ले रहा था फॉर द टेलीविजन लिबर्टी. लेकिन हाँ, वो बच्चे को रियल में मैंने अपने पीठ पे बैठा के थोड़ा सा पुशअप्स किया हूँ. सो अभी तो पता नहीं चल रहा है, आई थिंक 1-2 दिन के बाद पता चलेगा. सो यार, बहुत ही कॉमिक एंड क्यूट मोमेंट है जो कि एक IAS ऑफिसर उसे मतलब एक बच्ची का बाप बन के स्कूल में जाना है. एंड सूरज के लिए एक बहुत ही यू नो स्ट्रेंज फीलिंग है, एक्चुअली हट के फीलिंग आ रही है सूरज को. सूरज को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो फीलिंग मैं फील कर रहा हूँ वो वाकई क्या है, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है. जैसे वो ब्रह्मचारी था जब ईशा जी से उसे प्यार हुआ था तो उसे नहीं समझ में आ रहा था, सेम वैसे ही ये बच्चे से इसे प्यार हो रहा है बट सूरज को खुद नहीं समझ में आ रहा है.
1: भैया, गोलमाल तो तब होता है जब स्कूल में ईशा भी पहुंच जाती है. असल में ईशा को नहीं पता कि सूरज यहाँ पर मीका का पापा बनकर आया है. और देखिए, यहाँ पर भी एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है. जहाँ पर ईशा का मुंह इस मिट्टी में जा गिरा तो वहीं दूसरी तरफ मीका और सूरज के राज का भी पर्दा हट गया. ऐसे में शुरू हो गई है इनकी कॉमेडी, जहाँ पर मीका, ईशा और सूरज एक दूसरे को समझा रहे हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है.

0: स्मार्ट हो वो आपको जिताने के लिए आज ये आई है ऑफिसर छुट्टा पापा बन गया। इनका मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको जिताना चाहता हूँ, लेकिन कैसे वो तो हासिल है।
1: बात यह कि आकाश जो है काम में बिजी रहता है, ईशा जी ने यही बताया कि काम में बिजी होने की वजह से अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं सूरज को ये लगता है कि यार मेहका ने मुझे सीक्रेटली बोला है एंड ईशा जी को भी ये बात नहीं पता। अब ये प्रॉमिस कर लिया है और प्रॉमिस निभाने आ गया है स्कूल में। ईशा जी जब आ जाती हैं एंड सूरज वहाँ पे थोड़ा सा शाय हो जाता है बिकॉज ये मेहका और सूरज का सीक्रेट था कि हम किसी को बताएंगे नहीं। एंड ईशा जी ऑफिस में थी और ईशा जी ऑफिस में से भाग के यहाँ आ जाती हैं। उनको लगता है कि जब तक बॉस नहीं आया है तब तक मैं जाती हूँ मेहका के स्कूल में होके आ जाती हूँ, लेकिन बॉस जो है वो खुद स्कूल में ही है। सो इट्स वेरी वेरी क्यूट एंड वी कैन से लाइक ये बहुत ही हटके सीन है हमारे शो का एंड ऑडियंस विल गोइंग टू एंजॉय दिस सीन।
2: भाई अब ऐसे में कंपटीशन में ये दोनों आ तो गए हैं, अब बेटी मेहका के लिए सारे कंपटीशन करने होंगे, तो बारी आई कपल कंपटीशन की जहां सर्कल में खड़े होकर इन दोनों को रस्सी उड़ी करनी है और देखिए कैसे अपनी मेहका के लिए ये दोनों ही ये करने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे सूरज की बॉन्डिंग भी मेहका से बढ़ रही है और ईशा तो सूरज से प्यार करती ही है। ऐसे में फिर एक बार दोनों करीब आ गए हैं।

0: भाई हम तो यही कहेंगे कि सूरज और ईशा सारी गलत फहमियाँ भुला कर फिर से करीब आ जाएं। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: ये मेकअप वाइप्स तो कहते हैं हमारी स्किन से मेकअप के हर ट्रेस का सफाया, और यहाँ हमारी बोरियत का सफाया करती है ये कहानी जिसका नाम है लक्ष्मी निवास। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस परिवार के पास, क्योंकि फिर से कहानी में आया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जो लेकर आ रहा है हमारे लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट। तो चलिए फिर पता कर आते हैं ऐसा क्या हो रहा है इस कहानी में। आज लेकर चलते हैं आपको लक्ष्मी निवास के सेट पर।
0: को मिला माता रानी का इशारा।
2: माता रानी, हम आपका इशारा समझ गए। क्यों मुझे बोला जी, रानिया जी को मिला।
0: राधिका की कश्मकश।

0: राधिका, वीर और नई मुसीबत। जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में भाई वीर के माता पिता और माही के माता पिता दोनों ही सामूहिक विवाह में पहुंच चुके हैं वीर और माही की शादी करवाने के लिए। ऐसे में यहाँ पर सबसे पहले हुई माता रानी की महा आरती, जिसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ पर एक शख्स था जिसने माता रानी से अपने दिल की बात कही और अपनी मुराद पूरी होने के लिए इच्छा मांगी। जी हाँ, वीर ने माता रानी के आगे अपने दिल के दर्द को बताया कि किस तरीके से वो राधिका से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करता है। और तभी ही वीर को मिल जाता है माता रानी का इशारा, जिसे वो आशीर्वाद समझकर पहुंच जाता है राधिका के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए। जी हाँ, माता रानी ने इशारे में वीर के हाथों में मंगलसूत्र गिरा दिया।
1: माता रानी, हम आपका इशारा समझे कि मुझे मंगलसूत्र राधिका जी को पहना, और अब ऐसा ही होगा माता रानी, ऐसा ही होगा।
2: अरे यार, थर्ड एपिसोड से एक ही कहानी चल रही है। वीर परेशान है, राधिका जी राधिका जी राधिका जी। अभी यहाँ पे घर वालों ने, जैसे गजेंद्र, हमारे जो फादर है गजेंद्र जी और कैलाश जी जो उनके मित्र हैं, दोनों पार्टियों ने अलायंस कर ली है। अलायंस किस तौर पे कि वीर और माही की शादी करा देते हैं। तो सामूहिक विवाह का आयोजन किया है जिसमें वो चाहते हैं वीर और माही की भी शादी हो जाए। तो वही पूरा सीन है, वही पूरा ड्रामा है। एंड एक बड़ा ट्विस्ट है सीन में जो आप लोग को देख के बड़ा मजा आएगा, मैं बता नहीं सकता अभी, बट इट्स अमेजिंग। द सीन इज गोइंग ग्रेट, द सीन इज ऑसम। हम परफॉर्म करने बड़ा मजा आ रहा है, आप लोग को देखने में और मजा आएगा।
0: तो वहीं दूसरी ओर अपने गले में मंगलसूत्र देखकर राधिका बेहद परेशान है। अपनी माँ से वो इस बात को कहना भी चाहती है, लेकिन यहाँ पर महा आरती हो रही है, जिसके चलते देखिए कैसे राधिका घबराई हुई है। भाई उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ये हादसा कब और कैसे हुआ, और आखिरकार किसने उसे मंगलसूत्र पहनाया। और वीर ये सब देखकर काफी टेंशन में है कि वो कैसे राधिका के सामने इतनी बड़ी बात का खुलासा करे। तभी तो देखिए, जैसे ही राधिका अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, भाई वो भी वहाँ से चली जाती है। तभी माता रानी के आगे आकर राधिका अपने दिल का दर्द बयान करती है।
2: तो क्या है, चलिए खोल देते हैं सस्पेंस। वीर ने माता रानी के आशीर्वाद से बड़ा ड्रामेटिक सा सीक्वेंस है वो, कि वीर के हाथ पे मंगलसूत्र आता है, जब वो माता रानी के दर्शन उनसे रिक्वेस्ट करने जाता है, उनके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करने जाता है। तो मंगलसूत्र मिलता है, उसे साइन मिलता है कि ये मैं राधिका जी को पहना दूंगा। और राधिका जी कहीं पे पूजा कर रही थी, जब कर रही थी, वीर पीछे से जाके उनको मंगलसूत्र पहना देता है। यहाँ राधिका जी परेशान है कि मंगलसूत्र कौन पहना गया, यहाँ पे वीर है कि यार अब मैंने पहना तो दिया है लेकिन इनको बताऊं कैसे। सो पूरी अमेजिंग सी खिचड़ी बन गई है, स्वाद बहुत बढ़िया है, आपको चख के बड़ा मजा आएगा।
0: भाई वीर दुल्हा तो बन गए लेकिन वो राधिका के दुल्हा बनना चाहते थे, ऐसे में आइए देखते हैं उनका लुक और जानते हैं कि वो कितने एक्साइटेड है इस सीन को शूट करने के लिए।
2: The look is nice, it's fine. The scene is amazing. माहौल बड़ा अमेजिंग है, हम ब्रजेश्वरी आए हुए हैं और आप मौसम देख सकते हैं। सो अभी दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी, बट माता रानी की दया से थोड़ी हवाएं मिल गई तो थोड़ा सुकून मिला। अरे बिल्कुल आउटडोर है, बिकॉज हमारे सेट से इट्स लाइक 2 आवर्स अवे और काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंज भी लग रहा है क्योंकि हर चीज़ हम सेट पर ही करते थे। एज एन एक्टर थोड़ा वो सिनेरियो बदला मिलता है तो मज़ा भी आता है। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट और मौसम तो कमाल का हो रहा है तो मूड पूरा बन रहा है और शूट करने का।
0: ऐसे में अब देखना होगा कि क्या राधिका के सामने वीर की सच्चाई आ पाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: गुरु और रूहानी आज तो हम क्लेंसिंग वाइब्स के आसपास ही कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मेरे पास कोई ऐसा मैजिक वाइप होता जैसे मैं आपके पास भिजवा देती और आप उसे यूं वाइप करके कर लेते अपनी जिंदगी से हर मुसीबत का सफाया, काश। बट वो क्या है ना कि जैसे ही चैलेंजेस आते हैं ना हमारे सामने जिंदगी में, हम अपना ही एक अलग रूप देखते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमें डिजाइन किया गया है। अगर जिंदगी होती रोजाना एक जैसी तो ऑब्वियसली हम भी हो जाते डल एंड बोरिंग। लेकर चलते हैं आप सबको इस चुनौती के सेट पर।
0: के लिए रूहानी का सरप्राइज। देखिए गुरु की नफरतें।
4: गुरु रुको, गुरु रुको प्लीज। इतनी सी कोशिश की तरह तुमने उसे भी नहीं अपनाया। गुरु रुको, गुरु प्लीज।
0: सरप्राइज को किया तहस नहस। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में देखने को मिल रही है रूहानी के लिए गुरु की नफरतें, जहां पर रूहानी हर मुमकिन कोशिश कर रही है गुरु को मनाने की। और आज इस खास मौके के दिन रूहानी ने ये कमरा देखिए कैसे सजाया है। यहां पर लाइट्स हैं और ये पर्चे जिस पर लिखा है साथी रे, वही नाम जो रूहानी ने गुरु और अपनी दोस्ती को दिया था। और यही बात कुछ इस तरह रूहानी गुरु को बताना चाहती है, लेकिन गुरु रूहानी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं।

0: देखिए कैसे वो ये सारी सजावट देखकर गुस्सा हो गया और ऐसे में एक एक कर सब कुछ तहस नहस करने लगा और रूहानी उसे रोकती रही, लेकिन गुरु रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुस्से में है, उसे तो बस रूहानी से नफरत हो गई है। गलत फहमियों के चलते चाहे रूहानी कितना भी मना ले वो नहीं मानने वाला है। तभी तो देखिए कैसे गुस्से में उसने रूहानी का हाथ पकड़ लिया है और उसे अपने कमरे से निकाल दिया है। तो भाई इनकी नफरतें तो जारी है, अब देखना होगा कि रूहानी गुरु को मनाने में कब और कैसे कामयाब होती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: इन क्लेंजिंग वाइप्स से तो मेकअप हो जाता है यूं मिनटों में हमारी स्किन से दूर। हाउ रॉकिंग ना। लेकिन अगर आप यूज करेंगे डेली अल्कोहल बेस्ड क्लेंजर्स तो डेफिनेटली हो जाएगा ये आपकी स्किन के लिए शॉकिंग। कुछ ऐसे ही रॉकिंग, कुछ ऐसे ही शॉकिंग है हमारे पास। ये सारी खबरें चलने ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारा ये अगला सेगमेंट जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: है बॉलीवुड ओटीटी और टेलीविजन की शॉकिंग और शॉकिंग खबरें। शॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं पूजा बैनर्जी के बेबी शावर की। देख लीजिए बेबी शावर से सामने आया है ये वीडियो।

आज हो रहा है स्प्लिट्सविला का मोस्ट अवेटेड ग्रैंड फिनाले शूट, और ऐसे में सास बहू और बेटियां आपके लिए लेकर आए हैं इन कलाकारों की खास झलक। पैसारा बेदी निहारिका साथ साथ नजर आए। तो उसके अलावा सौंदर्या शेट्टी, दीप्तांशु साइनी, अस्मिता, और कई और कलाकार फिनाले के शूट पर पहुंचे।

सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे हैं शाइनी दोषी और अभिषेक कुमार। भाई आज उनकी बालाजी टेलीफिल्म्स की सीरीज इश्क दम इडली रसम का फर्स्ट एपिसोड आने वाला है। ऐसे में वो बप्पा से अपने दिल की मनोकामनाएं मांगने पहुंचे हैं।

हाल ही में प्रिटी जिंटा अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंची, जहां उन्होंने लिया बाबा जी का आशीर्वाद, साथ ही साथ गुरुद्वारे में लोगों की सेवा भी की।

कल बीती शाम चेन्नई में ओथ सेरेमनी रखी गई, जहां विजय सीएम की शपथ लेने वाले थे। ऐसे में वहां खास मेहमान बनकर पहुंची त्रिशा।

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बहुत जल्द होस्ट करने वाली हैं C5 का न्यू कुकिंग शो, जिसका नाम है माँ है ना। इसका पहला पोस्टर सामने आया है

वही इन दिनों यश फिल्म सिटी में रामायण की शूटिंग कर रहे हैं, जहां मिथिला का बड़ा सा राज्य बनाया गया है, जहां पर शूट किया जाएगा सीता का स्वयंवर सीक्वेंस, और इसके लिए बहुत जल्द साई पल्लवी भी शूट शुरू करेंगी। सिद्धार्थ गुप्ता की हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है कृष्णा वत्रम, और इसके बाद वो पहुंचे वृंदावन मुलाकात करने प्रेमानंद महाराज से।

0: तीन बॉल में 12 रन तो बनने से रहे।
1: बैट्समैन कौन है पता है ना? जूनियर सचिन।
2: देख लीजिए कृष्णा और चिट्टी का ये ट्रेलर जो दिखाएगा आपको इस कहानी की रोलर कोस्टर राइड।
3: जो मेरे दिल में रहते हैं वैसे ही कृष्ण बाबा के गॉड है, जो वृंदावन में रहते हैं।
4: मेरा तो मन करता है मैं गाना के संग वहीं रह जाऊं।
5: गाना को भी साथ में ले आते।
3: ये मैच खेलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ हार तय है।
4: मेरे लिए ऐसा ही तो अपने सचिन के लिए खेलने।
3: आप ही खेलो।
6: सभी मुझे जूनियर सचिन बुलाते हैं। हाँ मैं हूँ जूनियर सचिन।
2: कुणाल ठाकुर ने हाल ही में रिलीज हुई सीरीज ग्लोरी के कुछ बिहाइंड द सीन नजारे शेयर किए हैं। आइए डालते हैं इन पर एक नजर।

0: तो कैसी लगी आपको ये स्किन केयर टिप्स? आप इन्हें जरूर आजमाइएगा और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां एक बार फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज। आप रखिए अपना अच्छे से ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org.
1: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
3: Thank God I get to wake
2: and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: Sage University, transforming your passion into profession.
8: वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुआ सोमनाथ मंदिर का भव्य ध्वजारोहण और कुंभाभिषेक। सोमनाथ के इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से किया गया कुंभाभिषेक, फूलों से मंदिर का भव्य श्रृंगार। सोमनाथ अमृत महोत्सव में देखने को मिला भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण टीम का भव्य एयर शो। आसमान में लिखा ओम, सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से की गई सोमनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा। सोमनाथ अमृत महोत्सव के साक्षी बने प्रधानमंत्री, विधि विधान के साथ की महादेव की महापूजा। भक्तों में दिखा गजब का उत्साह, मंदिर पुनर्निर्माण पर आधारित प्रदर्शनी का भी हुआ अवलोकन। महापूजा से पहले प्रधानमंत्री ने निकाला भव्य रोड शो, फूल बरसाकर हुआ पीएम का स्वागत, सड़कों पर दिखी सांस्कृतिक भव्य तस्वीर। आज शाम सरदार धाम पीएम को पाटीदार रत्न अवार्ड से करेगा सम्मानित। भोपाल बना ग्रीन टेक का नया चेहरा, लॉन्च हुआ एलगी ट्री, शहर में ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मिलेगी सहायता। एक एलगी ट्री में है 25 पेड़ों के बराबर हवा साफ करने की क्षमता।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
8: भव्य दिव्य और भगवामय हुआ प्रभास पाटन का हर कोना। सोमनाथ अमृत महोत्सव पर बिखरी सांस्कृतिक विरासत की छटा। पीएम मोदी का हेलीपैड से लेकर मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो, डमरू की डुगडुग और परंपरागत वाद्य यंत्रों की नाद के बीच में निकली ये यात्रा। शंख और डमरू की गूंज के साथ किया गया पीएम मोदी का स्वागत, 100 कन्याओं ने कलश नृत्य किया।
9: प्रधानमंत्री की एक झलक पाने की
8: पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने लगाए जयकारे। रोड शो के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे साथ मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दुल्हन की तरह सजाया गया मंदिर परिसर। प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में किया गया रुद्राभिषेक। सूर्य किरण की टीम ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर की पुष्प वर्षा, आसमान में किया शौर्य संतुलन का बेजोड़ प्रदर्शन। सोमनाथ मंदिर पर फहराई गई धर्म ध्वजा, भव्य समारोह में मंदिर के इतिहास को किया याद। सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार कुंभाभिषेक 11 तीर्थों के पवित्र जल का हुआ इस्तेमाल। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में लगी एक विशेष प्रदर्शनी में लिया हिस्सा। सोमनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ी जानकारियों का किया संग्रह। पीएम मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में गौरवशाली इतिहास के प्रतीक की दी सौगात। स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया। सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। सोमनाथ मंदिर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का जिक्र किया। वडोदरा में शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी सरदार धाम का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को करेंगे संबोधित। वडोदरा में आज सरदार गौरव रत्न से सम्मानित होंगे पीएम। सामाजिक सुधार और राष्ट्र विकास में सराहनीय योगदान के लिए मिलेगा सम्मान। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली साल पूरे होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में की पूजा अर्चना। कई मंत्री भी साथ में रहे। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का जनसैलाब। भक्तों का आंकड़ा पहुंचा करीब 10.5 लाख। केदारनाथ धाम रिकॉर्ड तोड़ने के करीब अब तक सबसे ज्यादा 4,42,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में रविवार को 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। अब तक का आंकड़ा 2,68,000 के पार। यमुनोत्री धाम में कल 12,560 भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 1,68,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे दरबार। गंगोत्री धाम में 10 मई को करीब 12,000 भक्तों ने किए दर्शन। अभी तक 1,66,000 से ज्यादा भक्त पहुंच चुके हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती। भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती हुई। डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गुंजी थी। अयोध्या में शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने की पहल। बच्चों को सिखाया जा रहा संगीत। प्रसिद्ध कलाकार बच्चों को सिखा रहे संगीत। बड़ी संख्या में बच्चे भी ले रहे हिस्सा। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे सीएम योगी। विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। दिल्ली में वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भव्य अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष यहां पर पहुंचे। सेरेमनी में बिजनेस टाइकून डॉक्टर संजीव जुनेजा को मिला एक्सीलेंस इन ब्रांड बिल्डिंग एंड कंज्यूमर ट्रस्ट अवार्ड। पश्चिम एशिया संकट पर भारत

राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। हीट वेव और बाढ़ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, आपदा प्रबंधन पर कड़े निर्देश दिए। कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता को लेकर एक और बड़ी सफलता, खुले जंगल में दो मादा चीतों को आजाद किया। अफ्रीकी देश बोत्सवानिया से भारत लाए गए थे दोनों चीते, भारत में चीतों की वापसी को लेकर बड़ी उपलब्धि। श्योपुर में सीएम मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया, चीता सफारी, चीता अस्पताल, निगरानी केंद्र का निरीक्षण। मदर्स डे पर कूनो नेशनल पार्क की चीता माताओं पर बनी शॉर्ट मूवी हुई रिलीज, फिल्म में चीता मदर्स और उनके शावकों के संघर्ष को दिखाया। 3 साल में जन्मे 49 शावक, अब तक 57 हुई इनकी संख्या। जयपुर की 2 साल की नन्ही परी ने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को हैरान किया, अपनी अद्भुत याददाश्त से सुपर टैलेंटेड किड का खिताब अपने नाम किया। ऋषभ शर्मा ने 30 से ज्यादा संस्कृत के मंत्र और श्लोक किए याद, 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स को पहचानने की प्रतिभा। रामबन जिले में महाराणा प्रताप रन का हुआ आयोजन, युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना मकसद रहा। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया मामा कोचिंग, फ्री होगी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। उधमपुर में नशे के खिलाफ प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान, महिलाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया। भोपाल बना ग्रीन टेक का नया चेहरा, लॉन्च हुआ एलगी ट्री। शहरों में ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मिलेगी मदद, एक एलगी ट्री में है 25 पेड़ों के बराबर कार्बन अवशोषण की क्षमता। इस तकनीक को विकसित करने में लगे करीब 2 साल, 50 से ज्यादा विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और इंजीनियर्स की टीम ने काम किया। कोडरमा के अंशुमन ने यूपीएससी में किया कमाल, यूपीएससी आईएफएस परीक्षा में 2रा स्थान प्राप्त किया। पुष्कर के कड़ेल गांव पहुंचे सीएम भजन लाल, किसानों के साथ की बातचीत। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, 194 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास किया। मुंबई को मिला 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया उद्घाटन। मुंबई में अंबेडकर की 135वीं जयंती पर ड्रोन शो का आयोजन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगांठ पर शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुए। बगहा में ग्रामीणों ने बचाई अजगर से सीआर की जान, जंगल की ओर अजगर को लोगों ने छोड़ा। स्विट्जरलैंड में क्वींस फाइट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे। पारंपरिक हेरन्स गायों ने एक दूसरे के लिए की जोर आजमाइश, सिर भिड़ाकर एक दूसरे को पीछे ढकेलते हुए नजर आए। करीब 40 मिनट तक चलती है प्रतियोगिता, विजेता को मिलता है क्वीन ऑफ द क्वींस का खिताब। 1920 के दशक में शुरू हुई थी खेल की ये परंपरा, अल्पाइन संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है ये प्रतियोगिता। के साल भर किसान गायों को करते हैं तैयार, मेहनत धैर्य पशुओं से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है ये खेल। स्लोवेनिया में अर्काडियन महोत्सव की धूम, एक साथ सैकड़ों कलाकारों ने बचाया अर्काडियन वाद्य यंत्र।

0: लेक ब्लेड के किनारे हुए 450 कलाकारों ने पेश की लोकधुन, संगीतमय हुआ पूरा माहौल। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 2026 यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का उद्घाटन, दुनिया भर से करीब 15 करोड़ दर्शक देखने के लिए आए। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के 35 प्रतिनिधिमंडलों ने हिस्सा लिया, वियना के टाउन हॉल में समारोह का आयोजन हुआ। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट विश्व के सबसे ज्यादा देखे जाने वाली प्रतियोगिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं अरबों व्यूज।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
2: with artists like James Bay,
3: come on, let it go.
1: Norah Jones,
4: my heart is drained.
1: Daniel Caesar,
5: we both know how,
1: and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House. Or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
7: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान, जब हो मन में विश्वास का ध्यान, आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूँ। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद, यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: कौन सी राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनको मेहनत में सफलता मिलती है? कौन सी राशि के लोग अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें तो उनके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है? अलग अलग राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सोमनाथ मंदिर का भव्य ध्वजारोहण, कुंभाभिषेक। सोमनाथ के इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से किया गया कुंभाभिषेक, फूलों से मंदिर का भव्य दिव्य श्रृंगार। सोमनाथ अमृत महोत्सव में देखने को मिला भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण टीम का एयर शो। आसमान में लिखा ओम, सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से की गई सोमनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा। सोमनाथ अमृत महोत्सव के साक्षी बने प्रधानमंत्री, विधि विधान के साथ की महादेव की महापूजा, भक्तों में दिखा भारी उत्साह। मंदिर पुनर्निर्माण पर आधारित प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। महापूजा से पहले पीएम ने निकाला भव्य रोड शो, फूल बरसाकर हुआ पीएम का स्वागत, सड़कों पर दिखी संस्कृति की भव्य तस्वीर। आज शाम सरदार धाम, प्रधानमंत्री को पाटीदार रत्न अवार्ड से करेगा सम्मानित। भोपाल बना ग्रीन टेक का नया चेहरा, लॉन्च हुआ एलगी ट्री, शहरों में ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मिलेगी सहायता। एक एलगी ट्री में है 25 पेड़ों के बराबर हवा साफ करने की क्षमता।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
12: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव, और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। कितना अच्छा हो अगर जीवन में कोई परेशानी ही ना हो, घर परिवार और आसपास का माहौल भी हमेशा खुशनुमा ही बना रहे। लेकिन आपके अनुकूल हालात हर समय तो नहीं हो सकते, क्योंकि कुंडली के ग्रहों की बनती बिगड़ती चाल इंसानी जिंदगी में उतार चढ़ाव बनाए रखती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ मन मुताबिक हो, तो इसके लिए कुंडली के सभी नवग्रहों को बलवान बनाना होगा। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं उन दिव्य मंत्रों के बारे में जो नवग्रहों को आपके अनुकूल बना देंगे। गौर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: नौ ग्रहों के नौ मंत्र हैं परम शक्तिशाली। संकटों से ये मंत्र करेंगे आपकी रखवाली। नौ ग्रहों के नौ मंत्र हैं अति प्रभावशाली। ग्रहों की कृपा से जीवन में आएगी खुशहाली। ज्योतिष के जानकार मानते हैं अगर कुंडली में मौजूद ग्रहों की दशा और दिशा बेहतर हो तो सारे कार्य निष्कंटक पूर्ण हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली के ग्रह मजबूत हो और ग्रहों में कोई दोष न हो तो इसका सकारात्मक और असरदार प्रभाव हमारी और आपकी दिनचर्या में पड़ता है। माना जाता है कि खुशियाँ, धन धान्य, अपार सफलता ये सब जीवन में तभी बरसता है जब कुंडली के ग्रह अनुकूल होते हैं। ज्योतिष के जानकार तो यही मानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मौजूद किसी भी ग्रह में कोई दोष है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता ही है।
1: मंत्रों के संबंध में हमारे यहाँ अनेक प्रकार के मंत्र प्रत्येक ग्रह के लिए बताए गए हैं, जैसे कुछ वैदिक मंत्र हैं, कुछ तांत्रिक मंत्र हैं, कुछ पौराणिक मंत्र हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रयोग की दृष्टि से, अलग अलग उनके उपयोग की दृष्टि से अलग अलग मंत्रों की पूजा की जाती है।
0: आज हम अपनी खास पेशकश में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको भी किसी ग्रह ने परेशान कर रखा है तो संबंधित ग्रह के जुड़े मंत्रों का जाप आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं नौ ग्रहों को मजबूत करने के सबसे प्रभावशाली और कल्याणकारी मंत्र। आइए जानते हैं सबसे पहले सूर्य को बलवान बनाने का मंत्र।
1: ग्रहों के बीज मंत्र होते हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बता दें, सूर्य के लिए ओम ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः, इसी प्रकार अन्य नवग्रहों के भी मंत्र हैं। और वैदिक मंत्र जैसे है, सूर्य का ही अगर हम लें तो ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन अमृतम मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्न, यह वैदिक मंत्र है।
0: नौ ग्रहों के नौ मंत्र। सूर्य, ये ग्रहों का राजा और व्यक्ति की आत्मा है। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय योग और हड्डियों की समस्या होती है। सूर्य को मजबूत बनाए रखने और कृपा पाने के लिए प्रातः या दोपहर में सूर्य के मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। मंत्र का जाप रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से करें। नवग्रहों में चंद्रमा को मन, माता, भावना, शीतलता और जल तत्व का कारक माना जाता है। माना जाता है कि चंद्रमा के बिना कोई भी गणना असंभव है। माना जाता है कि चंद्रमा बहुत जल्दी राशि बदलकर मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और भावनाओं को तेजी से प्रभावित कर सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि चंद्रमा के किन मंत्रों का जाप आपके लिए लाभदायी रहने वाला है।
1: देखिए, ग्रहों को बल के लिए जो है, सभी ग्रहों के जो मंत्र है, चाहे वो वैदिक हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे अन्य पौराणिक मंत्र है, उनके द्वारा ग्रहों को बल प्राप्त होता है। तो इनमें से व्यक्ति अपने सुविधा के अनुसार किसी भी एक मंत्र का चयन करके जो है उसको ग्रहों को बली कर सकता है। ओम चंग चंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है।
0: चंद्रमा के कमजोर होने पर मानसिक रोग और अस्थमा की समस्या होती है। चंद्रमा में दोष हो तो रक्त की समस्याएं काफी होती है। रात को मोती या शंख की माला से चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। मंत्र जाप मोती या शंख की माला से करें। नवग्रहों में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और इच्छा शक्ति का कारक माना जाता है, जो इसे अत्यंत खास और प्रभावशाली बनाता है। ज्योतिष में इसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जो जीवन में संघर्ष करने, नेतृत्व करने का गुण प्रदान करता है। जीवन में मंगल का बलवान होना क्यों जरूरी है, तो आइए जानते हैं जीवन को मंगलमय बनाने वाले मंगल मंत्र के बारे में।
1: मंगल के लिए ओम कुं कुजाय नमः यह मंत्र है, और जो मंगल का स्त्रोत्र है उस स्त्रोत्र का पाठ करने से भी मंगल बली होगा। इसी प्रकार से बाकी नवग्रहों के भी वैदिक मंत्र है, तो इन मंत्रों के माध्यम से हम ग्रहों की उपासना करते हैं।
0: नौ ग्रहों के नौ मंत्र। मंगल ये ग्रहों का सेनापति और व्यक्ति का साहस है। मंगल के कमजोर होने पर भय, संपत्ति, दुर्घटना हो सकती है। कारावास और रिश्तों की समस्या मंगल से ही होती है। मंगल की मजबूती के लिए दोपहर या प्रातः काल मंगल के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम अंग अंगा काया नमः। मंत्र जाप मूंगे या लाल चंदन की माला से करें। ज्योतिष मानते हैं कि मंगल दोष, अंगारक योग जैसी समस्याओं का कारक मंगल ग्रह ही है, तो मंगल की कृपा पाने के लिए मंगल के मंत्रों का नियम पूर्वक जाप करें। अब तक हम आपको नवग्रहों में तीन ग्रहों के महामंत्र बता चुके हैं। आगे हम आपको बताएंगे बाकी छह ग्रहों के महामंत्रों की महिमा। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: कहते हैं अगर कुंडली के ग्रह इंसान के अनुकूल हो तो जीवन में अपार खुशियां और संपन्नता आती है। इसलिए हर पूजा उपासना और तपस्या से कहीं जरूरी है कुंडली के ग्रहों का बलवान और शुभ फलदायी होना। अब देखिए कुंडली के बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को बलवान बनाने के महामंत्र।

0: कमजोर ग्रहों को बलवान करते हैं मंत्र। जीवन की बाधाओं का नाश करते हैं ये मंत्र। अगर आपके जीवन में भी चल रहा है संकटों से युद्ध, तो कृपा बरसाएंगे बलवान शुक्र, शनि और बुध। ज्योतिषी मानते हैं कि बुध की कृपा से आप बनेंगे बुद्धिमान। शुक्र की कृपा से बरसेगी संपन्नता, आप बनेंगे धनवान। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जैसी ग्रह दिशा वैसी जीवन दिशा। माना जाता है कि आपकी कुंडली ही है जो आपके जीवन में घटने वाली अच्छी बुरी घटनाओं से जुड़ी होती है। ज्योतिष में माना गया है कि आपकी कुंडली का कोई ग्रह आपको बाधा दे रहा है, या फिर किसी ग्रह विशेष के प्रभाव से आप परेशान हैं, तो मंत्रों की शक्ति से आप काफी हद तक अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आज हम अपनी इस खास पेशकश में जान रहे हैं नवग्रहों की शुभता पाने के उपाय, जो बरस सकती है इन ग्रहों के महामंत्रों से। नवग्रह में बुध को सबसे बुद्धिमान, राजकुमार और ज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है। ये बुद्धि, वाणी, व्यापार, संवाद और त्वचा का स्वामी है। अगर आपको बुध ग्रह से संबंधित परेशानी आ रही है, तो आइए आपको बुध से लाभ पाने का कारगर मंत्र बताते हैं।
1: अभी जो नवग्रहों के हमने आपको मंत्र बताए हैं, उनमें प्रत्येक मंत्र प्रत्येक ग्रह को बलि करने के लिए है। इस प्रकार से जो है, आप उन मंत्रों के माध्यम से नवग्रहों को बलि कर सकते हैं। बुध के लिए ओम बुंग बुधाय नमः। इस प्रकार से नवग्रहों के लिए यह तंत्र सारोक्त सबसे सरल सूक्ष्म मंत्र है।
0: ग्रहों का राजकुमार है बुध, और व्यक्ति की वाणी और बुद्धि है। बुध के कमजोर होने पर बुद्धि, कान, नाक, गला, त्वचा और वाणी की समस्या होती है। प्रातः काल बुध के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम भू बुधाय नमः। मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से करें। नवग्रह में बृहस्पति को सबसे शुभ और सात्विक ग्रह माना जाता है, जो ज्ञान, भाग्य, धन, संतान के कारक है। देवगुरु के रूप में ये आकाश तत्व के स्वामी है, और कुंडली में विद्या, उच्च शिक्षा और बड़े भाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु का अनुकूल होना शिक्षा और करियर में सफलता दिलाता है। अगर आपको बृहस्पति से संबंधित कोई परेशानी है, तो चलिए जान लेते हैं बृहस्पति को मजबूत बनाने का मंत्र।
1: बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और चूंकि बृहस्पति सदाचार के हैं, देवगुरु हैं, तो व्यक्ति के सदाचारी रहने से, व्यक्ति के सत्य का, धर्म का पालन करने से बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
0: बृहस्पति ग्रहों का गुरु और मंत्री है, इसी से व्यक्ति का धर्म और सात्विकता है। बृहस्पति के कमजोर होने पर मोटापा, अहंकार और पेट की समस्या होती है। प्रातः काल बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम भ्रम बृहस्पति नमः। मंत्र जाप हल्दी या रुद्राक्ष की माला से करें। माना जाता है कि शुक्र को सुख, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। शुक्र एक शुभ ग्रह है, जो विवाह, कला, धन और विलासिता पूर्ण जीवन को नियंत्रित करता है। शुक्र अगर कुंडली में कमजोर हो, तो धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों में कमी आ जाती है। अगर आपकी कुंडली का शुक्र कमजोर है, तो आप शुक्र के किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चलिए जानते हैं।
1: शुक्र के लिए ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र है। इस मंत्र से जाप करने से शुक्र बलि होंगे, और शुक्र को बलि करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में जो है इत्र इत्यादि का प्रयोग करने से भी शुक्र बलि होता है।
0: ये ग्रहों का मंत्री है, व्यक्ति के सुख के पीछे यही ग्रह होता है। अगर शुक्र कमजोर हो, तो पारिवारिक और किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता। शुक्र की मजबूती के लिए सुबह या रात में शुक्र के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम शुम शुक्राय नमः। मंत्र जाप स्वस्तिक की या सफेद चंदन की माला से करें। ग्रहों में शनि को न्यायाधीश कहा गया है। शनि का प्रभाव इतना व्यापक है कि शनि को अनुकूल बनाना बेहद जरूरी है। शनि सूर्य पुत्र और कर्म फल दाता है, जो अनुशासन, न्याय, आयु और विलंब के कारक है, और सबसे धीमी गति से एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक चलने वाले ग्रह हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि पीड़ा दे रहा हो तो किन मंत्रों के जाप से आप शनि को कर सकते हैं प्रसन्न।
1: ओम शं शनैश्चराय नमः, यह शनि का मंत्र है। इसका जप करने से शनि प्रसन्न होते हैं और दशरथ कृत जो शनि स्त्रोत्र है वह भी पाठ करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है।
0: ग्रहों का सेवक है, व्यक्ति के कर्म का फल प्रदान करता है। अगर शनि कमजोर हो तो व्यक्ति को रोजगार की समस्या होती है, हर कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। शनि मंत्र का जाप संध्या समय में करें। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से करें। तो आप भी ज्योतिष में बताए इन महामंत्रों को अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे राहु केतु को मजबूत बनाने का मंत्र।
2: हम बात कर रहे हैं कुंडली के सभी नव ग्रहों से शुभ फल पाने के दिव्य मंत्रों के बारे में। अब बात करते हैं राहु और केतु किन मंत्रों के जाप से प्रसन्न होकर देंगे आपको वरदान। अब देखिए वो दिव्य मंत्र जो कष्ट पहुंचाने वाले ग्रहों को भी आपके अनुकूल बना देंगे।

0: अगर आपकी कुंडली में है राहु केतु की छाया, तो ज्योतिष के उपायों में समाधान है समाया। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। राहु और केतु व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। माना जाता है कि राहु केतु अगर बुरे प्रभाव दें, तो मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान हो सकता है।
1: राहु केतु के लिए, राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः और केतु के लिए ओम केंग केतवे नमः, यह इन मंत्रों का जब जप करेंगे तो उससे व्यक्ति को लाभ।
0: तो अगर आप भी कुंडली में राहु केतु से जुड़ी बाधा का सामना कर रहे हैं, तो ज्योतिष में बताए ये उपाय और मंत्र आपके लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। कुष्ठ रोगियों की सेवा और दवाओं का दान करें, रोज स्नान करें, सुबह खाली पेट तुलसी के दो पत्ते खाएं, सप्ताह में एक दिन धर्म स्थान या मंदिर जरूर जाएं, जूते चप्पल साफ रखें, राहु के मंत्र का जाप रात्रि में करें। मंत्र है ओम रा राहवे नमः। मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से करें। केतु के मन्नत का जाप रात्रि में करें। मंत्र है ओम के केतुवे नमः। मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें। अभी आपने जाने ज्योतिष में बताए नवग्रह के महामंत्रों की महिमा। अगर आपको नवग्रहों के महामंत्र कठिन लगते हो या फिर किसी कारणवश आप इन नियमों का जाप नहीं कर पा रहे हो, तो भी हम आपको एक छोटा सा महा उपाय बताते हैं, जिससे निश्चित ही आप पर बरसेगी ग्रहों की कृपा। महा उपाय से दूर करें नवग्रह दोष। भगवान विष्णु की आराधना करें। पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से 11 माला जप करें। सोमवार को सफेद कपड़े में मिश्री बांधकर जल में प्रवाहित करें। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का रोज पाठ करें। घर में नीम का पौधा लगाएं। देवी के सामने अखंड घी का दीपक जलाएं। माँ दुर्गा की आराधना करें। घर की पूर्व दिशा में लाल झंडा लगाएं। बहते पानी में बादाम तेल नारियल प्रवाहित करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी की आराधना करें। शुक्रवार के दिन मंदिर में कांसे के बर्तन का दान करें। भगवान भैरव की आराधना करें। नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। माँ सरस्वती के चरणों में 6 दिन लगातार नीले पुष्प की मालाएं चढ़ाएं। तांबे के बर्तन में गुड़ गेहूं भरकर बहते जल में प्रवाहित करें। भगवान गणेश की आराधना करें। दूध चावल मसूर की दाल का दान करें। तो इन उपायों को कर आप भी अपने कमजोर और खराब ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं, अपने जीवन को आसान और बेहतर बना सकते हैं।
2: तो हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: देखिए। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भव्य किले महलों के लिए मशहूर जयपुर इन दिनों एक अनोखे मिशन को लेकर सुर्खियों में है। ये मिशन है पिंक सिटी को साफ सुथरा और सुंदर रखने का। कहने को तो भले ही ये एक आम साफ सफाई अभियान हो, लेकिन अपने उद्देश्य और काम करने के तरीके से लेकर ये सफाई मिशन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है।

0: रात को जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में होती है, उस समय जयपुर की गलियों में स्वच्छता के ये प्रहरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। झाड़ू, मशीनें और डंपरों के साथ मोर्चा संभाले हुए सफाई कर्मी, जिनका बस एक ही मकसद है, शहर को साफ सुथरा बनाना। दरअसल जयपुर में इन दिनों एक मेगा क्लीनिनेस ड्राइव चलाई जा रही है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। इसके तहत आधी रात को जब सड़कें सुनसान होती हैं और शहर की तंग गलियां खाली, उसी दौरान ये सफाई अभियान शुरू होता है। इस मिशन की समीक्षा करने पूरी रात गश्त लगाते हैं जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा। जहां एक तरफ सफाई कर्मी सड़कों गलियों को साफ करने निकलते हैं, वहीं ये दोनों अफसर अपनी स्कूटी पर बैठकर निरीक्षण करते नजर आते हैं।
1: ये जो है ये एक अभियान है, ये एक शुरुआत है जो जयपुर शहर को हमने क्लीन और ग्रीन बनाने का, क्लीन करने के लिए हमने पूरा अपने ताकत लगा दी है और ये हमारी जो प्रयास है वो आगे भी रहेगी। अभियान के रूप से हमने सभी को एक्टिवेट कर दिया, ये रहेगा।
0: जिन तंग गलियों में सुबह की भीड़ भाड़ में कदम रखना भी मुश्किल हो, ऐसे में वहाँ सफाई के लिए वक्त और जगह निकालना एक टास्क है। यही वजह है कि आमतौर पर सुबह सवेरे होने वाली सफाई को रात के सन्नाटे और अंधेरे में अंजाम दिया जा रहा है।
2: ये छोटी छोटी गलियां आप देख रहे हो, अभी हमारे साथ भी थे आप लोग, उन गलियों में बड़ी मुश्किल से हमारी जो छोटी वाली ऊपर है वो जा पा रही है। तो दिन के टाइम पे तो इतना ट्रैफिक मूवमेंट रहता है वहाँ पे, आने जाने के वाले के लोगों का मूवमेंट रहता है कि दिन में उसको साफ करना संभव नहीं है। तो हमने सोचा कि ऐसी करीबन 2000 से ज़्यादा गलियाँ इस परकोटे के अंदर, तो हमने सोचा एक अभियान के रूप में लेके और इन सबको एक बार अच्छे से साफ करेंगे और उसके बाद हम जनता से ये उम्मीद करेंगे कि जनता इस सफाई को बनाए रखने में हमारी हेल्प करे और कचरा उन ऐसे इधर उधर नहीं डाल के निर्धारित स्थान पर डाले।
0: इस ऑपरेशन क्लीन स्वीप में करीब 2000 सफाई कर्मी पूरी रात मैदान में डटे हैं। डीएम और नगर निगम आयुक्त की निगरानी में चलाया जा रहा है सफाई अभियान। शहर भर को 36 बीट्स में बांटकर निगरानी रखी जा रही है। सभी सफाई टीमें नाइट जैकेट, टॉर्च, गम्बूट, डंपर, हुपर जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस है। आने वाले समय में सड़क पर कचरा फेंकने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए खिलाफ सख्त जुर्माना लगाने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन इस सफाई मिशन को सिर्फ अभियान तक सीमित न रखकर नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने की कोशिश में है। विशाल शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज़ टुडे।
3: बॉलीवुड की मसाला फिल्मों पर इन दिनों देखिए बॉक्स ऑफिस पर भक्ति की बयार चल पड़ी है। हाल ही में रिलीज फिल्म कृष्णा अवतारम पार्ट वन ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है, बल्कि फिल्म की फैन लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल हो गया है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म देखते ही पूरे प्रदेश में इसे टैक्स फ्री करने का ऐलान भी कर दिया है।
4: श्री कृष्ण की उस पूरी कथा को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके कुछ प्रसंगों को लेकर के वो अद्भुत है।
0: संस्कृति और आस्था की गहराइयों को छूती मैथोलॉजिकल फिल्म कृष्णा अवतारम पार्ट वन जमकर बॉक्स ऑफिस पर वाहवाही लूट रही है। देखने वाला हर दर्शक भगवान की लीलाओं से भाव विभोर है। वहीं दूसरी ओर फिल्म में इस्तेमाल हुए वीएफएक्स और तकनीक की भी तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म के प्रशंसकों में एक नाम और जुड़ा है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। सीएम योगी ने लोकभवन में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म का स्पेशल स्क्रीनिंग देखी और इस फिल्म से इतना प्रभावित नजर आए कि तारीफ किए बिना नहीं रह पाए।
4: श्री कृष्ण की उस पूरी कथा को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके कुछ प्रसंगों को लेकर के अद्भुत है, अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। इन सभी कलाकारों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं।
0: फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस दौरान सीएम ने फिल्म से जुड़े कलाकारों को सम्मानित भी किया। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके बाल्यकाल और मथुरा वृंदावन की लीलाओं को भव्य अंदाज में दर्शाया गया है। इस फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का मुख्य किरदार संस्कृति ने निभाया है, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नातिन है। फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। इसके अलावा सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण का किरदार निभाया है। फिल्म ने पहले दिन 42 लाख का कलेक्शन किया। दूसरे दिन फिल्म की कमाई 1.15 करोड़ रुपए रही। तीसरे दिन कलेक्शन 2.25 करोड़ रुपए रहा और लगातार सफलता के झंडे गाड़ते हुए चौथे दिन 3.01 करोड़ की कमाई हुई। यानी अब तक फिल्म का नेट कलेक्शन करीब 7 करोड़ पहुंच चुका है और अब ये साल की पहली सरप्राइज बॉलीवुड हिट बनने के लिए तैयार नजर आ रही है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब आपको दिखाते हैं खबर फूलों की, जो आपका मन मोह लेंगे। स्पेन के इस शहर में इन दिनों फूलों की नुमाइश चल रही है। कहां लगी है ये नुमाइश और क्या है इसकी खास बातें, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
5: बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये तस्वीरें स्पेन के गिरोना के उस मशहूर चर्च की सीढ़ियों की है, जिसे पूरी दुनिया मशहूर ड्रामा सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स में देख चुकी है। लेकिन इन दिनों चर्च की ये सीढ़ियां एक से बढ़कर एक फूलों से गुलजार है, क्योंकि यहां पर फिलहाल शानदार फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है। दूर दूर से सैलानी यहां पर फूलों और उनसे की गई सजावट का दीदार करने आ रहे हैं।
6: It's been lovely. Yeah, there's like when we got here, like there was automatically like so many flowers and everything, and it's just such a nice thing to see. And I'm glad we're here for this time of year.
5: यहाँ पर पिछले 70 साल से फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। हर साल तकरीबन 4 लाख लोग यहाँ फूलों की नुमाइश देखने आते हैं। लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी रहती है क्योंकि पहले वो ड्रामा सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स में इसे देख चुके हैं और अब अपने सामने इसे साक्षात देखने का मौका मिल रहा है।
6: It's pretty good actually so far because we only see the stairs and we know that these stairs are part of the Game of Thrones, so it's iconic I think, and we wanted to see it.
7: I like it. Like a lot of people, they are very into the tradition, I would say. And also there is a lot of flowers, diversity, variety, and combined with the tradition, I think it's a great combo.
5: ये फ्लावर फेस्टिवल यहाँ पर 17 मई तक चलेगा। आखिरी दिन यहाँ पर रात को भी लोगों को फूलों की खुशबू और रंगीन माहौल का एहसास करने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: गाइडेड बाय अ शेयर्ड पर्पस एंड अ स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
10: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
9: Learn more at emory.edu.
11: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण। इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक। फूलों से मंदिर का भव्य श्रृंगार। पर्व के मौके पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम का एयर शो। आसमान में लिखा ओम। सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने की विधि विधान से पूजा अर्चना। भोलेनाथ के भक्तों में दिखा उत्साह। प्रधानमंत्री ने मंदिर पुनर्निर्माण की प्रदर्शनी को भी देखा। राजधानी दिल्ली में सीआईआई वार्षिक व्यापार समिट का आयोजन। 100 साल का भारत एक विजन थीम पर चर्चा। साल 2047 तक देश के आर्थिक विकास के रोडमैप पर मंथन। आम के स्वाद के शौकीनों के लिए गुड न्यूज। यूपी के प्रयागराज मंडल में इस साल आमों की अच्छी पैदावार। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा और मल्लिका सहित कई वैरायटीज मौजूद।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोम से शिव तक इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल गुजरात में अरब सागर के किनारे बसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया और इसी ऐतिहासिक उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान मंदिर को विशेष फूलों से सजाया गया और इसी आयोजन के बीच सुबह सोमनाथ मंदिर में विशेष आरती भी हुई। साथ ही साथ सुबह दूसरी रस्में भी मंदिर में निभाई गई। इस दौरान माहौल पूरी तरह से भक्तिमय नजर आया। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि भारत के स्वाभिमान, आस्था और अदम्य चेतना का प्रतीक है। इसे अनेक बार तोड़ा गया लेकिन हर बार ये पहले से ज्यादा भव्य होकर खड़ा हुआ। यानी सोमनाथ स्वाभिमान के 75 साल क्या है? कुंभाभिषेक का 11 तीर्थ कनेक्शन। सोमनाथ के मस्तक पर कैसे हुई सूर्य किरण की पुष्प वर्षा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने इतिहासकार धर्मगुरु मौजूद रहेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी संजय शर्मा मौजूद होंगे। तो सोमनाथ में मौजूद प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। इसमें आधुनिक पुनर्निर्माण और लोकार्पण के 75 वर्ष पूरे होने का भव्य उत्सव मनाया गया। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद इसका उद्घाटन किया था और इसके ठीक 75 साल पूरे होने के अवसर पर आज पहली बार मंदिर के 90 मीटर ऊंचे मुख्य शिखर का अलौकिक कुंभाभिषेक किया गया। इसके लिए देश की 11 पवित्र नदियों और तीर्थों का जल लाया गया। इस महोत्सव के साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इस दौरान भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, असम के लोक नृत्य बिहू का प्रदर्शन हुआ, साथ ही साथ मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम भी हुआ, शिखर का भव्य कलश अभिषेक भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी श्री सोमनाथ को नमन किया, उनका पूजन अर्चन और वंदन किया।
1: केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं

0: ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है।
1: और इस भव्य उत्सव के आकर्षण का केंद्र रहा कुंभाभिषेक। पहली बार सोमनाथ मंदिर के शिखर का जलाभिषेक किया गया और इसके लिए 11 तीर्थों के जल को एक बड़े कलश में रखा गया, फिर इसे 90 मीटर लंबी क्रेन के जरिए मंदिर के शिखर तक पहुंचाया गया और प्रधानमंत्री के हाथों जलाभिषेक प्रक्रिया को संपन्न करवाया गया। यहाँ ये भी बताते चले कि सनातन संस्कृति में कुंभाभिषेक प्रक्रिया को बेहद महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके माध्यम से मंदिर के शिखर पर अभिमंत्रित जल चढ़ाकर वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से जागृत किया जाता है, उसका संचार किया जाता है। तो सोमनाथ मंदिर में आज विशेष कुंभाभिषेक किया गया। कुंभाभिषेक एक अत्यंत विशेष धार्मिक अनुष्ठान है जो किसी मंदिर या तीर्थ स्थल की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता है। कुंभाभिषेक दो शब्दों से मिलकर बना है, कुंभ यानी कलश या पवित्र पात्र और अभिषेक यानी कि पवित्र स्नान। जब विशेष वैदिक मंत्रों और विधियों से अभिमंत्रित जल को मंदिर के शिखर, कलश और देवी देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाया जाता है तो उसे कुंभाभिषेक कहा जाता है और यही कुंभाभिषेक आज सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव के दौरान किया गया। यह पहली बार भव्य शिखर पर कुंभाभिषेक हुआ है और इस मौके पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया गया। 90 मीटर ऊंचे शिखर पर यह अभिषेक हुआ। ये नजारा वाकई भव्य और दिव्य नजर आ रहा था।
2: पहली बार सोमनाथ मंदिर पे जो है कुंभाभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तों के द्वारा, क्योंकि वह सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन और अध्यक्ष हैं, 11 जगहों से लाया गया पवित्र जल जो है 11 तीर्थ धामों का यह पवित्र जल जो है मंदिर के शिखर पे उसका अभिषेक किया जा रहा है। कुंभाभिषेक आमतौर पर दक्षिण भारतीय मंदिरों में जो है वहां पे प्रथा है कि कुंभाभिषेक किया जाता है, वो तेल से भी होता है, पर यहाँ पे पहली बार ये कुंभाभिषेक किया जा रहा है। सोमनाथ में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और ये पहली बार ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि मंदिर नवनिर्माण के 75 साल हुए हैं और उसका अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए ये कुंभाभिषेक किया गया है। कुंभाभिषेक का विशेष महत्व का माना गया है। मंदिर शिखर पर जिस तरह से जल का अभिषेक किया जाता है उसमें 1000 लीटर ये जो कुंभ है उससे 1000 लीटर जल का जो है अभिषेक किया गया है, तो ये विशेषता आज की रही है कि किस तरह से ऐतिहासिक पल सोमनाथ के सांस्कृतिक विरासत के 75 साल होने पर, पुनर्निर्माण के 75 साल पर प्रधानमंत्री के हस्तों के द्वारा जो है कुंभाभिषेक किया गया है, इतिहास में इसको दर्ज किया जाएगा। एक संदेश जो है वो सभी लोगों को दिया जा रहा है कि यहाँ से सोमनाथ का सांस्कृतिक महत्व कितना है और ऐतिहासिक महत्व कितना है, आने वाली पीढ़ियां ये याद रखे, इसीलिए पहले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और उसके बाद सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सोमनाथ से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रजेश दोषी।
1: तो सोमनाथ अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम में वायुवीरों का भी पराक्रम नजर आया। जामनगर वायुसेना स्टेशन से सूर्य किरण टीम के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ये विमान चंद मिनटों में करीब 182 किलोमीटर की दूरी तय करके सोमनाथ पहुंचे। हॉक MK-132 विमानों ने अपने हवाई कर्तव्यों से सबका दिल जीत लिया और आस्था, भक्ति और स्वाभिमान के इस पर्व में शौर्य के रंग घोल दिए। इस दौरान चेतक हेलीकॉप्टर्स ने सोमनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा भी की।
2: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम जो है, जिसका आज ये एयर शो सूर्य किरण टीम का मंदिर के ठीक ऊपर ये जो है सूर्य किरण की टीम पहुंची है और वहां पे अब ये जो है वो कर्तव्य दिखाती हुई 75 साल के महत्व को रेखांकित करने का ये अवसर है। जिस तरह से इसकी सांस्कृतिक विरासत है सोमनाथ के सांस्कृतिक मूल्य के साथ आधुनिकता के रंग इस सूर्य किरण की टीम के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, लोग रोमांचित होकर इसको देख रहे हैं और प्रधानमंत्री भी इस गौरवपूर्ण क्षण के दौरान मंदिर में मौजूद रहे हैं।
1: और इससे पहले हेलीपैड से सोमनाथ धाम परिसर तक प्रधानमंत्री मोदी 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए पहुंचे। सड़क के दोनों ओर खड़े हजारों की संख्या में लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की, स्वागत किया उनका। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए शहर में कड़े

0: तो चलिए चर्चा हम इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर माखनलाल हिस्टोरियन मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माखनलाल जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। केवल धार्मिक नजरिए से नहीं बल्कि हम ऐतिहासिक नजरिए से भी देखें तो सोमनाथ का एक बहुत बड़ा महत्व है, हमारी अमर सभ्यता का ये उत्सव है।
1: जी, हमारे जीवन में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का भगवान शिव के स्वरूप में बहुत बड़ा महत्व है। और अगर आप पूरे भारतवर्ष में देखिए तो जितने शिव मंदिर मिलेंगे आपको शिवलिंग के साथ, उतने और किसी देवी देवता के नहीं हैं। इसीलिए शिव को देवताओं का देव, देवों का देव कहा जाता है, देवताओं के देवता हैं। और ये आप समझिए कि चंद्रदेव से जुड़ी कहानी को लेकर सोमनाथ का पहला स्थान है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में। और ज्योतिर्लिंगों की सिर्फ पूजा की ही बात नहीं होती हमारे देश में, हमारे देश में ज्योतिर्लिंगों का जुड़ाव, भगवान शंकर का जुड़ाव आराधना से तो है ही, शक्ति से भी है। और शिक्षा से भी है, संस्कृति से भी है। यही वजह है कि हमारे जीवन के लगभग सभी आयामों में भगवान शंकर को आप पाते हैं। और भगवान शंकर की दो शक्तिपीठियाँ कह लीजिए या वो ये कह लीजिए द्वादश ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का अत्यंत बहुत बड़ा महत्व है। और विदेशियों ने इसीलिए हमारी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए, हमको नीचा दिखाने के लिए न केवल सोमनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिरों को तोड़ा बल्कि भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि के मंदिरों को भी तोड़ा। तो यह सिर्फ लूटपाट का मसला नहीं था जैसा तमाम इतिहासकारों ने कहना चाहा। लूटते तो मंदिर की मूर्तियां क्यों तोड़ते, पैसा लूट ले जाइए, मंदिर तो नहीं है। और वास्तव में तो ये है, आधुनिक इतिहासकारों ने सबसे बड़ा जो झूठ गढ़ा वो ये गढ़ा कि लूटपाट के लिए किया। महमूद गजनी ने जब लूटा तो उससे पूछा कि उससे कहा कि पैसा ले जाओ, मूर्तियां मत तोड़ो। उसने कहा कि मैं बुत फरोश नहीं हूँ जो बुतों का मूर्तियों का सौदा करता है, मैं बुत शिकन हूँ, मूर्तियों को तोड़ता हूँ। और 1026 में, 1026 में पहली बार जब ये आया महमूद गजनी तोड़ने के लिए, तो आपको ये पता नहीं होगा किसने बुलाया उन्हें। महमूद गजनी ने गजनी को पत्र लिखा अजमेर के फौजा ने कि ये सही समय है आके हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मस्थल सोमनाथ को तोड़ो, उसे लूट कर ले जाओ। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 12वीं शताब्दी में तोड़ा, अंग्रेजों के जमाने में मुगलों के जमाने में कई बार तोड़ा गया और अंतिम बार ये तोड़ा गया औरंगजेब के द्वारा। हमें महारानी अहिल्याबाई होलकर का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: हिंदू धर्म में उतनी बड़ी विदुषी महिला नहीं मिली जिसने टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार करा है,
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो सोमनाथ रहा हो, काशी विश्वनाथ रहा हो, अन्य तमाम मंदिर,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन भग्नावशेष पड़े रहे, इनके बनाने की बात आज के ये स्वरूप में सोमनाथ मंदिर है। थोड़ा समय है, मैं 2 मिनट में बता दूंगा आपको
0: जी।
1: कि आजादी के बाद, आजादी मिली है पंद्रह अगस्त 1947 में, अक्टूबर में सरदार पटेल और एनवी गाडगिल घूम रहे थे वहीं सोमनाथ के पास। और तब सरदार पटेल ने एनवी गाडगिल को कहा, एनवी गाडगिल भी मिनिस्टर थे और एनवी गाडगिल आज के जमाने में जो CPWD मिनिस्टर कहलाता था वो मिनिस्ट्री होल्ड करते थे। उन्होंने कहा सोमनाथ का जीर्णोद्धार होना चाहिए
0: जी।
1: और शाम को एक जनसभा थी, उस जनसभा में सरदार पटेल ने अनाउंस कर दिया कि हम पुनः निर्माण करेंगे। जब दिल्ली लौट के आए, पंडित नेहरू बहुत नाराज हुए, कहा ये नहीं करना चाहिए, हमको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। सरदार पटेल ने कहा नहीं, मैंने निर्णय ले लिया है और ये बनेगा, इसका जीर्णोद्धार होगा। जब देखा नेहरू ने कि सरदार पटेल अटल हैं, निश्चित हैं कि मंदिर बनेगा, तो जरा सोचिए, उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करेगा, और एनवी गाडगिल से कहा कि आप इसका पूरा सर्वेक्षण कराइए, इसकी पूरी व्यवस्था कराइए जिससे मंदिर बन सके। जब गांधी जी को यह पता चला कि मंदिर सरकार बनवाएगी, सरकार के मंदिर बनवाने की कहने की वजह यह भी थी कि बहुत धन मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए, नई मस्जिदों के निर्माण के लिए भारत सरकार दे रही थी
0: जी।
1: मौलाना आजाद के अंडर में। लिहाजा गांधी जी ने कहा नहीं, अगर हिंदुओं को अब मंदिर चाहिए अपना, तो अपने पैसे से बनवाए, सरकार के पैसे से नहीं। उसी वक्त सरदार पटेल ने एक सोमनाथ ट्रस्ट स्थापित किया जिसके चेयरमैन थे के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, और उनकी संरक्षण में, उनकी देखभाल में इसकी शुरुआत हुई। काफी हद तक काम हुआ, लेकिन जरा देखिए नेहरू किस तरह से पलटी मारते हैं। आज के जमाने में होते तो पलटू राम कहते लोग, मैं हंसी मजाक में कह रहा हूं, क्या कहते भगवान जाने
0: जी।
1: कहते हैं कि जब सरदार पटेल की डेथ हुई 15 दिसंबर 1950 में, तो अभी 4 महीने भी नहीं बीता था, एक कैबिनेट मीटिंग में पंडित नेहरू ने कहा कि मुंशी से, आई डोंट लाइक योर इन्वॉल्वमेंट इनटू सोमनाथ टेम्पल। एक व्यक्ति जो कह रहा था कि मंदिर को हम पैसे से बनवाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर है, अब कहता है आई डोंट लाइक योर इन्वॉल्वमेंट इन
0: जी।
1: और उतना ही नहीं, एक सेकेंड, ये लाइन पूरी हो जान दीजिए उनकी, दिस इज हिंदू रिवाइवलिज्म, नेहरू कहते हैं। के एम मुंशी ने सिर्फ इतना कहा, आई विल गो बैक एंड राइट यू कंप्लीट लेटर। वो 10-12 पेज का लेटर है टाइप में, अवेलेबल है इंटरनेट पे, अवेलेबल है हमारी किताब है।
0: मैं लौटती हूँ सर आपके पास, बिल्कुल। यानी विदेशी आक्रांताओं ने नहीं, बल्कि हम कहें कि सियासत भी इसको लेकर बहुत हुई। लेकिन संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए स्वाभिमान उत्सव भी मनाया और अमृत उत्सव भी मनाया, आज की पीढ़ी क्या कुछ सीख सकती है इससे?
2: आज की पीढ़ी मुझे लगता है कि इतिहास से सीख सकती है और भविष्य की ओर देख सकती है। सबसे पहले तो ये सीख सकती है कि जब जब हम बटे हैं तब तक हम कटे हैं, जब जब हम आपस में मतभेद हुए हैं तब तब विधर्मियों ने, विदेशियों ने, आक्रांताओं ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, तो ये सीख सकती है। दूसरा ये सीख सकती है कि हमें अपनी सभ्यता पर, हमें अपनी संस्कृति पर, हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए, ना कि हीन भावना से ग्रस्त होना चाहिए, क्योंकि अभी मदर्स डे गया है, लोगों ने अपनी माँ की तस्वीरें लगाई हैं। लेकिन दरअसल होता क्या है कि दूसरे की मम्मियों को देखकर लोग अपनी मम्मियों से हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, कई बार ये होता है, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सभ्यता पर, हमें अपने ज्ञान पर, हमें अपने अध्यात्म पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, और नई पीढ़ी को हमें ये बताना चाहिए कि हमारा इतिहास कितना गर्वीला था, जिसमें अगर हम कहें तो जो हमसे टक्कर लेने वाले थे, जो हम पे हमला करने वाले थे, वो लोग आज कहाँ हैं किसी को पता नहीं। महमूद गजनवी और उसके संताने, उसकी संततियां कहाँ हैं, नोबडी नोज। लेकिन आज सोमनाथ गर्व के साथ वहीं खड़ा है, उसी जगह खड़ा है जिन 17 लोगों ने, जिन 17 बार 17 हमले किए, उन सारे लोगों के किसी के वंशज हैं, वो सुई धागा से और सिलाई करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं कलकत्ता की गलियों में। और जो महमूद गजनवी आया था उसके परिवार वाले कहाँ हैं कुछ पता नहीं, लेकिन सोमनाथ वहीं खड़ा है, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। तो हमें अपनी भावी पीढ़ी को ये बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत इतनी जबरदस्त है कि उसके लिए आपको अपने बाजू और अपने कंधे मजबूत करने पड़ेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए, तभी ये संस्कृति की अजस्र गंगा लगातार प्रवाहित होगी जैसे सोमनाथ में हो रही है।
0: बिल्कुल आचार्य राज मिश्रा जी, यहीं से बात को आगे बढ़ाइएगा। देखिए ये एक आध्यात्म की शक्ति भी हम कह सकते हैं। नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या खास है उस जगह में, पहला ज्योतिर्लिंग, चंद्र से कनेक्शन और आज जिस तरह का कार्यक्रम हो, ये केवल हमारे देशवासियों के लिए, हमारे स्वाभिमान का उत्सव नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आने वाली पीढ़ियों को भी इससे सीखना चाहिए, आने वाले हजार सालों के उत्सव को हम मना रहे हैं।
3: नवजोत जी, उस जगह पर क्या है, मतलब उस जगह पर अगर जाकर के महसूस किया जाए तो शिवत्व को महसूस किया जा सकता है और उस जगह पर जाकर के प्रेरणा, देखिए आध्यात्मिक ऊर्जा तो मिलेगी ही, परमात्मा का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, और जो कि श्रीरामचरितमानस में शिव के लिए कहा गया कि जब तब करें कुमारी तुम्हारी और भाभी उमेट सके त्रिपुरारी, देवादि देव महादेव भगवान शिव भाग्य को बदलने वाले है, इच्छित फल विनि शिव और आधे और लाही जोग यज्ञ जब साधे, बिना भगवान शंकर की कृपा के इच्छित फल को प्राप्त करना संभव नहीं है। जो कि चंद्रमा से कनेक्शन है, हम सब लोगों ने कई बार इस विषय पर चर्चा किया है कि चंद्रमा को उनके ससुर महाराज दक्ष ने जो है वो श्राप दे दिया था कि तुम्हें रोग हो जाएगा, कुष्ठ रोग का आशीर्वाद मिला और उन्होंने वहां पर बैठ करके देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का तप किया, क्योंकि जो उनकी 27 जो नक्षत्र है वो चंद्र की पत्नियां मानी जाती है, जिसमें उनका रोहिणी से विशेष प्रेम था, इसलिए उस पर जाकर के चंद्रमा जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्चस्थ हो जाते हैं, उनसे विशेष प्रेम होने के कारण बाकी पत्नियों ने जाकर के पिता से, जो बाकी पुत्रियां थी, पिता से दक्ष से शिकायत किया, दक्ष ने समझाने का प्रयास किया, चंद्र नहीं माने, चंद्र के नहीं मानने पर उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें रोग हो जाएगा। फिर वहां बैठ करके चंद्रमा ने प्रार्थना किया और उससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सबसे पहले जो पहला ज्योतिर्लिंग है, आप जब द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो स्तोत्र आता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम का श्री शैले मल्लिकार्जुनम, सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वहां से उसका नाम पड़ा। और क्योंकि वो चंद्र के भी भगवान हैं, वो चंद्र को धारण करने वाले भी हैं और चंद्र के रोग को दूर करने वाले हैं, इसलिए उनको विशेष स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन आज के युवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अगर एग्जाम में मार्क्स कम आ जाए जो एक्सपेक्ट करता है तो फिर वो टूट जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी में आ जाता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, एक दो प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो व्यक्ति एंजाइटी में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, इवन अगर सुसाइड की बात किया जाए तो बहुत लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। सोमनाथ मंदिर इस चीज का प्रतीक है कि आपको कोई बार बार परेशान कर सकता है, झुकाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यदि आपके अंदर विल पावर है, यदि आपकी सोच अच्छी है, यदि आप अपने पूरे अपने आत्मशक्ति को जागृत रखते हैं तो इस दुनिया में कोई भी आपको गिरा नहीं सकता है। और एक दिन आपका अमृत महोत्सव मनाने वाली परिस्थिति होगी, जिस प्रकार आज सोमनाथ मंदिर हम लोग देख रहे हैं कि जयंती पर की चमक रहा है, जिस प्रकार आज 11 तीर्थों से अभिषेक हो रहा है, उस प्रकार आप भी ऐसे बन जाएंगे कि आपको लोग प्रसन्नता से आपको प्रणाम करें, आपका सम्मान करें। तो ये युवा के लिए अगर देखा जाए नवजोत जी, तो एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है कि आपको झुकाया जा सकता है लेकिन आपको खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक आप स्वयं ना चाहें,
0: और झुकाने वाले खुद चाहे खत्म हो जाए। बिल्कुल। और आज हुए अनुष्ठानों के बारे में राजी आगे आपसे जानूंगी, मंत नवल किशोर जी भी हमारे साथ मौजूद है। मंत जी, सोमनाथ का इतिहास हमें बताता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बल्कि साझा संस्कारों, श्रद्धा और एकात्म भाव से जीवंत रहता है।
4: आगे से राजकुमार, देखिए भगवान शिव वैसे भी कल्याण के देवता है, शंकर सतनामा हो ये तो हृदय विश्रामा, शिव ही अपने आप में कल्याण के तत्व हैं। ऐसे भगवान शिव केवल संसारिक या भौतिक पृथ्वी नहीं करते, हमारे जीवन की रक्षा, जीवन में जो वासना रूपी आश्रय तत्व है उसको समाप्त करना हो और साधना के सात्विक तत्व को प्राप्त करना हो तो बिना भगवान शिव के कल्याण उपासना के बिना संभव नहीं हो सकता। और इसमें भी भगवान एक तो सोमनाथ है, जैसा भी कहा अन्य वक्ताओं ने, विद्वानों ने, के भगवान चंद्रदेव ने, चंद्रमा ने बनाए हैं और चंद्रमा मन का प्रतीक है। हमारे जीवन में जितने भी द्वंद है, जितनी आपाधाती है, जितनी विषमता है, उन सबके मूल में मन ही तो है। लोग कहते हैं मन नहीं लग रहा, मन ये कह रहा है, मन ये कह रहा है, मन को स्थित करना हो या मन को संसार से हटा के काम से हटा के राम में लगाना हो तो मुझे लगता है वहां सोमनाथ में जाकर के उपासना।
0: बिल्कुल मान जी, लौटती हूँ आपके पास, आपकी आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे, मैं लौटती हूँ। अपनी बात आप पूरी करना चाहेंगे मान जी? चलिए मान जी लौटती हूँ आपके पास। प्रोफेसर माखनलाल जी, अब वापस आप ही के पास आते हुए, देखिए सबकी बातें आपने सुनी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हमारी संस्कृति, संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, हमारे सनातन पर हमें गर्व करना चाहिए, क्योंकि यही आने वाली पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगा।
1: देखिए संजय जी ने बात कही बहुत मार्मिक और बहुत ही ज्यादा गंभीर होने के अलावा हमारे जीवन में आत्मसात करने वाली है। जीवन में दो चीजें जो संजय जी ने कही, हमारी अपनी अस्मिता, हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी संस्कृति, यही चीज़ें हमें पहचान देती हैं। और ये समझ लीजिए कि जितनी गहरी समय में नीचे गई हुई आपकी अस्मिता है, आपकी पहचान है, आप उतने ही मजबूत हैं। दुनिया में कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो उतना पुराना हो या आधा से भी कम हो। भारतवर्ष की संस्कृति 9000 साल पुरानी है, 7000 BC से लेके आज तक हमें अनवरत सारे प्रमाण हैं। अब भारतवर्ष के अलावा केवल एक देश ऐसा है, चीन, जिसकी संस्कृति 1300 BC यानी 3300 साल पुरानी है, हम तो 9000 साल पुराने हैं। बाकी दुनिया में
0: जी
1: ज्यादा से ज्यादा 2000 साल पुराने लोग हैं। तो जो बात कही जाती है, डीपर द रूट्स स्ट्रांगर यू आर, आप जितना गहरी जड़ें आपकी जाती हैं, आप बरगद के पेड़ की तरह उतना ही मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: प्रधानमंत्री ने एक बहुत जबरदस्त बात कही जिसको मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने भी प्राइम मिनिस्टर की बात को रिपीट किया। जिन लोगों ने मंदिर तोड़े, चाहे पंढरपुर का हो, चाहे काशी का हो, चाहे वो मथुरा का हो, कृष्णभूम का हो, अयोध्या का हो, उन्होंने सोचा कि हमने खत्म कर दिया इन्हें। वो ये भूल गए कि भारतीय दर्शन में ये शरीर है और इस दर्शन में शरीर को नश्वर माना है। शरीर आता जाता रहेगा लेकिन प्राण, आत्मा अजर और अमर है।
0: बिल्कुल,
1: उसी तरह से ईश्वर के आराधना मंदिर में होती है, उस शरीर में होती है, लेकिन ईश्वर की वहां प्रेजेंस अजर और अमर है। इसीलिए जब आप देखिए कभी भी किसी मंदिर पर आक्रमण होता है, उसको डिस्ट्रक्शन की बात आती है, तो आपने ये देखा होगा पुजारी सब कुछ छोड़ के, सोना चांदी हीरे जवाहरात छोड़ के वो विग्रह को लेके भागता है।
0: बिल्कुल,
1: भगवान की मूर्ति, भगवान के सिंबल को लेके भागता है, सारी दुनिया की दौलत वहीं छोड़ देता है। वो आत्मा है और हमारे लिए आत्मा अजर अमर है।
0: बिल्कुल,
1: तो जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा या संजय जी ने कहा कि जिन्होंने ये सब विध्वंस किए वो आज कहाँ हैं? वो कलकत्ता में सिर्फ सिलाई नहीं कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। भगवान सोमनाथ वही है, राम जन्मभूमि भगवान राम का मंदिर वही है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये इस कॉन्सेप्ट का है, हमने कभी भी शरीर को महत्व नहीं दिया, हमने आत्मा को महत्व दिया।
0: बिल्कुल, चलिए हम इसी नोट के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, तुरंत लौटते हैं, आप रहिए हमारे साथ।

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: कौन सी राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनको मेहनत में सफलता मिलती है? कौन सी राशि के लोग अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें तो उनके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है? अलग अलग राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: सोम से शिव तक इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज एक भव्य उत्सव अमृत उत्सव मनाया गया है सोमनाथ मंदिर में, और न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया भी देख रही है, आने वाली पीढ़ियां भी देख रही है। और खुद प्रधानमंत्री ने वहां से संदेश दिया कि कितनी समृद्ध हमारी संस्कृति है, जिससे दुनिया को भी संदेश लेने की जरूरत है। संजय जी, हम जब बात करते हैं विश्व गुरु की, ऐसे ही भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता? ये सबसे बड़ी मिसाल है, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो।
1: जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा अध्यात्म और ज्ञान है, वो सच में विश्वगुरु है। जब सारी दुनिया अंधेरे में थी, उस समय हमारे ऋषि वैज्ञानिक, उन्होंने जो सर्च किया, आज तक उस पर रिसर्च कर रहे हैं पश्चिम के देश भी। हमारा आयुर्वेद, हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा अध्यात्म, हमारे वेद, उन पर रिसर्च चल रहा है। आप सोचिए कितनी पीढ़ियों ने, ऋषियों के कितने गोत्र और कितनी पीढ़ियों ने, कितने कुल ने इसमें पूरी अपनी सर्च लगाई, यानी अपनी खोज लगाई, अपना दिमाग लगाया, और कितने अपनी अपना जीवन खपाया, तब जाकर यह आयुर्वेद बना। कौन सी दवाई किस चीज के साथ कैसा काम करती है, कौन सा औषधि है जिसको अगर हम सिर्फ उसे लें तो उसका क्या असर पड़ेगा, उसे किसी दूसरे अनुपान के साथ लें तो उसका असर बदल जाएगा। अगर दूध को हम गर्म पीते हैं तो उसकी तासीर गर्म होती है, उसको ठंडा करके पियो तो तासीर ठंडी हो जाती है, कि बादाम को अगर सूखा खाओ तो तासीर गर्म होती है, भिगा कर खाओ तासीर ठंडी होती है, ये कौन बताया? हमारा ज्योतिष शास्त्र, जिसको आम आज की पीढ़ी में फैशन है, कंधे उचकाकर बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही है, अंधविश्वास है, अंधभक्त हैं, लेकिन वही जब पश्चिम का गोरा कीरो जब भविष्यवाणी करता है और नास्त्रेदमस भविष्यवाणी करते हैं, ये कहते हैं ओ वाव, क्या बताया है उसने, इतने साल पहले बता दिया। हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले से वो बताते आ रहे हैं, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, कौन से ग्रह की चाल कितनी है, कौन सा वक्री चल रहा है, कौन सा मार्गी चल रहा है। और जन्म कुंडली बनाने के साथ ही पुरोहित, जो पंडित वहां जन्म कुंडली बनाता था, ज्योतिष आचार्य, वो बताता था कि जिस समय बच्चे का प्रसव हुआ उस समय दीपक किशोर था, प्रसव गृह में कितनी महिलाएं थी, क्या था, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। कौन सा ग्रह उस समय कौन सी दशा में था, कौन से डिग्री पर था, यानी 360 डिग्री में से कला और प्रतिकला भी निकाल ली उन्होंने। यानी ऐसी ऐसी सूक्ष्म चीजें, गणित का आप देखिए तो पद्म महाशंख तक चले गए, पद्म और 10 पद्म महापद्म तक हमारी गिनती गई, लेकिन नई पीढ़ी को भरोसा नहीं कि ये हमारे लोगों ने किया था। जब आपको अपनी संस्कृति पर, अपने इतिहास पर और अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं रहे तो आपको कोई संशयवान नाशयंती, जिसका संशय है मन में उसका विनाश निश्चित है। लेकिन हमें अपनी नई पीढ़ी को यही बताना है कि हमारा ज्ञान, हमारा अध्यात्म, जो ऋषियों की एक महान परंपरा के साथ यहां तक पहुंचा है, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। उसे जर्मनी और अमेरिका के लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे युवा कंधे उचकाकर बोलते हैं इट्स मिथ, ये माइथोलॉजी नहीं है, मिथ नहीं है, ये सच्चाई है, आपको मानना पड़ेगा, ये विज्ञान है। क्योंकि हमारी हर परंपरा के साथ हर रिचुअल, उसके साथ विज्ञान जुड़ा है। बस जरूरत है उस ऋषियों के सर्च को रिसर्च करने की, जिसमें आज की युवा पीढ़ी की दिलचस्पी भले ना हो लेकिन पश्चिम की दिलचस्पी है। उन्हें इस बात पर हमसे ज्यादा भरोसा है, हमें अपने भरोसे पर कितना भरोसा हमें मालूम नहीं, लेकिन उनको हमसे ज्यादा भरोसा है कि इसमें से तथ्य निकलेगा। हम इसी रेत पर रगड़ेंगे अपनी एड़ियां, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, पानी निकालने को वो तैयार हैं। हमारे युवा प्यासे मर जाएंगे लेकिन पानी निकालने को तैयार हैं।
0: ये महंत नवल किशोर दास जी, देखिए सबसे बड़ी विडंबना है, कहीं ना कहीं हम खुद ही अपनी संस्कृति से दूर हो गए। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और इससे हम कहीं ना कहीं पीछे हो गए। और ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में, कम से कम युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आने वाले सालों का उत्सव है, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति के साथ जोड़ना, समझाना, बताना कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। महंत जी,
2: जी देखिए हमारे यहाँ क्या है, पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। आज के जो हमारे बंधु हैं, चाहे बहने हैं, चाहे भाई हैं, जो नौजवान हैं, वो हमारा भविष्य है, हमारी संस्कृति का, हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का, वही तो हमारा भविष्य है। हमारे आने वाली पीढ़ी जितनी सचेत होगी, जितनी जागृत होगी हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, हमारी मान्यताओं के बारे में, उतना ही तो आगे हमारा परंपरा बढ़ेगी, या हमको आने वाली पीढ़ी को कुछ पता ही नहीं होगा तो कैसे होगा। ये इतिहास की जो बातें हैं, देखिए आज से पहले भी हुआ, पर आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी मूल परंपराओं को विकसित कर रहे हैं और स्वयं जाकर के उस उपासना में सम्मिलित हो रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे यहाँ का यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। बड़ा व्यक्ति जब कुछ करता है तो समाज का हर व्यक्ति उसका अनुगमन करता है, अनुसरण करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से चाहे हिमालय में जाते हैं केदारनाथ जी पे, चाहे बद्रीनाथ में जाते हैं, चाहे यहाँ आज सोमनाथ जी में हैं, तो केवल फोटो नहीं खिंचवाते, केवल औपचारिकता नहीं करते, बैठ के अभिषेक करते हैं और बैठ करके वो एक साधारण कोई भक्त होता है उस प्रकार से साधना करते हैं, तो निसंदेह इससे एक अच्छा संदेश जाता है, सुखद संदेश जाता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है।
0: हाँ।
2: इसलिए आने वाली पीढ़ी को हमें सचरित करने के साथ साथ अर्थ के साथ साथ उनको धर्म बताना पड़ेगा कि हमारा धर्म क्या है। सनातन धर्म जैसा बहन कोई दूसरा धर्म नहीं है,
0: बिल्कुल।
2: हमारे यहाँ मनगणन तो नहीं है, हमारे यहाँ ऋषियों ने रिसर्च किया है, अनुभव किया है, और अनुभव करके फिर पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, वाणी के माध्यम से अपनी अनुभूति को परोसा कि आने वाली पीढ़ी उसको आत्मसात करे और उस पर चले, आकर के तभी तो हम संरक्षण कर पाएंगे अपने धर्म का, अपनी परंपराओं का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का। जब हम जानेंगे, जानेंगे नहीं तो मानेंगे क्या।
0: बिल्कुल, और इसीलिए बहुत जरूरी आने वाली पीढ़ी को साथ जोड़ना। राज मिश्रा जी आपके पास आती हूँ। देखिए महंत जी ने यहाँ कहा कि जब भी प्रधानमंत्री चाहे केदारनाथ जाते या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहां पर उन तमाम तरह के अनुष्ठान करते हैं जो जो कहीं ना कहीं सारे धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं। आज भी कुंभाभिषेक उन्होंने यहाँ पर किया है, जलाभिषेक किया है, और इन अनुष्ठानों के जरिए एक मैसेज भी दिया जाता है कि आने वाली पीढ़ी या फिर युवा जो है वो हमारे धर्म के साथ जुड़े, उस जगह का महत्व क्या है वो लोगों तक पहुंचे। लेकिन क्या वाकई हमारी युवा पीढ़ी जुड़ती नजर आ रही है? क्योंकि हम इसको लेकर चर्चा करते हैं हमेशा, नवल किशोर जी भी हमारे साथ होते हैं, कि धार्मिक स्थल की जगह पर्यटक स्थल बना दे रहे हैं आजकल हमारे युवा, क्योंकि रील कल्चर बहुत ज्यादा हो चुका है।
3: देखिए मौजूद जी, एक बात तो बड़ा स्पष्ट कहूंगा, एक शायरी थी कि कुछ तो कमियां रही होंगी वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। ठीक है, अगर युवा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हुआ है ना, तो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर धर्म की वास्तविक नॉलेज, संस्कार की वास्तविक नॉलेज अगर युवा तक पहुंचे तो इसमें कोई दो राय नहीं। आपने और हमने ही बैठकर इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा किया है कि जब आज का युवा नए नौ वर्ष पर भजन क्लबिंग कर रहा है, ना कि वो पब में या और पार्टियों में जाना पसंद कर रहा है, युवा आज का बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, शास्त्र एक शब्द कहता है कि राजस्य युग कारण, मतलब राजा जो है वो युग परिवर्तन का कारण हो सकता है। कई जगह पर ये बहुत राजा युगस्य कारणम, प्रजा युगस्य कारणम, इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि अगर राजा सात्विक है तो उस देश के अंदर किसी भी परिस्थिति में सतयुग का निर्माण हो सकता है। राजा ही उस देश के अंदर कलयुग, त्रेता और द्वापर के निर्माण का एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। तो क्योंकि भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भारत ही नहीं दुनिया के लोग भी उनको फॉलो करते हैं, और जब वो जा करके श्रद्धा से जब वो अपने माँ के पास बैठ करके और उनसे हाल चाल पूछते हैं, जब माँ के पैर दबाते हैं, और जब वो सब हम लोगों ने पहले देखा, जब उनकी माता जी, आदरणीय माता जी जब रही धरा पर सुशरीर रही, तो जो उनके क्रियाकलाप थे उससे बहुत लोग प्रभावित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप ये एक्चुअल में देखेंगे, पहले की अपेक्षा तीर्थ क्षेत्रों में आज भीड़ ज्यादा बढ़ रही है, आज लोग दर्शन करने ज्यादा जा रहे हैं।
0: हाँ।
3: क्योंकि राजा उस विषय को फॉलो कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात, ये चिंताजनक विषय है कि आज हम कई लोग ऐसे हैं, मैं सबको नहीं कहूंगा, बहुत श्रद्धा से लोग जाते हैं।
0: हाँ।
3: लेकिन कई बार रियल में कम और रील में ज्यादा लोग तीर्थ में जा रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है, इस पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि जब तीर्थ में जाए तो हम अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए जाए, जब तीर्थ में जाए तो हम शरीर से हटकर आत्मा के साथ कनेक्ट हो, ऐसा मेरा विचार है।
0: बिल्कुल, चलिए अब एक और बहुत विषय जिसको इम्पोर्टेंट विषय है, मक्खन लाल जी मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं, क्योंकि ये भी आने वाली पीढ़ियों को और हमारी पीढ़ियों को भी ये सुनना समझना चाहिए। वो लोग जो कि इतिहास से खुद को दूर रखते हैं, उन्हें गर्व होगा ये सुनकर समझकर। सर, आज का जो सोमनाथ है उसकी तस्वीर, उसका उसको हम देख रहे हैं, लेकिन जो पहली बार जो पुराना सोमनाथ था उसका आर्किटेक्ट किस तरह का था, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाए।
4: बात सिर्फ आर्किटेक्ट की नहीं है, बात रहेगी पूरे सोमनाथ के स्वरूप की। आर्किटेक्ट तो वही है जो प्रधानमंत्री ने कहा, नश्वर है, इस आउटर वर्ल्ड है, आउटर शरीर है, वो नश्वर है, हमेशा एक के बाद एक भव्यता आती रही है, जैसे आज भव्य है। लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो आपको एक उदाहरण से हम बताना चाहेंगे, वो चाहे काशी विश्वनाथ राय हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर रहा हो पुराना, चाहे वो सोमनाथ रहा हो, ये सिर्फ पूजा अर्चना के स्थल नहीं थे, ये शिक्षा के केंद्र थे, ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे, स्वरूप को समझने का था, ज्ञान के केंद्र थे। और यही वजह है जब सरदार पटेल ने यहाँ डिसाइड किया, तो शायद ही किसी को मालूम होगा, जब ट्रस्ट डीड पढ़िए सोमनाथ की तो पता चलेगा कि कुल मिला के 13 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन सोमनाथ के मंदिर के आसपास ट्रस्ट को दी गई। क्यों दिए गए 13 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, जो है 3,217 एकड़ होता है। ये जमीन इसलिए गई थी कि सोमनाथ मंदिर जो बन रहा है वो सिर्फ पूजा अर्चना का मंदिर नहीं रहेगा, शिक्षा का केंद्र बनेगा, विज्ञान का केंद्र बनेगा, ज्ञान का केंद्र बनेगा। लेकिन सरदार पटेल की असामयिक डेथ के मुंशी को किनारे कर देना और उस देश का जहां सोमनाथ मंदिर हो उस देश का प्राइम मिनिस्टर क्या विचार रखता है, एक लाइन बता देता हूं। प्राइम मिनिस्टर तत्कालीन 1953 में फ्रांस से एक डेलीगेशन आया पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद उसने नेहरू से मिलने का समय मांगा, नेहरू ने समय दिया। फ्रांस के उस डेलीगेशन ने बातचीत करने के बाद कहा, हम भारत के सभी हिस्सों में गए हैं, भारतीय सभ्यता, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय विचार, आचार विचार ही अकेले ऐसे स्रोत हैं जो पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं
0: जी,
4: समर्थता ला सकते हैं, चीजें बना सकते हैं और जीवन अमूल्य बना सकते हैं। नेहरू ने जवाब दिया, यू आर प्रेजिंग द वेरी सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो हम यहाँ की सभ्यता, यहाँ की कल्चर, यहाँ की सिविलाइजेशन, यहाँ का ज्ञान विज्ञान सब बर्बाद करने के लिए जिड़े हुए हैं, और ये इंटरव्यू इंटरनेट पे खोज दीजिए मिल जाएगा, 1954 में पहली बार फ्रेंच में छपा, उसके बाद अंग्रेजी में। तो आज़ादी के तुरंत बाद सोमनाथ मंदिर का जो 3,217 एकड़ जमीन थी आज गायब हो गई। जहां विश्वविद्यालय बनने थे, ज्ञान के केंद्र बनने थे, विज्ञान के केंद्र बनने थे, वो सब हवा में उड़ गए। हम कैसे, जो पिछले 12 वर्षों में फर्क आया, जो मिश्र जी कह रहे थे कि युवा अब यथा राजा तथा प्रजा, पंडित नेहरू ने कह दिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसमें 3/4 लिखा गया था मौलाना आजाद ने, जिन्होंने स्कूल का मुंह देखा, मदरसे का मुंह देखा, यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने आधा लिखा और उन्होंने लिख दिया सब कुछ कपोल कल्पित है। लिहाजा हमारे इतिहासकारों ने 75 वर्षों में सब कुछ कपोल कल्पित किया। लेकिन इतिहास बहुत निर्मम विषय है, बहुत कठोर निर्मम, जब भी मौका मिलेगा इतिहास अपने वास्तविक स्वरूप में आपके सामने आईने की तरह खड़ा हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
4: आज जो इतिहास लिखा जा रहा है कोई लिखवा नहीं रहा है, परिस्थितियां बदली हैं, सही इतिहास आपके सामने आके खड़ा हो रहा है। कभी आपने किसी के मुंह से सुना था सोमनाथ पर अटैक करने के लिए अजमेर के ख्वाजा ने चिट्ठी लिखी थी
0: जी।
4: आप लोग चादर चढ़ाते हैं, सिर झुकाते हैं, चले आते हैं, कभी आपने नहीं सोचा कि वो व्यक्ति आपको जड़ से काट देने के लिए कहां तक आमादा था। ये सब पढ़ने की हम सबसे एक ही बात
0: जरूरत है और ये आने वाली पीढ़ियों को बताने की भी जरूरत है। वो कहते हैं ना इतिहास खुद को दोहराता है। संजय जी वक्त की कमी है, जल्दी से, क्योंकि सोमनाथ की पताका के बारे में चर्चा नहीं हुई है, जरा बता दीजिए ये क्या संदेश है।
1: मैं बहुत जल्दी में ये बताऊंगा कि सोमनाथ की पताका, किसी भी मंदिर और देवालय की पताका उसके देवता का प्रतीकात्मक स्वरूप होती है। अगर दूर से आप उनके भी दर्शन कर लें तो आपको उस चीज का, उस देवता के दर्शन का और उनके स्पर्श का, उनके कृपा का पात्र हो जाते हैं, आपको उनकी कृपा मिलती है। और जहां तक बात की आपने, दो तीन लाइन में मैं बता दूं कि ये नागर शैली का मंदिर है। इससे पहले जो मंदिर जो 17 बार नष्ट किए थे, पत्थर के बने हुए भव्य मंदिर थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था, जो स्वरूप में, जो इतिहास और पुराणों में जो वर्णन है उसमें वो स्पर्श लिंग नहीं था, वो हवा में लटकता हुआ एक शिवलिंग था। स्वरूप छोटा था लेकिन ज्योति जबरदस्त, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिसको आज के उसमें कहते हैं। और जब महमूद गजनवी वहां पहुंचा, चूंकि उसके अंदर जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग था, ज्योतिर्लिंग में चुंबकीय तत्व तो जबरदस्त थे और वो धरती पर रह नहीं सकता था क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ का कॉम्बिनेशन था। हमारे शिल्पकारों ने, जिस समय पूरी दुनिया में अंधेरा था, उस समय हमारे शिल्पकारों ने ऐसा मंदिर निर्माण किया जिसमें कि सब तरफ शक्तिशाली चुंबक लगाए गए और वो शिवलिंग हवा में था। जब महमूद गजनवी अपनी सेना के साथ वहां अंदर घुसा तो उस समय उसने हवा में लटकते हुए शिवलिंग को देखकर एक बार वो डर गया, क्योंकि वो मूर्ति भंजक था और इस्लाम का प्रचार और लूटपाट करना उसका मकसद था, इसलिए उसने तलवार उठाई। जैसे ही तलवार उठाई, तलवार शिवलिंग में जाके चिपक गई, वो घबरा गया कि ये क्या हुआ। फिर उसने नेजा उठाया, नेजा पीछे, चूंकि लोहे का बना था, नेजा पीछे चुंबक में जाकर चिपक गया। उसके बाद वो और घबराया, फिर उसने लकड़ी के हथियारों से और हथौड़ों से उसका ध्वंस किया, क्योंकि उसे ये लगा कि ये इसी के अंदर ही सारा खजाना है। और उस समय मंदिर का ऐसा निर्माण था। और अब जो मंदिर बना है ये नागर शैली का है, जिसमें बाहर सभी शिखर एक रेखा में होते हैं और बाहर रंग मंडप होता है, उसके बाद भोग मंडप होता है, उसके बाद गर्भगृह होता है, जिस गर्भगृह में मुख्य देवता विराजमान होते हैं।
0: बिल्कुल, तो आज यहाँ से सीधा एक ही संदेश है कि धर्म और संस्कृति को जितना आप खत्म करने की कोशिश करेंगे उतने स्वाभिमान के साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: कौन सी राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनको मेहनत में सफलता मिलती है? कौन सी राशि के लोग अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें तो उनके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है? अलग अलग राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: चलिए अब आपको कराते हैं नेहरू की नगरी वेनिस की सैर और दिखाते हैं वहां क्यों लगा है नावों का मेला, आखिर क्यों एक साथ 500 नावों पर सवार हुए हजारों लोग, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बड़ी नाव, छोटी नाव, अलग अलग रंग रूप की कितनी सारी नाव, साथ में गोंडोला का काफिला। ये तस्वीरें वेनिस की है, जिसे दुनिया में सिटी ऑफ कनाल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर नाव और गोंडोला में सफर आम है, क्योंकि शहर में सड़कों की जगह नहरों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक साथ इतनी नाव की ये तस्वीरें खास है, और इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ नाव और गोंडोला पर जश्न मनाया जा रहा है। सीरी ए फुटबॉल लीग मुकाबले से वेनिस के सॉकर क्लब की वापसी के बाद यहां पर इसी तरीके से शानदार जश्न मनाया गया। इस दौरान सॉकर फैंस नाव में सवार होकर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को चीयर करते और उनका स्वागत करते भी नजर आए। वेनिस के मशहूर ग्रैंड कनाल में इस दौरान नाव और गोंडोला का मेला लगा हुआ है। नहर में डॉकाओं पर मौज मस्ती करने के बाद तमाम खिलाड़ी और फैंस वेनिस के सेंट मार्क्स स्क्वायर पार्टी करने के लिए पहुंचे। नाव पर सफर वेनिस की संस्कृति का खास हिस्सा है। इसके साथ ही नहरों में इस तरह जश्न भी यहां पर आम बात है, जिसकी खास झलक सॉकर खिलाड़ियों के स्वागत के दौरान दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट टुडे।
4: अब आपको दिखाते हैं खबर फूलों की, जो आपका मन मोह लेगी। स्पेन के एक शहर में इन दिनों फूलों की नुमाइश लगी है। यहाँ लगी ये नुमाइश लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और सबसे खास बात इसमें ये है कि बड़ी संख्या में न सिर्फ लोग पहुंच रहे हैं, बल्कि अलग अलग अलग किस्म के फूलों का दीदार भी वो कर रहे हैं।
3: बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये तस्वीरें स्पेन के गिरोना के उस मशहूर चर्च की सीढ़ियों की है, जिसे पूरी दुनिया मशहूर ड्रामा सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स में देख चुकी है। लेकिन इन दिनों चर्च की ये सीढ़ियां एक से बढ़कर एक फूलों से गुलजार है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल शानदार फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है। दूर दूर से सैलानी यहाँ पर फूलों और उनसे की गई सजावट का दीदार करने आ रहे हैं।
5: It's been lovely, yeah. There's like when we got here, like there was automatically like so many flowers and everything, and it's just such a nice thing to see. And I'm glad we're here for this time of year.
3: यहाँ पर पिछले 70 साल से फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। हर साल तकरीबन 4 लाख लोग यहाँ फूलों की नुमाइश देखने आते हैं। लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी रहती है क्योंकि पहले वो ड्रामा सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स में इसे देख चुके हैं, और अब अपने सामने इसे साक्षात देखने का मौका मिल रहा है।
6: It's pretty good actually so far, because we only see the stairs, and we know that these stairs are part of the Game of Thrones, so it's iconic, I think. We wanted to see it.
7: I like it. Like a lot of people, they are very into the tradition, I would say. And also there is a lot of flowers, diversity, variety, and combined with the tradition, I think it's a great combo.
8: ये फ्लावर फेस्टिवल यहाँ पर 17 मई तक चलेगा। आखिरी दिन यहाँ पर रात को भी लोगों को फूलों की खुशबू और रंगीन माहौल का
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Bueno, ESPN Radio.
11: How they looked after game one.
12: I mean, they were frustrated.
10: The Daily.
13: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
10: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
9: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: कौन सी राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनको मेहनत में सफलता मिलती है? कौन सी राशि के लोग अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें तो उनके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है? अलग अलग राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
2: Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today. From pop songs to EDM bangers. The hits are on. And hip-hop beats.
3: I'm in the game. I should I join with this Jizu 3?
2: Today's hits will keep the party going 24-7. Listen now. Just search Today's Hits or ask your device to play Today's Hits on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज हम सबसे पहले बात स्वाभिमान सोमनाथ अमृत पर्व की करेंगे, जिसकी दिव्य भव्य और अलौकिक तस्वीरें आज दुनिया ने देखी हैं। तो पहली बार मंदिर में कुंभाभिषेक किया गया, जिसके साक्षी खुद प्रधानमंत्री बने। इस कार्यक्रम की तमाम झलक आगे आपको दिखाएंगे।
7: नमस्कार, मैं शुभ गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आज आपकी मुलाकात 2 साल की उस बच्ची के साथ करवाएंगे, जिसे संस्कृत के कठिन से कठिन मंत्र याद हैं। ये बच्ची सूर्य नमस्कार कर लेती है और वो तमाम श्लोक भी सुना देती है। इस बच्ची से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे।
8: नमस्कार, मैं हूँ खुशी गुप्ता, आगे बात पुणे की भी करेंगे, जहाँ आज अफ्रीका से आए हैं 2 नए मेहमान, उनका भी स्वागत होगा। तो कैसे धीरे धीरे चीतों की बड़ी आबादी की ओर बढ़ रहा है ये प्रोजेक्ट, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण। इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, फूलों से मंदिर का हुआ भव्य श्रृंगार। सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम का एयर शो, आसमान में लिखा ओम, सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर की गई पुष्प वर्षा। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, भोलेनाथ के भक्तों में दिखाई दिया उत्साह, प्रधानमंत्री ने मंदिर पुनर्निर्माण की प्रदर्शनी को भी देखा। राजधानी दिल्ली में CII वार्षिक व्यापार समिट का आयोजन, 100 साल का भारत एक विजन थीम पर चर्चा, साल 2047 तक देश के आर्थिक विकास के रोड मैप पर मंथन। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होंगी ईवी गाड़ियां, कल से सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन।
7: महाराष्ट्र के पश्चिम विदर्भ में हीटवेव का अलर्ट, अकोला अमरावती में 45 डिग्री के ऊपर चढ़ा पारा, सड़कों पर ग्रीन नेट और प्याऊ का इंतजाम, लोगों से दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील की गई। आम के शौकीन लोगों के लिए गुड न्यूज, यूपी के प्रयागराज मंडल में इस साल आमों की अच्छी पैदावार, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा और मल्लिका समेत कई वेराइटीज मौजूद।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: और चलिए चाय पर चर्चा में भी चर्चा उसी मुद्दे की करते हैं जो सुबह से आपको लगातार जीएनटी पर दिखा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन हमने सुबह से आपको करवाए हैं। पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके को और आज खास बनाया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे, धूमधाम से इस पूरे कार्यक्रम को आज संपन्न किया गया। सोमनाथ अमृत पर्व यहां पर मनाया गया जिसमें पीएम समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
11: बिल्कुल, और यह कुछ समय पहले वहां स्वाभिमान पर्व मनाया गया था और आज अमृत पर्व मनाया गया। 4 दिन का ये पूरा फेस्टिवल जो कि आज लास्ट डे था जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं और तमाम तरह के अनुष्ठान प्रधानमंत्री ने वहां पर किए हैं। अमृत पर्व के दौरान विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की, इसके अलावा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक हुआ। अब ये कुंभाभिषेक क्या है ये भी हम आपको आगे बताएंगे, साथ ही साथ ध्वजारोहण हुआ। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भी शानदार एरो शो किया और इस उत्सव की रौनक में 4 चांद लगा दिए। आप लोग शायद सुबह लाइव कर रहे होंगे उस वक्त ना,
7: जिस वक्त मुझे लगता है ये 11:30 के आसपास शुरू हो चुका था कार्यक्रम। और मतलब ऐसी फीलिंग बहुत कम आती है, मतलब वो अनुष्ठान जब चल रहे थे, जब इतना मंत्रोच्चारण के बीच में पूरा प्रकरण पूरा हो रहा था, प्रधानमंत्री अपने हाथों से ये सब कर रहे थे, मुझे लगता है कि वहां पर जितने लोग होते हैं आमंत्रित किए गए हैं, क्या फील होता होगा, कैसे महसूस होता होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे मुझे गूज़बम्स आए।
11: देखिए आज अगर आप वहां का टेम्परेचर देख ले, बहुत गर्म इलाका है,
7: बहुत गर्म। हाँ बिल्कुल,
11: बावजूद इसके कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और 2 किलोमीटर का प्रधानमंत्री का रोड शो था, स्वागत किया गया उनका।
7: आस्था देखो कितनी बड़ी है लोगों के लिए,
11: आस्था सबसे ऊपर है। बिल्कुल, चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको।

सोमनाथ मंदिर के इतिहास में आज एक अध्याय और जुड़ गया, अध्याय उत्सव का, अध्याय परंपरा और विरासत का, अध्याय सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव का आज धूमधाम से समापन हुआ। 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में नए सिरे से बनाए गए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इतिहास के इस बड़े घटनाक्रम का उत्सव मनाने के लिए सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शरीक हुए। महोत्सव की सबसे खास बात रही कुंभाभिषेक। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम सोमनाथ मंदिर के इतिहास में ये पहली बार है जब मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक किया, मतलब मंदिर के शिखर का कलश में रखे जल से अभिषेक किया। इसके लिए 11 तीर्थों के जल को एक बड़े कलश में रखा गया। इस कलश को 90 मीटर लंबी क्रेन के जरिए मंदिर के शिखर के ऊपर स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट के जरिए मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक किया। अभिषेक के बाद चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एरोबैटिक शो भी किया। सूर्य किरण टीम के विमानों ने जामनगर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी। करीब 182 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 18 मिनट के भीतर सोमनाथ पहुंचे और 15 मिनट तक अपनी हैरतअंगेज कलाबाजियों से भक्ति के उत्सव में अलग अलग फॉर्मेशन और हवाई करतब दिखाकर शक्ति का प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सोमनाथ पहुंचे और हेलीपैड से 2 किलोमीटर का रोड शो करते हुए सोमनाथ मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन पटेल भी मौजूद रहे। सड़क के दोनों ओर खड़े हजारों लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

सारा अलग ही उल्लास पैदा कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर पहुंचकर सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की और फिर सोमनाथ मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा की। मंदिर के गर्भगृह में 51 ब्राह्मणों ने ये महापूजा करवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवलिंग पर अक्षत, पुष्प और माला अर्पित की, महादेव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सारे अनुष्ठान सम्पन्न किए। जैसे ही मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक पूजन पूरा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने आरती की। उसी दौरान चेतक हेलीकॉप्टर्स ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पहली बार मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक किया और भव्य ध्वजारोहण समारोह भी हुआ। हिंदू धर्म में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता ये है कि यहाँ पर मौजूद शिवलिंग की पूजा और रुद्राभिषेक करने पर लोगों के सारे पाप और दोष दूर हो जाते हैं और उस पर हमेशा शिव की कृपा बरसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: देखिए, अगर बच्चों को इतिहास जानना है ना, तो सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है मूवीज। अगर आप मूवीज देख लो तो आपको पता चल जाता है कि इतिहास में क्या था। और तरह तरह की मूवीज आती हैं, कॉमेडी, थ्रिलर, लेकिन जिस तरह से अब अध्यात्म की तरफ
1: माइथोलॉजिकल
0: फिल्म आ रही है, जो आपने देखा था महावतार नरसिम्हा, वो उसको कितना प्यार मिला, रामायण आने वाली है, तो मूवीज इनका भी इंटरेस्ट जेंजी में बहुत ज्यादा बनता जा रहा है।
2: मतलब आप लोगों में भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल रुझान। वैसे भी आप बहुत ज्यादा धार्मिक है, खुशी मतलब इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल है ना।
1: नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप ये ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्यों हम लोग रामायण नहीं देखा करते थे एकदम, मतलब जब रामायण टीवी पे आया करती थी, रामायण या महाभारत, मुझे याद है कि एकदम कर्फ्यू लग जाता था पूरे एरिया में।
2: अरुण गोविल थे हमारे भगवान राम,
1: हम लोग तो उन्हीं को
2: इमेजिन ही नहीं कर पाते थे हम किसी और को।
1: एग्जैक्टली,
0: बिल्कुल। तो लेकिन अब जो मूवी आई है कृष्णा अवतारम पार्ट वन, मतलब उसको लेकर जिस तरह से प्यार बॉक्स ऑफिस में, जिस तरह से उसकी कलेक्शन हुई है, वो भी काबिले तारीफ।
2: देखिए, कलेक्शन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक और खास बात इसके साथ जोड़ देती हूँ कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये मूवी देखी है, इसके फैन हो गए हैं, और यूपी में इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है, ये है बड़ी बात।
3: श्री कृष्ण की उस पूरी कथा को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके कुछ प्रसंगों को लेकर के, वो अद्भुत है।
4: संस्कृति और आस्था की गहराइयों को छूती मैथोलॉजिकल फिल्म कृष्णा अवतारम पार्ट वन जमकर बॉक्स ऑफिस पर वाहवाही लूट रही है। देखने वाला हर दर्शक भगवान की लीलाओं से भाव विभोर है। वहीं दूसरी ओर फिल्म में इस्तेमाल हुए वीएफएक्स और तकनीक की भी तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म के प्रशंसकों में एक नाम और जुड़ा है, और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। सीएम योगी ने लोकभवन में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म का स्पेशल स्क्रीनिंग देखी और इस फिल्म से इतना प्रभावित नजर आए कि तारीफ किए बिना नहीं रह पाए।
3: श्री कृष्ण की उस पूरी कथा को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके कुछ प्रसंगों को लेकर के, वो अद्भुत है, अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। इन सभी कलाकारों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं।
4: फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस दौरान सीएम ने फिल्म से जुड़े कलाकारों को सम्मानित भी किया। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके बाल्यकाल और मथुरा वृंदावन की लीलाओं को भव्य अंदाज में दर्शाया गया है। इस फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का मुख्य किरदार संस्कृति ने निभाया है, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नातिन है। फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। इसके अलावा सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण का किरदार निभाया है। पहले दिन 42 लाख का कलेक्शन किया, दूसरे दिन फिल्म की कमाई 1.15 करोड़ रुपए रही, तीसरे दिन कलेक्शन 2.25 करोड़ रुपए रहा, और लगातार सफलता के

0: झंडे गाड़ते हुए चौथे दिन 3.01 करोड़ की कमाई हुई, यानी अब तक फिल्म का नेट कलेक्शन करीब 7 करोड़ पहुंच चुका है और अब ये साल की पहली सरप्राइज बॉलीवुड हिट बनने के लिए तैयार नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक तस्वीर तब नजर आई जब लैटिन अमेरिका में पहली बार भगवान गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये प्रोग्राम सेंट्रो कल्चरल विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस मौके पर ब्राजील में भारत के राजदूत और ब्राजीलियाई वैदिक शिक्षक भी मौजूद रहे। वैदिक मंत्रों, पूजा अर्चना और पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया। यह आयोजन दक्षिण अमेरिका में बढ़ते हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मील का पत्थर माना जा रहा है।
2: बिल्कुल, बता दें कि दक्षिण अमेरिका में लगभग 3 से 4 लाख हिंदू रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी आबादी गयाना और सूरीनाम में है, जबकि ब्राजील समेत दूसरे देशों में भी छोटे समुदाय मौजूद हैं। फिलहाल तो गणपति बप्पा की ये प्रतिमा इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय में लगाई गई है, जिसे जोनास मसेटी ने स्थापित किया है। विश्वनाथ के नाम से मशहूर मसेटी अद्वैत वेदांत, संस्कृत और योग के शिक्षक हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती के वहां पर वो शिष्य रहे हैं। साल 2025 में उन्हें वैदिक, सांस्कृतिक, वेदांत और संस्कृत के वैश्विक प्रचार प्रसार में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था।

0: भाई बहुत ही अच्छी खबर है नेक्स्ट. और उससे पहले हर किसी में एक हिडन टैलेंट होता है. आपको अपने टैलेंट के बारे में कब पता चला और कौन सा टैलेंट है आप में, बताइए.
1: देखिए बचपन में मैं बहुत डांस करती थी और मैंने प्रोफेशनल लेवल पे क्लासिकल डांस भी करा है, तो वही मेरा एक टैलेंट था जो कि मेरी मम्मा ने बचपन में ढूंढा,
0: उन्होंने बताया
1: और फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन करके उसे आगे परस्यू
0: भी करा. मस्ती क्या एज रही होगी?
1: मैं तब थी 6-7 साल की थी जब मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी.
2: मैं बोलती बहुत थी, घर वाले चुप करा दे तो मैं ऐसे कुछ करूंगी जहाँ मैं बोलने का काम हो.
0: हाँ देखिए आप एंकर बन गई.
2: एंकर बन गई, लेकिन बोलना शुरू से पसंद है.
0: नहीं लेकिन मतलब ये अच्छी बात
2: है. रियलाइज नहीं हुआ था कि आई वांटेड टू बी एंकर, ये रियलाइजेशन इनफैक्ट ग्रेजुएशन में जाकर हुई.
0: नहीं लेकिन आपने कहा कि आप बोलती बहुत थी, ये बोलना भी एक टैलेंट है. देखिए
2: घर वाले चुप करा देते.
0: ऐसा ही एक टैलेंट और ऐसी एक टैलेंटेड बच्ची के बारे में हम आपको खबर बताने वाले हैं. आदतें कहा जाता है कि बचपन की आदतें और संस्कार घर में सिखाए जाते पूरी जिंदगी का आधार बनता है, लेकिन अब ज्ञान की कही जाने वाली देवी सरस्वती का आशीर्वाद कहें या फिर हम इसे एक अनोखा टैलेंट कहें, जो कुछ भी है आज जयपुर में 2 साल की एक बच्ची प्रशा में ये सारी क्वालिटीज हैं. दरअसल प्रशा मंत्र और श्लोकों को याद करने के साथ साथ A to Z अल्फाबेट्स और 1 to 100 तक गिनती सीख रही है और वो अपने पापा की देखा देखी सूर्य नमस्कार भी कर लेती हैं, जो सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है बल्कि शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का एक सुंदर तरीका है. और शायद यही वजह रही है कि ऐसी कई और खासियतों को प्रशा इस नन्ही सी उम्र में अपनी पर्सनालिटी में शामिल कर रही हैं. प्रशा आज घर वालों के लिए अपने नाम के मुताबिक ईश्वर का उपहार ही है.

0: 在吃兔子爷爷，朋友在我的电话又要不就了。
1: दो साल की उम्र जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते तब इस बच्ची का तुतलाती जुबान में श्लोक और मंत्रों का ये मधुर उच्चारण उसकी अद्भुत प्रतिभा और संस्कारों की खूबसूरत पहचान ही है।
2: आज के टेक सैवी जमाने में जहां हर एक बच्चा फोन या स्क्रीन्स के पीछे भागता है या फिर उससे ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है, वहीं जयपुर की एक नन्ही सी बच्ची है जिसने महज 2 साल की उम्र में अपने नाम पे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और वो नाम सुपर टैलेंटेड किड के नाम से दर्ज हुआ है। ये नन्ही सी बच्ची है जयपुर की प्रिशा, जो संस्कृत में 2 साल की उम्र में 30 से ज्यादा श्लोक बोल सकती है।
1: आज जहां बड़े बड़े भी संस्कृत श्लोकों और मंत्रों को सही तरह से उच्चारित नहीं कर पाते, वहीं ये नन्ही बच्ची इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुंच गई है। जयपुर की प्रिशा अपनी अद्भुत याददाश्त के दम पर सुपर टैलेंटेड किड बन गई है। घर वालों के लिए प्रिशा की मासूम आवाज में गूंजते श्लोक और मंत्र उसकी असाधारण प्रतिभा, सकारात्मक ऊर्जा और आनंद देने वाली है। उसकी लर्निंग पावर परिवार के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद की जैसी है।
3: जब इसे ना हम रोज मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रेयर करवाते थे, जब ये बोलना स्टार्ट नहीं करी थी तो सुनती थी, पर एकदम से जब हमने देखा कि एक दिन ये खुद से बोल रही थी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये खुद से बोल सकती है। हमें लगा कि हाँ धीरे धीरे याद करेगी, पर ये खुद से बोलने लग गई थी। तब हमें रियलाइज हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है शायद इसमें।
1: सिर्फ 24 महीने की उम्र में प्रिशा को 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र और श्लोक याद हैं। वो न सिर्फ उन्हें साफ उच्चारण के साथ बोलती है बल्कि कई श्लोकों का अर्थ समझने की कोशिश भी करती है। सभी देवी देवताओं को पहचानते हुए उनके बारे में भी काफी कुछ जानती है। प्रिशा खुद से 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स पहचान सकती है। अल्फाबेट्स और 100 तक काउंटिंग भी प्रिशा को बखूबी याद है। साथ ही ये बच्ची सूर्य नमस्कार तक कर सकती है, हाथों के बल चल लेती है और अपने से 3 गुना ऊंची ग्रिल पर भी चढ़ जाती है। इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीजें सीख लेना ये साबित करता है कि प्रिशा सच में असाधारण है, जिसको देख प्रिशा के दादा दादी भी खुश होते हैं।
4: हम जो सिखाते वो सीखते हैं, तो हम सिर्फ उनको भगवान का नाम हुई तब से गोद में लेते थे, तब भी भगवान का नाम ही बोलते थे, किसी से बोलते थे राधे राधे करो, फिर वो वैसे ही सीखती गई।
5: घर पे अपने जैसे हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो ये शुरू से ध्यान देती थी और इसको हम बताते थे तो ये साथ के साथ रिपीट करती थी, तभी हमें ऐसा लगा कि इसकी याददाश्त मेमोरीज खूब शार्प है।
1: आज जहां घर में छोटे बच्चों को खाना खिलाने में घर वालों को मोबाइल जैसी चीजों के साथ भी मशक्कत करनी पड़ती है, वहीं प्रिशा का मोबाइल से मानो फिलहाल तो कोई वास्ता ही नहीं।
3: इसने कभी फोन नहीं देखा आज तक, नहीं कभी नहीं। मैं अगर सुनाती भी हूँ तो स्पॉटिफाई पे बंद करके, तो इसे पता है फोन में सुनना है देखना नहीं है। बताती है आइस खराब हो जाती है फोन देखने से, और हमको भी नहीं देखने देती। हम भी चला रहे होते तो मम्मा फोन मत देखो आइस खराब हो जाएगी ऐसे बोलती है।
0: दूध माँ
1: प्रिशा की माँ कहती है कि उनके घर में सुबह की शुरुआत ही भजन और मंत्रों के साथ होती है। शायद यही माहौल धीरे धीरे उनकी बेटी के व्यक्तित्व का हिस्सा बना और वो ये सब खुशी खुशी सीखने लगी।
3: मैंने इसको बिल्कुल प्रेशर नहीं डाला, ना मैंने सोचा कि मैं इसको सिखाऊंगी। बस मेरा मोटिव था कि मुझे इसे ज्यादा से ज्यादा दिखाना है और ये अपने आप सीखेगी। फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा मंत्र बोलते थे, भगवान की पूजा करते थे, जो इसे सिखाना है वो हम एक दूसरे को बोल के, देखो मुझे नया मंत्र आता है, बड़ा एक्साइटमेंट के साथ। फिर ये भी सुनती थी और इसे भी इच्छा होती थी कि मैं भी सुनाऊं, मैं भी याद करूं।
1: लेकिन यकीनन प्रिशा की कहानी सिर्फ एक बच्ची की उपलब्धि भर नहीं बल्कि उन पेरेंट्स को भी मैसेज है जो मान चुके हैं कि बगैर मोबाइल बच्चों की परवरिश आज के दौर में मुमकिन ही नहीं।
2: प्रिशा ने वो कमाल किया है जो उनके पेरेंट्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऐसी चीजें वो सीखी है और ऐसी चीजें वो जानना चाहती थी जो उनके पेरेंट्स को भी पहले खुद से याद करनी पड़ी। और एक मिसाल है, 2 साल की बच्ची के हिसाब से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और सही रिकॉर्ड इनको मिला है जो कि सुपर टैलेंटेड किड का है। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
6: ट्रस्ट में अभी प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट आई है ना, उसके बाद जितने लोगों से बातचीत हुई है हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है इस न्यूज को लेकर, जो उन्होंने कहा है कि विदेशों में मत जाइए, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं। तो आपका क्या टेक है कि बाहर जाइए, देश में घूमिए।
7: देखिए मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे देश में इतनी डेस्टिनेशंस है, इतनी खूबसूरत जगह है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम ब्लेस्ड हैं, हमारे देश में हर तरह के वेदर हैं। हम जिस भी वेदर में, अब देखिए गर्मी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर हमें गर्मी में भी ठंडी जगह पे जाना है तो हम वहां भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद साउथ में जाएंगे तो मॉनसून आ जाएगा। तो हमारा देश
6: कितना सुंदर है,
7: नॉर्थ ईस्ट, हमारा देश अपने आप में इतना खूबसूरत है कि अगर आप एक साल में मिनिमम दो ट्रिप भी बनाते हैं तो तब भी आप सोचिए कि मुश्किल है कि आप कवर कर पाए।
8: मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन वो बच्चे जिनका सपना है कि पूरी दुनिया घूमना है, जैसे कि मैं, मतलब
7: तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा बस एक साल के लिए रुक जाइए,
8: एक साल के लिए। हाँ, तो उसके लिए हम तैयार है। फिर हमारी ट्रिप्स प्लान है, शिलोंग हम जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं, लद्दाख कितना खूबसूरत है वहां जा सकते हैं।
6: अच्छा, तो बहुत जगहों पर जाते हैं।
7: नहीं, मैं एक और चीज बताती हूँ। अब आप एक डेस्टिनेशन अगर लेते हैं ना, तो आप एक, अब मैं जैसे अंडमान गई हूँ, अब वापस आके मुझे लग रहा है कि वहां पे भी बहुत सारी हिडन जगह है जो रह गई है।
6: एक ही ट्रिप में आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाते ना। आप गोवा जाते हैं तो दो तीन दिन के लिए जाएंगे तो या तो आप नॉर्थ गोवा जाएंगे या आप साउथ गोवा जाएंगे।
7: अच्छे से
6: एक्सप्लोर नहीं जा सकते। मैं साउथ करने के लिए
8: दो बार गई हूँ पर साउथ नहीं गई, तो अभी वहां जाना बचा।
6: वही कह रही हूँ, एक्सप्लोर करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए।
7: आप अभी उत्तराखंड गई थी शायद,
6: उत्तराखंड भी तीन दिन का ही था ना, उसमें
7: वो भी एक हिडन डेस्टिनेशन थी, किसी को पता नहीं था। सर बताइए ना उसके बारे में।
6: बहुत अच्छा, मतलब उत्तराखंड, चलिए मैं आपको सोशल मीडिया पे बताऊंगी, रील बनाऊंगी बकायदा, उस पे आपको पूरी डिटेल दे दूंगी। लेकिन देखिए जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, अब आपके ऊपर है कि आप फॉलो करते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि देश में ही घूमिए एक साल तक, जैसा कि आपने कहा है। विदेशों में डेस्टिनेशन शादियों का हालांकि ट्रेंड बढ़ा है, लेकिन लोग खुलकर खर्चा कर रहे हैं, तो वही मिडिल क्लास में फॉरेन ट्रिप कल्चर लगातार बढ़ा है। ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए पीएम की तरफ से यह अपील की गई है। गैर जरूरी विदेश यात्रा, विदेश में छुट्टियां मनाने या शादियां ना करने की लोगों से अपील की। साथ ही घरेलू पर्यटन और देश में ही किसी भी तरह के समारोह को आयोजित करने का सुझाव भी पीएम ने दिया है।
9: ऐसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।
6: तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप जहां रह रहे हैं वहां घूमने, खाने पीने, शॉपिंग करने के लिए कौन सी खास जगहें हैं, तो हमें जरूर बताएं। ये भी शेयर करें कि क्या आपके शहर में कोई ऐसी जगह है जो अनदेखी या अनसुनी हो। क्या आपके शहर की कोई पहचान है जो ज्यादा लोगों तक ना पहुंची हो। आपके शहर की कोई ऐसी धरोहर है जिसका अपना अनोखा सा किस्सा हो। आपके गांव की वो खूबसूरत जगह जो आप अपने लोगों को या आसपास के लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो आप अपने शहर की कौन सी ऐसी अनदेखी जगह है जिसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपकी जगह में है, आपकी लिस्ट में है, तो आप वीडियो बनाइए और हमें तुरंत भेज दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
8: देखिए साफ हवा कितनी जरूरी है ये हम सभी जानते हैं। प्रदूषण पर काबू करने के लिए शहरों में पेड़ लगाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन भोपाल में अब एक ऐसी मशीन लगाई गई है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये 25 पेड़ों के बराबर होगी।
7: बिल्कुल, आपको ये जानकर हैरत जरूर हो रही होगी और आने वाले समय में ये भी साफ हो जाएगा कि हवा को साफ करने वाली मशीन के बारे में किए जा रहे दावे कितने पुख्ता हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि ये मशीन कैसे काम करती है, जिसके आधार पर ये कहा यह जा रहा है कि पेड़ों की जगह ले सकती है मशीन।
10: नवाबों की नगरी, झील के शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को अब स्वच्छ बनाने की दिशा में नई पहल की गई है। पूरी तरह से स्मार्ट सिटी बनाने की ओर आगे बढ़ रहे भोपाल शहर को अब वायु प्रदूषण से भी निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में भोपाल शहर को अब नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। ये जो खम्बे जैसी चीज आप देख रहे हैं, ये एल्गी ट्री है जो शहर के माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगी। ये कुदरत का बनाया हुआ कोई पेड़ नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच ले और ऑक्सीजन पैदा करे, बल्कि ये आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीक का ऐसा कमाल है जिसे शहरों में घटते पेड़ों की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। भोपाल अब देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी एल्गी ट्री को लगाया गया है। इसे भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में स्वामी विवेकानंद पार्क में लगाया गया है।
11: शुरुआत बहुत अच्छी है, शुरुआत हुई है यहाँ अशोका गार्डन क्षेत्र में, उसके बाद धीरे धीरे इसको पूरे भोपाल में, फिर पूरे मध्य प्रदेश में, और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे इसको।
10: लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और प्रदूषण में हो रहे इजाफे के बीच भोपाल के माहौल और यहाँ की आबो हवा को स्वच्छ बनाने के लिए एल्गी ट्री का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। आपके लिए ये भी जानना दिलचस्प होगा कि आखिर ये तकनीक काम कैसे करती है और किस तरह से वातावरण को साफ करती है। ये एल्गी ट्री माइक्रो एल्गी आधारित सिस्टम है। जानना जरूरी है कि माइक्रो एल्गी जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ताजे या खारे पानी में पैदा होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की रोशनी का उपयोग करके तेजी से बायोमास पैदा करते हैं। ये दुनिया में 50% ऑक्सीजन पैदा करते हैं और हवा को साफ करने में बेहद उपयोगी होते हैं। अब आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि भला ये एल्गी ट्री सिस्टम कैसे काम करेगा और भोपाल जैसे शहर में किस तरह फायदेमंद होगा। तो ये समझ लीजिए कि ये सिस्टम सोलर पैनल के जरिए काम करता है, लिहाजा इसके इस्तेमाल में बिजली की जरूरत नहीं होगी। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन छोड़ता है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि एल्गी ट्री एक यूनिट लगभग 25 व्यस्क पेड़ों के बराबर कार्बन सोखने की क्षमता रखती है। ये सिस्टम सालाना करीब 1.5 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है। इसके कारण शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि ये सिस्टम AI से लैस है और इसे रिमोट से यानी दूर से भी चलाया जा सकता है।
11: इसका रिजल्ट अब आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि जहां 25 पेड़, एक व्यस्क 25 पेड़ लगाए जाते हैं, उसकी जगह अगर एक एल्गी ट्री उसकी जगह नहीं ले सकता ऑब्वियसली, लेकिन उतना कार्बन ये कैप्चर करेगा जितना एक 25 व्यस्क पेड़ जितना कार्बन कैप्चर करता है।
10: भोपाल में इस सिस्टम को जिस कंपनी ने बनाया है उसके अनुसार इस तकनीक को विकसित करने में करीब 2 साल लगे। 50 से अधिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इंजीनियरों की टीम ने इस पर काम किया।
11: अभी तो फिलहाल हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, भोपाल से। भोपाल में भी अशोक गार्डन क्षेत्र से जो हमने पहला लगाया है। इसके बाद हमारे कई सारे प्लान्स हैं, जैसे कि कुंभ में भी हमारा प्लान है कि कुंभ में हम इसको लगाने का प्लान कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, उनको अपना प्रस्ताव देंगे कि अगर वो लगाते हैं इस कुंभ में, तो कुंभ में तो इतनी सारी भीड़ होती है, इतना सारा कार्बन एमिशन होता है, करोड़ों लोग आते हैं उस टाइम में, तो उस समय के लिए हम इसको प्रपोज करेंगे।
10: जानकार मानते हैं कि अगर एल्गी ट्री की तकनीक का इस्तेमाल शहरों में बड़े पैमाने पर हो तो कार्बन लोड कम करने, तापमान संतुलित रखने और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सकती है। फिलहाल इसे कई शहरों में सार्वजनिक स्थानों, संस्थाओं और व्यस्त इलाकों में लगाने की योजना भी बनाई गई है। आगे चलकर कुंभ मेले में और घरों में भी इस्तेमाल के लिए इसे डेवलप करने की भी योजना है। देखना होगा कि ये सिस्टम आम प्राकृतिक पेड़ों के समान ही वातावरण को साफ रखने में कितना मददगार होगा और तभी इसके सार्थक भी साबित होंगे। भोपाल से धर्मेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सीएम बनने के बाद विजय थलापति की कौन सी पिक्चर अभी बाकी है।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
14: It's your boy,
13: just
14: Jay-Z.
13: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
15: कौन सी राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनको मेहनत में सफलता मिलती है? कौन सी राशि के लोग अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें तो उनके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है? अलग अलग राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: स्वागत है आप सबका चाय पर चर्चा में। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
17: जल से कुंभाभिषेक, फूलों से
16: मधुर सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
17: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, फूलों से मंदिर का भव्य श्रृंगार। सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम का एयर शो, आसमान में लिखा ओम, सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने की विधि विधान के साथ पूजा, भोलेनाथ के भक्तों में दिखा उत्साह, प्रधानमंत्री ने मंदिर पुनर्निर्माण की प्रदर्शनी को भी देखा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होंगी ईवी गाड़ियां, कल से सभी बैठकें ऑनलाइन। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ में हीटवेव का अलर्ट, अकोला और अमरावती में 45 डिग्री के ऊपर पारा, सड़कों पर ग्रीन नेट और प्याऊ का इंतजाम, लोगों से दोपहर में बाहर न निकलने की अपील। आम के स्वाद के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, यूपी के प्रयागराज मंडल में इस साल आमों की अच्छी पैदावार, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा और मलिका सहित कई वैरायटीज मौजूद।
7: देखिए स्क्रीन पर जो नायक हम अक्सर देखते हैं ना, वो आज सच में असली नायक बन चुके हैं। बात हम कर रहे हैं थलापति विजय की, जिन्होंने अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। लेकिन एक चीज जो ड्यूरिंग उनके कैंपेन भी चर्चा में चल रही थी, वो उनकी फिल्म थी जो रिलीज नहीं हुई थी,
3: जननायकन।
7: हाँ, और वो कहा जा रहा था कि वो लीक हो गई और बहुत से लोगों ने उसको देखा है यूट्यूब पे, और कहीं ना कहीं उनकी फैन फॉलोइंग भी इतनी ज्यादा थी कि वो वाकई में अब नायक बन चुके हैं।
3: दिखा तो इलेक्शन उनका जलवा, रील से रियल लाइफ का हीरो कौन होता है, आई थिंक इनको देखकर हमें इलेक्शन पोल्स में समझ में आ गया है। लोगों के बीच में जैसा उनका ऑरा है, किसी के साथ भी वो पिक्चर खिंचाने के लिए तैयार होते हैं, कोई इनको बुलाता है, पुकारता है, उनके पास चले जाते हैं, तो दिस इज लाइक ही इज इजीली कनेक्टेड टू ऑडियंस।
7: बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ज्यादा। वैसे भी साउथ में देखा जाए तो फिल्मों के हीरो को लोग रियल नायक की तरह ही देखते हैं,
3: तो रियल में तो उनको
7: आप देखे ना, जयललिता, उससे पहले कितने सारे आप नाम ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए।
3: बिल्कुल, चलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो ये बन चुके हैं, अब विजय के फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं, साथ ही उन्हें थलापति विजय की फिल्म जननायकन का बेसब्री से इंतजार है। लंबे इंतजार के बाद अब जल्द ये फिल्म हम सबको देखने को मिल जाएगी।
18: अच्छा, एक नाम भेजा है, कौन है जरा पता करके बताओ।
19: इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, जन नायकन बड़े पर्दे पर आने वाली है, यानी मई के महीने में धमाल मचना तय है।
20: लोगों से सुपर ही बोलते हैं।
14: लोग उसे बुलाते थलपति, उसे टच मत करना, तुझे काट डालेगा।
1: तमिलनाडु की राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाले सुपरस्टार विजय के फैंस के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। फिल्म का टाइटल जन नायकन विजय के राजनीतिक सफर और तमिलनाडु में शुरू हुए एक नए युग के साथ पूरी तरह मेल खाता है।
14: इसके ऊपर आने वाला खतरा भी हम टाल सकते हैं। लोगों की भलाई के लिए मेरे काम में टांग मत डालना।
1: माना जा रहा है कि ये फिल्म अगले दो हफ्तों के अंदर सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी। इस मच अवेटेड फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं।
14: तबाही पर पूरा प्रॉब्लम ये तड़कल மக்களுக்கு நல்லது பண்றேன்னு இதுக்குள்ள வராது।
1: फिल्म प्रोड्यूसर ने बताया कि जन नायकन फिलहाल सर्टिफिकेशन की अंतिम प्रक्रिया में है और सब कुछ सही रहा तो अगले 14 दिनों के अंदर फिल्म दर्शकों के सामने होगी।
14: डर के पीछे बहुत बड़ी वजह है। अगर हम
1: ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसे राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने से पहले विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। ऐसे में दर्शकों के बीच अपने थलपति को स्क्रीन पर देखने के लिए जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।
0: तुमने इतने लोग को अकेले मारा, क्या तुम सुपरमैन हो?
14: मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, लेकिन मैं जो भी करता हूँ लोगों से सुपर ही बोलते हैं। बेटियों पे डर हावी नहीं होना चाहिए, विजी को हमें एक शेरनी की तरह बनाना है।
20: कम ऑन कम ऑन कम ऑन,
14: डू इट कम से कम इस साल तो आर्मी एप्लीकेशन।
20: धर्म सा इंसान हूँ,
14: लेकिन मैं जो भी करता हूँ लोगों से सुपर ही बोलते हैं। बेटियों पे डर हावी नहीं होना चाहिए, विजी को हमें एक शेरनी की तरह बनाना है।
20: कम ऑन कम ऑन कम ऑन,
14: डू इट कम से कम इस साल तो आर्मी एप्लीकेशन में सही सिग्नेचर करना।
1: विजय की फिल्म जन नायकन का सफर काफी चुनौतियों से भरा रहा है। पिछले कुछ समय में फिल्म से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई जिनमें फिल्म का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से लीक होना भी शामिल था।
14: तुम लोगों को किसने भेजा है? किसने भेजा है? Come, let's play a game.
1: अब इन सब बंदिशों और सर्टिफिकेशन में हुई देरी के बावजूद फिल्म की टीम पूरी तरह सकारात्मक है और पूरा ध्यान फिल्म की ग्रैंड रिलीज पर है।
14: मेरे खिलाफ सारे गुंडे मवाली एक तरफ खड़े हैं, लेकिन जीत उनकी नहीं होगी। तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दफा हो जा।
21: अगर हमने उसे अभी मारा तो वो भगवान बन जाएगा। उसे ऐसे सलीब पे लटकाना है जहाँ से वो जिंदा नहीं आ पाएगा।
14: तुझे खत्म करूंगा, तेरी बेइज्जती करूंगा, ऐसा बोलने वाले तो मैंने बहुत देखे। वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। आई एम कमिंग।
22: लोगों की भलाई करने के लिए पॉलिटिक्स में आया था ना, ना कि स्कैम करने के लिए, करप्शन के लिए पॉलिटिक्स करेगा।
1: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: चलो भाई गुड न्यूज बता दो फिर एमपी से।
8: एमपी से आई है कूनो नेशनल पार्क, जहां पर दो और मेहमान यानी कि दो नए चीते आए हैं, तो कुनबा भी बढ़ गया है और सब खुश भी हो गए हैं वहाँ।
7: इससे मुझे एक और बात याद आई कि अभी प्रधानमंत्री ने जो अपील की है ना कि लोगों को अपने देश में ही जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन।
6: वन ऑफ द डेस्टिनेशंस,
7: बिल्कुल
6: बहुत अच्छी न्यूज़।
7: और वैसे भी अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून सीजन, क्योंकि अभी शुरू होने वाला है मानसून सीजन, में पचमढ़ी एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, तो आप जाएं तो ये पूरा प्लान कर सकते हैं। फिलहाल चीतों वाली खबर बता दीजिए।
6: देखिए कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकलकर राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व तक पहुंचा नर चीता KAP-12 एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि पिछले 23 दिनों से राजस्थान के जंगलों में विचरण कर रहे इस चीते को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर वापस कूनो पहुंचा दिया। खास बात इसमें यह है कि 43 दिनों में दूसरी बार इस चीते को राजस्थान से पकड़कर वापस लाना पड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
23: लग तो यही रहा है कि कुनू के अच्छे दिन चल रहे हैं। आज एक बार फिर इस तस्वीर ने कुनू में बढ़ते कुनबे की तस्दीक कर दी। बोत्सवाना से लाई गई दो मादा चीतों को जैसे ही खुले जंगल में छोड़ा गया, उन्होंने दौड़कर कुनू को मानो अपना लिया। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि कोनू में प्रोजेक्ट चीता जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और कोनू में चीतों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है वो खुद में एक अच्छा संदेश है। ऐसे में वन विभाग नए चीतों को और भी तेजी से कोनू में बसा रहा है। नेशनल पार्क अब देश में चीता पुनर्वास का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। अफ्रीका से लाए गए चीतों के साथ साथ अब यहां जन्मे शावकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार कोनू में चीतों की संख्या 59 तक पहुंच गई है जो देश के लिए गर्व की बात है।
2: पालनपुर कोनू श्योपुर जिले के और चंबल मालवा के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। लगभग 5000 किलोमीटर में अब इनका बसेरा हुआ है और हमारे लिए और गौरव की बात है कि आज तक जिस भाव से इनको छोड़ा गया था उस भाव से परिवार की तरह अब ये रहने लगे हैं, घुलने मिलने लगे हैं।
23: इस साल अब तक करीब 1 दर्जन चीते अफ्रीका के कई देशों से लाए गए हैं, जिनमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 6 मादा चीतों में से 5 ने शावकों को जन्म दिया। भारत में जन्मी 2 मादा चीतों ने भी सफलतापूर्वक प्रजनन कर शावकों को जन्म दिया। पिछले 3.5 वर्षों में कुल 49 शावकों का जन्म हुआ जिनमें से 37 पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित है। करीब 70 साल पहले देश से विलुप्त हो चुके इस सबसे तेज जानवर की वापसी प्रोजेक्ट चीता के जरिए अब नई रफ्तार पकड़ रही है जिसे वन्य जीव संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कोनू में चीतों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि भारत में चीता पुनर्वास का सपना अब धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। इस बीच कोनू का कल भटका चीता भी आखिर लौट आया। ये चीता कोनू की हदे लांग कर रणथंभौर के जंगलों तक जा पहुंचा था लेकिन अब चीता KAP-12 लौट आया है। पिछले 23 दिनों से वन विभाग की टीम इसे ट्रैक कर रही थी। ये पहला मौका नहीं है जब KAP-12 चीते को राजस्थान से वापस लाया गया हो। इससे पहले मार्च में भी कोटा जिले से उसका रेस्क्यू किया गया था। फिलहाल KAP-12 को सुरक्षित तरीके से कुरु के जंगलों में छोड़ दिया गया है लेकिन लगातार सीमा पार कर रहे चीतों ने वन विभाग के सामने नई चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। हालांकि वन विभाग सुरक्षा घेरा और मजबूत बनाने पर काम कर रहा है। खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भव्य किले महलों के लिए मशहूर जयपुर इन दिनों एक अनोखे मिशन को लेकर सुर्खियों में है। ये मिशन है पिंक सिटी को साफ सुथरा और सुंदर रखने का।
7: देखिए ये जो खबर जब मैंने पढ़ी थी ना, मुझे सच में इंदौर याद आ गया था
8: जी।
7: आपको इंदौर का जो सफाई अभियान है ना उसको देख, क्लीनेस्ट सिटी और अपने आप में वो रिकॉर्ड हर बार वो ब्रेक करता है।
3: ग्रीनेस्ट सिटी मुझे लगता है भोपाल को कहते हैं हम।
7: क्लीनेस्ट तो है, ग्रीनेस्ट आई एम नॉट श्योर किसे कहते हैं। हालांकि हमारा चंडीगढ़ भी बहुत खूबसूरत है,
3: हाँ।
7: लेकिन ऐसा ही शहर होना चाहिए। हम जब कहते हैं ना कि 2047 में हम विकसित भारत के सपने को देख रहे हैं तो उसमें सबसे जरूरी है स्वच्छता अभियान। तो जयपुर ने फिलहाल सफाई अभियान शुरू कर दिया है। अपने उद्देश्य और काम करने के तरीके को लेकर यह सफाई मिशन सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

0: रात को जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में होती है, उस समय जयपुर की गलियों में स्वच्छता के ये प्रहरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। झाड़ू, मशीनें और डंपरों के साथ मोर्चा संभाले हुए सफाई कर्मी, जिनका बस एक ही मकसद है, शहर को साफ सुथरा बनाना। दरअसल जयपुर में इन दिनों एक मेगा क्लीनिनेस ड्राइव चलाई जा रही है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। इसके तहत आधी रात को जब सड़कें सुनसान होती हैं और शहर की तंग गलियां खाली, उसी दौरान ये सफाई अभियान शुरू होता है। इस मिशन की समीक्षा करने पूरी रात गश्त लगाते हैं जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा। जहां एक तरफ सफाई कर्मी सड़कों गलियों को साफ करने निकलते हैं, वहीं ये दोनों अफसर अपनी स्कूटी पर बैठकर निरीक्षण करते नजर आते हैं।
1: ये जो है एक अभियान है, ये एक शुरुआत है जो जयपुर शहर को हमने क्लीन और ग्रीन बनाने का, क्लीन करने के लिए हमने पूरा अपने ताकत लगा दी है और ये हमारी जो प्रयास है वो आगे भी रहेगी। अभियान के रूप से हमने सभी को एक्टिवेट कर दिया, ये रहेगा।
0: जिन तंग गलियों में सुबह की भीड़ भाड़ में कदम रखना भी मुश्किल हो, ऐसे में वहाँ सफाई के लिए वक्त और जगह निकालना एक टास्क है। यही वजह है कि आमतौर पर सुबह सवेरे होने वाली सफाई को रात के सन्नाटे और अंधेरे में अंजाम दिया जा रहा है।
2: ये छोटी छोटी गलियां आप देख रहे हो, अभी हमारे साथ भी थे आप लोग, उन गलियों में बड़ी मुश्किल से हमारी जो छोटी वाली ऊपर है वो जा पा रही है। तो दिन के टाइम पे तो इतना ट्रैफिक मूवमेंट रहता है वहाँ पे, आने जाने के वाले के लोगों का मूवमेंट रहता है कि दिन में उसको साफ करना संभव नहीं है। तो हमने सोचा कि ऐसी करीबन 2000 से ज़्यादा गलियाँ इस परकोटे के अंदर, तो हमने सोचा एक अभियान के रूप में लेके और इन सबको एक बार अच्छे से साफ करेंगे और उसके बाद हम जनता से ये उम्मीद करेंगे कि जनता इस सफाई को बनाए रखने में हमारी हेल्प करे और कचरा उन ऐसे इधर उधर नहीं डाल के निर्धारित स्थान पर डाले।
0: इस ऑपरेशन क्लीन स्वीप में करीब 2000 सफाई कर्मी पूरी रात मैदान में डटे हैं। डीएम और नगर निगम आयुक्त की निगरानी में चलाया जा रहा है सफाई अभियान। शहर भर को 36 बीट्स में बांटकर निगरानी रखी जा रही है। सभी सफाई टीमें नाइट जैकेट, टॉर्च, गम्बूट, डंपर, हुपर जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस है। आने वाले समय में सड़क पर कचरा फेंकने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए खिलाफ सख्त जुर्माना लगाने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन इस सफाई मिशन को सिर्फ अभियान तक सीमित न रखकर नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने की कोशिश में है। विशाल शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।
3: हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां बीच रात उग आया है सूरज।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay, Norah Jones, Daniel Caesar, and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: चलिए अब एआई की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की मिसाल ही नहीं बल्कि इंसानों के मददगार बनते जा रहे हैं। इंसान और मशीन का यही मेल नजर आया 28वें चीन बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हाई टेक एक्सपो में।
7: बिल्कुल, इस एक्सपो में जहां एक से बढ़कर एक आधुनिक तकनीक और कार्यकुशलता से लैस रोबोट्स शोकेस किए गए, वहीं ये रोबोट्स रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा अब महत्वाकांक्षी अंडर वाटर मिशन के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं।
8: कहीं नाचते गाते रोबोट्स तो कहीं पियानो पर हाथ आजमाते रोबोट्स, कहीं घरेलू कामकाज में माहिर रोबोट्स तो कहीं समुद्र की गहराइयों में उतरने को तैयार रोबोट्स। ये नजारा है 28वें चीन बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हाईटेक एक्सपो का, जहां एआई और आधुनिक तकनीक से लैस कई रोबोट्स और रोबो पार्ट्स को प्रदर्शित किया गया। इसमें आकर्षण का केंद्र बना एक्सपो में डेब्यू करने वाला मरीन रोबोट ऑर्का, पानी के नीचे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी यूनिवर्सल बॉडी और इंटरचेंजेबल रोबोटिक आर्म्स हैं, जिसकी बदौलत ये पानी के नीचे सफाई, ऑफशोर फोटोवोल्टिक मेंटेनेंस और ऑफशोर विंड फार्म ऑपरेशंस जैसे जटिल काम कर सकता है। बीजिंग ई टाउन के ह्यूमनॉइड रोबोट ने भी भीड़ का ध्यान खींचा, जहां रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाने वाले रोबोट्स प्रदर्शित किए गए हैं। एक्सपो में स्पेशली स्केल्ड रोबोट सेगमेंट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते और म्यूजिक पर नाचते दिखे लोगों ने भी इसकी जमकर तस्वीरें खींची। पचास हजार वर्ग मीटर में फैले इस एक्सपो में 6 थीम वाले जोन थे, जिनमें आईटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा, ग्रीन लो कार्बन, डिजिटल इकोनॉमी और क्षेत्रीय इनोवेशन शामिल थे। इनके तहत 800 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन इस एक्सपो में शामिल हुए। रिपोर्ट कोई न्यूज टुडे।
7: चलिए अमेरिका के सबसे उत्तरी शहर की कहानी आपको बताते हैं। बड़ी सुंदर कहानी सामने आई है। इस शहर में रविवार सुबह सूरज निकला और अब 2 अगस्त तक डूबेगा नहीं। इसे मिडनाइट सन यानी आधी रात का सूरज कहा जाता है। नेशनल वेदर सर्विस द्वारा जारी टाइम लैप्स वीडियो में दिखाया गया कि सूरज रात 1:48 पर क्षितिज के करीब आया लेकिन पूरी तरह डूबा नहीं और फिर सुबह 2:57 पर दोबारा से ऊपर उठाया।
3: आर्कटिक क्षेत्र में गर्मियों के दौरान पृथ्वी के झुकाव की वजह से ऐसा होता है, जब कई हफ्तों तक लगातार दिन जैसा उजाला बना रहता है।
7: छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, चाय पर चर्चा जारी है, जल्द लौटते हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: पटना के दानापुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें SBI की ATM के अंदर सलून चलाने का एक वीडियो वायरल है। यहाँ एक पुरानी SBI ATM के अंदर अब कैश नहीं बल्कि हेयर कटिंग और शेविंग का काम हो रहा है। बाहर से पूरा सेटअप बैंक ATM जैसा नजर आता है, लेकिन अंदर घुसते ही लोगों को कुर्सी, शीशा, हेयर ड्रायर नजर आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले SBI का ATM यहां पर चलता था, लेकिन बाद में बैंक ने इस ATM को बंद कर दिया और मशीन को वहां से हटा दिया, लेकिन ATM का बोर्ड, केबिन और पूरा सेटअप जस का तस छोड़ दिया। यह जगह बाद में किराए पर सलून वाले ने खरीद ली, जिसके बाद ATM ने बाल काटने वाला ये वीडियो वायरल हुआ है।
10: भाई बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है ये। नोबिता
11: डोरेमोन
10: सुना होगा आपने?
7: हाँ, सुना है,
11: मैंने तो देखा भी।
10: रोज सुना होगा पेरेंट्स से। अब डोरेमोन, जिसने भी ये कार्टून देखा है ना, उनको पता है कि नोबिता जब भी स्कूल से परेशान होता था, फ्रेंड से परेशान होता था, अपनी सारी परेशानियों का हल लेने के लिए आता था डोरेमोन के पास, और डोरेमोन अपने बैग से निकालता था गैजेट्स, गैजेट से जादुई गैजेट्स, है ना, तो आपकी सारी दिक्कतें वो दूर कर देता था। अब जिस जगह पर ये दोनों फिल्माए गए हैं, जहां पर ये दृश्य हुआ है, वो असली जगह कहां पर है, वो एक यूट्यूबर है जिन्होंने घूमते फिरते हुए ये जगह दिखाई है कि एग्जैक्टली अगर आप फील कर लेना चाहते हैं इस कार्टून की, तो यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए।
12: बचपन से मुझे यहाँ आना था बस इस एक चीज के लिए, भाई लिटरली पीछे रियल लाइफ डोरेमोन का घर है। यहीं से नोबिता को हमने कितनी बार बाहर निकलते हुए देखा है, और ये पूरा उसी के इलाके में आ चुका हूँ मैं अब तक डोरेमोन देखता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कार्टून देखने की कोई उम्र नहीं है। भाई पीछे है मेरे वही डोरेमोन का स्कूल, इन्हीं सड़कों पे नोबिता भागा करता था स्कूल छोड़ के, और सामने वही क्लॉक है जो बजती थी जैसे ही स्कूल खत्म हो जाता था। वाओ भाई पीछे वही कार्टून वाला सच में लग रहा है डोरेमोन के किसी एपिसोड में आ गया।
7: अच्छा, वैसे प्रधानमंत्री ने जब से अपील किया ना कि डोमेस्टिक डेस्टिनेशन होनी चाहिए, मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट कौन सी हो सकती है।
10: आप ही नहीं सोच रहे, हम सारे सोच
7: सब लिस्ट बनानी शुरू कर दिया।
11: ऑफ स्पीड लोकेशंस, हिडन जेम्स, सब मैं आपको भेज दूंगी।
7: वेरी गुड, अब विदेश नहीं जाना, इंडिया में जाना,
11: यहीं पर है ना।
7: अच्छा, एक और अपील थी उनकी वर्क फ्रॉम होम की। अब इमेजिन करो अगर हम घर से चाय पे चर्चा करें तो कैसे होगा।
10: हाँ, मेरी मस्त चाय आप लोग मिस कर देंगे, मैं तो घर बैठी
7: हम वर्चुअली चाय पी।
11: पर चर्चा कॉन्स्टेंट है, वो जरूर होगी, खबरें जरूर आएंगी।
7: बिल्कुल, तो खबरें जरूर आएंगी, हम भी आएंगे कल आपसे मिलने के लिए शाम 5 बजे चाय पर चर्चा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
13: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
14: Thank God I get to wake.
5: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
15: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है, ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम का एयर शो, आसमान में लिखा ओम, सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में ये बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होंगी ईवी गाड़ियां, कल से सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ में हीट वेव का अलर्ट जारी, अकोला और अमरावती में 45 डिग्री के ऊपर चढ़ा पारा, सड़कों पर ग्रीन नेट और प्याऊ का इंतजाम, लोगों से दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील की। आम के स्वाद के शौकीन लोगों के लिए गुड न्यूज आई है, यूपी के प्रयागराज मंडल में इस साल आमों की अच्छी पैदावार, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा और मल्लिका समेत कई वेराइटीज मौजूद।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

आकाश गुप्ता, साहिल देव, आप देख रहे हैं 6 बजे का GNT स्पेशल। एक खास पेशकश आप सबके सामने रखते हैं। देखिए, आज का दिन यानी 11 मई भारत की आध्यात्मिक और सामरिक दोनों ही शक्तियों के लिहाज से बहुत ज्यादा खास है। 11 मई 1951 को गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मौजूदा स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। आज इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दिन की 75वीं वर्षगांठ है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साक्षी बने। दूसरी तरफ 11 मई को ही भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण भी किया था। तब भारत की सामरिक शक्ति की धमक पूरी दुनिया ने सुनी थी और यही वजह है कि सोमनाथ अमृत महोत्सव में भारत की आध्यात्मिक और सामरिक दोनों ही शक्तियों की झांकी देखने को मिली।

0: Bhagwan So Menage Ki.
1: सदियों से सनातन आस्था का परम धाम रहे सोमनाथ मंदिर में आध्यात्मिकता और आधुनिकता के साथ भारत की शक्ति और सामर्थ्य का अलौकिक नजारा देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर के आधुनिक स्वरूप के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ के दिव्य अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सोमनाथ मंदिर पहुंचे और विशेष महापूजा में शामिल होकर उसके साक्षी बने। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम ने सोमनाथ की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ऊर्जा को एक बार फिर जीवंत कर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अनेक आक्रांताओं के दुष्चक्र का कई बार शिकार हुए सोमनाथ मंदिर की महिमा और महात्म्य का जिक्र

0: मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: सोमनाथ मंदिर के पावन पुनरुद्धार की 75वीं सालगिरह के भव्य दिव्य कार्यक्रम में सबसे विशेष रहा मंदिर का कुंभाभिषेक, जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण की रीतियों का प्रतीक है। वैदिक मंत्रों की अलौकिक गूंज के बीच 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए 11,000 लीटर पवित्र जल को मंदिर के शिखर पर अर्पित किया गया।

इसके लिए 1860 किलो वजनी 350 टन की विशेष क्रेन की सहायता से 155 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया और उसके बाद कलश के पानी से मंदिर का कुंभ

0: कला, संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ।
1: सूर्य किरण टीम का कलरफुल एयर शो खत्म होने के बाद पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के संग्रहालय पहुंचे, जहां मंदिर के पुराने अवशेषों के साथ अनेकानेक स्मृतियां मौजूद हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी का सेरेमोनियल पगड़ी और खेस के साथ स्वागत किया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी को सोमनाथ मंदिर की एक फ्रेम की हुई तस्वीर भी भेंट की। इस दौरान पीएम मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 1.5 से 2 घंटे तक मंदिर परिसर में ही मौजूद रहे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज सोमनाथ अमृत महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम किया गया। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री करीब 1.5-2 घंटे रुके, जिसके अंदर कुंभाभिषेक से लेकर ध्वजारोहण और साथ ही सूर्य किरण का एयर शो किया गया। जिस तरह से मंदिर की विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी बात प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में कही कि सोमनाथ को जिसके नाम में सोम हो उसका कभी अंत नहीं हो सकता, और वही चीज किस तरह से राष्ट्र के निर्माण के लिए उपयोगी रहती है, उन सब की बात की। जो संकल्पना थी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की, वो सरदार पटेल ने किस तरह से की थी और उसके बाद किस तरह से ये पूरा पुनर्निर्माण हुआ, उस पर प्रधानमंत्री ने विस्तृत तरीके से बात की है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि आज जो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस जो है उसको लेकर जो बात की गई प्रधानमंत्री के द्वारा कि पोखरण विस्फोट के बाद भी, पोखरण परीक्षणों के बाद भी दुनिया के प्रतिबंधों के बावजूद भारत जिस तरह से एकजुट रहा और आगे बढ़ा, कोई शक्ति हमें झुका नहीं सकती। तो वो संदेश उन्होंने दिया कि किसी की भी कोई भी कैसी परिस्थिति आए, उन परिस्थितियों में भारत हमेशा एकजुट रहा है और हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ा है और इसी तरह वो आगे बढ़ता रहेगा।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को खास तौर पर याद किया, जिनकी संकल्प शक्ति की वजह से ही मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण संभव हो सका।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: गजब का इत्तेफाक है कि 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के मौजूदा स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो 11 मई को ही भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व को यह पैगाम दे दिया था कि भारत अपनी आत्मरक्षा का हुनर कायदे से जानता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर पोखरण परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत का परमाणु सामर्थ्य देखकर आंखें लाल कर ली थी, लेकिन भारत इसके लिए दृढ़ संकल्पित था।
0: दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब

0: दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है, लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं।
1: इससे पहले पीएम मोदी सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड से मंदिर तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मोदी के रोड शो में लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान सड़क पर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। गुजरात के गिर से ब्रजेश जोशी और दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सनातन संस्कृति में स्थान का विशेष महत्व है। भारत के ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से किसी स्थान विशेष में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा के रेडिएशन को महसूस किया और भगवान के धाम के रूप में उसकी पहचान स्थापित की। सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा से लबरेज ऐसा ही एक स्थान है, जहां अनादिकाल से ही भगवान शिव के अविनाशी स्वरूप की मौजूदगी महसूस की जाती रही है। ये सत्य सिर्फ मिथकों तक ही महदूद नहीं है, ऐतिहासिक घटनाओं में इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। सोमनाथ मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने आधा दर्जन से अधिक बार तहस नहस करने की कोशिश की। आक्रांताओं ने बार बार उसे ध्वस्त किया, लेकिन उस स्थान में कुछ अलौकिक ऊर्जा है कि बार बार ध्वस्त होने के बाद भी मंदिर का निर्माण होता रहा और आज पूरे विराटता के साथ सोमनाथ मंदिर हमारे बीच में मौजूद है।

0: सौराष्ट्र में गीर जिले के प्रभास पाटन में अरब सागर के तट पर स्थित अनाद मंदिर सोमनाथ, जब से धरती का अस्तित्व है, जब से मानवता का वजूद है, तब से इस अद्भुत अलौकिक महिमामय मंदिर का उल्लेख मिलता है। दुनिया के प्राचीनतम स्क्रिप्चर माने जाने वाले ऋग्वेद से लेकर महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण तक में सोमनाथ की महिमा का उल्लेख है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का महत्व ऐसा कि आमतौर पर वाचाल और उत्ताल रहने वाली अरब सागर की लहरें इस मंदिर के पास शरणागति की मुद्रा में शांत हो जाती हैं। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के लिए स्वयं चंद्रदेव ने इस स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने न सिर्फ चंद्रदेव को श्राप मुक्त किया बल्कि उनके आग्रह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां अनंत काल के लिए विराजमान भी हो गए।
1: ये जो भी आप मंदिर देख रहे हो, जो खड़ा है मंदिर, वो सनातन धर्म का केंद्र है और प्रथम ज्योतिर्लिंग भी है। हमारा तीर्थपुरी सोमपुरा ब्राह्मण समाज है, वो चंद्रमा ने जब से मंदिर यहाँ की स्थापना की थी, तब से पूजा विधि और धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए।
0: सोमनाथ मंदिर के एक दिव्य अलौकिक बात पर अमूमन किसी का ध्यान नहीं जाता। सोमनाथ मंदिर जहाँ पर स्थित है, यहाँ से ठीक दक्षिण की तरफ सीधी लकीर खींचेंगे तो धरती के आखिरी छोर अंटार्कटिका तक कहीं भी भूखंड का कोई हिस्सा, यहाँ तक कि कोई टापू नहीं मिलेगा। बहरहाल सोमनाथ मंदिर को लेकर इतिहास के पन्नों को जब आप पूरे मनोयोग के साथ पलटेंगे तो आपको हैरान करने वाले कई और तथ्य मिलेंगे, जिसे जानकर श्रद्धा और विश्वास न होते हुए भी इस परम तीर्थ के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी। दरअसल क्रूर विदेशी आक्रांताओं ने जब जब भारत भूमि पर आक्रमण कर सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हमला जरूर किया, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं इस बात का एहसास था कि ये मंदिर सनातन शक्ति का अक्षय केंद्र है। इसलिए 1200-1300 साल के कालखंड में सनातन को मिटाने की दुराशा लेकर आए हर आक्रांता ने सोमनाथ मंदिर को न सिर्फ लूटने बल्कि उसे तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वसुधा के इस दिव्य स्थान में जाने कौन सी अलौकिक शक्ति है कि मंदिर का ढांचा ध्वस्त होने के बाद भी ऋषि मुनियों, तपस्वियों से लेकर आम श्रद्धालुओं तक का यहां आने का सिलसिला थमा नहीं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए और इस गौरवशाली मंदिर की दुर्दशा देखी तो लौह पुरुष की आंखें भी नम हो गईं। उसी समय उन्होंने समंदर का जल हाथ में लेकर मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया।
2: उसने मंदिर की ये जीर्ण दशा देखी तो उसके लोखंडी पुरुष मानते हैं, उसकी आंख भी आंसू से दिखाई गई, उसका दर्द उसके चेहरे में और आंखों में दिखाई दिया। उसने पहले ही काम उस समय जब पुराना मंदिर था वहाँ से समुद्र में जाने के लिए एक सीढ़ी थी, पत्थर की सीढ़ी थी, वहाँ से सीधा उतरे और उसने आँख में सूर्य का समुद्र का जल लेकर उसने प्रतिज्ञा ली कि जहाँ मैं सोमनाथ का पुनरुद्धार करूँगा और बिना सोमनाथ का पुनरुद्धार आज़ादी मिली तो ये आज़ादी अधूरी है।
0: अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के अनुसार लौह पुरुष ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार शुरू करवा दिया। हालांकि अफसोस ये कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरदार पटेल 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को यहाँ आकर प्राण प्रतिष्ठा के अलौकिक अनुष्ठान को सम्पन्न कराया।
2: 11/5/1951 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस हाल जब दर्शन करते हैं इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, वहां से मंदिर अब शुरू हुआ 11/5/1951 से।
0: मंदिर का मौजूदा स्वरूप बेशक सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति और अदम्य साहस का परिणाम है, लेकिन पिछले 1200-1300 सालों के कालखंड में सरदार पटेल की तरह और भी कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद इसी स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 8वीं शताब्दी से लेकर क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के समय तक कम से कम 6 बार मंदिर के ढांचे को तहस नहस किया गया, पर हर बार सरदार पटेल जैसे सनातन के मसीहा ने आगे बढ़कर मंदिर के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया। सबसे पहले इस मंदिर पर 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने धावा बोलकर इसे तहस नहस कर दिया। उसके बाद गजनी के बददिमाग आक्रांता महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। खिलजी वंश के दरिंदे अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में एक बार फिर इस अनादि मंदिर को जमींदोज कर दिया। खिलजी के बाद गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने 1395 ईस्वी में इस मंदिर को मटियामेट करने की कोशिश की। वहीं मुगल वंश के औरंगजेब की तो इस मंदिर से खास अदावत थी, इसलिए औरंगजेब ने पहले 1665 ईस्वी में और फिर अपने मरने से एक साल पहले 1706 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ डाला।
3: इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांता आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे, बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है।
0: कमाल देखिए कि इस मंदिर को ध्वस्त करने वाले आक्रांताओं की कब्रों पर आज कोई एक अदद दिया जलाने वाला नहीं बचा है, लेकिन सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ उसी स्थान पर विराजमान है। मानो आक्रांताओं को पैगाम दे रहा है कि प्रथम ज्योतिर्लिंग अपनी स्वयं सिद्ध शक्ति से सिंचित है और स्वयं महादेव ही इसके रक्षक हैं। अनादिकाल से ही ये मंदिर भक्तों और श्रद्धालुओं की आस्था का परम धाम बना हुआ है। गुजरात के गीर से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए इसी के साथ आज के हमारी जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: चलिए अब आपको करवाते हैं नहरों की नगरी वेनिस की सैर और दिखाते हैं वहां क्यों लगा है नाव का मेला। आखिर क्यों एक साथ 500 नावों पर सवार हुए हजारों लोग, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्यों लगा है नाव का मेला, आखिर क्यों एक साथ 500 नावों पर सवार हुए हजारों लोग, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
4: बड़ी नाव, छोटी नाव, अलग अलग रंग रूप की कितनी सारी नाव, साथ में गोंडोला का काफिला। ये तस्वीरें वेनिस की है, जिसे दुनिया में सिटी ऑफ कनाल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर नाव और गोंडोला में सफर आम है, क्योंकि शहर में सड़कों की जगह नहरों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक साथ इतनी नाव की ये तस्वीरें खास है, और इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ नाव और गोंडोला पर जश्न मनाया जा रहा है। सीरी ए फुटबॉल लीग मुकाबले से वेनिस के सॉकर क्लब की वापसी के बाद यहाँ पर इसी तरीके से शानदार जश्न मनाया गया। इस दौरान सॉकर फैंस नाव में सवार होकर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को चीयर करते और उनका स्वागत करते भी नजर आए। वेनिस के मशहूर ग्रैंड कनाल में इस दौरान नाव और गोंडोला का मेला लगा हुआ है। नहर में डॉकाओं पर मौज मस्ती करने के बाद तमाम खिलाड़ी और फैंस वेनिस के सेंट मार्क्स स्क्वायर पार्टी करने के लिए पहुंचे। नाव पर सफर वेनिस की संस्कृति का खास हिस्सा है। इसके साथ ही नहरों में इस तरह जश्न भी यहां पर आम बात है, जिसकी खास झलक सॉकर खिलाड़ियों के स्वागत के दौरान दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
2: गुडनेस टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: कौन सी राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनको मेहनत में सफलता मिलती है? कौन सी राशि के लोग अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें तो उनके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है? अलग अलग राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर वायुसेना की सुविक्रेन टीम का एयर शो, आसमान में लिखा ओम, सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा।
8: सूर्य किरण जय हिंद।
7: दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर पीएम मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होंगी ईवी गाड़ियां, कल से सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ में हीटवेव का अलर्ट, अकोला और अमरावती में 45 डिग्री के ऊपर चढ़ा पारा, सड़कों पर ग्रीन नेट और प्याऊ का इंतजाम, लोगों से दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील। आम के स्वाद के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, यूपी के प्रयागराज मंडल में इस साल आमों की अच्छी पैदावार, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा और मल्लिका सहित कई वैरायटी मौजूद।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
7: भव्य दिव्य और भगवा में हुआ प्रभास पाटन का हर कोना सोमनाथ, अमृत महोत्सव पर बिखरी सांस्कृतिक विरासत की छटा। पीएम मोदी का हेलीपैड से लेकर मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो, डमरू के डुग डुग और परंपरागत वाद्य यंत्रों के नाद के बीच निकली यात्रा। और डमरू की गूंज के साथ किया गया पीएम मोदी का स्वागत, 100 कन्याओं ने कलश नृत्य किया पेश। पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने लगाए जयकारे, रोड शो के दौरान गुजरात के सीएम भी रहे साथ। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दुल्हन की तरह सजाया गया मंदिर परिसर। प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया रुद्राभिषेक। हेलीकॉप्टर से सोमनाथ मंदिर के ऊपर की गई पुष्प वर्षा, आसमान में किया शौर्य और संतुलन का बेजोड़ प्रदर्शन। सोमनाथ मंदिर पर फहराई गई धर्मध्वजा, भव्य समारोह में मंदिर के इतिहास को किया गया याद।

0: केदारनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार कुंभाभिषेक 11 तीर्थों के पवित्र जल का हुआ इस्तेमाल। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में लगी एक प्रदर्शनी में भी लिया हिस्सा। सोमनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ी जानकारियों का किया गया संग्रह। पीएम मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में गौरवशाली इतिहास के प्रतीक की दी स्वागत। स्मारक टिकट और सिक्का किया जारी। सोमनाथ में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। सोमनाथ मंदिर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का किया जिक्र। वडोदरा में सरदार धाम का लोकार्पण। पीएम मोदी जनसभा को भी कर रहे हैं संबोधित। वडोदरा में पीएम मोदी को सरदार गौरव रत्न सम्मान। समर सुधार और राष्ट्रीय विकास में सराहनीय योगदान के लिए सम्मान। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली साल पूरे होने पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में की पूजा अर्चना। कई मंत्री भी रहे साथ। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। भक्तों का आंकड़ा पहुंचा करीब 10.5 लाख के पास। केदारनाथ धाम रिकॉर्ड तोड़ने के करीब। अब तक सबसे अधिक 4,42,000 से अधिक भक्त पहुंचे धाम। बद्रीनाथ धाम में रविवार को 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। अब तक का आंकड़ा 2,68,000 के पार। यमुनोत्री धाम में कल 12,560 भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 1,68,000 से अधिक भक्त पहुंचे दरबार। गंगोत्री धाम में 10 मई को करीब 12,000 भक्तों ने किए दर्शन। अभी तक 1,66,000 से अधिक भक्त पहुंच चुके हैं। उज्जैन में महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती। भक्तों ने जमकर लगाई हर हर महादेव के जयकारे। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद दिव्य भव्य आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी। अयोध्या में शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने की पहल। बच्चों को सिखाया जा रहा संगीत। प्रसिद्ध कलाकार बच्चों को सिखा रहे संगीत। बड़ी संख्या में बच्चे ले रहे हिस्सा। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे सीएम योगी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। दिल्ली में वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भव्य अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी के नेतृत्व में हुआ समारोह। सेरेमनी में बिजनेस टाइकून डॉक्टर संजीव जुनेजा को मिला एक्सलेंस इन ब्रांड बिल्डिंग एंड कंज्यूमर ट्रस्ट अवार्ड। डॉक्टर जुनेजा ने अवार्ड अपने लाखों उपभोक्ताओं और अपनी टीम को किया समर्पित। पश्चिम एशिया संकट पर भारत सरकार अलर्ट। IGOM की बैठक। राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। हीटवेव और बाढ़ को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने ली हाई लेवल मीटिंग। आपदा प्रबंधन पर कड़े निर्देश शाह ने दिया। गर्मी के विरुद्ध जीरो कैजुअल्टी का मंत्र। प्रयागराज में इस बार आम की शानदार पैदावार होने की उम्मीद। दशहरी लंगड़ा चौसा समेत नई वैरायटी के आम दिलाएंगे किसानों को बेहतर मुनाफा। आंधी तूफान का असर कम होने से आम की फसल सुरक्षित। कुछ किसानों ने इस बार रतौल, बॉम्बे ग्रीन, अंबिका, अरुणिका और मल्लिका जैसी अन्य प्रजातियों की भी की बागवानी। प्रयागराज के खुसरो बाग में तैयार हो रही नई वैरायटी की पौध किसानों तक की जा रही है पहुंचाई जा रही है। प्रयागराज मंडल से हर साल हजारों टन आम विदेशों तक की जाते हैं निर्यात। पुलवामा के ताहब में कश्मीरी पंडितों ने शिव मंदिर में एक साथ बैठकर पीएम मोदी के सोमनाथ महोत्सव का देखा सीधा प्रसारण। भक्ति और एकता का देखने को मिला अनोखा संगम। सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी के अनुष्ठान के दौरान कश्मीरी घाटी से भी जुड़े श्रद्धालु धार्मिक एकता सांस्कृतिक जुड़ाव का दिया गया संदेश। कुंदो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता को एक और बड़ी सफलता। खुले जंगल में दो मादा चीतों को आजाद किया। अफ्रीकी देश बोत्सवानिया से भारत लाए गए थे दोनों चीते, भारत में चीतों की वापसी को लेकर बड़ी उपलब्धि। श्योपुर में सीएम मोहन यादव ने कुनो नेशनल पार्क का किया दौरा, चीता सफारी, चीता अस्पताल और निगरानी केंद्र का किया निरीक्षण। मदर्स डे पर कुनो नेशनल पार्क की चीता मादाओं पर बनी शॉर्ट मूवी हुई रिलीज, फिल्म में चीता मदर्स और उनके शावकों के संघर्ष और मातृत्व की दिखी झलक। तीन साल में जन्मे 49 शावक, अब तक 57 हुई संख्या। जयपुर की 2 साल की नन्ही परी ने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को किया हैरान, अपनी अद्भुत याददाश्त से सुपर टैलेंटेड किड का खिताब किया अपने नाम। त्रिशा शर्मा ने 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र और श्लोक किए याद, 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स को पहचानने की प्रतिभा। रामबन जिले में महाराणा प्रताप रन का हुआ आयोजन, युवाओं को नशे के खिलाफ किया गया जागरूक। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की मामा कोचिंग, फ्री होगी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। उधमपुर में नशे के खिलाफ प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान, महिलाओं को नशे के खिलाफ किया गया जागरूक। भोपाल बना ग्रीन टेक का नया चेहरा, लॉन्च हुआ एल्गी ट्री। शहरों में ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मिलेगी मदद, एक एल्गी ट्री में है 25 पेड़ों के बराबर हवा को स्वच्छ बनाने की क्षमता। इस तकनीक को विकसित करने में लगे करीब 2 साल, 50 से अधिक विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं व इंजीनियरों की टीम ने इस पर किया है काम। कोडरमा के अंशुमन ने यूपीएससी में किया कमाल, यूपीएससी आईएफएस परीक्षा में 2रा स्थान हासिल किया। पुष्कर के करडिल गांव पहुंचे सीएम भजन लाल, किसानों से की बातचीत। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, 194 करोड़ रुपए के कई योजनाओं का किया शिलान्यास। मुंबई को मिला 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया उद्घाटन। मुंबई में अंबेडकर की 135वीं जयंती पर ड्रोन शो का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के प्रथम वर्षगांठ पर शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। बगहा में ग्रामीणों ने बचाई अजगर से सीआर की जान, जंगल की ओर अजगर को लोगों ने छोड़ा। फ्रिदा कालो पर आधारित एग्जीबिशन में एथेंस ने लोगों को किया आकर्षित, वर्चुअल रियलिटी डिजिटल प्रोजेक्शन से कलाकार की दुनिया को जीवंत बनाया गया। इस प्रदर्शनी में 600 स्क्वायर मीटर स्क्रीन पर 30 मिनट का ऑडियो विजुअल शो दिखाया गया, दर्शकों को फ्रिदा की कला और जिंदगी का अनोखा अनुभव मिला। प्रदर्शनी में 1925 के बस हादसे को 3D डिजिटल प्रोजेक्शन के जरिए दिखाया गया, इसी हादसे ने फ्रिदा कालो की कला और दर्द को नई पहचान दी। एग्जीबिशन में मैक्सिकन संस्कृति से प्रेरित इंस्टॉलेशन और डे ऑफ द डेड अल्टर भी शामिल है, साथ ही फ्रिदा के मशहूर फ्लोरल ड्रेस की प्रतिकृतियां भी प्रदर्शित की गई। फ्रिदा कालो अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग्स और दर्द को कला बदलने के लिए मशहूर है दुनिया भर में, आज भी उनकी लोकप्रियता में नहीं आई कमी। चीन के ल्हासा में गोल्डन जूनियर इंटरनेशनल हिप हॉप प्रतियोगिता का 4था सीजन शुरू, युवा डांसर्स ने ब्रेकिंग और पॉपिंग डांस में दिखाया था। ₹3,650 की ऊंचाई पर आयोजित इस प्रतियोगिता में स्ट्रीट कल्चर की दिखी झलक, मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में युवाओं का जोश देखने लायक रहा। शिजांग के अलग अलग हिस्सों से आए डांसर्स ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा, 1 vs 1 बैटल में प्रतिभागियों ने अपने शानदार डांस मूव दिखाए। हिप हॉप और स्ट्रीट डांस ने कला प्रेमियों को खूब आकर्षित किया, इवेंट में लगातार डांस बैटल्स ने माहौल को ऊर्जावान बनाए रखा। ऐसे आयोजन से बच्चों के हुनर को तराशने का हो रहा है काम। चीन में हिप हॉप कल्चर को दिया जा रहा बढ़ावा। कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए पूरी तरह सज चुका है फ्रांस का ग्लैमरस शहर कांस। ड्रोन वीडियो में रेड कारपेट, लग्जरी होटल और खूबसूरत बीचों की दिखी झलक। 12 मई से होगी 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। 23 मई तक चलेगा फेस्टिवल। हॉलीवुड सितारे स्कारलेट जॉनसन, रामी मैलेक और जॉन ट्रावोल्टा की फिल्में इस साल कांस में होगी प्रीमियर। फेस्टिवल में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज और फिल्म मेकर्स जुटेंगे। भोजन निर्देशक पार्क चैन वूक इस साल मुख्य प्रतियोगिता जूरी के संभालेंगे कमान। वहीं स्टेवन सोडाबर्ग और रॉन हवार्ड को भी अपनी फिल्म में करेंगे पेश। फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म द इलेक्ट्रिक किससे होगी। फिल्म 1920 के पेरिस की कहानी पर आधारित है कॉमेडी ड्रामा फिल्म। स्विट्जरलैंड में क्वींस फाइट प्रतियोगिता का आयोजन। हजारों की संख्या में दर्शकों ने खेल का उठाया लुत्फ। पारंपरिक हेरेंस गायों ने एक दूसरे से की जोर आजमाइश। सिर बढ़ाकर एक दूसरे को पीछे ढकेलने पर मिलती है जीत। करीब 40 मिनट तक चलती प्रतियोगिता, विजेता को मिलता है क्वीन ऑफ द क्वींस का खिताब। बीस के दशक में शुरू हुई थी खेल की यह परंपरा, अल्पलाइन संस्कृति का बन चुका है अहम हिस्सा। प्रतियोगिता के साल भर किसान गायों को करते हैं तैयार। मेहनत, धैर्य और पशुओं से गहरे जुड़ाव का प्रतीक बना यह खेल। स्लोवेनिया में अर्काडियन महोत्सव की धूम। एक साल सैकड़ों कलाकारों ने बजाया अर्काडियन वाद्यंत्र। ब्लैक ब्लेड के किनारे हुए 450 कलाकारों ने पेश की लोक धुन। संगीत में हुआ माहौल। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 2026 यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का उद्घाटन। दुनिया भर से करीब 15 करोड़ दर्शक देखते हैं समारोह। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के 35 प्रतिनिधिमंडलों ने लिया हिस्सा। वियना के टाउन हॉल में समारोह का आयोजन। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट विश्व के सबसे अधिक देखे जाने वाली प्रतियोगिता। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं अरबों व्यूज। चीन ने तियानझोउ 10 कार्गो यान को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। वेनचांग लॉन्च साइट से हुई लॉन्चिंग। लॉन्च के करीब 10 मिनट बाद तियानझोउ 10 अपने निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा। यान के सोलर पैनल खुलते ही मिशन को पूरी तरह सफल किया गया घोषित। तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो यान में भेजे गए बेहद जरूरी सामान, इसमें स्पेस सूट, ईंधन, वैज्ञानिक प्रयोगों के उपकरण शामिल। तियानझोउ 10 जल्द ही तियांगयोंग स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग प्रक्रिया पूर्ण करेगा। चीन की मानव अंतरिक्ष परियोजना के तहत यह 5वां कार्गो रिसप्लाई मिशन। मिशन के साथ लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट ने अपना 641वां अभियान पूरा किया। चीन लगातार अपने स्पेस स्टेशन मिशनों को दे रहा रफ्तार। अनन्या पांडे लक्ष्य ललवानी की रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर आउट। लव, इमोशन और अग्रेशन से भरपूर। 22 मई को होगी रिलीज।
1: इतने बड़े फ्यूचर में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं।
0: करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश का नया रियलिटी शो देसी ब्लिंग ओटीटी पर मचाएगा धमाल। 20 मई को नेटफ्लिक्स पर होगा स्ट्रीम।
2: इट वॉज लॉट ऑफ स्ट्रगल बट आई हैव रीच्ड अ मार्क टू बी अ मिलियनेयर।
0: रैपर और सिंगर योयो हनी सिंह का नया गाना बॉडी रोल रिलीज। नौरा फतेही ने गाने में दिखाए बेहद बोल्ड और स्टाइलिश डांस मूव्स। बॉक्स ऑफिस पर बंबर कमाई के बाद भूत बंगला ओटीटी पर देगी दस्तक। 12 जून को नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में होगी स्ट्रीम। रिलीज से पहले रामचरण जानवी कपूर की स्पोर्ट्स ड्रामा पैडी के टिकट की रिकॉर्ड बिक्री, 4 जून को फिल्म दुनिया भर में होगी रिलीज। तिरपनवे दिन धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1795 करोड़ पहुंचा, दर्शकों का मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स। बंबर कमाई के बावजूद धुरंधर 2 नहीं तोड़ पाई दंगल का रिकॉर्ड, चीन और गल्फ कंट्री में बैन की वजह से रिकॉर्ड तोड़ने से दूर धुरंधर 2। अक्षय के भूत बंगला ने दुनिया भर में चौथे वीकेंड भी काटा गदर, 24वें दिन 3,95,00,000 का कारोबार, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 237 करोड़ पहुंचा। दूसरे वीकेंड भी राजा शिवाजी की बंपर कमाई, ग्लोबल कलेक्शन 76 करोड़, रितेश तोड़ेंगे 10 साल पुरानी मराठी फिल्म सराट का रिकॉर्ड। माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 हृदयम ने हॉलीवुड मूवी माइकल को दी टक्कर, पहले वीकेंड फिल्म ने 7 करोड़ का किया बिजनेस। खतरों के खिलाड़ी 15 में दिखेंगी फरहाना भट्ट, बोली असली लड़ाई कंटेस्टेंट से नहीं अपने डर से होती है। तमिलनाडु के सीएम विजय की आखिरी फिल्म जननायकन 2 सप्ताह में रिलीज होने की उम्मीद, कहा सर्टिफिकेट मिलते ही जल्द होगी रिलीज। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे फिल्म निर्माता डीवी दानिया, विधि विधान से की भगवान वेंकटेश्वर की पूजा। कृष्णावतारम टैक्स फ्री फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने किया ऐलान। जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म बालन द बॉय, मां बच्चे की भावनात्मक रिश्ते पर आधारित है फिल्म।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: कौन सी राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनको मेहनत में सफलता मिलती है? कौन सी राशि के लोग अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें तो उनके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है? अलग अलग राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की मिसाल ही नहीं बल्कि इंसानों के मददगार बनते जा रहे हैं। इंसान और मशीन का यही मेल नजर आया 28वें चीन बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हाईटेक एक्सपो में। आइए देखते हैं।
8: नाचते गाते रोबोट तो कहीं पियानो पर हाथ आजमाते रोबोट्स, कहीं घरेलू कामकाज में माहिर रोबोट्स तो कहीं समुद्र की गहराइयों में उतरने को तैयार रोबोट्स। ये नजारा है 28वें चीन बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हाईटेक एक्सपो का, जहां एआई और आधुनिक तकनीक से लैस कई रोबोट्स और रोबो पार्ट्स को प्रदर्शित किया गया। इसमें आकर्षण का केंद्र बना एक्सपो में डेब्यू करने वाला मरीन रोबोट ओर्का, पानी के नीचे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी यूनिवर्सल बॉडी और इंटरचेंजेबल रोबोटिक आर्म्स हैं, जिसकी बदौलत ये पानी के नीचे सफाई, ऑफशोर फोटोवोल्टिक मेंटेनेंस और ऑफशोर विंड फार्म ऑपरेशंस जैसे जटिल काम कर सकता है। बीजिंग ई टाउन के ह्यूमनॉइड रोबोट ने भी भीड़ का ध्यान खींचा, जहां रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाने वाले रोबोट्स प्रदर्शित किए गए हैं। एक्सपो में स्पेशली स्केल रोबोट सेगमेंट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते और म्यूजिक पर नाचते दिखे लोगों ने भी इसकी जमकर तस्वीरें खींची। पचास हजार वर्ग मीटर में फैले इस एक्सपो में 6 थीम वाले जोन थे, जिनमें आईटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा, ग्रीन लो कार्बन, डिजिटल इकोनॉमी और क्षेत्रीय इनोवेशन शामिल थे। इनके तहत 800 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन इस एक्सपो में शामिल हुए। रिपोर्ट को न्यूज टुडे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to... But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: Your Saturday nights will never be the same.
10: The biggest hits back to back in the mix.
11: Get ready for the biggest mix show on the planet.
12: The Tailgate Block Party.
9: The Tailgate Block Party.
11: 6 hours nonstop. Nonstop.
12: The best DJs from around the world.
9: The Tailgate Block Party.
11: Saturday night.
9: 8 p.m. Eastern.
12: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
11: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण। इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक। प्रधानमंत्री ने की महादेव की आराधना। सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम का एयर शो। आसमान में लिखा ओम। सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का लोकार्पण किया। छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग। इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा। क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम।
6: गुड गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
13: देश देश।
18: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है 7 बजे की 7 गुड न्यूज का। आपको दिखाएंगे 7 अच्छी खबरें। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज, उत्तराखंड में पवित्र चार धाम यात्रा चल रही है और इस यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 1 यही है, चार धाम यात्रा में पहुंचे 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। चार धाम यात्रा शुरू होते ही इस बार भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। अटूट आस्था और विश्वास, इस मेले में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों से और विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में।

0: चार धाम आस्था और विश्वास की सबसे बड़ी यात्रा, जहां भक्ति और श्रद्धा का संगम देखने के लिए मिलता है, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। और चार धाम यात्रा शुरू होते ही इस बार भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि यात्रा शुरू होने के महज 20 दिनों के भीतर ही 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में जो अब तक श्रद्धालुओं की संख्या है, 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर तरफ यात्रा का उत्साह इस समय दिखाई दे रहा है। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे लंबा सा जाम भी दिखाई दे रहा है, हालांकि ये जाम थोड़ी देर, कुछ देर जब गाड़ियाँ बीच में कहीं कहीं पर फंस जाती हैं तब ये देखने को मिलता है, लेकिन उत्साह जो है वो यात्रा की लंबी कतार, 2 मिनट में लगभग आधा किलोमीटर की लंबी लाइन सड़क मार्ग पे दिखाई दे रही है। ऐसे में जो यात्रियों का उत्साह है वो हर तरफ दिखाई दे रहा है।
0: सबसे ज्यादा उत्साह बाबा केदार के दरबार में देखने को मिल रहा है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु लंबी पैदल यात्रा तय कर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं।
2: चारों धाम की यात्रा करनी है हमें, जिसमें यमुनोत्री की यात्रा कर चुके हैं, गंगोत्री की यात्रा कर चुके हैं, केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं। काफ़ी भीड़ श्रद्धालुओं की इन धामों पे चल रही है और रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक चल रहा है।
0: गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और सरकार भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैफिक और ठहरने की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।
3: आप ये देख सकते हैं किस तरह से तीर्थयात्रियों के जो वाहन है वो लगातार यमुनोत्री धाम की ओर रुख किए हुए हैं। पुलिस कर्मी यहाँ पर जो तैनात है किसी तरह से तीर्थयात्रियों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है।
0: चारधाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह मेडिकल कैंप, पुलिस सहायता केंद्र और हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मई का महीना है लेकिन मौसम भी चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का पूरा साथ देता दिखाई दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों सुहावना मौसम यात्रियों के सफर को और भी सुखद बना रहा है। कहीं हल्की ठंडी हवाएं श्रद्धालुओं को राहत दे रही हैं, तो कहीं बादलों और बर्फ से ढके पहाड़ यात्रा के अनुभव को और भी दिव्य बना रहे हैं। यही वजह है कि श्रद्धालु बिना किसी बड़े परेशानी के उत्साह और भक्ति के साथ चारधाम की यात्रा पूरी कर रहे हैं। पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने यात्रियों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD देहरादून केंद्र ने अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक 12 और 13 मई के लिए पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन 2 दिनों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश, गरज चमक और ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। खासकर चारधाम यात्रा मार्ग और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है। ऐसे में सभी यात्रियों को पहले से अलर्ट किया गया है, ताकि उन्हें यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे हो गए हैं और इस शुभ अवसर पर सोमनाथ मंदिर में भव्य उत्सव मनाया गया और इस मौके पर सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया गया और इस मौके पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने भव्य एयर शो पेश किया। हमारी आज की दूसरी अच्छी खबर यही है, सोमनाथ के शिखर पर पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक। सोमनाथ के लिए आज का दिन बहुत ही खास रहा, क्योंकि आज के ही दिन यानी 11 मई 1951 को मंदिर के पुनर्निर्मित होने के बाद हुए उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और यह दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान, आस्था और अदम्य चेतना का प्रतीक है। इसे अनेक बार तोड़ा गया लेकिन हर बार ये पहले से ज्यादा भव्य होकर खड़ा हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा रोड शो किया, जिसके बाद भगवान शिव को समर्पित सोमनाथ मंदिर में प्रवेश किया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वहां पर पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभाभिषेक किया, जिसमें देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों के पवित्र जल से अभिषेक किया गया। साथ ही साथ मंदिर के शिखर पर इसका छिड़काव किया गया। इस मौके पर भारतीय सेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भव्य एयर शो भी दिखाया और इस एयर शो में 6 हॉक MK-132 विमानों ने ऐतिहासिक मंदिर परिसर के ऊपर एरोबेटिक फॉर्मेशन में उड़ान भरी।
5: नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज सोमनाथ अमृत महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम किया गया। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री करीब 1.5-2 घंटे रुके, जिसके अंदर कुंभाभिषेक से लेकर ध्वजारोहण और साथ ही सूर्य किरण का एयर शो किया गया। जिस तरह से मंदिर की विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी बात प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में कही कि सोमनाथ को जिसके नाम में सोम हो उसका कभी अंत नहीं हो सकता, और वही चीज़ किस तरह से राष्ट्र के निर्माण के लिए उपयोगी रहती है, उन सब की बात की। जो संकल्पना थी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की, वो सरदार पटेल ने किस तरह से की थी और उसके बाद किस तरह से ये पूरा पुनर्निर्माण हुआ, उस पर प्रधानमंत्री ने विस्तृत तरीके से बात की है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि आज जो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस जो है उसको लेकर

0: मलेथा सहित कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने इसका भव्य स्वागत किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए। भगवान विश्वनाथ जगदीशिला के दर्शन कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा का मुख्य उद्देश्य चार धाम यात्रा के अतिरिक्त उन प्राचीन ऐतिहासिक और सिद्धपीठ स्वरूप देवालयों को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करना है, जो वर्षों से अपेक्षित हैं। इस यात्रा के माध्यम से न केवल धार्मिक चेतना को जागृत किया जा रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन और स्वरोजगार की संभावनाओं को भी मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। यात्रा टिहरी जनपद के बाद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा जनपदों का भी भ्रमण करेगी।
1: सुना जगदीशिला डोली यात्रा इस समय 27वें वर्ष में उत्तराखंड के भ्रमण पर निकली है और ये हरिद्वार से चली है 29 तारीख को, अप्रैल को, और पूरे 10,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके 25 तारीख मई को जो गंगा दशहरा है, 24 तारीख रात्रि को ये बिसोन पर्वत पहुँचेगी और 25 तारीख को गंगा दशहरा स्नान करके सबको आशीर्वाद देके इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य है जो हमारी देव संस्कृति और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य है जो हमारे चार धाम हैं, इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में हजार ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो उन हजार शक्तिपीठों को धाम का स्वरूप मिले। और अब तक 27 साल की यात्रा में डोली ने जो है 462 देवालयों को चिन्हित किया है कि इनको धाम का स्वरूप मिले।
0: अब पारंपरिक खेती के साथ साथ हाई वैल्यू फार्मिंग का भी नया दौर शुरू हो गया है। किसान अब कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी एक खेती है अंजीर की खेती, जिसे सूखे मेवों का राजा कहा जाता है। सहारनपुर के किसान अंजीर की खेती को से अपनी तकदीर बदलने में जुटे हैं। आज की हमारी चौथी गुड न्यूज यही है, अंजीर की खेती से बदल रही किसानों की किस्मत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गांव में खुशहाली देखने को मिल रही है, जहां किसान खेती कर इलाके में नई पहचान बना रहे हैं। जिस अंजीर को लोग अब तक केवल महंगे ड्राई फ्रूट के रूप में ही बाजार में देखते थे, वही अंजीर अब सहारनपुर की मिट्टी में लहलहा रहा है।

0: जहाँ तक नजर जाएगी केवल और केवल अंजीर यानी रेड गोल्ड के पेड़ नजर आएंगे। लाल सोना इसलिए इसे बोला जा रहा है क्योंकि ये वो फल है जिसकी बाजार में कीमत भी ऊंची है और मांग भी लगातार बढ़ रही है। और गुड न्यूज है कि पोषण से भरपूर ये फल अब किसानों के लिए सूर्य जैसी कमाई का जरिया बनता जा रहा है। किसानों में कम लागत, लंबी अवधि तक उत्पादन और शानदार मुनाफे की वजह से अंजीर की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कई किसान पारंपरिक खेती छोड़ रेड गोल्ड यानी अंजीर को अपनी आय बढ़ाने का नया जरिया बना रहे हैं।
1: अभी इस संस्थान में जहां हम खड़े हैं, जिसका नाम भगवान धन्वंतरी धाम रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका काम ही अनुसंधान करना है। और यहां 2.5 बीघा खेती हमारे पास अंजीर की है। टोटल हमारे पास 12 बीघा अंजीर का बाग लगा है। हमारे पास अभी ये 5 साल के पेड़ हैं और अगर हम इसकी उपज की बात करें तो टोटल मिलाकर 30 क्विंटल के आसपास हमारे पास अभी इसकी फसल पैदा हो जाती है।
0: सहारनपुर के सुधीर पिछले कई वर्षों से ऑर्गेनिक खेती और नए कृषि प्रयोगों के लिए खास पहचान बना चुके हैं। खेती को सिर्फ पारंपरिक तरीके तक सीमित रखने के बजाय उन्होंने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और प्रोसेसिंग पर भी काम किया है। उनके फैक्ट्री में अचार, मुरब्बा, जैम और जेली जैसे कई उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसी दौरान बाजार में अंजीर चटनी की बढ़ती डिमांड ने उन्हें नई दिशा दिखाई। शुरुआत में वे बाजार से महंगे दामों पर अंजीर खरीदकर अपने उत्पाद तैयार करते थे, लेकिन लगातार बढ़ती लागत को देखते हुए उन्होंने खुद अंजीर की खेती करने का फैसला लिया।
1: हम प्रोसेस यूनिट चलाते हैं जिसमें अचार, मुरब्बे आदि हम बनाते हैं। उसी में से एक हमारा प्रोडक्ट था अंजीर चटनी। इसकी बाजार में अच्छी डिमांड है और वैद्य और हकीम डॉक्टर लोग इसको मांगते हैं और अपने रोगियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए अंजीर का बड़ा महत्व है। जब हम बाजार से खरीद करके लेकर के आते थे तो ये महंगा फल होने के नाते महंगा ही पड़ता था। और आज उस समय विचार आया कि हम क्यों ना इसकी खेती करें और यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल इसके अनुकूल।

0: है और हमने खेती शुरू कर दी। आज हम 12 बीघा का अंजीर का बाग लगा करके उससे फसल ले रहे हैं।
1: सुधीर ने अंजीर की खेती शुरू करने से पहले मिट्टी, मौसम और जलवायु पर गहराई से रिसर्च की। इसके बाद उन्होंने अपने खेतों में अंजीर के पौधे लगाए। आज उनके करीब 12 बीघा खेत में 2000 से ज्यादा अंजीर के पेड़ तैयार हो चुके हैं। सहारनपुर का तापमान और क्लाइमेट अंजीर की खेती के लिए बेहद अनुकूल साबित हुआ और यही वजह है कि उनके बाग में बेहतर उत्पादन हो रहा है और अब ये खेती उनकी आय का बड़ा स्रोत बन चुकी है। दरअसल अंजीर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अंजीर में फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। लोग इसे ड्राई फ्रूट, हेल्थ फूड और कई आयुर्वेदिक उत्पादों में इस्तेमाल करते हैं। ताज़ा अंजीर के साथ साथ सूखा अंजीर भी ऊंचे दामों पर बिकता है, जिससे किसानों को बेहतर आमदनी हो रही है।
0: लागत की अगर बात करें, यदि किसान भाई इसके पौधे लगाए तो 150 रुपए के आसपास 2 फीट का इसका पौधा रहता है और लागत कोई ज़्यादा नहीं आती। एक बार पौधा लगाना है, किसी प्रकार का कोई कीटनाशी या अन्य दवाओं की कोई खर्च वाली इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में आसानी से फल दे देता है और यहाँ का क्लाइमेट इतना जाता है। और आज इससे हम लगभग अगर लागत की बात करें तो बहुत कम है और उपज और इससे आमदनी अधिक है।
1: इन तस्वीरों से साफ है कि सहारनपुर के खेतों में उगता यह अंजीर केवल एक फल नहीं बल्कि बदलती खेती, नई सोच और किसानों की बढ़ती आर्थिक ताकत की नई पहचान है, जो ये साबित कर रहा है कि अगर किसान नई तकनीक और नई फसलों को अपनाए तो खेती भी बड़ी सफलता और बेहतर भविष्य का रास्ता बन सकती है। सहारनपुर से राहुल कुमार, गुड न्यूज टुडे।
2: हम सभी जानते हैं कि साफ हवा हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है और इस हवा के लिए प्रदूषण पर काबू करने के लिए शहरों में पेड़ लगाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन भोपाल में अब एक ऐसी मशीन लगाई गई है जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि 25 पेड़ों के बराबर होगी। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज यही है, भोपाल में पहली बार एलगी ट्री तकनीक का शुभारंभ। भोपाल में पेड़ के बराबर एक ऐसी मशीन लगाई गई है जिससे दावा यह किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये मशीन हवा को साफ करने में मदद करेगी। दरअसल एल्गी वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का काम करती है।
3: ये जो खंबे जैसी चीज आप देख रहे हैं ये एल्गी ट्री है जो शहर के माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगी। ये कुदरत का बनाया हुआ कोई पेड़ नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच ले और ऑक्सीजन पैदा करे, बल्कि ये आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीक का ऐसा कमाल है जिसे शहरों में घटते पेड़ों की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। भोपाल अब देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी एल्गी ट्री को लगाया गया है। इसे भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में स्वामी विवेकानंद पार्क में लगाया गया है।
4: शुरुआत बहुत अच्छी है, शुरुआत हुई है यहां अशोका गार्डन क्षेत्र में, उसके बाद धीरे धीरे इसको पूरे भोपाल में, फिर पूरे मध्य प्रदेश में और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे।
3: लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और प्रदूषण में हो रहे इजाफे के बीच भोपाल के माहौल और यहाँ की आबो हवा को स्वच्छ बनाने के लिए एल्गी ट्री का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। ये एल्गी ट्री माइक्रो एल्गी आधारित सिस्टम है। जानना जरूरी है कि माइक्रो एल्गी जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ताजे या खारे पानी में पैदा होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की रोशनी का उपयोग करके तेजी से बायोमास पैदा करते हैं। ये दुनिया में 50% ऑक्सीजन पैदा करते हैं और हवा को साफ करने में बेहद उपयोगी होते हैं।
4: अभी तो फिलहाल हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से, भोपाल में भी अशोक गार्डन क्षेत्र से जो हमने पहला लगाया है। इसके बाद हमारे कई सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि कुंभ में भी हमारा प्लान है कि कुंभ में हम इसको लगाने का प्लान कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, उनको अपना प्रस्ताव देंगे कि अगर वो लगाते हैं इस कुंभ में तो इतनी सारी भीड़ होती है, इतना सारा कार्बन इमिशन होता है, करोड़ों लोग आते हैं उस टाइम में, तो उस समय के लिए हम इसको प्रपोज करेंगे।
3: जानकार मानते हैं कि अगर एल्गी ट्री की तकनीक का इस्तेमाल शहरों में बड़े पैमाने पर हो तो कार्बन लोड कम करने, तापमान संतुलित रखने और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सकती है। भोपाल से धर्मेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जयपुर में नगर निगम ने सफाई की एक अनोखी मुहिम की शुरुआत की। यहां पर नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी झाड़ू, मशीनें और डंपर्स के साथ शहर में सफाई की शुरुआत करने के लिए उस समय निकले जब पूरा शहर सो रहा था। हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज यही है, आधी रात को ऑपरेशन क्लीन स्वीप से सफाई। स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर को नंबर वन बनाने के लक्ष्य के साथ ही नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आया। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चले ऑपरेशन क्लीन स्वीप में नगर निगम ने परकोटे की तंग गलियों और बाजारों में जमे गंदे कचरे को पूरी तरह से साफ किया।
5: रात को जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में होती है उस समय जयपुर की गलियों में स्वच्छता के ये प्रहरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। झाड़ू, मशीनें और डंपरों के साथ मोर्चा संभाले हुए सफाई कर्मी जिनका बस एक ही मकसद है, शहर को साफ सुथरा बनाना। दरअसल जयपुर में इन दिनों एक मेगा क्लीनिनेस ड्राइव चलाई जा रही है जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। इसके तहत आधी रात को जब सड़कें सुनसान होती हैं और शहर की तंग गलियां खाली, उसी दौरान ये सफाई अभियान शुरू होता है। इस मिशन की समीक्षा करने पूरी रात गश्त लगाते हैं जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा। जहां एक तरफ सफाई कर्मी सड़कों गलियों को साफ करने निकलते हैं, वहीं ये दोनों अफसर अपनी स्कूटी पर बैठकर निरीक्षण करते नजर आते हैं।
6: ये जो है ये एक अभियान है, ये एक शुरुआत है जो जयपुर शहर को हमने क्लीन और ग्रीन बनाने का, क्लीन करने के लिए हमने पूरा अपने ताकत लगा दी है और ये हमारी जो प्रयास है वो आगे भी रहेगी। अभियान के रूप से हमने सभी को एक्टिवेट कर दिया, ये रहेगा।
5: जिन तंग गलियों में सुबह की भीड़ भाड़ में कदम रखना भी मुश्किल हो, ऐसे में वहाँ सफाई के लिए वक्त और जगह निकालना एक टास्क है। यही वजह है कि आमतौर पर सुबह सवेरे होने वाली सफाई को रात के सन्नाटे और अंधेरे में अंजाम दिया जा रहा है। इस ऑपरेशन क्लीन स्वीप में करीब 2000 सफाई कर्मी पूरी रात मैदान में डटे हैं। डीएम और नगर निगम आयुक्त की निगरानी में चलाया जा रहा है सफाई अभियान। शहर भर को 36 बीट्स में बांटकर निगरानी रखी जा रही है। सभी सफाई टीमें नाइट जैकेट, टॉर्च, गमबूट, डंपर, हुपर जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस है। आने वाले समय में सड़क पर कचरा फेंकने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए खिलाफ सख्त जुर्माना लगाने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन इस सफाई मिशन को सिर्फ अभियान तक सीमित न रखकर नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने की कोशिश में है। विशाल शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।
2: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आज उस समय फिर से जीवंत हो उठा जब वहां पर दो नए मेहमानों का आगमन हुआ। दरअसल कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से आए दो चीतों को आज छोड़ा गया है। ऐसे में हमारी आज की आखिरी यानी कि सातवीं गुड न्यूज यही है, कूनो के जंगल में फिर गूंजी दो चीतों की दहाड़। कूनो के जंगलों में दूसरे देशों से आए चीते न केवल रह रहे हैं बल्कि वो यहाँ पर शावकों को जन्म भी दे रहे हैं।
7: मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में दो नए मेहमान आए हैं। यहां बोत्सवाना से दो मादा चीता लाई गई हैं। इन चीतों को क्वारंटीन और अनुकूलन काल पूरा करने के बाद कूनो नदी के पास खुले वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। आज डॉक्टर मोहन यादव ने दो और चीतों को बाड़े से आजाद कर कूनो नदी के जंगलों में छोड़ा। दो और नए मेहमानों से अब कूनो में चीतों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है।
8: मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया है। आज पालनपुर कूनो में हमने बोत्सवाना के द्वारा लाए गए चीते में दो मादा चीतों को छोड़ करके खुले जंगल में, खुले वातावरण में प्राकृतिक के साथ सह अस्तित्व के भावना को प्रकट करते हुए उनको छोड़ा है।
7: इसी साल फरवरी के आखिर में बोत्सवाना से 9 नए चीते कूनो नेशनल पार्क लाए गए थे। इनमें 6 मादा और 3 नर शामिल हैं। यहाँ लाने के बाद इन सभी को क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटीन की अवधि पूरी करने के बाद सभी को धीरे धीरे जंगलों में छोड़ा जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के बाद इन्हीं 9 में से 2 चीतों को आज खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। पिछले 3 साल में कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो ये बताता है कि कूनो की आबो हवा अब चीतों को पसंद आने लगी है। इसका प्रमाण है कि कूनो में लगातार चीतों की संख्या बढ़ रही है। एमपी में अब चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। सबसे पहले 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए। 18 फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 11 चीते लाए गए। इसके बाद 28 फरवरी 2026 में बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए। क्वारंटीन की अवधि पूरा करने के बाद इन चीतों को गांधी सागर और नोरादेही जैसे अन्य अभयारण्यों में भी बसाने की तैयारियां हो रही हैं। इधर कूनो नेशनल पार्क की हद लांघकर राजस्थान पहुंचे एक चीते को फिर से घर वापस लाया गया है। KAP2 चीता पिछले 23 दिनों से कूनो से दूर राजस्थान के रणथंभौर के इलाके में ही घूम रहा था। ऐसे में वन विभाग KAP2 चीता को वापस रणथंभौर से कूनो वापस लाया गया है। चीता KAP2 अप्रैल महीने में कूनो से निकलकर राजस्थान के कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में पहुंचा और फिर वहां से निकलकर सवाई माधोपुर जिले की सीमा में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पहुंच गया था। हालांकि कूनो की ट्रैकिंग टीम और रणथंभौर की स्थानीय टीम चीते की निगरानी में जुटी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से कूनो प्रबंधन ने चीते को वापस लाने का फैसला लिया। इसके बाद रेस्क्यू टीम चीते की लोकेशन पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे ट्रैंकुलाइज कर उसे वापस ले आया गया। श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो ये थी 7 बजे की 7 अच्छी खबरें। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
10: बंगाल में बीजेपी आई, घुसपैठियों की शामत आई। बांग्लादेश भागते अवैध घुसपैठिए, सच क्या? बंगाल के अंदर बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा। देखिए प्यार की सबसे भावुक तस्वीर। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल शुभम के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
11: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए पीएम मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और फैक्ट चेक में आपका बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है और कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाई उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही अवैध घुसपैठिए राज्य छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। क्या है वायरल दावे की और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर में आज बात होगी उस वीडियो की, जिसके जरिए लोग दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बंगाल पुलिस ने जमकर पीटा। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध घुसपैठिए राज्य को छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।

0: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने 207 सीटों को जीतकर बंगाल में बदलाव की नई कहानी लिख दी है। टीएमसी को सत्ता से बेदखल करके बीजेपी ने बंगाल में भगवा फहरा दिया।
1: विधि द्वारा स्थापित हो
0: शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सीएम पद की शपथ ले ली है।
1: आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिबो।
0: इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही भारी संख्या में अवैध घुसपैठिए राज्य छोड़कर बांग्लादेश जाने लगे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को कहीं जाते हुए देखा जा रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि वीडियो पश्चिम बंगाल की है, घुसपैठिए बांग्लादेशी छोड़ने लगे, हजारों की संख्या में जालीदार टोपी वाले कबाड़ उठाकर देश के दूसरे हिस्सों में निकल चुके हैं। ये सावधान रहने का वक्त है, अगर ये दरिंदे आपके गांव, शहर, कस्बे में दिखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को कहीं जाते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध घुसपैठिए बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जाने लगे हैं। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे, ये हमारा मकसद था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक को इसे हुगली का बताते हुए सुना जा सकता है। साथ ही साथ वो एक जगह इज्तिमा का भी जिक्र कर रहा है। इज्तिमा मुस्लिमों का एक धार्मिक समागम होता है। ऐसे में हमें वायरल हो रहे दावे पर शक हुआ। इसके अलावा सर्च में हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें पश्चिम बंगाल से मुस्लिमों के पलायन का जिक्र हो, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर ये खबर सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकल कर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर ये दावा सच है तो उसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूबर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला जिसे उन्होंने 5 जनवरी 2026 को शेयर किया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो इज्तिमा का है जिसका आयोजन हुगली जिले में किया गया था और ये उसी में शामिल होने जा रहे लोगों की भीड़ है। यहाँ इस वीडियो को 5 जनवरी को शेयर किया गया था जबकि बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। यहाँ से ये तो साफ हो गया कि वायरल वीडियो बंगाल चुनाव के नतीजों से कोई संबंध नहीं रखता। सर्च में हमें एक और वीडियो मिला जिसे एक इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया था। वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 2 से 5 जनवरी के बीच विश्व इज्तिमा का आयोजन किया गया था। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में होने वाला यह आयोजन बिस्वा इज्तिमा नामक एक विशाल वार्षिक इस्लामिक समागम का हिस्सा है जिसका मुख्य आयोजन आमतौर पर बांग्लादेश में होता है। सर्च के दौरान हमें एक न्यूज रिपोर्ट भी मिली जिसमें हुगली में आयोजित इस कार्यक्रम का जिक्र है। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल बिस्वा इज्तिमा पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के दादरपुर स्थित पुइनन में आयोजित हो रहा है। इस क्षेत्र में पिछला बिस्वा इज्तिमा 1992 में हावड़ा निब्रा इलाके में आयोजित किया गया था। 33 साल के अंतराल के बाद ये विशाल धार्मिक समागम हुगली जिले में हो रहा है। साफ है वायरल हो रहा वीडियो बंगाल के चुनाव नतीजों से संबंधित नहीं है, ये इसी साल पश्चिम बंगाल में सम्पन्न इज्तिमा का है जिसका आयोजन 2 से 5 जनवरी 2026 के बीच हुगली जिले में किया गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर बंगाल पुलिस ने एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नाम शपथ करते थे
3: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल के राज को खत्म कर पहली बार सत्ता हासिल की। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में कई जगहों से हिंसा की खबरें सामने आई। 6 मई की रात को बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी निजी सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बीच पश्चिम बंगाल का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस वाले एक भीड़ पर लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी चार्ज के बाद लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते हुए देखे जा सकते हैं। इसे शेयर करने वालों का दावा है कि ये भीड़ एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों की है जिन्होंने बंगाल के अंदर बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाया, जिसके बाद पुलिस ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, बंगाल में आतंकियों की अब खैर नहीं, दौड़ा दौड़ा कर कूटा जा रहा है। वीडियो पर मौजूद टेक्स्ट में लिखा है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर किया लाठी चार्ज। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल पश्चिम बंगाल का बताकर ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में पुलिस वाले एक भीड़ पर लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी चार्ज के बाद लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते भी दिखे। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर बंगाल पुलिस ने एक धर्म विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को पुलिस ने जमकर पीटा। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे, ये हमारा मकसद है। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी प्रदर्शन का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन इस दौरान हमें कहीं पर भी बांग्ला आवाजें सुनने को नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई इस भीड़ का संबंध पश्चिम बंगाल से होता तो कहीं ना कहीं बांग्ला आवाजें जरूर सुनाई देती, लेकिन कहीं कुछ नहीं सुनने को मिला। इसके अलावा वीडियो में आई लव मोहम्मद की आवाजें सुनाई दे रही है। वीडियो में कहीं पर भी बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा सुनाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई हाल फिलहाल में प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की सच्चाई की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि अगर ये वीडियो वायरल किया जा रहा है तो वीडियो कब का है और कहाँ का है जिसको लेकर लोग ये दावा कर रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी प्रदर्शन के पुराने वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें इसका लंबा वर्जन 26 सितंबर 2025 की एक वीडियो रिपोर्ट में मिला। रिपोर्ट के मुताबिक बरेली में आई लव मोहम्मद से संबंधित प्रदर्शनों के बाद हिंसा भड़क उठी थी और कई इलाकों में पत्थरबाजी भी हुई थी। इसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस और अतिरिक्त बलों ने लाठी चार्ज किया था। ये वीडियो उसी वक्त का है। सर्च के दौरान हमें एक और आधिकारिक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर काफी हंगामा हुआ था। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर लोगों को समझाने की कोशिश की। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। दरअसल ये वीडियो पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यूपी के बरेली का है। ये वीडियो सितंबर 2025 में आई लव मोहम्मद से जुड़े विवाद से संबंधित है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: जय सोमनाथ, अपराजय सोमनाथ। सनातन का स्वाभिमान पर्व, पूर्णता की ओर राम मंदिर, एक साल सोना नहीं। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
6: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों दो छोटे बच्चों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये नन्हे कलाकार अपनी शानदार कलाकारी और एक्रोबैटिक स्किल्स से हर किसी को हैरान कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में इन बच्चों का संतुलन और ताकत देख लोग दंग रह गए। वीडियो में दोनों बच्चे खुले मैदान में बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के शानदार करतब दिखा रहे हैं। एक बच्चा दूसरे के कंधे पर खड़ा हो जाता है, फिर हाथों के बल संतुलन बनाकर अलग अलग पोज दिखाता है। दोनों मिलकर ह्यूमन पिरामिड फ्लिप्स और बैलेंस जैसे कठिन स्टंट बेहद ही आसानी से कर ले रहे हैं।

बस गुनगुनाना सीखा है, लेकिन गा रहे हैं पूरी तरह डूबकर। देखिए जरा अंदाज इनका, लगता है मंदिर से सब उठा लाए हैं, शिवलिंग दिया सब कुछ, और अब यहाँ हो रही है प्रार्थना। पर उस तरह नहीं जैसे आप और हम करते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में, मानो ये भगवान नहीं इनका सबसे प्यारा खिलौना हो। जो भी हो, बच्चे का भजन गुनगुनाना लोगों को पसंद आ रहा है। चीन के एक छोटे बच्चे ने अपनी अविश्वसनीय स्पीड से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा स्टेज पर बेहद शांत अंदाज में बैठा है, उसके हाथ में 2x2 रूबिक्स क्यूब रहता है और सामने टाइमर लगा होता है। जैसे ही टाइमर शुरू होता है, बच्चा बिजली की रफ्तार से अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर देता है। उसकी मूवमेंट इतनी तेज होती है कि सामने बैठे लोग तो क्या, कैमरा भी उसे ठीक से कैद नहीं कर पाता। अगले ही पल क्यूब पूरी तरह सॉल्व हो जाता है और वहां मौजूद लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करने लगते हैं। बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं तोड़ती, कई बार इंसान को भावनात्मक रूप से भी अंदर तक झकझोर देती है। खासकर जब कीमोथेरेपी जैसी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो बाल झड़ने जैसी चीजें भी मरीज के लिए बेहद दर्दनाक अनुभव दे जाती है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में अगर कोई दिल के साथ खड़ा रहे तो दर्द थोड़ा हल्का जरूर लगने लगता है। सोशल मीडिया पर अब ऐसा ही एक भावुक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी का दर्द बांटने के लिए खुद अपना सिर मुंडवाता नजर आ रहा है। इस वीडियो को देख हजारों लोग इमोशनल हो गए हैं और पति पत्नी के रिश्ते की खूब तारीफ कर रहे हैं। माँ तो बस माँ है, उसकी बराबरी भला कोई कहाँ कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। लोग कह रहे हैं कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं हो सकता।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। शुरुआत में एक लड़का नजर आता है जिसका वजन 80 किलो है। वो कैमरे के सामने अपनी टी शर्ट उठाकर अपना थुलथुला पेट दिखाता है, जिसे देखकर कोई भी कह दे ये बंदा अनफिट है। इसके बाद वो एक पार्क में पहुंचता है जहां कुछ फिट लड़के चिन अप्स कर रहे होते हैं। वो उनके बीच जाकर मजे लेते हुए कहता है कि वो भी एक्सरसाइज करना चाहता है। लड़के की बात सुनकर वहां कसरत कर रहा एक युवक हंसने लगता है और स्टाइल मारते हुए लड़के के पेट को थपथपाता है, मानो कह रहा हो भाई तुझसे ना हो पाएगा। इसके बाद वो उसे चैलेंज देते हुए कहता है कि चल अब ये करके दिखा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। लड़का अपना भारी भरकम बैग उस अकड़ दिखाने वाले युवक को थमाता है। बैग इतना वजनदार होता है कि पकड़ते ही वो युवक सीधा जमीन से जा सटता है। वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़का इतना भारी बोझ कंधे पर लादे कैसे घूम रहा था। अगले ही पल जो हुआ, उसने वहां मौजूद सबकी बोलती बंद कर दी। थोड़ी देर पहले जिसे सब अनफिट समझ रहे थे, उसने कैलिस्थेनिक्स के ऐसे दांव पेच दिखाए कि अच्छे अच्छे जिम जाने वालों के पसीने छूट गए। उसकी ताकत देखकर वहां मौजूद भीड़ दंग रह गई। कुल मिलाकर जिसे थुलथुला समझा जा रहा था, असल में वो फिटनेस के मामले में सबका बाप निकला।

अरूबा के रहने वाले एगमंड मोलिना ने गर्दन से बस खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 49 साल के एगमंड ने महज अपनी गर्दन से 21,737 पाउंड यानी 9,860 किलोग्राम बस को खींचकर अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। बताया जा रहा है कि इस भारी बस को उन्होंने 20 मीटर तक खींच दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड यूक्रेन के दिमित्रो हनुस्की के नाम था, जिन्होंने 2024 में 8,060 किलोग्राम वाली वाहन को गर्दन से खींचकर रिकॉर्ड बनाया था। एगमंड मोलिना को लोग ह्यूमन क्रेन यानी मानव क्रेन के नाम से भी जानते हैं। उनके कुछ और रिकॉर्ड काफी हैरान करने वाले हैं, जिनमें केवल उंगली से 159 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा एगमंड ने एक उंगली से 20 मीटर तक बस खींचने का रिकॉर्ड भी बनाया। इतना ही नहीं, कमर बेल्ट की मदद से उन्होंने 1,002 किलोग्राम यानी 1 टन से ज्यादा वजन उठाया था। यहाँ आपको बता दें कि एगमंड का वजन केवल 87 किलोग्राम है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि इस धरती पर एक से बढ़कर एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब हरकत कर सबको चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है, इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत नहीं कोई मशीन हो।

युवती का ये शानदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके शानदार एक्सप्रेशंस, ग्रेसफुल मूव्स और सादगी भरे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है। वो गाने की हर बीट पर इतनी सहजता और आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है कि देखने वाले उसकी तारीफ के बगैर रह नहीं पा रहे। खास बात ये कि उसके डांस में किसी तरह की बनावट या जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: कौन सी राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनको मेहनत में सफलता मिलती है? कौन सी राशि के लोग अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें तो उनके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है? अलग अलग राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
4: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
3: Big 12 Radio.
5: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking down.
3: And talk sports.
6: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
3: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
7: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। जय सोमनाथ, अपराजय सोमनाथ, सनातन का स्वाभिमान पर्व आज आपको दिखाएंगे। पूर्णता की ओर, राम मंदिर भव्य निर्माण का सपना होने जा रहा है साकार। और प्रधानमंत्री मोदी ने सोना न खरीदने की अपील क्यों की है, इसके पीछे की वजह भी जानिए। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण। इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक। प्रधानमंत्री ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण। छात्रों को मिलेंगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात। प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना। नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मराठा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग। इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा। क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर। महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होंगी वी गाड़ियां। कल से सभी बैठकें ऑनलाइन। आम के स्वाद के शौकीनों के लिए गुड न्यूज। यूपी के प्रयागराज मंडल में इस साल आमों की अच्छी पैदावार। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा और मल्लिका सहित कई वैरायटीज मौजूद।

0: शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जिसके पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर धूमधाम से सोमनाथ अमृत पर्व मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इस पर्व के दौरान मंदिर में विशेष पूजा पाठ के अलावा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह भी हुआ, और वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने अपने शानदार एयर शो के से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस खास मौके पर विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया।
1: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से

जहां आज सोमनाथ अमृत पर बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ जब मनाया गया तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। ये पूरा कार्यक्रम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हुआ, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे, जिनके स्वागत के लिए हेलीपैड से लेकर मंदिर तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते पर हजारों लोग और कई लोक कलाकार मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य पेश किया।

0: आर्टिस्ट के साथ हम बंगाल थीम पे उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। और भी अच्छे अच्छी ग्रुप्स हैं और स्पेशली हमने बंगाल थीम इसीलिए रखा है कि पूरे इंडिया को पता चल जाए कि हमने बंगाल में जीत हासिल कर ली है।
1: मंदिर पहुंचने के बाद सोमनाथ अमृत पर्व से जुड़े अनुष्ठान शुरू हुए, जिसमें मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी के हाथों शिवलिंग का अभिषेक कराया और फिर प्रधानमंत्री ने भगवान सोमनाथ की आरती की।
2: चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता।
1: गर्भगृह में पूजा खत्म होने के बाद वो ऐतिहासिक पल आया जब पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से कुंभ अभिषेक किया गया।
0: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार
1: और फिर वैदिक मंत्रोच्चार और भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं के बीच औपचारिक रूप से मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया।

0: इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और भगवान सोमनाथ के जयकारों से गूंज उठा।
1: हर हर महादेव।
0: सोमनाथ अमृत पर्व से जुड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान पूरे होते ही एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की ओर से एक शानदार एयर शो किया गया, जिसमें हॉक एमके 132 विमानों ने ऐतिहासिक मंदिर परिसर के ऊपर एरोबेटिक फॉर्मेशन में उड़ान भरी। एयर शो के दौरान आसमान में केसरिया, सफेद और हरे रंग का धुआं छोड़कर तिरंगे की आकृति बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, इन विमानों ने एक से बढ़कर एक फॉर्मेशन बनाकर हर किसी को रोमांच से भर दिया।
2: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम जो है, जिसका आज ये एयर शो सूर्य किरण टीम का मंदिर के ठीक ऊपर ये जो है सूर्य किरण की टीम पहुंची है और वहां पे अब ये जो है वो कर्तव्य दिखाती हुई 75 साल के महत्व को रेखांकित करने का ये अवसर है। जिस तरह से इसकी सांस्कृतिक विरासत है, भारतीय वायुसेना की ये टुकड़ी सूर्य किरण की हर बार दिल धड़क कर्तव्य दिखाती है और अब जो है सोमनाथ मंदिर के ऊपर से ये कर्तव्य दिखाए गए हैं। 10 मिनट का ये शो जिसमें सूर्य किरण की टीम अपने अलग अलग कर्तव्य दिखाती है आमतौर पर, आज इस 75 वर्ष के अमृत महोत्सव का जो आगाज है, 75 वर्ष जो है गौरवशाली क्षण, इस मंदिर का इतिहास न सिर्फ गुजरात के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, पूरे दुनिया में इसका संदेश जाना है।
0: सौराष्ट्र के समुद्र तट पर मौजूद ये मंदिर भारत की आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक है। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसकी 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने मंदिर से जुड़ा स्पेशल डाक टिकट और 75 रुपए का चांदी का सिक्का भी जारी किया।
3: ये 75 रुपए का स्मारक सिक्का

0: आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था।
1: सोमनाथ ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी ये सोमनाथ अमृत पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है।
0: जय सोमनाथ।
1: सोमनाथ से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: हर हर महादेव।
2: और अगली अच्छी खबर प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या से है, जहां मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में चल रहा काम भी जल्दी पूरा होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र ने बताया है कि निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां 30 जून तक अपना काम पूरा कर लेंगी। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरयू तट पर बन रहा भव्य संग्रहालय अब ट्रस्ट की प्राथमिकता बन चुका है। इस संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी।

0: सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
1: पहले प्रभु श्री राम का ये नया नवेला मंदिर राम भक्तों के लिए खुला और फिर मंदिर परिसर में बने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद इनके द्वार भी दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। लिहाजा देश और दुनिया भर से अयोध्या आने वाले राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का ये उत्साह और उमंग इनके आध्यात्मिक आनंद को बयां कर रहा है।
2: प्रत्येक मंदिर, चाहे परकोटे के 6 मंदिर हो, चाहे सप्तऋषि मंदिर हो, शेषावतार हो और कुबेर टीला हो, सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं ने दर्शन प्रारंभ कर दिया है। बहुत आनंद के साथ देश भर से आने वाला हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करके आनंद हो रहा है।
3: सारे मंदिरों के दर्शन हुए,
4: बढ़िया लगा।
5: हम पूरे इंडिया में इतने घूमे पर ये जो सगवट है इधर वो राम अयोध्या की बहुत बढ़िया रही और बहुत दर्शन बढ़िया से किए।
3: किसके किसके आप दर्शन किए मंदिर में?
6: सबका, राम जी के परिवार का, राम जी का, सबका, रामलला का, बहुत अच्छा लगा।
1: इस बीच श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर और दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिसर में चल रहा दूसरा काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केवल रखरखाव से जुड़ी टीम ही परिसर में मौजूद रहेगी। हालांकि परिसर से बाहर ट्रस्ट कार्यालय, विश्राम गृह और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का काम चलता रहेगा।
7: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया था कि शहीद स्तंभ, पूरे स्तंभ जो है स्मृति का, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य बाकी नहीं है और LNTTCE भी अपना कार्यभार 30 जून को यहाँ पूर्ण करके उनकी टोली चली जाएगी। केवल वह टोली बचेगी जो एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर देख रेख के लिए।
1: नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर की पूर्णता के बाद अब ट्रस्ट का पूरा जोर सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय के काम को पूरा करने पर है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक विशेष गैलरी प्रभु राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित होगी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि संग्रहालय में एक ऐसी दिव्य दर्शन गैलरी होगी जहाँ श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होगा मानो वो स्वयं मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे हों।
7: एक यह अवश्य अब निर्णय ले लिया गया है कि म्यूजियम

0: म्यूजियम में संग्रहालय में एक गैलरी इस प्रकार की होगी जहां की ऐसा लोगों को लगेगा जब वो उस गैलरी में जाएंगे कि वह मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। यानी उसमें सभी मंदिर जो बने हैं उन सब का एक तरीके से दर्शन, तो वह दिव्य दर्शन की गैलरी होगी। भगवान की मूर्ति का दर्शन, राम परिवार का दर्शन, बाकी सभी मंदिरों का दर्शन। तो वो आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के तहत उस कार्य को किया जाएगा।
1: वहीं संग्रहालय में देश के विभिन्न भाषाओं, लिपियों और कालखंडों में लिखे गए राम साहित्य और रामायण की दुर्लभ पांडुलिपियों को भी रखा जाएगा ताकि शोधार्थियों और युवाओं को शोध के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकने की जरूरत न पड़े। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा बल्कि भारतीय संस्कृति, राम साहित्य और अध्यात्म पर शोध का विश्व स्तरीय मंच भी बनकर उभरेगा।
2: जब हमारे पास सभी तरह के रामायण एक जगह पर केंद्रित होंगे तो शोधार्थियों के लिए कितना लाभ होगा। अब वो शोधार्थी भाषा पर काम करेंगे, राम शैली पर काम करेंगे, लिपि पर काम करेंगे, लिपि के विकास पर काम करेंगे, भाषा विन्यास पर काम करेंगे और राम कथा पर बात करेंगे। तो उनके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, एक उनके पास बहुत बड़ी क्या कहेंगे एक उनके पास बहुत बड़ा विकल्प रहेगा कि उनको शोध के लिए ना अब कहीं ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया नहीं जाना पड़ेगा।
1: कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के बूते अयोध्या न सिर्फ इस वक्त धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी चमक बिखेर रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
3: न धनतेरस न दिवाली का मौका लेकिन फिर भी गोल्ड सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही देशवासियों से अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है और इस अपील का मुख्य उद्देश्य भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है। इसके लिए सोने से जुड़ा आयात बिल को कम करना जरूरी है। ऐसे में शादी के सीजन की वजह से सोने खरीद रहे ग्राहकों के लिए विकल्प क्या है ये समझना बहुत अहम है और अगले एक साल तक सोना न खरीदने से देश के कितने पैसे बचेंगे इसका जवाब भी आपको देते हैं इस रिपोर्ट में।
4: तो हम कितने भी उपाय कर लें मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। सोना नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। सोना नहीं खरीदेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई इस अपील ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक साल तक सोना ना खरीदने की उनकी अपील का असर आज प्रमुख ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के तौर पर देखी गई। एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील का मकसद साफ है। सरकार की कोशिश है कि किसी तरह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचे। आयात बिल को कम रखने की ये मजबूरी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की वजह से पैदा हुई है। मध्य पूर्व के इस संकट से पैदा हुई चुनौतियों को अनुशासन के जरिए जवाब देने की कोशिश है। सोना नहीं खरीदने की अपील का असर देश के सबसे बड़े सराफा बाजार में भी दिखने लगा है। शादी का सीजन चल रहा है। अप्रैल का महीना बीत जाने के बाद भी 14 मई तक कई शुभ मुहूर्त है। भारत में शादियों के सीजन में भी सोने की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर होती है। ऐसे में पीएम की अपील का असर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।
6: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सजेशन दिया है देशवासियों को कि एक साल तक गोल्ड बिल्कुल भी ना खरीदें, जितना हो सके इन चीजों से बचें, क्योंकि इस समय अर्थव्यवस्था भारत की बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है और उसे देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए सजेशन दिया। हालांकि आधिकारिक तौर से नहीं है, लेकिन अब इसका खामियाजा गोल्ड बेचने वाले ज्वेलरी शॉप्स को कितना ज्यादा होने वाला है, ये हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखें। यहाँ पर गोल्ड जब दिखता है तो दिखता है बिल्कुल इसी तरीके से चमकता है और लगातार गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही।
5: फिलहाल सराफा बाजार का माहौल कुछ बदला सा है। पूरे देश में करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग सराफा व्यापार से जुड़े हुए हैं। मुंबई का मशहूर जवेरी बाजार भी इससे अछूता नहीं दिख रहा है। सोना खरीद को पारंपरिक रूप से एक बेहतरीन, सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश माना जाता है, जो महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षा कवच देने का भरोसा देता है। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से वैश्विक तनाव अभी भी बना हुआ है। आमतौर पर ऐसे समय में सोना और चांदी जैसे कीमती धातुओं में निवेश सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में सोने की खरीदारी को लेकर अब भी लोग असमंजस में हैं। सराफा व्यापार से जुड़े कारोबारी भी निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदने से बचने की सलाह दे रहे हैं।
7: बेसिकली जो इस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भी सोना नहीं लेना है, भी सहमत है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सरकार को उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, देश के लिए काम आएगा। डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन इन्वेस्टरों से जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोना लेते हैं वो रुक जाए, कहीं ना कहीं सरकार को फायदा करना है। ये भी हम भी हमारी इच्छा है कि हम सरकार को फायदा करें।
5: सराफा व्यापार से जुड़े कारोबारियों को व्यापार और रोजगार के बुरी तरह प्रभावित होने की चिंता भी सता रही है।
7: 3 करोड़ कारीगर हिंदुस्तान में, सब भूखे मर जाएंगे। कितने सारे ज्वेलर्स है, वो क्या करेंगे। ऐसे में सोना जो इस समय 50,000 से 1.5 लाख पे आ गया है आज, तो इतने कीमत में ऐसे भी काम कम है। हमारे पास जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो रिसाइकल गोल्ड से चलता है, तो कहाँ लोग नया लेंगे।
5: सराफा व्यापारियों को लगता है कि सोने की खरीद रुकने पर उन्हें अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा, जिसमें भारी स्टॉक पर घाटे का जोखिम भी बढ़ेगा। उनका ये भी मानना है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हजारों कारीगरों और कर्मचारियों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। भारत की गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाले देशों में होती है। ईरान अमेरिका युद्ध संकट के चलते कच्चा तेल पहले ही आसमान छू रहा है। ऐसे में सोने के ज्यादा आयात से विदेशी मुद्रा पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, और ये दबाव बरकरार रहा तो देश के सामने ज्यादा महंगाई का संकट पैदा होगा। भारत में हर साल सोने के आयात पर 6 लाख करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। 2024-25 में यह आंकड़ा 4.89 लाख करोड़ रुपए का था। 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ आयात बिल था। प्रधानमंत्री मोदी के इस अपील का सबसे बड़ा मकसद आयात खर्च को कम करना है। सोने के आयात में कमी आने से विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। अगर सोने के इंपोर्ट यानी आयात में 30-40% की गिरावट दर्ज की जाती है तो देश के लगभग 20-25 बिलियन डॉलर की बचत तय है। ये बचत चालू खाता घाटा को कम करने और रुपए को स्थिर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
8: देखिए, 1,000 टन सोना इंपोर्ट होता है, 800 टन सोना तकरीबन एक साल में इंपोर्ट होता है, और चांदी भी होती है, तो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है या जो फॉरेन करेंसी जाती है उसको बचाने के लिए, अभी तेल में 60 रुपए का जो तेल का भाव था और जो 100 रुपए हो गया है, तो करीबन दुगना फॉरेन करेंसी सरकार को खर्च करनी पड़ रही है। उसको करंट अकाउंट डेफिसिट में ना आए सरकार, या सोना गिरवी ना रखना पड़े या बेचना ना पड़े, इसलिए सरकार ने ये अपील की है।
5: भारत में शादियों के सीजन में भारी सोना खरीदा जाता है। ऐसे में यह अपील गैर जरूरी सोने की खरीदारी को कम करने के लिए है, जो सालाना खपत का लगभग 60-70% हिस्सा माना जाता है। फिलहाल गहनों की दुकान में खड़े ग्राहक शादी के सीजन को देखते हुए अपनी पसंद और अपने बजट के हिसाब से आभूषण खरीद लेना चाहते हैं।
9: लोकल घर में फंक्शन हो, कुछ भी कार्यक्रम हो, तो सोना लेना जरूरी है, क्योंकि शादी में तो सोना लेडीज लोग तो बहुत ज्यादा पहनते हैं, और लेडीज के लिए सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सोना थोड़ा तो लेना चाहिए।
5: इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका ईरान युद्ध का सीधा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ा है। 27 फरवरी को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 728 अरब डॉलर था, जो 1 मई को घटकर 690 अरब डॉलर पहुंच गया। ऐसे में अगर देशवासी प्रधानमंत्री की इस नैतिक अपील को स्वीकारते हैं, इसका सीधा असर सोने की मांग पर पड़ेगा, जिससे भारत के खजाने की सेहत सुधरेगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, जयपुर से रिदम जैन, दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
12: Hot Mics, now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture. Hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल पाती, तो आज हम आपको बताएंगे आपकी राशि के अनुसार आप कौन से उपाय करें कि आपको आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल मिल सके। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक बहुत अच्छे उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 मई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 2:52 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:25 तक। राहु काल का समय शाम के 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो मेहनत करते हैं उसका फल आपको कैसे मिले, क्योंकि हर बार मेहनत करने पर उसका फल मिले ये आवश्यक नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं मेहनत और फल के पीछे। देखिए, कुंडली के ग्रह बहुत हद तक बता देते हैं कि जीवन में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में मेहनत की स्थिति क्या रहेगी। कुंडली के त्रिकोण लग्न पंचम और नवम और इसके स्वामी जीवन के संघर्ष वाले हिस्से को बताते हैं, और लग्न पंचम और नवम जो कुंडली का त्रिकोण है ये बता देता है कि संघर्ष कैसा रहेगा और कितना रहेगा। त्रिकोण में भी जो पंचम भाव है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूर्व पुण्य का भाव है। इस भाव और इसके स्वामी की स्थिति अच्छी हो तो पूर्व पुण्य इस जीवन में मिलता है, मेहनत के परिणाम मिलते हैं और व्यक्ति का संघर्ष कम होता है। पंचम भाव अगर कुंडली में अनुकूल है, फेवरेबल है, तो व्यक्ति कम प्रयास में जीवन में सफलता पा जाता है। वैसे तो नवम भाव आपके भाग्य का है, लेकिन पंचम अगर मजबूत है तो आपका बैकग्राउंड शुरू से आपके रास्ते बनाने लगता है, और जब नवम का सपोर्ट मिल जाता है तो ये रास्ते लंबे समय तक आपको सफलता देने लगते हैं। देखिए, अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेष, वृष और मिथुन राशि के लोग
अगर अपनी मेहनत का फल चाहते हैं, संघर्ष का फल चाहते हैं, तो क्या करेंगे? मेष राशि की अगर बात करें तो मेहनत का फल पाने के लिए, सफलता पाने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिएगा। रोज सुबह उनको जल चढ़ाइए, उनके मंत्रों का जप करिए और हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर, धर्म स्थान पर जाकर प्रार्थना करिए। वृषभ राशि, मेहनत का फल अगर जीवन में चाहते हैं तो शनि देव की उपासना आपको थोड़ी बहुत जरूर करनी चाहिए। कम से कम रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए अपने घर में भी, बाहर भी, और उनकी देखभाल करिए। मिथुन राशि, अगर आप अपनी मेहनत का, संघर्ष का फल चाहते हैं तो हर शनिवार को हनुमान जी की उपासना करिएगा। हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें। मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ भी जरूर करिए। अगर पाठ करना कठिन लगता है तो मोबाइल पर ऑडियो पर लगाकर शांति से बैठकर सुनिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको आपकी मेहनत का बेहतर फल जरूर प्राप्त होगा। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें। धन हानि से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। देखिए, अगर आपकी राशि कर्क है और आप अपनी मेहनत का फल पाना चाहते हैं, संघर्ष में सफलता चाहते हैं,
तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। खास तौर से ज्यादा कुछ ना कर सकें तो सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़िएगा और बृहस्पतिवार को निर्धनों को और बुजुर्गों को पीली मिठाई बांटिएगा, आपको लाभ होगा। सिंह राशि संघर्ष की राशि है और सिंह वाले अगर चाहते हैं कि उनको मेहनत का संघर्ष का फल मिले तो घर में एक केले का पौधा लगाएंगे, घर के पीछे की तरफ नियमित रूप से उसकी देखभाल करेंगे। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे। नियमित रूप से संकट मोचन पढ़ते रहें, हनुमान जी की शरण में रहें, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कन्या राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल आपको मिले, संघर्ष आपका सफल हो, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करिएगा। खास तौर से रोज नहीं कर पाते तो हर बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करें और शनिदेव की यथाशक्ति पूजा करें। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। सिंह राशि स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, काम में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों की समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि तुला वृश्चिक धनु वाले ऐसा क्या करें जिससे उनको उनकी मेहनत का फल मिले। तुला की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल आपको मिले तो आप रोज शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। उसका पूरा नाम है
दशरथ कृत शनि स्तोत्र रोज शाम को पढ़िए या सुनिए। भगवान विष्णु को रोज सुबह तुलसी दल भोग के रूप में अर्पित करिएगा और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संघर्ष का, मेहनत का बेहतर फल जीवन में प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले, संघर्ष कम हो, तो अपने घर में खास तौर से पीछे की तरफ एक केले का पौधा जरूर लगाइएगा और उसकी देखभाल करिएगा। शिव जी को हर सोमवार को जल और बेलपत्र मंदिर में जाकर अर्पित करिएगा और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको सही समय पर आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। धनु राशि, इनके जीवन में भी संघर्ष बहुत होता है, इनको मेहनत का फल मिलने में विलंब होता है, तो अगर आपकी राशि धनु है, आप चाहते हैं कि आपको आपके मेहनत का फल मिले, जीवन का संघर्ष कम हो, तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और पानी पीने के लिए, प्रयोग करने के लिए तांबे के बर्तनों का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, करियर में लगातार उन्नति होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय ठीक होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, देखिए, आपके जीवन में संघर्ष कम हो, मेहनत का फल आपको मिले, इसके लिए एक चांदी का कड़ा या एक चांदी का छल्ला, चांदी का छल्ला किसी भी उंगली में पहन लीजिए,
या चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण करें, जब भी मौका मिले पीपल के पौधे लगाएं या लगवाएं। कुंभ राशि, आपकी मेहनत सफल हो, आपका संघर्ष कम हो, इसके लिए शिव जी को पंचामृत अर्पित करिएगा। और अगर रोज ना भी कर पाए तो सोमवार को थोड़ा सा पंचामृत शिवलिंग पर लगाइए और उसके बाद जल अर्पित करिए, बाकी पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। मीन राशि, मेहनत का फल मिले, जीवन में संघर्ष कम हो, इसके लिए पूर्णिमा का व्रत रखिए, केवल जल और फल ग्रहण करके। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का व्रत रखें और रोज हनुमान जी की पूजा करिए भगवान राम के साथ। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, शादी होने वाली है, गृह प्रवेश होने वाला है, मुंडन होने वाला है, तो उसकी शुरुआत के पहले हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को नारियल अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके घर का शुभ और मंगल कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनको छोटी छोटी चीज पाने में संघर्ष करना होता है। दुकान पे छोटी सी चीज खरीदने जाएंगे, उनके जाने के पहले ही खत्म होगी वो। तो अगर आपको हर छोटी चीज पाने में संघर्ष करना पड़ता है तो इसको कैसे बेहतर करें? रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। दीपक जलाने के बाद दीपक को हाथ जोड़कर उसके बाद आसपास के हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, उनसे कृपा की प्रार्थना करिए। ऐसा करने से हर मामले में जो संघर्ष करना पड़ रहा है वो समाप्त होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण। इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, प्रधानमंत्री ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात। प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना, नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होगी ईवी गाड़ियां, कल से सभी बैठकें ऑनलाइन होंगी। शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा रामनगरी में श्रद्धालुओं के उत्साह की भी हो रही है। रामनगरी अयोध्या में आस्था और भक्ति के साथ यहां की छठा भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। हर दिन यहां दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सोमवार को यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, सभी श्रद्धालु भक्ति भाव और जोश से भरे हुए रंग में नजर आए। यहां रामलला के दर्शन के साथ ही अब भक्तों को मंदिर में बने 6 उप मंदिरों में भी देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है, जिससे उनकी खुशी और ज्यादा बढ़ गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़कर पूर्णता के चरण में पहुंच चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब परिसर को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि परिसर में बन रहा शहीद स्तंभ आगामी 15 जून तक पूर्ण हो जाएगा, जिसके बाद मंदिर परिसर में कोई बड़ा निर्माण कार्य शेष नहीं बचेगा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि चारों धामों में दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में तो एक दिन में 22,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा सामने आया है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं, यहाँ 18 दिन में 4,42,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुँचे। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख के पार हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में पहली बार एक दिन में 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन करने का आंकड़ा भी सामने आया, जबकि ये संख्या 15,000 से 16,000 प्रतिदिन चल रही है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा की बात की जाए तो 20 से 21 दिन में 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इन दोनों धामों के दर्शन किए हैं। प्रतिदिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु इन दोनों धामों में पहुँच रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनाने के लक्ष्य को लेकर जबरदस्त कवायद चल रही है। यहां तक कि देर रात कलेक्टर आयुक्त तक स्कूटी पर सवार होकर इसके लिए मोर्चे पर डटे नजर आ रहे हैं। जब पूरा शहर गहरी नींद में था तो परकोटा इलाके के सड़कों पर सफाई के लिए हजारों की संख्या में कर्मचारी झाड़ू मशीनें और डंपर के साथ मोर्चा संभाले नजर आए। रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चले ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत नगर निगम ने परकोटे की तंग गलियों और बाजारों में जमे गंदे कचरे को साफ करने की मुहिम चलाई। इस मेगा अभियान की सबसे ज्यादा चर्चा जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा का निरीक्षण रहा। दोनों अधिकारी देर रात करीब 2 बजे स्कूटी पर परकोटे की गलियों में निकले और इस सफाई अभियान का जायजा लेते नजर आए। यह उस बच्चे की तस्वीर है जिसने महज 2 साल की उम्र में अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना भी शुरू नहीं करते, उस उम्र में जयपुर की प्रशा शर्मा नाम की इस बच्ची ने याददाश्त, संस्कारों और प्रतिभा के दम पर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। प्रशा को हाल ही में सुपर टैलेंटेड किड के खिताब से नवाजा गया है। महज 24 महीने की उम्र में प्रशा ने 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र और श्लोक याद किए। प्रशा न सिर्फ उन्हें साफ उच्चारण के साथ बोलती हैं, बल्कि इसके अलावा 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स पहचान भी सकती हैं। सूर्य नमस्कार कर लेती हैं, साथ ही हाथों के बल पर चलते हुए खुद से 3 गुना ऊंची ग्रिल पर चढ़ भी जाती हैं। इतना ही नहीं, प्रशा सभी देवी देवताओं को पहचानती हैं और उनके बारे में काफी कुछ जानती भी हैं। प्रशा का ज्यादातर बच्चों की तरह मोबाइल देखने का शौक नहीं है। इसको लेकर सवाल पूछने पर जवाब होता है कि फोन देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। प्रशा खुद मोबाइल से दूरी बनाकर तो रहती ही हैं, अपने माता पिता को भी मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने से रोकती हैं। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क की हद को लांघकर 23 दिनों से बाघों के इलाके में घूमने वाले चीते का रेस्क्यू किया गया। चीता KP2 राजस्थान के रणथंभौर से ट्रैंकुलाइजर कर वापस कूनू नेशनल पार्क लाया गया और उसे खुले जंगल में छोड़ दिया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में डेरा डाले चीता का एक बड़ी टीम ने शुक्रवार सुबह फलौदी रेंज के कालाकुआं क्षेत्र से रेस्क्यू किया, जिसमें राजस्थान वन विभाग का पूरा अमला शामिल था। अप्रैल के महीने में ये कूनू पार्क से निकलकर राजस्थान के कोटा जिले के इटावा इलाके में पहुंचा और फिर वहां से निकलकर सवाई माधोपुर जिले की सीमा में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पहुंच गया। इस चीते का 43 दिन में दूसरी बार रेस्क्यू किया गया है। बात करते हैं बाबा विश्वनाथ और माँ जगदीशिला की डोली यात्रा की। देवभूमि उत्तराखंड की आस्था और परंपरा का प्रतीक विश्वनाथ जगदीशिला की 27वीं डोली यात्रा हरिद्वार से होते हुए टिहरी गढ़वाल पहुंची। यहां श्रद्धालु ने डोली का भव्य स्वागत किया, विधि विधान से पूजा अर्चना की। ये डोली यात्रा लगभग 30 दिनों तक चलेगी, जिसमें डोली करीब 10,500 किलोमीटर की दूरी तय कर उत्तराखंड के 165 देवालयों में दर्शन देगी और इस यात्रा का समापन 25 मई को गंगा दशहरा के दिन टिहरी स्थित विशौन पर्वत पर होगा।

ये भक्ति और आस्था की डोली है। ये बाबा विश्वनाथ माँ जगदीशिला डोली यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब है। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 27 सालों से चली आ रही विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस वर्ष भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रदेश भ्रमण पर निकली हुई है। डोली के स्वागत के दौरान श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़े और पूरा वातावरण ही जयकारों, भजन कीर्तन और धार्मिक उल्लास से गूंज उठा। डोली यात्रा के स्वागत में स्थानीय लोग, साधु संत और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे और श्रद्धालुओं के चेहरों पर आस्था और उत्साह साफ झलक रहा था। डोली के टिहरी गढ़वाल पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई।

0: हरिद्वार से प्रारंभ हुई ये पवित्र यात्रा प्रदेश के तमाम जिलों और प्रमुख धार्मिक स्थलों से गुजरती हुई जब टिहरी गढ़वाल पहुंची तो अंजनी सैन रोडधार मलेथा समेत कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने डोली का भव्य स्वागत किया। ग्रामीण इलाकों में तो बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए और भगवान विश्वनाथ जगदीशिला के दर्शन कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। ये यात्रा टिहरी गढ़वाल के बाद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा जिलों का भ्रमण करेगी।
1: एक उद्देश्य यह है कि सभी देवी देवताओं की आरतियां हैं, लेकिन हिमालय की आरती नहीं। हिमालय रहेगा तो पूरी सृष्टि रहेगी, और अगर हिमालय नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस समय पूरे उत्तराखंड में हिमालय की आरती, जो बाबा विश्वनाथ जगदीशिला ने आदेश दिया, क्योंकि ये डोली बोली बोलती है, जो इनका आदेश होता है उसी आधार पे हम कार्यक्रम बनाते हैं। तो हिमालय की आरती पूरे उत्तराखंड में प्रारंभ हो, ताकि पूरे विश्व को ये संदेश जाए कि हिमालय सुरक्षित रहेगा तो सृष्टि भी सुरक्षित रहेगी। ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है।
0: इस यात्रा के दौरान तमाम धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, हवन और सांस्कृतिक

0: स्नान करके सबको आशीर्वाद देके इस यात्रा का समापन होगा।
1: इस डोली यात्रा के दौरान देवभूमि के कई स्थानों पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में मंगल गीत गाकर डोली का स्वागत कर रही हैं, जबकि युवा भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे धार्मिक आयोजनों के माध्यम से लोगों को भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सामाजिक एकता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोग भी कहते हैं कि इस तरह की यात्राएं न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देती हैं, बल्कि दूर दराज के गांवों को पहचान दिलाने और धार्मिक पर्यटन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बताया जाता है कि ये यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान बन चुकी है और इस यात्रा के माध्यम से जहां धार्मिक आस्था को मजबूती मिल रही है, वहीं देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को देश विदेश तक पहुँचाने का काम भी किया जा रहा है।
0: यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य है जो हमारी देव संस्कृति और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य है जो हमारे चार धाम हैं, इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में हजार ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो उन हजार शक्तिपीठों को धाम का स्वरूप मिले। और अब तक 27 साल की यात्रा में डोली ने जो है 462 देवालयों को चिन्हित किया है कि इनको धाम का स्वरूप मिले। आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा। और एक दूसरा उद्देश्य ये है इसका कि जो हमारा पलायन हो गया है, उस पलायन को रोकने के लिए हमारा बंजर खेतों को आबाद करने का काम।
1: चारधाम समेत कई मंदिरों के दर्शन करने के बाद 25 मई को गंगा दशहरा पर डोली यात्रा का समापन विशौन पर्वत पर बाबा विश्वनाथ धाम में होगा, जिसे स्वामी राम तीर्थ और गुरु वशिष्ठ की तपोस्थली के रूप में जाना गया है। यहां बाबा विश्वनाथ, मां जगदीशिला की डोली श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देगी और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ यात्रा का विधिवत समापन हो जाएगा। बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जिन्हें पहाड़ों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। वो भगवान शिव यानी विश्वनाथ और शक्ति यानी मां जगदीशिला के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है। उनकी डोली में शिव और शक्ति की मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित रहती हैं, जिन्हें टिहरी जिले की हिंदवपट्टी में एक प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में मान्यता मिली हुई है। टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: दुल्हन को कार की बजाय जेसीबी से घर लेकर आया दूल्हा। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
3: उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास परिषद यानी UCADA के अनुसार 22 अप्रैल से अब तक 21,000 से ज्यादा श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से चारधाम यात्रा कर चुके हैं। फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से चल रही शटल सेवाओं से 17,976 यात्रियों ने यात्रा की, जबकि चार्टर्ड सेवाओं के जरिए 3,974 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आधुनिक तकनीक के जरिए हेली यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को कार की जगह JCB में बैठाकर अपने घर लेकर आया। रास्ते में जब दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ गुजरा तो हर कोई देखकर दंग रह गया। जानकारी के मुताबिक दूल्हा रूपलाल पेशे से JCB ड्राइवर है। वो 6 मई को अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर ढाला गांव में बारात लेकर गया था। विदाई के बाद JCB बुलाई और दुल्हन को उसमें बैठाया गया। लोगों का कहना है कि दूल्हे ने ये प्लान पहले से बना रखा था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में मोहम्मदी थाना क्षेत्र के हजरतपुर गांव में एक देसी शराब की दुकान पर इलाके की महिलाओं ने लाठी डंडों से लैस होकर तोड़फोड़ की। महिलाओं ने शराब की दुकान को बंद करने के लिए कई बार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दर्जनों की संख्या में महिलाओं ने लाठी डंडों से लैस होकर देसी शराब की खोखेनुमा दुकान पर हमला बोल दिया।
2: और अब बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन के 75 साल पूरे हो गए और इस खास मौके पर धूमधाम से सोमनाथ अमृत पर्व मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। सोमनाथ अमृत पर्व के दौरान मंदिर में विशेष पूजा पाठ के अलावा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी हुआ। साथ ही वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपने शानदार एयर शो से इस उत्सव की रौनक और बढ़ा दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मंत्रोच्चार की गूंज, डमरुओं की ध्वनि और कलाकारों की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति, ये सब भगवान सोमनाथ की पवित्र धरती पर संपन्न हुआ। सोमनाथ मंदिर के इतिहास में आज परंपरा और विरासत का एक नया अध्याय और जुड़ गया, जहां सोमनाथ अमृत पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया, जिसे देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। ये कार्यक्रम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हुआ, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ पहुंचे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हेलीपैड से लेकर मंदिर तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते पर हजारों लोग और कई लोक कलाकार मौजूद रहे। 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत के नए सिरे से बनाए गए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी।
1: सर, पहली बार गुजरात आ रहे हैं तो हमारे इन आर्टिस्ट के साथ हम बंगाल थीम पे उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। और भी अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं और स्पेशली हमने बंगाल थीम इसीलिए रखा है कि पूरे इंडिया को पता चल जाए कि हमने बंगाल में जीत हासिल कर ली है।
0: मंदिर पहुंचने के बाद सोमनाथ अमृत पर्व से जुड़े अनुष्ठान शुरू हुए, जिसमें मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शिवलिंग का अभिषेक कराया। मंदिर के गर्भगृह में 51 ब्राह्मणों ने ये महापूजा करवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवलिंग पर अक्षत पुष्प और माला अर्पित की। महादेव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया गया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सारे अनुष्ठान सम्पन्न किए गए। गर्भगृह में पूजा खत्म होने के बाद वो ऐतिहासिक पल भी आया, जब प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से कुंभाभिषेक किया गया। मतलब ये कि मंदिर के शिखर के कलश में रखे जल से अभिषेक हुआ। इस कलश को 90 मीटर लंबी क्रेन के जरिए मंदिर के शिखर के ऊपर स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट के जरिए मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं के बीच औपचारिक तौर पर मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ। जैसे ही मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक पूजन पूरा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने आरती की, उसी दौरान चेतक हेलीकॉप्टर ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर ही हर हर महादेव और भगवान सोमनाथ के जयकारों से गूंज उठा। सोमनाथ अमृत पर्व से जुड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान पूरे होते ही एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की ओर से एक शानदार एयर शो हुआ, जिसमें हॉक MK-132 विमानों ने ऐतिहासिक मंदिर परिसर के ऊपर एरोबेटिक फॉर्मेशन में उड़ान भरी और 15 मिनट तक अपनी हैरतअंगेज कलाबाजियों से भक्ति के उत्सव में अलग अलग फॉर्मेशन और हवाई करतब दिखाकर शक्ति का प्रदर्शन किया। एयर शो के दौरान आसमान में केसरिया, सफेद और हरे रंग का धुआं छोड़कर तिरंगे की आकृति बनाई गई। इतना ही नहीं, इन विमानों ने एक से बढ़कर एक फॉर्मेशन बनाकर हर किसी को रोमांच से भर दिया।
2: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम जो है, जिसका आज ये एयर शो के सूर्य किरण टीम का मंदिर के ठीक ऊपर ये जो है सूर्य किरण की टीम पहुंची है और वहां पे अब ये जो है वो कर्तव्य दिखाती हुई 75 साल के महत्व को रेखांकित करने का ये अवसर है। जिस तरह से इसकी सांस्कृतिक विरासत है, भारतीय वायुसेना की ये टुकड़ी सूर्य किरण की हर बार दिल धड़क कर्तव्य दिखाती है और अब जो है सोमनाथ मंदिर के ऊपर से ये कर्तव्य दिखाए गए हैं। 10 मिनट का ये शो जिसमें सूर्य किरण की टीम अपने अलग अलग कर्तव्य दिखाती है आमतौर पर आज इस 75 वर्ष के अमृत महोत्सव का जो आगाज है, 75 वर्ष जो है गौरवशाली क्षण, इस मंदिर का इतिहास न सिर्फ गुजरात के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, पूरे दुनिया में इसका संदेश जाना है।
0: सौराष्ट्र के समुद्र तट पर मौजूद ये मंदिर भारत की आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक है। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसकी 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर से जुड़ा स्पेशल डाक टिकट और 75 रूपए का चांदी का सिक्का भी जारी किया। सोमनाथ ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी ये सोमनाथ अमृत पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हिंदू धर्म में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि यहाँ पर मौजूद शिवलिंग की पूजा और रुद्राभिषेक करने पर लोगों के सारे पाप और दोष दूर हो जाते हैं और उन पर हमेशा शिव की कृपा बरसती है। सोमनाथ से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाएं, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आएं।
3: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1312 अंक गिरकर 76015 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 360 अंकों की गिरावट के बाद 23815 पर बंद हुआ। सोमवार को गोल्ड की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 600 रुपया गिरकर 1,55,300 रुपए पहुंच गया। हालांकि चांदी की कीमतों में 3,700 रुपए का उछाल देखा गया और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,65,000 रुपए पहुंच गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज फिर कमजोर हुआ। 82 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर की कीमत 95.31 रुपए के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गई।
0: रुक करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। प्रगति संगम नगरी में भी नजर आ रही है, जहां वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई है। यानी धर्मनगरी में पानी की लहरों पर रोमांच का अनुभव भी मिलेगा। इससे कई तरह के फायदे होंगे। किस तरह के खेल, कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।

0: प्रयागराज आस्था का वो स्थल है जिसे तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर बसी इस नगरी का धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ त्रिवेणी में स्नान करने को असीम पुण्य और मोक्ष का द्वार माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ आस्था की पवित्र डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, अंतरात्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। विशेष रूप से माघ महीने में यहाँ स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी संगम के तट पर हर साल माघ मेले का आयोजन होता है, तो हर 12 साल पर महाकुंभ लगता है और अब यहाँ वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एडवेंचर का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत यहाँ वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का आगाज हो चुका है।
1: हाँ, यमुना की जो जलधारा है बहुत विशाल है, वाटर स्पोर्ट्स की वहाँ बहुत संभावना थी, इसलिए नगर निगम प्रयागराज ने महसूस किया, हम सब लोगों ने सदन में संकल्प पारित किया कि वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए और 2.5 करोड़ रुपए का उपकरण स्मार्ट सिटी नगर निगम प्रयागराज के द्वारा कियोकांग कैनोइंग इत्यादि हम लोगों ने छोटी लाइट बोटें उसको उपलब्ध कराने का काम किया। इसके साथ ही साथ स्मार्ट सिटी ने नगर निगम प्रयागराज ने स्पीड बोट स्पीड स्कूटर उसको भी उसमें सम्मिलित करने का काम किया और बहुत पर्यटक जो प्रयागराज आ रहे हैं वो बहुत आनंद के साथ वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले रहे हैं।
0: यहाँ यमुना की लहरों पर प्रयागराज नगर निगम ने वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की है। वाटर स्पोर्ट्स की भरपूर संभावनाओं को देखते हुए यमुना रिवर बैंक बोट क्लब पर इसका शुभारंभ हुआ। वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के मकसद से ही इसका आयोजन किया गया है।
2: वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में ये कयाकिंग कैनोई के जो नावें हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं और बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए यहाँ प्रेरित किया जा रहा है और बच्चे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स सीख रहे हैं। नगर निगम ने भी पहल की है और यहाँ पर धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है और किस तरह से ये वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है।
3: बच्चों को सबसे पहली चीज तो स्विमिंग आती है, तो हम लोग जो नए बच्चे होते हैं उनको पहले स्विमिंग सिखाते हैं। ये वाटर स्पोर्ट्स ये काफ़ी बैलेंसिंग की बोट है, इस पर बैलेंस नहीं रहता तो बच्चे पलटते भी हैं, तो इसलिए स्विमिंग तो कंपलसरी है उनको। स्विमिंग सिखाने के बाद फिर वो उनको कुछ महीने टेक्निक जैसे जमीन पर सिखाया जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इनको पानी में ट्रेनिंग देते हैं।
2: धार्मिक पर्यटन के अलावा स्पोर्ट्स को भी बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है।
0: यमुना रिवर फ्रंट बोट क्लब पर स्पीड बोट और स्पीड स्कूटर यानी जेट स्काई की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई दूसरी तरह की बोट्स भी मंगाई गई हैं।
2: हम इस वक्त यमुना नदी में हैं और इस तरह से स्कूटर जो आए हैं, इस स्कूटर में यहां पर राइड कराई जाती है और जो पर्यटन है पर्यटक यहां आएंगे और इसको लुफ्त ले सकेंगे।
4: इसको जेट स्की बोलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और हमारे पास बेलाइनर भी है। ये स्कूटर एक सिंगल पर्सन जा सकता है जिसके साथ हमारे ट्रेंड ऑपरेटर भी जाते हैं।
2: ये स्कूटर है, ऐसे यहाँ आगे बैठना होगा और आगे बैठ करके जो पीछे चलाएंगे कृष्णा जी नाम कैसे यहाँ पर आप इसको आप ही चलाएंगे आप?
5: हाँ जी सर, मैं ही चलाऊंगा इसको। आपको बैठना है सर?
2: बिल्कुल, आगे बैठना है और ये पीछे आपको लाइफ जैकेट पहना करके यहाँ ले जाया जाएगा। और कैसे राइड होगी आइए आपको दिखाते हैं। ये पूरा रोमांचित करने वाला जो पल है वो यहाँ पर है और इस तरह से राइड होगी और जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे उनको इस वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ देखने को मिलेगा।
0: प्रयागराज में अब तक सिर्फ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं ही होती थीं, लेकिन नई सुविधाओं और आधुनिक उपकरणों के आ जाने के बाद यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले आयोजित हो पाएंगे जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल पाएगा।
4: यहाँ बच्चे जो आते हैं और स्विमिंग पहले सबसे पहले नंबर स्विमिंग सिखाते हैं, उसके बाद बोटिंग कराते हैं। इसमें सर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बैलेंस करने में, बच्चों को 6 से 7 महीने लग जाता है बैलेंस करते हैं। फिर यहाँ से सर नेशनल लेवल हमारे यहाँ प्लेयर खेले हुए हैं और मेडल भी है नेशनल का। बाकी सब अभी इंडियन आर्मी में भी कुछ लोग हैं और अभी तो 4 लड़के हुए हैं यूपी पुलिस में, अभी प्रेजेंट में ही हुए हैं, उनका भी ज्वाइनिंग होने वाला है।
0: वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर के लिए प्रयागराज के लोगों को मुंबई और गोवा जैसी जगहों पर अब जाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरे शहरों के लोग अब यहां पर आकर इसका लुत्फ उठा पाएंगे। यहां पर मोटरबोट पर बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी हल्दी सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे आयोजन 30 सीटर कैटामरीन बोट पर किया जा सकता है, जबकि बोट क्लब से संगम जाने के लिए बायलाइनर 7 सीटर बोट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही बेहद लोकप्रिय और रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बनाना राइड भी यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगी। वाटर स्पोर्ट्स यहां सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, इस पहल से स्थानीय खिलाड़ियों को भी काफी फायदा होगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस एक पहल के कई फायदे होंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर आगे बढ़े उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थ स्थलों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने के साथ सरदार धाम का लोकार्पण किया, छात्रों को मिलेंगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात, प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना, नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी। के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होंगी ईवी गाड़ियां, कल से सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन। और न्यूज पथ पर आगे बढ़ेंगे लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशन करने वाले।
7: जीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल यहाँ एक महिला पुलिसकर्मियों के भरोसे अपना बच्चा छोड़कर टॉयलेट चली जाती है, जो ये दिखाता है कि यहाँ के लोग पुलिस वालों पर कितना भरोसा करते हैं। वीडियो में महिला गोद में बच्चा लिए आती है और दो पुलिसकर्मियों को आता देख रुक जाती है। फिर वो महिला पुलिसकर्मी को अपना बच्चा थाम देती है और खुद टॉयलेट चली जाती है। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी बच्चे को प्यार से पुचकारती रहती है जब तक कि वो महिला आ नहीं जाती। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर डांस का ये वीडियो लाखों लोगों का दिल जीत रहा है। एक पिता और उसकी बेटी की ये जुगलबंदी लोगों को पसंद आ रही है। वीडियो की सबसे खास बात ये कि जिस अंदाज में ये मासूम हर बीट को समझकर परफॉर्म कर रही है उसे देख लोग हैरान हैं।
8: Why did you come to the police station?
9: Will you marry me? Oh, oh my God! Yes! Yes! Oh,
7: yeah! सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा सीधे एक पुलिसकर्मी के पास पहुंचकर उसे रिंग के साथ प्रपोज कर देता है। वीडियो में बच्चा बेहद कॉन्फिडेंस के साथ पुलिसकर्मी के सामने खड़ा होकर रिंग आगे बढ़ाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग बच्चे की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों में होता है। वहीं कई यूजर्स ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये बच्चा आखिर किसका है जिसने सीधे पुलिस वाले को ही प्रपोज कर दिया।
10: घर में ना शादी है एक्चुअली, ब्लिंकिट का आया 2000 रुपए बिल, तो अब ब्लिंकिट वाले भैया कह रहे टूटे पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ब्लिंकिट वाले भैया को पैसे दे दो।
7: शादी के माहौल में एक साधारण डिलीवरी उस समय खास बन गई जब परिवार ने ब्लिंकिट एजेंट को कैश की जगह दूल्हे के नोटों वाली माला दे दी। 2100 रुपए की इस माला को देख एजेंट की खुशी देखने लायक थी। उसने मुस्कुराते हुए माला पहन ली और पल को खुलकर एंजॉय किया। ये छोटा सा वाकया सोशल मीडिया पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आया। हाथी इंसानों के सबसे बड़े साथी होते हैं और जब बात दो बच्चों की हो तो फिर कहना ही क्या। यहाँ देखिए बेबी एलिफेंट और इस बच्ची की दोस्ती कितनी गहरी है। ये उसके लिए आइसक्रीम लाई है और बदले में हाथी उस पर खूब सारा प्यार बरसा रहा है। हाथी की बच्ची के साथ ही बॉन्डिंग देख लोग मुस्कुरा रहे हैं।
0: न्यूज़पथ के सफर में सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई बड़ी अपील की। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा और आर्थिक संकट गहरा गया है। स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सामूहिक भागीदारी और स्वदेशी अपनाने की अपील की है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि आज के समय में पेट्रोल डीजल और गैस का इस्तेमाल कम करना होगा। युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है। हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है। पेट्रोल गैस और डीजल बचाने के लिए देशवासियों को वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग जैसे उपायों की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अनावश्यक वाहन का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो में सफर करें, कार पूलिंग करें, शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है, इसलिए देश हित में लोगों को एक साल तक सोना और गहने न खरीदने की भी अपील की गई है। हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर होगी। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। विदेशी ब्रांड की चीजों के बजाय देश में बने उत्पादों और घरेलू पर्यटन यानी कि देश में घूमने को प्राथमिकता देने की अपील भी इसमें शामिल है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कई गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं, जिनसे निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा स्थिति को एक राष्ट्रीय चुनौती बताया और नागरिकों से अपील की है कि वो अपने दैनिक आदतों में छोटे बदलाव करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दें। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लेकर हमने मुंबई के लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
11: फिजिकली जो इस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भी सोना नहीं लेना है, वो भी सहमत है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सरकार को उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, देश के लिए काम आएगा। लेकिन ऐसा कहना कितने 3 करोड़ कारीगर है हिंदुस्तान में, सब भूखे मर जाएंगे, कितने सारे ज्वेलर्स है वो क्या करेंगे। ऐसे भी सोना जो इस समय 50,000 से 1.5 लाख पे आ गया है आज, तो इतने कीमत में ऐसे भी काम कम है। हमारे पास जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो रिसाइकल गोल्ड से चलता है, तो कहाँ लोग नया लेंगे। हाँ डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन इन्वेस्टरों से जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोना लेते हैं वो रुक जाए, कहीं ना कहीं सरकार को फायदा करना है। ये भी हम भी हमारी इच्छा है कि हम सरकार को फायदा करें, सरकार के साथ रहे, देश के साथ रहे। लेकिन इससे अगर सोना नहीं लेंगे तो ये अपील गलत है थोड़ी।
12: नहीं वाकई में इस तरह से अचानक से सजेशन दे देना पूरे देशवासियों को कहीं ना कहीं सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे देश के ज्वेलरी एसोसिएशन को बहुत बड़ा झटका कह सकते लगा है। क्या चल रहा है आपके जहन में जब से आपने सुना?
11: नहीं हम भी समझते हैं कि सरकार को सहायता करनी है, इन्वेस्टमेंट अगर कोई पर्पज से आता है तो उसको रोक देना है कि नहीं भी इन्वेस्ट मत करो इसमें, कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमी खराब होती है। आज डॉलर 87 के पार चला गया है, सब नुकसान है। कहीं ना कहीं जो पेट्रोल के भी चीज है, पेट्रोल भी बढ़ गया है और जो कृषि खाद को जो बाहर से हम लोग मंगाते हैं उसमें भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पैसा बचाना, डॉलर बचाने हमको जरूरी, जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो आ रहा है वो हमको पूरी करनी जरूरी है। लेकिन इसके लिए सोना शादी ब्याह में तो लेना ही पड़ेगा। हमारे घर घर में जब जब शादी आती है तो सबसे पहले आदमी सोचता है सोने का, उसके बाद कपड़े का, और इस तरह कहीं ना कहीं नुकसान होकर सरकार को होता है। तो हम जरूर साथ पाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे पब्लिक को कि नहीं सोना नहीं इन्वेस्ट करने के पर्पज से नहीं ले रहे। लेकिन शादी ब्याह में तो ऐसे ही लोग लेंगे। अब देखो कस्टमर आए हुए हैं, अब जो अपने इनके घर में फंक्शन है तो आएंगे और वो लेंगे।
13: सरकार ने तो कह दिया है सोना एक साल मत खरीदो, पर घर में फंक्शन हो, कुछ भी कार्यक्रम हो तो सोना लेना जरूरी है, क्योंकि शादी में तो सोना लेडीज लोग तो बहुत ज्यादा पहनते हैं और लेडीज के लिए सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सोना थोड़ा तो लेना चाहिए,
12: अपने बजट के हिसाब से लेना चाहिए। अच्छा, अभी कुमार जी ने जो दुकान के ओनर है उन्होंने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप मत देखो सोना, आप इस बात को मानती हैं?
13: सोना तो इन्वेस्टमेंट, सोने में इन्वेस्टमेंट की करने में तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें बहुत प्रॉफिट भी होता है बाद में इन्वेस्टमेंट। पर अभी मोदी जी ने कहा है एक साल सोना नहीं खरीदेगी, पर थोड़ा सोना तो खरीदना पड़ेगा।
14: महाराष्ट्र जो भी लोकल के लोग है, टैक्सी में नहीं बैठेगा, मैं टैक्सी चलाता हूँ तो मेरा घर कैसे चलेगा? ये भी मुद्दा मोदी ने देखना चाहिए, मोदी जी ने कि मोदी जी बोलते हैं कि ये सब ट्रेन से चले जाओ, लोकल से चले जाओ, मेट्रो से चले जाओ, पेट्रोल बचाओ ये बोल रहे, तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम घर पे बैठे टैक्सी बंद करके, बोलिए हमारा मोदी से ये सवाल है कि आपने तो जो कहा है तो हम टैक्सी घर पे खड़ा करते हैं, लोग टैक्सी में बैठेंगे नहीं है तो हम क्या करें? मोदी से मेरा ये सवाल है।
15: नहीं चलाएंगे तो सर जी कहाँ से चलेगा? चलाना तो आए, फिगर चलाए तो काम होएगा नहीं। अच्छा, अपना काम है जो भी है अभी झेलना है। हाँ,
12: आपका टैक्सी जो है अभी EMI पे चल रहा है?
15: नहीं, फ्री है सर।
12: अभी फ्री हो गया ना? आपकी खुद की है?
15: खुद की गाड़ी।
12: खुद की है तो मतलब चलो आपको थोड़ी कम तकलीफ होगी। हाँ, लेकिन जिसको
15: EMI पे उसको तो बहुत दिक्कत है सर,
12: उसको देना पड़ेगा।
15: हाँ, उसको बचत देना प्लस गाड़ी का हफ्ता बदला है।
12: तो कुछ मांगना चाहते हो देश के प्रधानमंत्री से? कुछ
15: एक ही धंधा पानी रहे तो भरेगी, नहीं तो कहाँ से भरेगी?
16: अभी तो देखो सर, मैं यहाँ से अभी यहाँ सुबह से खड़ा हूँ 10 बजे से लेके अभी कितना बज रहा है, दो बजने आ गए।
12: हाँ, डेढ़ पौने दो हो रहा है।
16: 400-500 रुपये ही बना है।
12: हाँ,
16: अभी पूरा दिन निकालने का है, भाड़ा लगेगा नहीं लगेगा ये धूप में पता नहीं चल रहा है। हाँ, लग गया तो भगवान की दुआ से अच्छा ही है, जो मिला अपना, नहीं मिला वो भी अपना। क्या कर सकते हैं अभी बताइए आप।
17: वो ईरान जो अमेरिका का युद्ध उस कारण है, वो बचत तो हमेशा इंसान को करना ही चाहिए। क्या वो सोना तो इतना महंगा हो गया है कि ऐसे ही नहीं खरीद पा रहा आदमी है, और बचत तो नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा?
12: और लोग बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा घर में ही बैठ के काम करो, यात्रा कम कर दो, पेट्रोल डीजल भी कम बचाओ। आप उनके इस सजेशन से आप खुश हैं, कुछ कहना चाहेंगे?
17: नहीं, ऐसा भी जहाँ जरूरी हो वहीं जाता आदमी, कहाँ जाएगा फालतू।
0: आजकल जहाँ विदेशों में डेस्टिनेशन शादियों का ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग खुलकर खर्च भी कर रहे हैं, तो वहीं मिडिल क्लास में भी फॉरेन ट्रिप्स कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने गैर जरूरी विदेश यात्रा, विदेश में छुट्टियां मनाने और शादियां न करने की लोगों से अपील की, और साथ ही घरेलू पर्यटन और देश में ही किसी भी तरह के समारोह को आयोजित करने का सुझाव दिया है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद मिल सके।
18: आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।
0: तो अगर आप चाहते हैं कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ घूमने, खाने पीने, शॉपिंग करने के लिए लोग पहुँचे तो कौन सी खास जगह है वो हमें ज़रूर बताएगा, और ये भी शेयर कीजिएगा कि क्या आपके शहर में कोई ऐसी जगह है जो अनदेखी हो या फिर जिसके बारे में किसी ने सुना ना हो। क्या आपके शहर की कोई पहचान है जो ज़्यादा लोगों तक ना पहुँची हो? आपके शहर की कोई ऐसी धरोहर जिसका अपना एक अनोखा किस्सा हो? आपके गाँव की वो खूबसूरत जगह जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं? तो अगर इनमें से कुछ भी आपकी जगह में है तो आप वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर रिलीज। इसी के साथ कई और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड पर।
19: करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं।
20: तू रह लेगी मेरे बिना? पर मैं नहीं रह पाऊंगा यार, ऐसा फ्यूचर जिसमें तू ना हो।
19: ट्रेलर की शुरुआत अनन्या और लक्ष्य के रोमांटिक सीन से होती है और फिर अचानक दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर एक गहरी और भावनाओं से भरी प्रेम कहानी की झलक देता है। पूरे ट्रेलर में अनन्या और लक्ष्य ही नजर आते हैं। विवेक सोनी के निर्देशन में बनी फिल्म चांद मेरा दिल 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
20: दरवाजा खोल
21: यार। हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
22: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
19: सिनेमाघरों में जल्द ही दस्तक देने जा रही सूर्या और त्रिशा कृष्णन स्टारर फिल्म करुप्पु का ट्रेलर सामने आ चुका है, जिसे तमिल भाषा में रिलीज किया गया। ट्रेलर की शुरुआत जबरदस्त अंदाज में होती है। कोर्ट के बाहर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, आग की लपटें उठ रही हैं और देखते ही देखते कार में ब्लास्ट होता है। इसके बाद सूर्या और त्रिशा आमने सामने होते हैं। ट्रेलर देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि ये कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है। आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 14 मई को रिलीज होगी। ২০২৬ के कान फिल्म महोत्सव के मार्चे डू फिल्म में फिल्म की मार्केट स्क्रीनिंग से पहले फिल्म बालन द बॉय के मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर भारतीय सिनेमाघरों में इसके रिलीज डेट का ऐलान कर दिया। ये फिल्म 19 जून को 5 भाषा मलयालम हिंदी तेलुगु तमिल और कन्नड़ में रिलीज होगी। फिल्म बालन द बॉय का निर्देशन चिदम्बरम ने किया है और इसकी कहानी जीतू माधवन ने लिखी है।
23: और न्यूज पद पर थोड़ी देर रुकेंगे ब्रेक प्लाजा पर और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे खेल की खबरें खेल चक्कर में।
24: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
25: The Tailgate Top 20. Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of The Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
26: The Tailgate Top 20.
27: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
25: Try to keep up.
28: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
24: खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
29: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
23: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
30: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
23: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
31: और दुर्भाग्य कहता है
23: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
30: अविश्वास में विश्वास बसता है
23: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
29: गुड न्यूज टुडे।
23: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे
1: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
29: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
30: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
24: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
1: वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया का दबदबा बरकरार, खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
2: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में 118 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टीम इंडिया का दबदबा बना हुआ है। सालाना अपडेट के बाद भी भारतीय टीम दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बनी हुई है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है जो भारत से 5 रेटिंग अंक पीछे है। ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने शानदार छलांग लगाते हुए पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 102 अंकों के साथ टॉप 5 वनडे टीम में चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि पाकिस्तान की टीम 98 अंकों के साथ 5वें नंबर पर खिसक गई है। आईपीएल 2026 का 55वां मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच है। धर्मशाला के एचपीसीएस स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले से पहले बीसी टूर्नामेंट में अपने 11 में से 8 मैच हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर है, जबकि पंजाब किंग्स अपने 10 में से 6 मैच जीतकर चौथे स्थान पर है। आईपीएल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेगी। उसके बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज भी होगी। इन दोनों ही फॉर्मेट में शुभमन गिल की कैप्टेंसी की भी परीक्षा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच को लेकर टीम मैनेजमेंट पूरी गंभीरता के साथ तैयारी कर रहा है। भले ही यह मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट इस मैच में लगभग अपनी फुल स्ट्रेंथ बल्लेबाजी लाइनअप उतारने की योजना बना चुका है।
1: और न्यूज वक्त में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: कौन सी राशि को मेहनत का फल पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? कौन सी राशि का व्यक्ति अगर शनि देव की पूजा करे तो उसको मेहनत का फल जरूर मिलेगा? और कौन सी राशि का व्यक्ति अगर पीपल के वृक्ष में जल डाले तो जीवन का संघर्ष कम होगा? कैसे मिलेगा मेहनत का फल, राशि अनुसार जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn. Ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
28: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
30: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
31: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
30: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
29: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
31: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
30: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए पीएम मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात, प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना, नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर और चारधाम यात्रा की। गुजरात के सोमनाथ धाम में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। सोमनाथ अमृत उत्सव के अवसर पर मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थों के पवित्र जल से कुंभाभिषेक किया गया। आज आपको दिव्य और भव्य कुंभाभिषेक की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि मंदिरों में कुंभाभिषेक क्यों किया जाता है। इसके बाद रुख करेंगे चारधाम यात्रा का, जहां मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बर्फबारी, बारिश और कठिन रास्तों के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा। आखिर में आपको लेकर चलेंगे रामनगरी, जहां मंदिर परिसर में निर्माण पूर्ण होने को है और अब श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में दर्शन की आस है। सौराष्ट्र के समुद्र तट पर मौजूद सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक है। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसकी 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक किया गया और साथ ही सूर्यकरण की टीम ने दिल जीतने वाला परफॉर्मेंस दिया। देखिए रिपोर्ट।

0: एक साथ समेटती ये वो अलौकिक तस्वीर है जो आस्था के आसमान पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। 11 मई 11 तीर्थों का 11,000 लीटर पवित्र जल और उससे सोमनाथ मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर कुंभाभिषेक। ये तस्वीर ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार शिव के इस प्रथम ज्योतिर्लिंग के शिखर पर पवित्र कुंभ अभिषेक किया गया, जिसके साक्षी खुद प्रधानमंत्री रहे। प्रयागराज, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक और रामेश्वरम जैसे देश के प्रमुख तीर्थों से लाए गए जल को विशाल कलश के जरिए करीब 90 मीटर ऊंची अत्याधुनिक क्रेन से शिखर तक पहुंचाया गया। ये कलश आधुनिक इंजीनियरिंग का एक कमाल है। इसका कुल वजन 1860 किलोग्राम है और ऊंचाई करीब 8 फीट है। इसे तैयार करने में कई महीनों की मेहनत और विशेष तकनीक लगी। रिमोट कंट्रोल और सेंसर तकनीक की मदद से शिखर पर मौजूद कलश से अभिषेक शुरू हुआ और इधर मंदिर परिसर वैदिक मंत्रों, घंटों की गूंज और शंख ध्वनि से भक्तिमय हो उठा। ये अद्भुत, अलौकिक और आनंद से भर देने वाली तस्वीरें सोमनाथ मंदिर के आधुनिक स्वरूप के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ की हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं सोमनाथ पहुंचे, विशेष महापूजा में शामिल हुए।
1: मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: मान्यता है कि कुंभाभिषेक से मंदिर की दिव्य शक्तियां और ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए 10 या 12 वर्षों के अंतराल पर मंदिरों में कुंभाभिषेक की परंपरा है। क्योंकि सोमनाथ मंदिर में ये आयोजन पहली बार हुआ, अमृत पर्व के अवसर पर हुआ, इसलिए इसकी भव्यता और भी बढ़ गई। भारतीय सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। वायु सेना की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के ऊपर 15 मिनट तक मनमोहक कलरफुल प्रदर्शन कर मंत्रमुग्ध कर दिया। सूर्य किरण टीम के विमान जामनगर वायुसेना स्टेशन से टेक ऑफ कर करीब 180 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करने के बाद सोमनाथ पहुंचे और माहौल को शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक बना दिया।

0: महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ।
1: सूर्य किरण टीम का कलरफुल एयर शो खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के संग्रहालय पहुंचे, जहां मंदिर के पुराने अवशेषों के साथ अनेकानेक स्मृतियां मौजूद हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी का सेरिमोनियल पगड़ी और खेस के साथ स्वागत किया। उनको सोमनाथ मंदिर की एक फ्रेम की हुई तस्वीर भेंट की गई और प्रधानमंत्री ने डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शिवलिंग का अभिषेक कराया और प्रधानमंत्री ने भगवान सोमनाथ की आरती की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज सोमनाथ अमृत महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम किया गया। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री करीब 1.5-2 घंटे रुके, जिसके अंदर कुंभाभिषेक से लेकर ध्वजारोहण और साथ ही सूर्य किरण का एयर शो किया गया। जिस तरह से मंदिर की विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी बात प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में

0: किया, जिनकी संकल्प शक्ति की वजह से ही मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण संभव हो सका।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: ये भी इत्तेफाक है कि 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के मौजूदा स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो 11 मई को ही भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण कर पूरे विश्व को ये पैगाम दे दिया था कि भारत अपनी आत्मरक्षा का हुनर कायदे से जानता है।
1: दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए, कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं।
0: इससे पहले पीएम मोदी सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड से मंदिर तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मोदी के रोड शो में लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान सड़क पर लोगों का भारी हुजूम नजर आया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। गुजरात की गीर से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार जारी है। केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। खराब मौसम, बारिश और बर्फबारी के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा। केदारनाथ में अब तक 4 लाख से अधिक भक्त दर्शन कर चुके हैं, जबकि यमुनोत्री और बद्रीनाथ में भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन और मंदिर समितियां यात्रियों को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने में लगातार जुटी हुई हैं।

देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों आस्था, विश्वास और भक्ति के अद्भुत रंग में रंगी हुई है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच गूंजते जयकारे, मंदिरों में उमड़ती श्रद्धा और कठिन रास्तों पर बढ़ते कदम ये बता रहे हैं कि मौसम चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आस्था कभी कमजोर नहीं पड़ती।

चारधाम यात्रा इस समय अपने पूरे शबाब पर है और बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल और माँ यमुना के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ों पर बदलता मौसम, बारिश और बर्फबारी भी भक्तों के उत्साह को रोक नहीं पा रही। हर तरफ सिर्फ भक्ति, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम में 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हर रोज करीब 25 से 30 हजार यात्री मंदिर पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक हर तरफ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सुबह के समय भक्तों को बाबा के स्पर्श

0: श्री दर्शन कराए जा रहे हैं, जबकि दोपहर के बाद श्रृंगार दर्शन का लाभ मिल रहा है।
1: अनुभव हर बार ही बहुत अच्छा होता है। पिछली बार एक डेढ़ साल पहले आई थी मैं यहाँ, पर उस बार हम लाइन में ही लगे रह गए थे और मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे आकर यहाँ की एनर्जी फील करूँ, मेडिटेट करूँ। वो तो यहाँ आकर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, पर उस बार काफी वीआईपी दर्शन हो रहे थे, मैं काफी देर लाइन में लगे रहना पड़ा था, काफी दिन निकल गया था हमारा, कर नहीं पाए थे। हमारा बहुत कट टू कट प्लान था इस बार, इसीलिए बाकी दोस्त भी हमारे और भी जगह का प्लान करके जा रहे हैं, पर इस बार मैं सोच कर रही थी कि मैं यहाँ पर थोड़ा अपना समय स्पेंड करूंगी मेडिटेशन।
0: लगातार खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। कठिन चढ़ाई और ठंड के बावजूद श्रद्धालु लगातार बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर चारधाम यात्रा के दूसरे प्रमुख पड़ाव यमुनोत्री धाम में भी भक्तों का उत्साह चरम पर है। मौसम की विपरीत परिस्थितियां हैं, बावजूद इसके देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ यमुना के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर परिसर में हर दिन पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला चल रहा है। यमुनोत्री मंदिर समिति यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्रद्धालुओं को जरूरी जानकारी देने के लिए लगातार घोषणाएं हो रही हैं, ताकि यात्रा सुगम तरीके से चलती रहे। पर्यटन विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार नाबालिग बच्चों की संख्या में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। केवल 20 दिनों में 4,325 बच्चे अपने परिवारों के साथ माँ यमुना के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। अब तक कुल यात्रियों की संख्या 1,45,000 से ज्यादा हो चुकी है। हल्की बारिश के चलते जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक पैदल मार्ग पर मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। इससे यात्रियों को गर्मी और थकान से राहत मिल रही है। प्रशासन और मंदिर समिति मिलकर यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने की भी कोशिशों में लगे हुए हैं। यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद संबंधित संस्थाओं को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं।
2: यात्रा का पूरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा था। दर्शन यहाँ पे एकदम समाधानकारक हुआ है, मतलब भीड़ भी एकदम मैनेजमेंट अच्छे से, बाकी चलने का रास्ता वगैरह वो भी सभी मस्त है। रास्ते में ठीक जगह जगह पे पानी का व्यवस्था किया हुआ है, उसके बाद में बैठने के लिए व्यवस्था किया है, वॉशरूम के लिए अच्छे से व्यवस्था है। इतनी सारी अच्छी व्यवस्था, इतनी भीड़ मैनेज करना मतलब इजी बात नहीं होती।
3: बिल्कुल,
2: जो मंदिर समिति ने नियोजन किया है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, यमुना मैया सब पर कृपा बनाए रखी।
4: इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुनोत्री नेशनल हाईवे के बड़कोट पर। ये बड़कोट वो अहम पड़ाव है यमुनोत्री धाम की यात्रा को लेकर के, जहाँ पर यात्रियों का ठहराव होता है, और इसके बाद यहाँ से 45 किलोमीटर की दूर पर जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी के बाद पैदल यमुनोत्री धाम की यात्रा की जाती है। यमुनोत्री धाम की जो यात्रा है वो अपने चरम पर आने लगी है। अगर पर्यटन विभाग के आंकड़ों की अगर बात करें तो 11,066, ये 8 तारीख से 9 तारीख 5 बजे तक का 24 घंटे का ये आंकड़ा है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से तीर्थयात्रियों के जो वाहन है वो लगातार यमुनोत्री धाम की ओर रुख किए हुए हैं। पुलिस कर्मी यहाँ पर जो तैनात हैं, किसी तरह से तीर्थयात्रियों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है।
0: भक्तों की लाइन सिर्फ केदारनाथ और यमुनोत्री धाम तक सीमित नहीं है, बल्कि बद्रीनाथ धाम में भी वीकेंड पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। सुहावने मौसम और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी के कारण उत्तराखंड आने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। धाम में हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की कोशिशें जारी हैं।
5: पिछले कई दिनों में कुछ प्रकरण इस तरीके के संज्ञान में आए हैं। इस संदर्भ में जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं, जैसे कि सुलभ इंटरनेशनल, नगर पंचायत और जो हमारे ग्रामीण संस्थाएं जिला पंचायत हैं, इनको निर्देशित किया गया है। हमारे सेक्टर ऑफिसर्स इनका रैंडम इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो टॉयलेट्स का हो चाहे रूट का हो, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कंसर्न डिपार्टमेंट को या जो हमारा मॉनिटरिंग रूम है वहाँ से कंट्रोल रूम से फ़ोन भी कराया जा रहा है और उसका कंप्लायंस भी लिया जा रहा है। क्योंकि प्रतिदिन हमारे पास काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं तो सफाई हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे 300 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो पूरे रूट पर साफ सफाई कर रहे हैं और हम लोग उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं।
3: सर एक वीडियो वायरल हो रहा है गौरीकुंड का हो रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि नदी में काफी टन जो कूड़ा कचरा है वो एकत्रित हो रहा है, इस दिशा में कुछ कार्रवाई की गई है?
5: एक वीडियो इस प्रकार का संज्ञान में आया है, इसको हम लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए भी भेजा हुआ है और कंसर्न डिपार्टमेंट को भी हमने भेजा है कि वो इसको वेरीफाई करें और यदि इस तरीके की कोई लापरवाही करे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
0: धीरे धीरे बद्रीनाथ धाम में भी यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मंदिर परिसर, बाजार और आसपास के क्षेत्रों में जैसे रौनक लौट आई है। भक्त पूरे उत्साह के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर पा रहे हैं। बर्फीली वादियों में गूंजते हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दे रहे हैं और यही तस्वीर उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान को देश दुनिया तक पहुंचा रही है। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल, यमुनोत्री से ओमकार बहुगुणा और बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और अब रुख करते हैं अयोध्या का, जहां मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में चल रहा काम भी जल्द पूरा होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां 30 जून तक अपना काम पूरा कर लेंगी। अब सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय पर सबसे अधिक फोकस है। इस संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं और इनमें एक गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी। देखिए रिपोर्ट।
7: सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए।
8: पहले प्रभु श्री राम का ये नया नवेला मंदिर राम भक्तों के लिए खुला और फिर मंदिर परिसर में बने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद इनके द्वार भी दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। लिहाजा देश और दुनिया भर से अयोध्या आने वाले राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का ये उत्साह और उमंग इनके आध्यात्मिक आनंद को बयां कर रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर और दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिसर में चल रहा दूसरा काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केवल रखरखाव से जुड़ी टीम ही परिसर में मौजूद रहेगी। हालांकि परिसर से बाहर ट्रस्ट कार्यालय, विश्राम गृह और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का काम चलता रहेगा।
9: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया था कि शहीद स्तंभ, पूर्ण स्तंभ जो है इस विषय का, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य बाकी नहीं है।
8: नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर की पूर्णता के बाद अब ट्रस्ट का पूरा जोर सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय के काम को पूरा करने पर है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक विशेष गैलरी प्रभु राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित होगी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि संग्रहालय में एक ऐसी दिव्य दर्शन गैलरी होगी जहाँ श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होगा मानो वो स्वयं मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे हों। वहीं संग्रहालय में देश के विभिन्न भाषाओं, लिपियों और कालखंडों में लिखे गए राम साहित्य और रामायण की दुर्लभ पांडुलिपियों को भी रखा जाएगा, ताकि शोधार्थियों और युवाओं को शोध के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकने की जरूरत न पड़े। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा बल्कि भारतीय संस्कृति, राम साहित्य और अध्यात्म पर शोध का विश्व स्तरीय मंच भी बनकर उभरेगा। कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के बूते अयोध्या न सिर्फ इस वक्त धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है बल्कि ये विश्व पटल पर भी अपनी चमक बिखेर रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
10: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God. get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
13: You're listening to CNBC.
14: This is 80s hits, exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
15: Keep it on smooth jazz.
16: This is Roots Reggae.
17: Exclusively on TuneIn.
18: This is classic hip-hop.
19: Exclusively on TuneIn.
12: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
22: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
22: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
22: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
22: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
25: गुड न्यूज टुडे।
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: Turn It Up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए पीएम मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात, प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना, नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर पीएम मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होगी ईवी गाड़ियां, कल से सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: भव्य दिव्य और भगवामय हुआ प्रभास पाटन का हर कोना, सोमनाथ अमृत महोत्सव पर बिखरी सांस्कृतिक विरासत की छटा। पीएम मोदी का हेलीपैड से लेकर मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो, डमरू की डुगडुग और परंपरागत वाद्यंत्रों के नाद के बीच निकली यात्रा। शंख और डमरू की गूंज के साथ किया गया पीएम मोदी का स्वागत, 100 कन्याओं ने कलश नृत्य किया पेश। पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने लगाए जयकारे, रोड शो के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भी साथ में रहे मौजूद। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का किया माल्यार्पण, दुल्हन की तरह सजाया गया मंदिर परिसर। प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया रुद्राभिषेक। हेलीकॉप्टर से सोमनाथ मंदिर के ऊपर की गई पुष्प वर्षा, आसमान में किया गया शौर्य और संतुलन का बेजोड़ प्रदर्शन। सोमनाथ मंदिर पर फहराई गई धर्मध्वजा, भव्य समारोह में मंदिर के इतिहास को किया गया याद। सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार कुंभ अभिषेक, 11 तीर्थों के पवित्र जल का हुआ इस्तेमाल। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में लगी एक पुष्प प्रदर्शनी भी देखी। सोमनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ी जानकारियों का किया गया संग्रह। पीएम मोदी ने वडोदरा में सरदार धाम का भवन 3 का किया लोकार्पण। इसे श्री दुष्यंत और दक्षा पटेल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। पाटीदार समुदाय के छात्रों के लिए बना है सरदार धाम छात्रावास, 2000 छात्र छात्राओं के रहने की सुविधा। 150 करोड़ की लागत से तैयार सरदार धाम छात्रावास परिसर में यूपीएससी अध्ययन केंद्र, केंद्रीय भोजन कक्ष, ई लाइब्रेरी, सभागार और जिम। गुजरात में यह तीसरा प्रमुख सरदार धाम प्रोजेक्ट है जो समाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ बनाया गया। पीएम मोदी को मिला सरदार गौरव रत्न सम्मान। पीएम ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर किया नमन। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, भक्तों का आंकड़ा पहुंचा करीब 10.5 लाख। केदारनाथ धाम रिकॉर्ड तोड़ने के करीब, अब तक सबसे अधिक 4,42,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे धाम। बद्रीनाथ धाम में रविवार को 22,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक का आंकड़ा 2,68,000 के पार। यमुनोत्री धाम में कल 12,560 भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 1,68,000 से अधिक भक्त पहुंचे दरबार। गंगोत्री धाम में 10 मई को करीब 12,000 भक्तों ने किए दर्शन, अभी तक 1,66,000 से अधिक भक्त पहुंच चुके हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी। अयोध्या में शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने की पहल, बच्चों को सिखाया जा रहा संगीत। प्रसिद्ध कलाकार बच्चों को सिखा रहे हैं संगीत, बड़ी संख्या में बच्चे ले रहे हिस्सा। प्रयागराज में इस बार आम की शानदार पैदावार होने की उम्मीद, दशहरी, लंगड़ा, चौसा समेत नई वैरायटी के आम दिलाएंगे किसानों को बेहतर मुनाफा। आंधी तूफान का असर कम होने से आम की फसल सुरक्षित, कुछ किसानों ने इस बार रतौल, बॉम्बे ग्रीन, अंबिका, अरुणिका और मल्लिका जैसी नई प्रजातियों को भी बागवानी शुरू की। प्रयागराज के खुसरो बाग में तैयार हो रही है नई वैरायटी के पौध, किसानों तक पहुंचाई जा रही है। प्रयागराज मंडल से हर साल हजारों टन आम विदेशों के लिए होते हैं निर्यात। पुलवामा के तहाब में कश्मीरी पंडितों ने शिव मंदिर में एक साथ बैठकर पीएम मोदी के सोमनाथ महोत्सव को देखा सीधा प्रसारण, भक्ति और एकता का देखा अनोखा संगम। सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी के अनुष्ठान के दौरान कश्मीर घाटी से भी जुड़े श्रद्धालु, धार्मिक एकता और सांस्कृतिक जुड़ाव का दिया गया संदेश। जयपुर की 2 साल की नन्ही परी ने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को किया हैरान, अपनी अद्भुत याददाश्त से सुपर टैलेंटेड किड का खिताब अपने नाम किया। सुशांत शर्मा ने 30 से अधिक संस्कृत मंत्र और श्लोक किया याद, 80 से अधिक बॉडी पार्ट्स को पहचानने की प्रतिभा। दामन जिले में महाराणा प्रताप रन का हुआ आयोजन, युवाओं को नशे के खिलाफ किया गया जागरूक। विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की मामा कोचिंग, फ्री होगी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी। उधमपुर में नशे के खिलाफ प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान, महिलाओं को नशे के खिलाफ किया गया जागरूक। भोपाल बना ग्रीन टेक का नया चेहरा, लॉन्च हुआ एलगी ट्री। शहरों में ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मिलेगी मदद, एक एलगी ट्री में है 25 पेड़ों के बराबर हवा को स्वच्छ बनाने की क्षमता। इस तकनीक को विकसित करने में लगे करीब 2 साल, 50 से अधिक विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं व इंजीनियरों की टीम ने इस पर किया है काम। कोडरमा के अंशुमन ने यूपीएससी में किया कमाल, यूपीएससी आईएफएस परीक्षा में 2रा स्थान हासिल किया। पुष्कर के कड़ेर गांव पहुंचे सीएम भजनलाल, किसानों से की बातचीत। संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, 194 करोड़ रुपए के कई योजनाओं का किया शिलान्यास। मुंबई को मिला 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया उद्घाटन। मुंबई में अंबेडकर की 135वीं जयंती पर ड्रोन शो का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगांठ पर शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। बगहा में ग्रामीणों ने बचाई अजगर से सियार की जान, जंगल की ओर अजगर को लोगों ने छोड़ा। फिरदा कहलो पर आधारित एग्जीबिशन ने एथेंस में लोगों को किया आकर्षित, वर्चुअल रियलिटी डिजिटल प्रोजेक्शन से कलाकार की दुनिया को जीवंत बनाया गया। प्रदर्शनी में 600 स्क्वायर मीटर स्क्रीन पर 30 मिनट का ऑडियो विजुअल शो दिखाया गया, दर्शकों को फ्रीडा की कला और जिंदगी का अनोखा अनुभव मिला। प्रदर्शनी में 1925 के बस हादसे को 3D डिजिटल प्रोजेक्शन के जरिए दिखाया गया, इसी हादसे ने फ्रीडा कालो की कला और दर्द को नई पहचान दी। एग्जीबिशन में मैक्सिकन संस्कृति से प्रेरित इंस्टॉलेशन और डे ऑफ द डेड अल्टर भी शामिल है, साथ ही फ्रीडा के मशहूर फ्लोरल ड्रेस की प्रतिकृतियां प्रदर्शित की गई। फ्रीडा कालो अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग्स और दर्द को कला में बदलने के लिए दुनिया भर मशहूर, आज भी उनकी लोकप्रियता में नहीं आई कमी। चीन के ल्हासा में गोल्डन जूनियर इंटरनेशनल हिप हॉप प्रतियोगिता का 4वां सीजन शुरू, युवा डांसर्स ने ब्रेकिंग और पॉप डांस पॉपिंग डांस में दिखाया दम। ₹3650 की ऊंचाई पर आयोजित प्रतियोगिता में स्ट्रीट कल्चर की दिखी झलक, मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में युवाओं का जोश देखने लायक रहा। शीजांग के अलग अलग हिस्सों से आए डांसर्स ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा, 1 vs 1 बैटल में प्रतिभागियों ने अपने शानदार डांस मूव्स दिखाए। हिप हॉप और स्ट्रीट डांस ने कला प्रेमियों को किया खूब आकर्षित, इवेंट में लगातार डांस बैटल्स ने माहौल को ऊर्जा बनाए रखा। ऐसे आयोजन से बच्चों के हुनर को तराशने का हो रहा है काम, चीन में हिप हॉप कल्चर को दिया जा रहा बढ़ावा। कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए पूरी तरह से चुका है फ्रांस का ग्लैमर शहर कांस, ड्रोन वीडियो में रेड कार्पेट, लग्जरी होटल और खूबसूरत चीजों की दिखी बीचों की दिखी झलक। 12 मई से होगी 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, 23 मई तक चलेगा फेस्टिवल। हॉलीवुड सितारे स्कारलेट जॉनसन, रैमी मलिक और जॉन ट्रावोल्टा की फिल्में इस साल कांस में होंगी प्रीमियर, फेस्टिवल में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज और फिल्म मेकर्स इकट्ठा होंगे। कोरियन डायरेक्टर पार्क चान वूक इस साल मुख्य प्रतियोगिता जूरी के संभालेंगे कमान, वहीं स्टीवन सोडरबर्ग और रॉन हवार्ड भी अपनी फिल्म में करेंगे पेश। फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म द इलेक्ट्रिक किस से होगी, फिल्म 1920 के पेरिस की कहानी पर आधारित एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। रेड बुल एथलीट आर्दा सेटकी ने डेथ वैली से सेंटा मोनिका तक 600 किलोमीटर दौड़ पूरी की, कठिन अल्ट्रा मैराथन 123 घंटे में पूरी की। सेटकी ने 5 मई 2026 को अमेरिका के सबसे निचले स्थान बेडवाटर बेसिन से की शुरुआत और 10 मई को पैसिफिक ओशियन पर स्थित सेंटा मोनिका पियर पर खत्म की दौड़। इस दौड़ के दौरान उन्हें कैलिफोर्निया की बेहद कठोर और गर्म परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पूरी यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण रही। सेटकी के साइबॉर्ग सीजन प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये दौड़, इससे पहले भी वे कई लंबी दूरी की असल में दौड़ कर चुके हैं पूरी। 2024 में उन्होंने बर्लिन से न्यूयॉर्क तक 3,000 किलोमीटर की लगाई थी दौड़, 2025 में उन्होंने जापान में 43 दिनों में 72 मैराथन की थी पूरी। युद्ध का दंश झेल रहे गाजा से आई सकारात्मक तस्वीरें, एक जर्जर इमारत के बेसमेंट में चल रहा जिम। युवक मलबे के बीच वर्कआउट कर तनाव कर रहे हैं कम, बॉडी बिल्डर सीमेंट के डंबल बनाकर कर रहे अभ्यास। युद्ध के कारण गाजा में कई जिम हो गए थे बंद, जिम के ओनर अहमद फरवाना ने इस दौरान 10 किलो से ज्यादा वजन घटने की बात कही। जिम के जर्जर हालात के बावजूद भारी दाद में पहुंच रहा है युवा, वर्कआउट ट्रेनिंग को लेकर सजग दिखे युवा। गाजा में युवाओं के लिए यही टूटा फूटा जिम कठिनाइयों से जूझने का एकमात्र सहारा, युवा अपनी फिटनेस और भविष्य दोनों को बना रहे बेहतर। स्विट्जरलैंड में क्वींस फाइट प्रतियोगिता का आयोजन, हजारों की संख्या में दर्शकों ने खेल का उठाया लुत्फ। पारंपरिक हेरेंस गायों के एक दूसरे से जोर आजमाइश, सिर बढ़ाकर एक दूसरे को पीछे धकेलने पर मिलती है जीत। करीब 40 मिनट तक चलती है प्रतियोगिता, विजेता को मिलता है क्वीन ऑफ द क्वींस का खिताब। 1920 के दशक में शुरू हुई थी खेल की परंपरा, अल्पाइन संस्कृति का बन चुकी है अहम हिस्सा। प्रतियोगिता के साल भर किसान गायों को करते हैं तैयार, मेहनत धैर्य और पशुओं से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है यह खेल। स्लोवेनिया में आर्कॉडियन महोत्सव की धूम, एक साथ सैकड़ों कलाकारों ने बजाया आर्कॉडियन वाद्यंत्र। लेक ब्लेड के किनारे हुए 450 कलाकारों ने पेश की लोक धुन, संगीत में हुआ माहौल। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 2026 यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का उद्घाटन, दुनिया भर से करीब 15 करोड़ दर्शक देखते हैं समारोह। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के 35 प्रतिनिधि मंडल ने लिया हिस्सा, वियना के टाउन हॉल में समारोह का आयोजन। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट विश्व के सबसे अधिक देखे जाने वाली प्रतियोगिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं अरबों व्यूज। चीन ने तियानझोउ 10 कार्गोयान को सफलतापूर्वक किया लॉन्च, वैनचांग लॉन्च साइट से हुई लॉन्चिंग। लॉन्च के करीब 10 मिनट बाद तियानझोउ 10 अपने निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा, यान के सोलर पैनल खुलते ही मिशन को पूरी तरह सफल किया गया। तियानयोंग स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो यान में भेजे गए बेहद जरूरी सामान, इसमें स्पेस सूट, ईंधन, वैज्ञानिक प्रयोगों में उपकरण भी शामिल। तियानझोउ 10 जल्द ही तियानयोंग स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग प्रक्रिया करेगा पूरी, चीन की मानव अंतरिक्ष परियोजना की तरह यह 5वां कार्गो रीसप्लाई मिशन। मिशन के साथ लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट ने अपना 641वां अभियान किया पूरा, चीन लगातार अपने स्पेस स्टेशन मिशनों को दे रहा विस्तार। अनन्या पांडे लक्ष्य ललवानी की रोमांटिक फिल्म में चांद मेरा दिल का ट्रेलर लाउट, लव इमोशन और एग्रेशन से भरपूर, 22 मई को होगी रिलीज। करण कुंद्रा तिरस्कृत प्रकाश का नया रियलिटी शो देसी ब्लिंग ओटीटी पर मचाएगा धमाल, 20 मई को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। रैपर और सिंगर योयो हनी सिंह का नया गाना बॉडी रोल रिलीज, नोरा फतेही ने गाने में दिखाए बेहद बोल्ड और स्टाइलिश डांस मूव्स। बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई के बाद भूत बंगला ओटीटी पर देगी दस्तक, 12 जून को नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में होगी स्ट्रीम। रिलीज से पहले रामचरण जानवी कपूर के स्पोर्ट्स ड्रामा पैडवी की टिकट की रिकॉर्ड बिक्री, 4 जून को फिल्म में दुनिया भर में होगी रिलीज।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: कौन सी राशि को मेहनत का फल पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? कौन सी राशि का व्यक्ति अगर शनि देव की पूजा करे तो उसको मेहनत का फल जरूर मिलेगा? और कौन सी राशि का व्यक्ति अगर पीपल के वृक्ष में जल डाले तो जीवन का संघर्ष कम होगा? कैसे मिलेगा मेहनत का फल, राशि अनुसार जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए पीएम मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात, प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना, नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आपकी मेहनत के फल के बारे में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं लेकिन उनको उसका फल नहीं मिलता। तो आपकी राशि के अनुसार आपको किस तरह से करनी है मेहनत ताकि आपको उसका फल मिले, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, शादी होने वाली है, गृह प्रवेश होने वाला है, मुंडन होने वाला है, तो उसकी शुरुआत के पहले हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को नारियल अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके घर का शुभ और मंगल कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए।
0: और चलिए अब जान लेते हैं 12 मई 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 12 मई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 2:52 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:25 तक। राहु काल का समय शाम के 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जानते हैं मेहनत का ग्रहों के साथ क्या संबंध है।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो मेहनत करते हैं उसका फल आपको कैसे मिले, क्योंकि हर बार मेहनत करने पर उसका फल मिले ये आवश्यक नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं मेहनत और फल के पीछे। देखिए, कुंडली के ग्रह बहुत हद तक बता देते हैं कि जीवन में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में मेहनत की स्थिति क्या रहेगी। कुंडली के त्रिकोण लग्न पंचम और नवम और इसके स्वामी जीवन के संघर्ष वाले हिस्से को बताते हैं और लग्न पंचम और नवम जो कुंडली का त्रिकोण है ये बता देता है कि संघर्ष कैसा रहेगा और कितना रहेगा। त्रिकोण में भी जो पंचम भाव है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्व पुण्य का भाव है। इस भाव और इसके स्वामी की स्थिति अच्छी हो तो पूर्व पुण्य इस जीवन में मिलता है, मेहनत के परिणाम मिलते हैं और व्यक्ति का संघर्ष कम होता है। पंचम भाव अगर कुंडली में अनुकूल है, फेवरेबल है, तो व्यक्ति कम प्रयास में जीवन में सफलता पा जाता है। वैसे तो नवम भाव आपके भाग्य का है, लेकिन पंचम अगर मजबूत है तो आपका बैकग्राउंड शुरू से आपके रास्ते बनाने लगता है। और जब नवम का सपोर्ट मिल जाता है तो ये रास्ते लंबे समय तक आपको सफलता देने लगते हैं।
0: और चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या उपाय करें।
1: देखिए, अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेष, वृष और मिथुन राशि के लोग अगर अपनी मेहनत का फल चाहते हैं, संघर्ष का फल चाहते हैं, तो क्या करेंगे। मेष राशि की अगर बात करें तो मेहनत का फल पाने के लिए, सफलता पाने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिएगा। रोज सुबह उनको जल चढ़ाइए, उनके मंत्रों का जप करिए और हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर, धर्म स्थान पर जाकर प्रार्थना करिए। वृषभ राशि, मेहनत का फल अगर जीवन में चाहते हैं तो शनि देव की उपासना आपको थोड़ी बहुत जरूर करनी चाहिए। कम से कम रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए अपने घर में भी, बाहर भी, और उनकी देखभाल करिए। मिथुन राशि, अगर आप अपनी मेहनत का, संघर्ष का फल चाहते हैं तो हर शनिवार को हनुमान जी की उपासना करिएगा। हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें। मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ भी जरूर करिए। अगर पाठ करना कठिन लगता है तो मोबाइल पर ऑडियो पर लगाकर शांति से बैठकर सुनिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको आपकी मेहनत का बेहतर फल जरूर प्राप्त होगा।
0: और चलिए, वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या उपाय करें।
1: अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। देखिए, अगर आपकी राशि कर्क है और आप अपनी मेहनत का फल पाना चाहते हैं, संघर्ष में सफलता चाहते हैं, तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। खास तौर से ज्यादा कुछ ना कर सकें तो सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़िएगा और बृहस्पतिवार को निर्धनों को और बुजुर्गों को पीली मिठाई बांटिएगा, आपको लाभ होगा। सिंह राशि संघर्ष की राशि है और सिंह वाले अगर चाहते हैं कि उनको मेहनत का संघर्ष का फल मिले तो घर में एक केले का पौधा लगाएंगे, घर के पीछे की तरफ नियमित रूप से उसकी देखभाल करेंगे। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे। नियमित रूप से संकट मोचन पढ़ते रहें, हनुमान जी की शरण में रहें, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कन्या राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल आपको मिले, संघर्ष आपका सफल हो, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करिएगा। खास तौर से रोज नहीं कर पाते तो हर बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करें और शनि देव की यथाशक्ति पूजा करें। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
0: और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65% जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो

0: प्रश्न समर जी ने हमें लिखा है और समर जी हमें मेल लिखते हैं दार्जिलिंग से। समर जी की जन्म की तारीख है 14 फरवरी 1955। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान है सिलीगुड़ी। समर जी पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। समर जी देखिए, आने वाले समय में आप अपनी आंखों का ध्यान दीजिएगा और चोट चपेट से, हड्डियों की समस्या से थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा। कोई बहुत जटिल समस्या या कोई बहुत मुश्किल स्थिति नहीं दिख रही है। अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक माणिक्य बनवा के पहनिए, रूबी, लगभग 6 से 8 रत्ती का, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप पंडित जी से चाहते हैं पूछना, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। देखते हैं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका लेते हैं।
0: अगला प्रश्न देवदत्त जी ने हमें लिखा है, गुड़गांव से लिखते हैं। देवदत्त जी की जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1981। जन्म का समय सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी में बदलाव करना चाहता हूं काफी समय से, और उड़ीसा या उसके आसपास जाना चाहता हूं, तो क्या मेरी नौकरी में बदलाव होगा? क्या मेरा स्थान परिवर्तन हो सकता है? देवदत्त जी, आपकी कुंडली में नौकरी और स्थान में परिवर्तन की संभावना बनती है और आने वाले समय में आप उड़ीसा में पहुंच जाएंगे, भुवनेश्वर के आसपास नौकरी पा जाएंगे, ये संभावना दिख रही है। अपना प्रयास जारी रखिए। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या उपाय करें।
0: अब जानते हैं कि तुला, वृश्चिक, धनु वाले ऐसा क्या करें जिससे उनको उनकी मेहनत का फल मिले। तुला की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल आपको मिले, तो आप रोज शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। उसका पूरा नाम है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। रोज शाम को पढ़िए या सुनिए। भगवान विष्णु को रोज सुबह तुलसी दल भोग के रूप में अर्पित करिएगा और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संघर्ष का, मेहनत का बेहतर फल जीवन में प्राप्त हो।

0: वृश्चिक राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले, संघर्ष कम हो, तो अपने घर में खास तौर से पीछे की तरफ एक केले का पौधा जरूर लगाइएगा और उसकी देखभाल करिएगा। शिव जी को हर सोमवार को जल और बेलपत्र मंदिर में जाकर अर्पित करिएगा और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको सही समय पर आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। धनु राशि, इनके जीवन में भी संघर्ष बहुत होता है, इनको मेहनत का फल मिलने में विलंब होता है, तो अगर आपकी राशि धनु है, आप चाहते हैं कि आपको आपके मेहनत का फल मिले, जीवन का संघर्ष कम हो, तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और पानी पीने के लिए, प्रयोग करने के लिए तांबे के बर्तनों का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, काम में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों की समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में लगातार उन्नति होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या उपाय करें।
0: अब ये जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग ऐसे कौन से उपाय करें जिससे उनको उनकी मेहनत का फल जल्दी मिले, संघर्ष कम हो जाए। मकर राशि, देखिए आपके जीवन में संघर्ष कम हो, मेहनत का फल आपको मिले, इसके लिए एक चांदी का कड़ा या एक चांदी का छल्ला, चांदी का छल्ला किसी भी उंगली में पहन लीजिए या चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण करें। जब भी मौका मिले पीपल के पौधे लगाएं या लगवाएं। और एक काम आप और भी कर सकते हैं, रोज ना भी कर पाए तो शनिवार को बिल्कुल प्रातः काल पीपल के वृक्ष में अगर जल डालें तो आपके लिए बेहतर होगा, मेहनत सफल होगी। कुंभ राशि, आपकी मेहनत सफल हो, आपका संघर्ष कम हो, इसके लिए शिव जी को पंचामृत अर्पित करिएगा। और अगर रोज ना भी कर पाए तो सोमवार को थोड़ा सा पंचामृत शिवलिंग पर लगाइए और उसके बाद जल अर्पित करिए, बाकी पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। एक तुलसी की माला आपको गले में पहननी चाहिए, इससे क्या होगा कि लक फैक्टर आपका बेहतर होगा और जीवन में घटने वाले आकस्मिक उतार चढ़ाव से आप बचेंगे, मेहनत के अच्छे परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। मीन राशि, मेहनत का फल मिले, जीवन में संघर्ष कम हो, इसके लिए पूर्णिमा का व्रत रखिए, केवल जल और फल ग्रहण करके। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का व्रत रखें और रोज हनुमान जी की पूजा करिए भगवान राम के साथ। हनुमान जी का एक नाम है रामेष्ट, आप रामेष्ट नाम का जप भी कर सकते हैं, उससे हनुमान जी और श्री राम दोनों की पूजा हो जाएगी। ऐसा रेगुलरली करिए, संघर्ष कम होगा, मेहनत के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
1: तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय ठीक होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी।
0: आज का अंतिम प्रश्न विनीता मिश्रा ने हमें लिखा है और विनीता हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 24 जून 1993। जन्म का समय रात में 11:24। जन्म का स्थान है जौनपुर, उत्तर प्रदेश, और मेल लिखती हैं लखनऊ से। ये कह रही हैं कि मेरी शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है, लेकिन वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इस विवाह से अलग हो जाना चाहिए, तो क्या ये मेरा विवाह चल सकेगा? मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? विनीता, केवल एक पक्ष की गलती वैवाहिक जीवन में नहीं होती है, आपको भी क्रोध बहुत है और आप एडजस्टमेंट नहीं कर रही हैं। थोड़ा सा संतुलन बना के चलिए, इतना मामला गड़बड़ दिखाई नहीं दे रहा है। अक्टूबर 2026 तक थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है, लेकिन अगर आप शांति से रहें, बैलेंस करके चलें, तो उसके बाद वैसे भी आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, लखनऊ में रहेंगी नहीं, स्थितियां आपकी इंप्रूव हो जाएंगी और विवाह आपका टूटेगा नहीं। अगर बुद्धिमानी से रहें तो ये शादी चलेगी भी और बेहतर भी होगी। रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नहीं पढ़ पाती हैं, मोबाइल पर लगा करके बैठ करके सुनिएगा रोज प्रातः। और एक पीला पुखराज, लगभग 6-7 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पति वार की प्रातः धारण करें, आपको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन 12 मई 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 12 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में काफी हद तक स्थिरता आएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है और धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष भर अगर आप जप करें तो आपके लिए वर्ष अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना खराब होता है, वस्त्रों का दान करो तो बदले में पैसे ले लो। क्या वस्त्रों का दान किसी को भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं? देखिए, अलग अलग रंगों के वस्त्र अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। उसी रंग के वस्त्र का दान सामान्यतः करिए जो ग्रह आपका खराब है, और आप कपड़ा कभी भी दान करें, किसी को भी दान करें, साफ करके अच्छी तरह से धो करके दीजिए। और ऐसी कोई मान्यता नहीं है, ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि आप किसी को वस्त्र देंगे तो बदले में 2-4-10 रुपए उससे लेंगे। ऐसी कोई मान्यता, ऐसा कोई नियम नहीं है।
1: और आइए अब जान लेते हैं 12 मई 2026 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 12 मई 2026 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 मई मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को इस एक सवा महीने में वर्तमान में किस तरह के स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। आज की गुडलक राशि है मिथुन। इस समय अपने खान पान का, अपने पाचन तंत्र यानी डाइजेशन का ध्यान दीजिए, और अगर डॉक्टर ने कोई दवा लिखी है किसी समस्या के लिए तो उसको खाने में लापरवाही मत करिएगा।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनको छोटी छोटी चीज पाने में संघर्ष करना होता है। दुकान पे छोटी सी चीज खरीदने जाएंगे, उनके जाने के पहले ही खत्म होगी वो। तो अगर आपको हर छोटी चीज पाने में संघर्ष करना पड़ता है तो इसको कैसे बेहतर करें। रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। दीपक जलाने के बाद दीपक को हाथ जोड़कर उसके बाद आसपास के हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, उनसे कृपा की प्रार्थना करिए। ऐसा करने से हर मामले में जो संघर्ष करना पड़ रहा है वो समाप्त होगा।
1: पंडित जी तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आशा गुप्ता, साहिल देव, आप देख रहे हैं 6 बजे का GNT स्पेशल। एक खास पेशकश आप सबके सामने रखते हैं। देखिए, आज का दिन यानी 11 मई भारत की आध्यात्मिक और सामरिक दोनों ही शक्तियों के लिहाज से बहुत ज्यादा खास है। 11 मई 1951 को गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मौजूदा स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। आज इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दिन की 75वीं वर्षगांठ है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साक्षी बने। दूसरी तरफ 11 मई को ही भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण भी किया था। तब भारत की सामरिक शक्ति की धमक पूरी दुनिया ने सुनी थी और यही वजह है कि सोमनाथ अमृत महोत्सव में भारत की आध्यात्मिक और सामरिक दोनों ही शक्तियों की झांकी देखने को मिली।

0: Bhagwan Somnath ki.
1: सदियों से सनातन आस्था का परम धाम रहे सोमनाथ मंदिर में आध्यात्मिकता और आधुनिकता के साथ भारत की शक्ति और सामर्थ्य का अलौकिक नजारा देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर के आधुनिक स्वरूप के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ के दिव्य अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सोमनाथ मंदिर पहुंचे और विशेष महापूजा में शामिल होकर उसके साक्षी बने। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम ने सोमनाथ की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ऊर्जा को एक बार फिर जीवंत कर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अनेक आक्रांताओं के दुष्चक्र का कई बार शिकार हुए सोमनाथ मंदिर की महिमा और महात्म्य का जिक्र किया।

0: मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: सोमनाथ मंदिर के पावन पुनरुद्धार की 75वीं सालगिरह के भव्य दिव्य कार्यक्रम में सबसे विशेष रहा मंदिर का कुंभाभिषेक, जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण की रीतियों का प्रतीक है। वैदिक मंत्रों की अलौकिक गूंज के बीच 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए 11,000 लीटर पवित्र जल को मंदिर के शिखर पर अर्पित किया गया।

इसके लिए 1860 किलो वजनी 350 टन की विशेष क्रेन की सहायता से 155 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया और उसके बाद कलश के पानी से मंदिर का कुंभाभिषेक

0: मान्यता है कि कुंभाभिषेक के पावन अवसर पर मंदिर में उपस्थित रहने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस समय मंदिर की दिव्य शक्तियाँ और ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। कुंभाभिषेक के बाद भारतीय सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प की वर्षा की गई। वायुसेना की सूर्यकिरण टीम ने मंदिर के ऊपर 15 मिनट तक मनमोहक कलरफुल प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूर्यकिरण टीम के विमान जामनगर वायुसेना स्टेशन से टेक ऑफ कर करीब 180 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करने के बाद सोमनाथ पहुंचे और अपने कलरफुल फॉर्मेशन से माहौल को शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक बना दिया।
1: महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ।
0: सूर्य किरण टीम का कलरफुल एयर शो खत्म होने के बाद पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के संग्रहालय पहुंचे, जहां मंदिर के पुराने अवशेषों के साथ अनेकानेक स्मृतियां मौजूद हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी का सेरेमोनियल पगड़ी और खेस के साथ स्वागत किया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी को सोमनाथ मंदिर की एक फ्रेम की हुई तस्वीर भी भेंट की। इस दौरान पीएम मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 1.5 से 2 घंटे तक मंदिर परिसर में ही मौजूद रहे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज सोमनाथ अमृत महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम किया गया। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री करीब 1.5-2 घंटे रुके, जिसके अंदर कुंभाभिषेक से लेकर ध्वजारोहण और साथ ही सूर्य किरण का एयर शो किया गया। जिस तरह से मंदिर की विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी बात प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में कही कि सोमनाथ को जिसके नाम में सोम हो उसका कभी अंत नहीं हो सकता, और वही चीज किस तरह से राष्ट्र के निर्माण के लिए उपयोगी रहती है, उन सब की बात की। जो संकल्पना थी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की, वो सरदार पटेल ने किस तरह से की थी और उसके बाद किस तरह से ये पूरा पुनर्निर्माण हुआ, उस पर प्रधानमंत्री ने विस्तृत तरीके से बात की है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि आज जो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस जो है उसको लेकर जो बात की गई प्रधानमंत्री के द्वारा कि पोखरण विस्फोट के बाद भी, पोखरण परीक्षणों के बाद भी दुनिया के प्रतिबंधों के बावजूद भारत जिस तरह से एकजुट रहा और आगे बढ़ा, कोई शक्ति हमें झुका नहीं सकती। तो वो संदेश उन्होंने दिया कि किसी की भी कोई भी कैसी परिस्थिति आए, उन परिस्थितियों में भारत हमेशा एकजुट रहा है और हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ा है और इसी तरह वो आगे बढ़ता रहेगा।
0: सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को खास तौर पर याद किया, जिनकी संकल्प शक्ति की वजह से ही मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण संभव हो सका।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: गजब का इत्तेफाक है कि 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के मौजूदा स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो 11 मई को ही भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व को यह पैगाम दे दिया था कि भारत अपनी आत्मरक्षा का हुनर कायदे से जानता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर पोखरण परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत का परमाणु सामर्थ्य देखकर आंखें लाल कर ली थी, लेकिन भारत इसके लिए दृढ़ संकल्पित था।
1: दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए, कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं।
0: इससे पहले पीएम मोदी सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड से मंदिर तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मोदी के रोड शो में लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान सड़क पर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। गुजरात के गिर से ब्रजेश जोशी और दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सनातन संस्कृति में स्थान का विशेष महत्व है। भारत के ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से किसी स्थान विशेष में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा के रेडिएशन को महसूस किया और भगवान के धाम के रूप में उसकी पहचान स्थापित की। सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा से लबरेज ऐसा ही एक स्थान है, जहां अनादिकाल से ही भगवान शिव के अविनाशी स्वरूप की मौजूदगी महसूस की जाती रही है। ये सत्य सिर्फ मिथकों तक ही महदूद नहीं है, ऐतिहासिक घटनाओं में इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। सोमनाथ मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने आधा दर्जन से अधिक बार तहस नहस करने की कोशिश की। आक्रांताओं ने बार बार उसे ध्वस्त किया, लेकिन उस स्थान में कुछ अलौकिक ऊर्जा है कि बार बार ध्वस्त होने के बाद भी मंदिर का निर्माण होता रहा और आज पूरे विराटता के साथ सोमनाथ मंदिर हमारे बीच में मौजूद है।

0: अस्तित्व है, जब से मानवता का वजूद है तब से इस अद्भुत अलौकिक महिमामय मंदिर का उल्लेख मिलता है। दुनिया के प्राचीनतम स्क्रिप्चर माने जाने वाले ऋग्वेद से लेकर महाभारत, शिवपुराण और स्कंद पुराण तक में सोमनाथ की महिमा का उल्लेख है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का महत्व ऐसा कि आमतौर पर वाचाल और उत्ताल रहने वाली अरब सागर की लहरें इस मंदिर के पास शरणागति की मुद्रा में शांत हो जाती हैं। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के लिए स्वयं चंद्रदेव ने इस स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने न सिर्फ चंद्रदेव को श्राप मुक्त किया बल्कि उनके आग्रह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां अनंत काल के लिए विराजमान भी हो गए।
1: ये जो भी आप मंदिर देख रहे हो, जो खड़ा है मंदिर, वो सनातन धर्म का केंद्र है और प्रथम ज्योतिर्लिंग भी है। हमारा तीर्थपुरी सोमपुरा ब्राह्मण समाज है, वो चंद्रमा ने जब से मंदिर यहाँ की स्थापना की थी तब से पूजा विधि और धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं।
0: सोमनाथ मंदिर के एक दिव्य अलौकिक बात पर अमूमन किसी का ध्यान नहीं जाता। सोमनाथ मंदिर जहाँ पर स्थित है, यहाँ से ठीक दक्षिण की तरफ सीधी लकीर खींचेंगे तो धरती के आखिरी छोर अंटार्कटिका तक कहीं भी भूखंड का कोई हिस्सा, यहाँ तक कि कोई टापू नहीं मिलेगा। बहरहाल सोमनाथ मंदिर को लेकर इतिहास के पन्नों को जब आप पूरे मनोयोग के साथ पलटेंगे तो आपको हैरान करने वाले कई और तथ्य मिलेंगे, जिसे जानकर श्रद्धा और विश्वास न होते हुए भी इस परम तीर्थ के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी। दरअसल क्रूर विदेशी आक्रांताओं ने जब जब भारत भूमि पर आक्रमण कर सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हमला जरूर किया, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं इस बात का एहसास था कि ये मंदिर सनातन शक्ति का अक्षय केंद्र है। इसलिए 1200-1300 साल के कालखंड में सनातन को मिटाने की दुराशा लेकर आए हर आक्रांता ने सोमनाथ मंदिर को न सिर्फ लूटने बल्कि उसे तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वसुधा के इस दिव्य स्थान में जाने कौन सी अलौकिक शक्ति है कि मंदिर का ढांचा ध्वस्त होने के बाद भी ऋषि मुनियों, तपस्वियों से लेकर आम श्रद्धालुओं तक का यहां आने का सिलसिला थमा नहीं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए और इस गौरवशाली मंदिर की दुर्दशा देखी तो लौह पुरुष की आंखें भी नम हो गईं। उसी समय उन्होंने समंदर का जल हाथ में लेकर मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया।
2: उसने मंदिर की ये जीर्ण दशा देखी तो उसके लोखंडी पुरुष मानते हैं, उसकी आंख भी आंसू से दिखाई गई है। उसका दर्द उसके चेहरे में और आंखों में दिखाई दिया। उसने पहला ही काम उस समय जब पुराना मंदिर था वहाँ से समुद्र में जाने के लिए एक सीढ़ी थी, पत्थर की सीढ़ी थी, वहाँ से सीधा उतरे और उसने हाथ में सूर्य का समुद्र का जल लेकर उसने प्रतिज्ञा ली कि जहाँ मैं सोमनाथ का पुनरुद्धार करूँगा और बिना सोमनाथ का पुनरुद्धार आजादी मिली तो ये आजादी अधूरी है।
0: अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के अनुसार लौह पुरुष ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार शुरू करवा दिया। हालांकि अफसोस ये कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरदार पटेल 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को यहाँ आकर प्राण प्रतिष्ठा के अलौकिक अनुष्ठान को सम्पन्न कराया।
2: 11/5/1951 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस हाल जब दर्शन करते हैं इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, वहां से मंदिर अब शुरू हुआ 11/5/1951 से।
0: मंदिर का मौजूदा स्वरूप बेशक सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति और अदम्य साहस का परिणाम है, लेकिन पिछले 1200-1300 सालों के कालखंड में सरदार पटेल की तरह और भी कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद इसी स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 8वीं शताब्दी से लेकर क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के समय तक कम से कम 6 बार

0: मंदिर के ढांचे को तहस नहस किया गया, पर हर बार सरदार पटेल जैसे सनातन के मसीहा ने आगे बढ़कर मंदिर के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया। सबसे पहले इस मंदिर पर 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने धावा बोलकर इसे तहस नहस कर दिया। उसके बाद गजनी के बददिमाग आक्रांता महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। खिलजी वंश के दरिंदे अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में एक बार फिर इस अनादि मंदिर को जमींदोज कर दिया। खिलजी के बाद गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने 1395 ईस्वी में इस मंदिर को मटियामेट करने की कोशिश की। वहीं मुगल वंश के औरंगजेब की तो इस मंदिर से खास अदावत थी, इसलिए औरंगजेब ने पहले 1665 ईस्वी में और फिर अपने मरने से एक साल पहले 1706 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ डाला।
1: इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांता आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे, बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है।
0: कमाल देखिए कि इस मंदिर को ध्वस्त करने वाले आक्रांताओं की कब्रों पर आज कोई एक अदद दिया जलाने वाला नहीं बचा है, लेकिन सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ उसी स्थान पर विराजमान है। मानो आक्रांताओं को पैगाम दे रहा है कि प्रथम ज्योतिर्लिंग अपनी स्वयं सिद्ध शक्ति से सिंचित है और स्वयं महादेव ही इसके रक्षक हैं। अनादिकाल से ही ये मंदिर भक्तों और श्रद्धालुओं की आस्था का परम धाम बना हुआ है। गुजरात के गीर से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ आज के हमारी जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: और अब बात श्रीराम की नगरी अयोध्या की करते हैं, जहां मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में चल रहा काम भी जल्द पूरा होने वाला है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां 30 जून तक अपना काम पूरा कर लेंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरयू तट पर बन रहा भव्य संग्रहालय अब ट्रस्ट की प्राथमिकता बन चुका है। इस संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही है, जिनमें एक गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी।
3: पहले प्रभु श्री राम का ये नया नवेला मंदिर राम भक्तों के लिए खुला और फिर मंदिर परिसर में बने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद इनके द्वार भी दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, लिहाजा देश और दुनिया भर से अयोध्या आने वाले राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का ये उत्साह और उमंग इनके आध्यात्मिक आनंद को बयां कर रहा है।
4: प्रत्येक मंदिर, चाहे परकोटे के 6 मंदिर हो, चाहे सप्तऋषि मंदिर हो, शेषावतार हो और कुबेर टीला हो, सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं ने दर्शन प्रारंभ कर दिया है। बहुत आनंद के साथ देश भर से आने वाला हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करके आनंद हो रहा है।
5: सारे मंदिरों के दर्शन हुए,
6: बढ़िया लग रहा है। हम पूरे इंडिया में इतने घूमे, पर ये जो सगोड़ है इधर, वो राम अयोध्या की बहुत बढ़िया रही और बहुत दर्शन बढ़िया से किए।
5: किसके किसके आप दर्शन किए मंदिर में?
7: सबका, राम जी के परिवार का, राम जी का, सबका, रामलला का, बहुत अच्छा लगा।
3: इस बीच श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर और दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिसर में चल रहा दूसरा काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केवल रखरखाव से जुड़ी टीम ही परिसर में मौजूद रहेगी। हालांकि परिसर से बाहर ट्रस्ट कार्यालय, विश्राम गृह और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का काम चलता रहेगा।
8: निर्माण पूरा हो चुका है। एक सम जो आप सभी को विस्तार से बताया था कि शहीद सम, पूर्ण सम जो है इसी का, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य बाकी नहीं है और LNTTCE भी अपना कार्यभार 30 जून को यहाँ पूर्ण करके उनकी टोली चली जाएगी। केवल वह टोली बचेगी जो एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर देख रेख के लिए।
3: नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर की पूर्णता के बाद अब ट्रस्ट का पूरा जोर सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय के काम को पूरा करने पर है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक विशेष गैलरी प्रभु राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित होगी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि संग्रहालय में एक ऐसी दिव्य दर्शन गैलरी होगी, जहां श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होगा मानो वो स्वयं मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे हों।
8: एक यह अवश्य अब निर्णय ले लिया गया है कि म्यूजियम में, संग्रहालय में एक गैलरी इस प्रकार की होगी जहां की ऐसा लोगों को लगेगा जब वो उस गैलरी में जाएंगे कि वह मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। यानी उसमें सभी मंदिर जो बने हैं उन सब का एक तरीके से दर्शन, तो वह दिव्य दर्शन की गैलरी होगी। भगवान की मूर्ति का दर्शन, राम परिवार का दर्शन, बाकी सभी मंदिरों का दर्शन। तो वो आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के तहत उस कार्य को किया जाएगा।
3: वहीं संग्रहालय में देश के विभिन्न भाषाओं, लिपियों और कालखंडों में लिखे गए राम साहित्य और रामायण की दुर्लभ पांडुलिपियों को भी रखा जाएगा, ताकि शोधार्थियों और युवाओं को शोध के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकने की जरूरत न पड़े। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, राम साहित्य और अध्यात्म पर शोध का विश्व स्तरीय मंच भी बनकर उभरेगा।
9: जब हमारे पास सभी तरह के रामायण एक जगह पर केंद्रित होंगे तो शोधार्थियों के लिए कितना लाभ होगा। अब वो शोधार्थी भाषा पर काम करेंगे, राम शैली पर काम करेंगे, लिपि पर काम करेंगे, लिपि के विकास पर काम करेंगे, भाषा विन्यास पर काम करेंगे और राम कथा पर बात करेंगे। तो उनके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, एक उनके पास बहुत बड़ी क्या कहेंगे एक उनके पास बहुत बड़ा विकल्प रहेगा कि उनको शोध के लिए ना अब कहीं ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया नहीं जाना पड़ेगा।
3: कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के बूते अयोध्या न सिर्फ इस वक्त धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी चमक बिखेर रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए पीएम मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात, प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना, नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शिवेंदु अधिकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होगी ईवी गाड़ियां, सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और फैक्ट चेक में आपका बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है और कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाई उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही अवैध घुसपैठिए राज्य छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। क्या है वायरल दावे की और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर में आज बात होगी उस वीडियो की, जिसके जरिए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बंगाल पुलिस ने जमकर पीटा। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध घुसपैठिए राज्य को छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।

0: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने 207 सीटों को जीतकर बंगाल में बदलाव की नई कहानी लिख दी है। टीएमसी को सत्ता से बेदखल करके बीजेपी ने बंगाल में भगवा फहरा दिया।
1: विधि द्वारा स्थापित हो
0: शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सीएम पद की शपथ ले ली है।
1: आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिबो।
0: इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही भारी संख्या में अवैध घुसपैठिए राज्य छोड़कर बांग्लादेश जाने लगे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को कहीं जाते हुए देखा जा रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि वीडियो पश्चिम बंगाल की है, घुसपैठिए बांग्लादेशी छोड़ने लगे, हजारों की संख्या में जालीदार टोपी वाले कबाड़ उठाकर देश के दूसरे हिस्सों में निकल चुके हैं। ये सावधान रहने का वक्त है, अगर ये दरिंदे आपके गांव, शहर, कस्बे में दिखें, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को कहीं जाते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध घुसपैठिए बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जाने लगे हैं। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे, ये हमारा मकसद था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक को इसे हुगली का बताते हुए सुना जा सकता है। साथ ही साथ वो एक जगह इज्तिमा का भी जिक्र कर रहा है। इज्तिमा मुस्लिमों का एक धार्मिक समागम होता है। ऐसे में हमें वायरल हो रहे दावे पर शक हुआ। इसके अलावा सर्च में हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें पश्चिम बंगाल से मुस्लिमों के पलायन का जिक्र हो, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर ये खबर सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर ये दावा सच है तो उसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूबर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला जिसे उन्होंने 5 जनवरी 2026 को शेयर किया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो इज्तिमा का है जिसका आयोजन हुगली जिले में किया गया था और ये उसी में शामिल होने जा रहे लोगों की भीड़ है। यहाँ इस वीडियो को 5 जनवरी को शेयर किया गया था जबकि बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। यहाँ से ये तो साफ हो गया कि वायरल वीडियो बंगाल चुनाव के नतीजों से कोई संबंध नहीं रखता। सर्च में हमें एक और वीडियो मिला जिसे एक इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया था। वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 2 से 5 जनवरी के बीच विश्व इज्तिमा का आयोजन किया गया था। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में होने वाला यह आयोजन बिस्वा इज्तिमा नामक एक विशाल वार्षिक इस्लामिक समागम का हिस्सा है जिसका मुख्य आयोजन आमतौर पर बांग्लादेश में होता है। सर्च के दौरान हमें एक न्यूज रिपोर्ट भी मिली जिसमें हुगली में आयोजित इस कार्यक्रम का जिक्र है। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल बिस्वा इज्तिमा पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के दादरपुर स्थित पुइनन में आयोजित हो रहा है। इस क्षेत्र में पिछला बिस्वा इज्तिमा 1992 में हावड़ा निब्रा इलाके में आयोजित किया गया था। 33 साल के अंतराल के बाद ये विशाल धार्मिक समागम हुगली जिले में हो रहा है। साफ है वायरल हो रहा वीडियो बंगाल के चुनाव नतीजों से संबंधित नहीं है, ये इसी साल पश्चिम बंगाल में सम्पन्न इज्तिमा का है जिसका आयोजन 2 से 5 जनवरी 2026 के बीच हुगली जिले में किया गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर बंगाल पुलिस ने एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नाम शपथ करते थे
3: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल के राज को खत्म कर पहली बार सत्ता हासिल की। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में कई जगहों से हिंसा की खबरें सामने आई। 6 मई की रात को बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी निजी सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बीच पश्चिम बंगाल का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस वाले एक भीड़ पर लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी चार्ज के बाद लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते हुए देखे जा सकते हैं। इसे शेयर करने वालों का दावा है कि ये भीड़ एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों की है जिन्होंने बंगाल के अंदर बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाया, जिसके बाद पुलिस ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, बंगाल में आतंकियों की अब खैर नहीं, दौड़ा दौड़ा कर कूटा जा रहा है। वीडियो पर मौजूद टेक्स्ट में लिखा है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर किया लाठी चार्ज। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल पश्चिम बंगाल का बताकर ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में पुलिस वाले एक भीड़ पर लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी चार्ज के बाद लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते भी दिखे। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर बंगाल पुलिस ने एक धर्म विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को पुलिस ने जमकर पीटा। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे, ये हमारा मकसद है। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी प्रदर्शन का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन इस दौरान हमें कहीं पर भी बांग्ला आवाजें सुनने को नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई इस भीड़ का संबंध पश्चिम बंगाल से होता तो कहीं ना कहीं बांग्ला आवाजें जरूर सुनाई देती, लेकिन कहीं कुछ नहीं सुनने को मिला। इसके अलावा वीडियो में आई लव मोहम्मद की आवाजें सुनाई दे रही है। वीडियो में कहीं पर भी बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा सुनाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई हाल फिलहाल में प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की सच्चाई की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि अगर ये वीडियो वायरल किया जा रहा है तो वीडियो कब का है और कहाँ का है जिसको लेकर लोग ये दावा कर रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी प्रदर्शन के पुराने वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें इसका लंबा वर्जन 26 सितंबर 2025 की एक वीडियो रिपोर्ट में मिला। रिपोर्ट के मुताबिक बरेली में आई लव मोहम्मद से संबंधित प्रदर्शनों के बाद हिंसा भड़क उठी थी और कई इलाकों में पत्थरबाजी भी हुई थी। इसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस और अतिरिक्त बलों ने लाठी चार्ज किया था। ये वीडियो उसी वक्त का है। सर्च के दौरान हमें एक और आधिकारिक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर काफी हंगामा हुआ था। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर लोगों को समझाने की कोशिश की। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। दरअसल ये वीडियो पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यूपी के बरेली का है। ये वीडियो सितंबर 2025 में आई लव मोहम्मद से जुड़े विवाद से संबंधित है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों दो छोटे बच्चों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये नन्हे कलाकार अपनी शानदार कलाकारी और एक्रोबैटिक स्किल्स से हर किसी को हैरान कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में इन बच्चों का संतुलन और ताकत देख लोग दंग रह गए। वीडियो में दोनों बच्चे खुले मैदान में बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के शानदार करतब दिखा रहे हैं। एक बच्चा दूसरे के कंधे पर खड़ा हो जाता है, फिर हाथों के बल संतुलन बनाकर अलग अलग पोज दिखाता है। दोनों मिलकर ह्यूमन पिरामिड फ्लिप्स और बैलेंस जैसे कठिन स्टंट बेहद ही आसानी से कर ले रहे हैं।

बस गुनगुनाना सीखा है, लेकिन गा रहे हैं पूरी तरह डूबकर। देखिए जरा अंदाज इनका, लगता है मंदिर से सब उठा लाए हैं, शिवलिंग दिया सब कुछ, और अब यहाँ हो रही है प्रार्थना। पर उस तरह नहीं जैसे आप और हम करते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में, मानो ये भगवान नहीं इनका सबसे प्यारा खिलौना हो। जो भी हो, बच्चे का भजन गुनगुनाना लोगों को पसंद आ रहा है। चीन के एक छोटे बच्चे ने अपनी अविश्वसनीय स्पीड से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा स्टेज पर बेहद शांत अंदाज में बैठा है, उसके हाथ में 2x2 रूबिक्स क्यूब रहता है और सामने टाइमर लगा होता है। जैसे ही टाइमर शुरू होता है, बच्चा बिजली की रफ्तार से अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर देता है। उसकी मूवमेंट इतनी तेज होती है कि सामने बैठे लोग तो क्या, कैमरा भी उसे ठीक से कैद नहीं कर पाता। अगले ही पल क्यूब पूरी तरह सॉल्व हो जाता है और वहां मौजूद लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करने लगते हैं। बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं तोड़ती, कई बार इंसान को भावनात्मक रूप से भी अंदर तक झकझोर देती है। खासकर जब कीमोथेरेपी जैसी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो बाल झड़ने जैसी चीजें भी मरीज के लिए बेहद दर्दनाक अनुभव दे जाती है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में अगर कोई दिल के साथ खड़ा रहे तो दर्द थोड़ा हल्का जरूर लगने लगता है। सोशल मीडिया पर अब ऐसा ही एक भावुक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी का दर्द बांटने के लिए खुद अपना सिर मुंडवाता नजर आ रहा है। इस वीडियो को देख हजारों लोग इमोशनल हो गए हैं और पति पत्नी के रिश्ते की खूब तारीफ कर रहे हैं। माँ तो बस माँ है, उसकी बराबरी भला कोई कहाँ कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। लोग कह रहे हैं कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं हो सकता।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। शुरुआत में एक लड़का नजर आता है जिसका वजन 80 किलो है। वो कैमरे के सामने अपनी टी शर्ट उठाकर अपना थुलथुला पेट दिखाता है, जिसे देखकर कोई भी कह दे ये बंदा अनफिट है। इसके बाद वो एक पार्क में पहुंचता है जहां कुछ फिट लड़के चिन अप्स कर रहे होते हैं। वो उनके बीच जाकर मजे लेते हुए कहता है कि वो भी एक्सरसाइज करना चाहता है। लड़के की बात सुनकर वहां कसरत कर रहा एक युवक हंसने लगता है और स्टाइल मारते हुए लड़के के पेट को थपथपाता है, मानो कह रहा हो भाई तुझसे ना हो पाएगा। इसके बाद वो उसे चैलेंज देते हुए कहता है कि चल अब ये करके दिखा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। लड़का अपना भारी भरकम बैग उस अकड़ दिखाने वाले युवक को थमाता है। बैग इतना वजनदार होता है कि पकड़ते ही वो युवक सीधा जमीन से जा सटता है। वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़का इतना भारी बोझ कंधे पर लादे कैसे घूम रहा था। अगले ही पल जो हुआ, उसने वहां मौजूद सबकी बोलती बंद कर दी। थोड़ी देर पहले जिसे सब अनफिट समझ रहे थे, उसने कैलिस्थेनिक्स के ऐसे दांव पेच दिखाए कि अच्छे अच्छे जिम जाने वालों के पसीने छूट गए। उसकी ताकत देखकर वहां मौजूद भीड़ दंग रह गई। कुल मिलाकर जिसे थुलथुला समझा जा रहा था, असल में वो फिटनेस के मामले में सबका बाप निकला।

अरूबा के रहने वाले एगमंड मोलिना ने गर्दन से बस खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 49 साल के एगमंड ने महज अपनी गर्दन से 21,737 पाउंड यानी 9,860 किलोग्राम बस को खींचकर अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। बताया जा रहा है कि इस भारी बस को उन्होंने 20 मीटर तक खींच दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड यूक्रेन के दिमित्रो हनुस्की के नाम था, जिन्होंने 2024 में 8,060 किलोग्राम वाली वाहन को गर्दन से खींचकर रिकॉर्ड बनाया था। एगमंड मोलिना को लोग ह्यूमन क्रेन यानी मानव क्रेन के नाम से भी जानते हैं। उनके कुछ और रिकॉर्ड काफी हैरान करने वाले हैं, जिनमें केवल उंगली से 159 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा एगमंड ने एक उंगली से 20 मीटर तक बस खींचने का रिकॉर्ड भी बनाया। इतना ही नहीं, कमर बेल्ट की मदद से उन्होंने 1,002 किलोग्राम यानी 1 टन से ज्यादा वजन उठाया था। यहाँ आपको बता दें कि एगमंड का वजन केवल 87 किलोग्राम है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि इस धरती पर एक से बढ़कर एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब हरकत कर सबको चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है, इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत नहीं कोई मशीन हो।

युवती का ये शानदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके शानदार एक्सप्रेशंस, ग्रेसफुल मूव्स और सादगी भरे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है। वो गाने की हर बीट पर इतनी सहजता और आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है कि देखने वाले उसकी तारीफ के बगैर रह नहीं पा रहे। खास बात ये कि उसके डांस में किसी तरह की बनावट या जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: और अब बात श्रीराम की नगरी अयोध्या की करते हैं, जहां मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में चल रहा काम भी जल्द पूरा होने वाला है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां 30 जून तक अपना काम पूरा कर लेंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरयू तट पर बन रहा भव्य संग्रहालय अब ट्रस्ट की प्राथमिकता बन चुका है। इस संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी।
3: सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए।
4: पहले प्रभु श्री राम का ये नया नवेला मंदिर राम भक्तों के लिए खुला और फिर मंदिर परिसर में बने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद इनके द्वार भी दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। लिहाजा देश और दुनिया भर से अयोध्या आने वाले राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का ये उत्साह और उमंग इनके आध्यात्मिक आनंद को बयां कर रहा है।
5: प्रत्येक मंदिर, चाहे परकोटे के 6 मंदिर हो, चाहे सप्तर्षि मंदिर हो, शेषावतार हो और कुबेर टीला हो, सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं ने दर्शन प्रारंभ कर दिया है। बहुत आनंद के साथ देश भर से आने वाला हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करके आनंद हो रहा है।
6: सारे मंदिरों के दर्शन हुए,
7: बढ़िया लगा। हम पूरे इंडिया में इतने घूमे, पर ये जो सगवट है इधर वो राम अयोध्या की बहुत बढ़िया रही और बहुत दर्शन बढ़िया से किए।
6: किसके किसके आप दर्शन किए मंदिर में?
8: सबका, राम जी के परिवार का, राम जी का, सबका, रामलला का, बहुत अच्छा लगा।
4: इस बीच श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर और दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिसर में चल रहा दूसरा काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केवल रखरखाव से जुड़ी टीम ही परिसर में मौजूद रहेगी। हालांकि परिसर से बाहर ट्रस्ट कार्यालय, विश्राम गृह और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का काम चलता रहेगा।
9: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया था कि शहीद स्तंभ जो है इसी का, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य बाकी नहीं है और LNTTCE भी अपना कार्यभार 30 जून को यहाँ पूर्ण करके उनकी टोली चली जाएगी। केवल वह टोली बचेगी जो एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर देख रेख के लिए।
4: नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर की पूर्णता के बाद अब ट्रस्ट का पूरा जोर सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय के काम को पूरा करने पर है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक विशेष गैलरी प्रभु राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित होगी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि संग्रहालय में एक ऐसी दिव्य दर्शन गैलरी होगी जहां श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होगा मानो वो स्वयं मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे हों।
9: एक यह अवश्य अब निर्णय ले लिया गया है कि म्यूजियम में, संग्रहालय में एक गैलरी इस प्रकार की होगी जहां की ऐसा लोगों को लगेगा जब वो उस गैलरी में जाएंगे कि वह मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। यानी उसमें सभी मंदिर जो बने हैं उन सब का एक तरीके से दर्शन, तो वह दिव्य दर्शन की गैलरी होगी। भगवान की मूर्ति का दर्शन, राम परिवार का दर्शन, बाकी सभी मंदिरों का दर्शन। तो वो आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के तहत उस कार्य को किया जाएगा।
4: वहीं संग्रहालय में देश के विभिन्न भाषाओं, लिपियों और कालखंडों में लिखे गए राम साहित्य और रामायण की दुर्लभ पांडुलिपियों को भी रखा जाएगा, ताकि शोधार्थियों और युवाओं को शोध के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकने की जरूरत न पड़े। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, राम साहित्य और अध्यात्म पर शोध का विश्व स्तरीय मंच भी बनकर उभरेगा।
10: जब हमारे पास सभी तरह के रामायण एक जगह पर केंद्रित होंगे तो शोधार्थियों के लिए कितना लाभ होगा। अब वो शोधार्थी भाषा पर काम करेंगे, राम शैली पर काम करेंगे, लिपि पर काम करेंगे, लिपि के विकास पर काम करेंगे, भाषा विन्यास पर काम करेंगे और राम कथा पर बात करेंगे। तो उनके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, एक उनके पास बहुत बड़ी क्या कहेंगे एक उनके पास बहुत बड़ा विकल्प रहेगा कि उनको शोध के लिए ना अब कहीं ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया नहीं जाना पड़ेगा।
4: कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के बूते अयोध्या न सिर्फ इस वक्त धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी चमक बिखेर रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए पीएम मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात, प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना, नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शिवेंदु अधिकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होगी ईवी गाड़ियां, सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं 6 बजे का GNT स्पेशल। एक खास पेशकश आप सबके सामने रखते हैं। देखिए, आज का दिन यानी 11 मई भारत की आध्यात्मिक और सामरिक दोनों ही शक्तियों के लिहाज से बहुत ज्यादा खास है। 11 मई 1951 को गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मौजूदा स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। आज इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दिन की 75वीं वर्षगांठ है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साक्षी बने। दूसरी तरफ 11 मई को ही भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण भी किया था। तब भारत की सामरिक शक्ति की धमक पूरी दुनिया ने सुनी थी और यही वजह है कि सोमनाथ अमृत महोत्सव में भारत की आध्यात्मिक और सामरिक दोनों ही शक्तियों की झांकी देखने को मिली।

0: भगवान सोमनाथ की।
1: सदियों से सनातन आस्था का परम धाम रहे सोमनाथ मंदिर में आध्यात्मिकता और आधुनिकता के साथ भारत की शक्ति और सामर्थ्य का अलौकिक नजारा देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर के आधुनिक स्वरूप के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ के दिव्य अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सोमनाथ मंदिर पहुंचे और विशेष महापूजा में शामिल होकर उसके साक्षी बने। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम ने सोमनाथ की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ऊर्जा को एक बार फिर जीवंत कर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अनेक आक्रांताओं के दुष्चक्र का कई बार शिकार हुए सोमनाथ मंदिर की महिमा और महात्म्य का जिक्र

0: मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: सोमनाथ मंदिर के पावन पुनरुद्धार की 75वीं सालगिरह के भव्य दिव्य कार्यक्रम में सबसे विशेष रहा मंदिर का कुंभाभिषेक, जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण की रीतियों का प्रतीक है। वैदिक मंत्रों की अलौकिक गूंज के बीच 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए 11,000 लीटर पवित्र जल को मंदिर के शिखर पर अर्पित किया गया।

इसके लिए 1860 किलो वजनी 350 टन की विशेष क्रेन की सहायता से 155 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया और उसके बाद कलश के पानी से मंदिर का कुंभ

0: मान्यता है कि कुंभाभिषेक के पावन अवसर पर मंदिर में उपस्थित रहने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस समय मंदिर की दिव्य शक्तियाँ और ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। कुंभाभिषेक के बाद भारतीय सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प की वर्षा की गई। वायुसेना की सूर्यकिरण टीम ने मंदिर के ऊपर 15 मिनट तक मनमोहक कलरफुल प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूर्यकिरण टीम के विमान जामनगर वायुसेना स्टेशन से टेक ऑफ कर करीब 180 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करने के बाद सोमनाथ पहुंचे और अपने कलरफुल फॉर्मेशन से माहौल को शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक बना दिया।
1: महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ।
0: सूर्य किरण टीम का कलरफुल एयर शो खत्म होने के बाद पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के संग्रहालय पहुंचे, जहां मंदिर के पुराने अवशेषों के साथ अनेकानेक स्मृतियां मौजूद हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी का सेरेमोनियल पगड़ी और खेस के साथ स्वागत किया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी को सोमनाथ मंदिर की एक फ्रेम की हुई तस्वीर भी भेंट की। इस दौरान पीएम मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 1.5 से 2 घंटे तक मंदिर परिसर में ही मौजूद रहे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज सोमनाथ अमृत महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम किया गया। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री करीब 1.5-2 घंटे रुके, जिसके अंदर कुंभाभिषेक से लेकर ध्वजारोहण और साथ ही सूर्यकिरण का एयर शो किया गया। जिस तरह से मंदिर की विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी बात प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में कही कि सोमनाथ को जिसके नाम में सोम हो उसका कभी अंत नहीं हो सकता, और वही चीज किस तरह से राष्ट्र के निर्माण के लिए उपयोगी रहती है, उन सब की बात की। जो संकल्पना थी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की, वो सरदार पटेल ने किस तरह से की थी और उसके बाद किस तरह से ये पूरा पुनर्निर्माण हुआ, उस पर प्रधानमंत्री ने विस्तृत तरीके से बात की है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि आज जो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस जो है उसको लेकर जो बात की गई प्रधानमंत्री के द्वारा कि पोखरण विस्फोट के बाद भी, पोखरण परीक्षणों के बाद भी दुनिया के प्रतिबंधों के बावजूद भारत जिस तरह से एकजुट रहा और आगे बढ़ा, कोई शक्ति हमें झुका नहीं सकती, तो वो संदेश उन्होंने दिया कि किसी की भी कोई भी कैसी परिस्थिति आए, उन परिस्थितियों में भारत हमेशा एकजुट रहा है और हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ा है और इसी तरह वो आगे बढ़ता रहेगा।
0: सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को खास तौर पर याद किया, जिनकी संकल्प शक्ति की वजह से ही मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण संभव हो सका।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: गजब का इत्तेफाक है कि 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के मौजूदा स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो 11 मई को ही भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व को यह पैगाम दे दिया था कि भारत अपनी आत्मरक्षा का हुनर कायदे से जानता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर पोखरण परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत का परमाणु सामर्थ्य देखकर आंखें लाल कर ली थी, लेकिन भारत इसके लिए दृढ़ संकल्पित था।
1: दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं।
0: इससे पहले पीएम मोदी सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड से मंदिर तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मोदी के रोड शो में लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान सड़क पर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। गुजरात के गिर से ब्रजेश जोशी और दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सनातन संस्कृति में स्थान का विशेष महत्व है। भारत के ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से किसी स्थान विशेष में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा के रेडिएशन को महसूस किया और भगवान के धाम के रूप में उसकी पहचान स्थापित की। सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा से लबरेज ऐसा ही एक स्थान है, जहां अनादिकाल से ही भगवान शिव के अविनाशी स्वरूप की मौजूदगी महसूस की जाती रही है। ये सत्य सिर्फ मिथकों तक ही महदूद नहीं है, ऐतिहासिक घटनाओं में इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। सोमनाथ मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने आधा दर्जन से अधिक बार तहस नहस करने की कोशिश की। आक्रांताओं ने बार बार उसे ध्वस्त किया, लेकिन उस स्थान में कुछ अलौकिक ऊर्जा है कि बार बार ध्वस्त होने के बाद भी मंदिर का निर्माण होता रहा और आज पूरे विराटता के साथ सोमनाथ मंदिर हमारे बीच में मौजूद है।

सौराष्ट्र में गीर जिले के प्रभासपाटन में अरब सागर के तट पर स्थित अनाद मंदिर सोमनाथ, जब से धरती का अस्तित्व है, जब से मानवता का वजूद है, तब से इस अद्भुत अलौकिक महिमामय मंदिर का उल्लेख मिलता है। दुनिया के प्राचीनतम स्क्रिप्चर माने जाने वाले ऋग्वेद से लेकर महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण तक में सोमनाथ की महिमा का उल्लेख है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ

0: बाद भगवान शिव ने न सिर्फ चंद्रदेव को शाप मुक्त किया बल्कि उनके आग्रह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां अनंत काल के लिए विराजमान भी हो गए।
1: ये जो भी आप मंदिर देख रहे हो, जो खड़ा है मंदिर, वो सनातन धर्म का केंद्र है और प्रथम ज्योतिर्लिंग भी है। हमारा तीर्थपुरी सोमपुरा ब्राह्मण समाज है, वो चंद्रमा ने जब से मंदिर यहाँ की स्थापना की थी तब से पूजा विधि और धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं।
0: सोमनाथ मंदिर के एक दिव्य अलौकिक बात पर अमूमन किसी का ध्यान नहीं जाता। सोमनाथ मंदिर जहाँ पर स्थित है, यहाँ से ठीक दक्षिण की तरफ सीधी लकीर खींचेंगे तो धरती के आखिरी छोर अंटार्कटिका तक कहीं भी भूखंड का कोई हिस्सा, यहाँ तक कि कोई टापू नहीं मिलेगा। बहरहाल सोमनाथ मंदिर को लेकर इतिहास के पन्नों को जब आप पूरे मनोयोग के साथ पलटेंगे तो आपको हैरान करने वाले कई और तथ्य मिलेंगे, जिसे जानकर श्रद्धा और विश्वास न होते हुए भी इस परम तीर्थ के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी। दरअसल क्रूर विदेशी आक्रांताओं ने जब जब भारत भूमि पर आक्रमण कर सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हमला जरूर किया, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं इस बात का एहसास था कि ये मंदिर सनातन शक्ति का अक्षय केंद्र है। इसलिए 1200-1300 साल के कालखंड में सनातन को मिटाने की दुराशा लेकर आए हर आक्रांता ने सोमनाथ मंदिर को न सिर्फ लूटने बल्कि उसे तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वसुधा के इस दिव्य स्थान में जाने कौन सी अलौकिक शक्ति है कि मंदिर का ढांचा ध्वस्त होने के बाद भी ऋषि मुनियों, तपस्वियों से लेकर आम श्रद्धालुओं तक का यहां आने का सिलसिला थमा नहीं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां आए और इस गौरवशाली मंदिर की दुर्दशा देखी तो लौह पुरुष की आंखें भी नम हो गईं। उसी समय उन्होंने समंदर का जल हाथ में लेकर मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया।
2: उसने मंदिर की ये जीर्ण दशा देखी तो उसके लोखंडी पुरुष मानते हैं, उसकी आंख भी आंसू से दिखाई गई, उसका दर्द उसके चेहरे में और आंखों में दिखाई दिया। उसने पहले ही काम उस समय जब पुराना मंदिर था वहाँ से समुद्र में जाने के लिए एक सीढ़ी थी, पत्थर की सीढ़ी थी, वहाँ से सीधा उतरे और उसने हाथ में सूर्य का समुद्र का जल लेकर उसने प्रतिज्ञा ली कि जहाँ मैं सोमनाथ का पुनरुद्धार करूँगा और बिना सोमनाथ का पुनरुद्धार आज़ादी मिली तो ये आज़ादी अधूरी है।
0: अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के अनुसार लौह पुरुष ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार शुरू करवा दिया। हालांकि अफसोस ये कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरदार पटेल 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को यहाँ आकर प्राण प्रतिष्ठा के अलौकिक अनुष्ठान को सम्पन्न कराया।
2: 1951 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस हाल जब दर्शन करते हैं इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, वहां से मंदिर अब शुरू हुआ 11-5-51 से।
0: मंदिर का मौजूदा स्वरूप बेशक सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति और अदम्य साहस का परिणाम है, लेकिन पिछले 1200-1300 सालों के कालखंड में सरदार पटेल की तरह और भी कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद इसी स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 8वीं शताब्दी से लेकर क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के समय तक कम से कम 6 बार मंदिर के ढांचे को तहस नहस किया गया, पर हर बार सरदार पटेल जैसे सनातन के मसीहा ने आगे बढ़कर मंदिर के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया। सबसे पहले इस मंदिर पर 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने धावा बोलकर इसे तहस नहस कर दिया। उसके बाद गजनी के बददिमाग आक्रांता महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। खिलजी वंश के दरिंदे अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में एक बार फिर इस अनादि मंदिर को जमींदोज कर दिया। खिलजी के बाद गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने

0: 1395 ईस्वी में इस मंदिर को मटियामेट करने की कोशिश की। वहीं मुगल वंश के औरंगजेब की तो इस मंदिर से खास अदावत थी, इसलिए औरंगजेब ने पहले 1665 ईस्वी में और फिर अपने मरने से एक साल पहले 1706 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ डाला।
1: इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है।
0: कमाल देखिए कि इस मंदिर को ध्वस्त करने वाले आक्रांताओं की कब्रों पर आज कोई एक अदद दिया जलाने वाला नहीं बचा है, लेकिन सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ उसी स्थान पर विराजमान है। मानो आक्रांताओं को पैगाम दे रहा है कि प्रथम ज्योतिर्लिंग अपनी स्वयं सिद्ध शक्ति से सिंचित है और स्वयं महादेव ही इसके रक्षक हैं। अनादिकाल से ही ये मंदिर भक्तों और श्रद्धालुओं की आस्था का परम धाम बना हुआ है। गुजरात के गीर से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ आज के हमारी जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
1: It's college football time. College basketball feels
0: Pardon
1: like
0: my
1: it's
0: take.
2: The Rams catching the Commanders.
0: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: और अब बात श्रीराम की नगरी अयोध्या की करते हैं, जहां मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में चल रहा काम भी जल्द पूरा होने वाला है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां 30 जून तक अपना काम पूरा कर लेंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरयू तट पर बन रहा भव्य संग्रहालय अब ट्रस्ट की प्राथमिकता बन चुका है। इस संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी।
5: पहले प्रभु श्री राम का ये नया नवेला मंदिर राम भक्तों के लिए खुला और फिर मंदिर परिसर में बने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद इनके द्वार भी दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। लिहाजा देश और दुनिया भर से अयोध्या आने वाले राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का ये उत्साह और उमंग इनके आध्यात्मिक आनंद को बयां कर रहा है।
6: प्रत्येक मंदिर, चाहे परकोटे के 6 मंदिर हो, चाहे सप्तऋषि मंदिर हो, शेषावतार हो और कुबेर टीला हो, सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं ने दर्शन प्रारंभ कर दिया है। बहुत आनंद के साथ देश भर से आने वाला हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करके आनंद हो रहा है।
7: सारे मंदिरों के दर्शन हुए?
8: बढ़िया लग रहा है।
9: हम पूरे इंडिया में इतने घूमे, पर ये जो सगवड़ है इधर वो राम अयोध्या की, बहुत बढ़िया रही और बहुत दर्शन बढ़िया से किए।
7: किसके किसके आप दर्शन किए मंदिर में?
10: सबका, राम जी के परिवार का, राम जी का, सबका, रामलला का, बहुत अच्छा लगा।
5: इस बीच श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर और दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिसर में चल रहा दूसरा काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केवल रखरखाव से जुड़ी टीम ही परिसर में मौजूद रहेगी। हालांकि परिसर से बाहर ट्रस्ट कार्यालय, विश्राम गृह और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का काम चलता रहेगा।
11: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया था कि शहीद स्तंभ, पूरे स्तंभ जो है स्मृति का, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य बाकी नहीं है और LNTTCE भी अपना कार्यभार 30 जून को यहाँ पूर्ण करके उनकी टोली चली जाएगी। केवल वह टोली बचेगी जो एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर देख रेख के लिए।
5: नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर की पूर्णता के बाद अब ट्रस्ट का पूरा जोर सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय के काम को पूरा करने पर है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक विशेष गैलरी प्रभु राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित होगी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि संग्रहालय में एक ऐसी दिव्य दर्शन गैलरी होगी, जहां श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होगा मानो वो स्वयं मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे हों।
11: एक यह अवश्य अब निर्णय ले लिया गया है कि म्यूजियम में, संग्रहालय में एक गैलरी इस प्रकार की होगी जहां की ऐसा लोगों को लगेगा जब वो उस गैलरी में जाएंगे कि वह मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। यानी उसमें सभी मंदिर जो बने हैं उन सब का एक तरीके से दर्शन, तो वह दिव्य दर्शन की गैलरी होगी, भगवान की मूर्ति का दर्शन, राम परिवार का दर्शन, बाकी सभी मंदिरों का दर्शन। तो वो आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के तहत उस कार्य को किया जाएगा।
5: वहीं संग्रहालय में देश के विभिन्न भाषाओं, लिपियों और कालखंडों में लिखे गए राम साहित्य और रामायण की दुर्लभ पांडुलिपियों को भी रखा जाएगा, ताकि शोधार्थियों और युवाओं को शोध के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकने की जरूरत न पड़े। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, राम साहित्य और अध्यात्म पर शोध का विश्व स्तरीय मंच भी बनकर उभरेगा।
12: जब हमारे पास सभी तरह के रामायण एक जगह पर केंद्रित होंगे तो शोधार्थियों के लिए कितना लाभ होगा। अब वो शोधार्थी भाषा पर काम करेंगे, राम शैली पर काम करेंगे, लिपि पर काम करेंगे, लिपि के विकास पर काम करेंगे, भाषा विन्यास पर काम करेंगे और राम कथा पर बात करेंगे। तो उनके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, एक उनके पास बहुत बड़ी क्या कहेंगे एक उनके पास बहुत बड़ा विकल्प रहेगा कि उनको शोध के लिए ना अब कहीं ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया नहीं जाना पड़ेगा।
5: कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के बूते अयोध्या न सिर्फ इस वक्त धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी चमक बिखेर रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए पीएम मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात, प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना, नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शिवेंदु अधिकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होगी ईवी गाड़ियां, सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और फैक्ट चेक में आपका बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है और कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाई उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही अवैध घुसपैठिए राज्य छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। क्या है वायरल दावे की और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर में आज बात होगी उस वीडियो की, जिसके जरिए लोग दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बंगाल पुलिस ने जमकर पीटा। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध घुसपैठिए राज्य को छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।

0: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने 207 सीटों को जीतकर बंगाल में बदलाव की नई कहानी लिख दी है। टीएमसी को सत्ता से बेदखल करके बीजेपी ने बंगाल में भगवा फहरा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सीएम पद की शपथ ले ली है।
1: आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिबो।
0: इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही भारी संख्या में अवैध घुसपैठिए राज्य छोड़कर बांग्लादेश जाने लगे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को कहीं जाते हुए देखा जा रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि वीडियो पश्चिम बंगाल की है, घुसपैठिए बांग्लादेशी छोड़ने लगे, हजारों की संख्या में जालीदार टोपी वाले कबाड़ उठाकर देश के दूसरे हिस्सों में निकल चुके हैं, ये सावधान रहने का वक्त है, अगर ये दरिंदे आपके गांव, शहर, कस्बे में दिखें, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को कहीं जाते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध घुसपैठिए बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जाने लगे हैं। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे, ये हमारा मकसद था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक को इसे हुगली का बताते हुए सुना जा सकता है। साथ ही साथ वो एक जगह इज्तिमा का भी जिक्र कर रहा है। इज्तिमा मुस्लिमों का एक धार्मिक समागम होता है। ऐसे में हमें वायरल हो रहे दावे पर शक हुआ। इसके अलावा सर्च में हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें पश्चिम बंगाल से मुस्लिमों के पलायन का जिक्र हो, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर ये खबर सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर ये दावा सच है तो उसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूबर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला जिसे उन्होंने 5 जनवरी 2026 को शेयर किया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो इज्तिमा का है जिसका आयोजन हुगली जिले में किया गया था और ये उसी में शामिल होने जा रहे लोगों की भीड़ है। यहाँ इस वीडियो को 5 जनवरी को शेयर किया गया था जबकि बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। यहाँ से ये तो साफ हो गया कि वायरल वीडियो बंगाल चुनाव के नतीजों से कोई संबंध नहीं रखता। सर्च में हमें एक और वीडियो मिला जिसे एक इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया था। वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 2 से 5 जनवरी के बीच विश्व इज्तिमा का आयोजन किया गया था। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में होने वाला यह आयोजन बिस्वा इज्तिमा नामक एक विशाल वार्षिक इस्लामिक समागम का हिस्सा है जिसका मुख्य आयोजन आमतौर पर बांग्लादेश में होता है। सर्च के दौरान हमें एक न्यूज रिपोर्ट भी मिली जिसमें हुगली में आयोजित इस कार्यक्रम का जिक्र है। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल बिस्वा इज्तिमा पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के दादरपुर स्थित पुइनन में आयोजित हो रहा है। इस क्षेत्र में पिछला बिस्वा इज्तिमा 1992 में हावड़ा निब्रा इलाके में आयोजित किया गया था। 33 साल के अंतराल के बाद ये विशाल धार्मिक समागम हुगली जिले में हो रहा है। साफ है वायरल हो रहा वीडियो बंगाल के चुनाव नतीजों से संबंधित नहीं है, ये इसी साल पश्चिम बंगाल में सम्पन्न इज्तिमा का है जिसका आयोजन 2 से 5 जनवरी 2026 के बीच हुगली जिले में किया गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर बंगाल पुलिस ने एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में।
1: शुभेंदु अधिकारी, ईश्वर नाम शपथ करते थे
3: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल के राज को खत्म कर पहली बार सत्ता हासिल की। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में कई जगहों से हिंसा की खबरें सामने आई। 6 मई की रात को बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी निजी सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बीच पश्चिम बंगाल का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस वाले एक भीड़ पर लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी चार्ज के बाद लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते हुए देखे जा सकते हैं। इसे शेयर करने वालों का दावा है कि ये भीड़ एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों की है जिन्होंने बंगाल के अंदर बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाया, जिसके बाद पुलिस ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, बंगाल में आतंकियों की अब खैर नहीं, दौड़ा दौड़ा कर कूटा जा रहा है। वीडियो पर मौजूद टेक्स्ट में लिखा है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर किया लाठी चार्ज। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल पश्चिम बंगाल का बताकर ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में पुलिस वाले एक भीड़ पर लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी चार्ज के बाद लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते भी दिखे। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर बंगाल पुलिस ने एक धर्म विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को पुलिस ने जमकर पीटा। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे, ये हमारा मकसद है। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी प्रदर्शन का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन इस दौरान हमें कहीं पर भी बांग्ला आवाजें सुनने को नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई इस भीड़ का संबंध पश्चिम बंगाल से होता तो कहीं ना कहीं बांग्ला आवाजें जरूर सुनाई देती, लेकिन कहीं कुछ नहीं सुनने को मिला। इसके अलावा वीडियो में आई लव मोहम्मद की आवाजें सुनाई दे रही है। वीडियो में कहीं पर भी बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा सुनाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई हाल फिलहाल में प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की सच्चाई की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि अगर ये वीडियो वायरल किया जा रहा है तो वीडियो कब का है और कहाँ का है जिसको लेकर लोग ये दावा कर रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी प्रदर्शन के पुराने वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें इसका लंबा वर्जन 26 सितंबर 2025 की एक वीडियो रिपोर्ट में मिला। रिपोर्ट के मुताबिक बरेली में आई लव मोहम्मद से संबंधित प्रदर्शनों के बाद हिंसा भड़क उठी थी और कई इलाकों में पत्थरबाजी भी हुई थी। इसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस और अतिरिक्त बलों ने लाठी चार्ज किया था। ये वीडियो उसी वक्त का है। सर्च के दौरान हमें एक और आधिकारिक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर काफी हंगामा हुआ था। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर लोगों को समझाने की कोशिश की। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। दरअसल ये वीडियो पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यूपी के बरेली का है। ये वीडियो सितंबर 2025 में आई लव मोहम्मद से जुड़े विवाद से संबंधित है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: Tune in is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
6: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
5: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों दो छोटे बच्चों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये नन्हे कलाकार अपनी शानदार कलाकारी और एक्रोबेटिक स्किल्स से हर किसी को हैरान कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में इन बच्चों का संतुलन और ताकत देख लोग दंग रह गए। वीडियो में दोनों बच्चे खुले मैदान में बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के शानदार करतब दिखा रहे हैं। एक बच्चा दूसरे के कंधे पर खड़ा हो जाता है, फिर हाथों के बल संतुलन बनाकर अलग अलग पोज दिखाता है। दोनों मिलकर ह्यूमन पिरामिड फ्लिप्स और बैलेंस जैसे कठिन स्टंट बेहद ही आसानी से कर ले रहे हैं।

बस गुनगुनाना सीखा है, लेकिन गा रहे हैं पूरी तरह डूबकर। देखिए जरा अंदाज इनका, लगता है मंदिर से सब उठा लाए हैं, शिवलिंग दिया सब कुछ, और अब यहाँ हो रही है प्रार्थना। पर उस तरह नहीं जैसे आप और हम करते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में, मानो ये भगवान नहीं इनका सबसे प्यारा खिलौना हो। जो भी हो, बच्चे का भजन गुनगुनाना लोगों को पसंद आ रहा है। चीन के एक छोटे बच्चे ने अपनी अविश्वसनीय स्पीड से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा स्टेज पर बेहद शांत अंदाज में बैठा है, उसके हाथ में 2x2 रूबिक्स क्यूब रहता है और सामने टाइमर लगा होता है। जैसे ही टाइमर शुरू होता है, बच्चा बिजली की रफ्तार से अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर देता है। उसकी मूवमेंट इतनी तेज होती है कि सामने बैठे लोग तो क्या, कैमरा भी उसे ठीक से कैद नहीं कर पाता। अगले ही पल क्यूब पूरी तरह सॉल्व हो जाता है और वहां मौजूद लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करने लगते हैं। बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं तोड़ती, कई बार इंसान को भावनात्मक रूप से भी अंदर तक झकझोर देती है। खासकर जब कीमोथेरेपी जैसी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो बाल झड़ने जैसी चीजें भी मरीज के लिए बेहद दर्दनाक अनुभव दे जाती है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में अगर कोई दिल के साथ खड़ा रहे तो दर्द थोड़ा हल्का जरूर लगने लगता है। सोशल मीडिया पर अब ऐसा ही एक भावुक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी का दर्द बांटने के लिए खुद अपना सिर मुंडवाता नजर आ रहा है। इस वीडियो को देख हजारों लोग इमोशनल हो गए हैं और पति पत्नी के रिश्ते की खूब कर रहे हैं। माँ तो बस माँ है, उसकी बराबरी भला कोई कहाँ कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। लोग कह रहे हैं कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं हो सकता।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। शुरुआत में एक लड़का नजर आता है जिसका वजन 80 किलो है। वो कैमरे के सामने अपनी टी शर्ट उठाकर अपना थुलथुला पेट दिखाता है, जिसे देखकर कोई भी कह दे ये बंदा अनफिट है। इसके बाद वो एक पार्क में पहुंचता है जहां कुछ फिट लड़के चिन अप्स कर रहे होते हैं। वो उनके बीच जाकर मजे लेते हुए कहता है कि वो भी एक्सरसाइज करना चाहता है। लड़के की बात सुनकर वहां कसरत कर रहा एक युवक हंसने लगता है और स्टाइल मारते हुए लड़के के पेट को थपथपाता है, मानो कह रहा हो भाई तुझसे ना हो पाएगा। इसके बाद वो उसे चैलेंज देते हुए कहता है कि चल अब ये करके दिखा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। लड़का अपना भारी भरकम बैग उस अकड़ दिखाने वाले युवक को थमाता है। बैग इतना वजनदार होता है कि पकड़ते ही वो युवक सीधा जमीन से जा सटता है। वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़का इतना भारी बोझ कंधे पर लादे कैसे घूम रहा था। अगले ही पल जो हुआ, उसने वहां मौजूद सबकी बोलती बंद कर दी। थोड़ी देर पहले जिसे सब अनफिट समझ रहे थे, उसने कैलिस्थेनिक्स के ऐसे दांव पेच दिखाए कि अच्छे अच्छे जिम जाने वालों के पसीने छूट गए। उसकी ताकत देखकर वहां मौजूद भीड़ दंग रह गई। कुल मिलाकर जिसे थुलथुला समझा जा रहा था, असल में वो फिटनेस के मामले में सबका बाप निकला।

अरूबा के रहने वाले एगमंड मोलिना ने गर्दन से बस खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 49 साल के एगमंड ने महज अपनी गर्दन से 21,737 पाउंड यानी 9,860 किलोग्राम बस को खींचकर अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। बताया जा रहा है कि इस भारी बस को उन्होंने 20 मीटर तक खींच दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड यूक्रेन के दिमित्रो हनुस्की के नाम था, जिन्होंने 2024 में 8,060 किलोग्राम वाली वाहन को गर्दन से खींचकर रिकॉर्ड बनाया था। एगमंड मोलिना को लोग ह्यूमन क्रेन यानी मानव क्रेन के नाम से भी जानते हैं। उनके कुछ और रिकॉर्ड काफी हैरान करने वाले हैं, जिनमें केवल उंगली से 159 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा एगमंड ने एक उंगली से 20 मीटर तक बस खींचने का रिकॉर्ड भी बनाया। इतना ही नहीं, कमर बेल्ट की मदद से उन्होंने 1,002 किलोग्राम यानी 1 टन से ज्यादा वजन उठाया था। यहाँ आपको बता दें कि एगमंड का वजन केवल 87 किलोग्राम है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि इस धरती पर एक से बढ़कर एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब हरकत कर सबको चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है, इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत नहीं कोई मशीन हो।

युवती का ये शानदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके शानदार एक्सप्रेशंस, ग्रेसफुल मूव्स और सादगी भरे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है। वो गाने की हर बीट पर इतनी सहजता और आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है कि देखने वाले उसकी तारीफ के बगैर रह नहीं पा रहे। खास बात ये कि उसके डांस में किसी तरह की बनावट या जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
2: Thank God I get to wake.
1: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: और अब बात श्रीराम की नगरी अयोध्या की करते हैं, जहां मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में चल रहा काम भी जल्द पूरा होने वाला है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां 30 जून तक अपना काम पूरा कर लेंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरयू तट पर बन रहा भव्य संग्रहालय अब ट्रस्ट की प्राथमिकता बन चुका है। इस संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही है, जिनमें एक गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी।
4: सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए।
5: पहले प्रभु श्री राम का ये नया नवेला मंदिर राम भक्तों के लिए खुला और फिर मंदिर परिसर में बने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद इनके द्वार भी दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, लिहाजा देश और दुनिया भर से अयोध्या आने वाले राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का ये उत्साह और उमंग इनके आध्यात्मिक आनंद को बयां कर रहा है।
6: प्रत्येक मंदिर, चाहे परकोटे के 6 मंदिर हो, चाहे सप्तऋषि मंदिर हो, शेषावतार हो और कुबेर टीला हो, सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं ने दर्शन प्रारंभ कर दिया है। बहुत आनंद के साथ देश भर से आने वाला हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करके आनंद हो रहा है।
7: सारे मंदिरों के दर्शन हुए,
8: बढ़िया लगा।
9: हम पूरे इंडिया में इतने घूमे, पर ये जो सगड़ है इधर वो राम अयोध्या की बहुत बढ़िया रही और बहुत दर्शन बढ़िया से किए।
7: किसके किसके आप दर्शन किए मंदिर में?
10: सबका, राम जी के परिवार का, राम जी का, सबका, राम लल्ला का, बहुत अच्छा लगा।
5: इस बीच श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर और दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिसर में चल रहा दूसरा काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केवल रखरखाव से जुड़ी टीम ही परिसर में मौजूद रहेगी। हालांकि परिसर से बाहर ट्रस्ट कार्यालय, विश्राम गृह और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का काम चलता रहेगा।
11: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया था कि शहीद स्तंभ, पूर्ण स्तंभ जो है इस विषय का, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य बाकी नहीं है और LNTTCE भी अपना कार्यभार 30 जून को यहाँ पूर्ण करके उनकी टोली चली जाएगी। केवल वह टोली बचेगी जो एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर देख रेख के लिए।
5: नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर की पूर्णता के बाद अब ट्रस्ट का पूरा जोर सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय के काम को पूरा करने पर है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक विशेष गैलरी प्रभु राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित होगी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि संग्रहालय में एक ऐसी दिव्य दर्शन गैलरी होगी, जहां श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होगा मानो वो स्वयं मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे हों।
11: एक यह अवश्य अब निर्णय ले लिया गया है कि म्यूजियम में, संग्रहालय में एक गैलरी इस प्रकार की होगी जहां की ऐसा लोगों को लगेगा जब वो उस गैलरी में जाएंगे कि वह मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। यानी उसमें सभी मंदिर जो बने हैं उन सब का एक तरीके से दर्शन, तो वह दिव्य दर्शन की गैलरी होगी। भगवान की मूर्ति का दर्शन, राम परिवार का दर्शन, बाकी सभी मंदिरों का दर्शन, तो वो आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के तहत उस कार्य को किया जाएगा।
5: वहीं संग्रहालय में देश के विभिन्न भाषाओं, लिपियों और कालखंडों में लिखे गए राम साहित्य और रामायण की दुर्लभ पांडुलिपियों को भी रखा जाएगा, ताकि शोधार्थियों और युवाओं को शोध के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकने की जरूरत न पड़े। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, राम साहित्य और अध्यात्म पर शोध का विश्व स्तरीय मंच भी बनकर उभरेगा।
12: जब हमारे पास सभी तरह के रामायण एक जगह पर केंद्रित होंगे तो शोधार्थियों के लिए कितना लाभ होगा। अब वो शोधार्थी भाषा पर काम करेंगे, राम शैली पर काम करेंगे, लिपि पर काम करेंगे, लिपि के विकास पर काम करेंगे, भाषा विन्यास पर काम करेंगे और राम कथा पर बात करेंगे, तो उनके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। एक उनके पास बहुत बड़ी क्या कहेंगे एक उनके पास बहुत बड़ा विकल्प रहेगा कि उनको शोध के लिए ना अब कहीं ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया नहीं जाना पड़ेगा।
5: कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के बूते अयोध्या न सिर्फ इस वक्त धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी चमक बिखेर रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
0: और दौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें दो।
3: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए पीएम मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात, प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना, नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शिवेंदु अधिकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होगी ईवी गाड़ियां, सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन।

सा शगुफ्ता साहिल देवे, आप देख रहे हैं 6 बजे का GNT स्पेशल। एक खास पेशकश आप सबके सामने रखते हैं। देखिए, आज का दिन यानी 11 मई भारत की आध्यात्मिक और सामरिक दोनों ही शक्तियों के लिहाज से बहुत ज्यादा खास है। 11 मई 1951 को गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मौजूदा स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। आज इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दिन की 75वीं वर्षगांठ है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साक्षी बने। दूसरी तरफ 11 मई को ही भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण भी किया था। तब भारत की सामरिक शक्ति की धमक पूरी दुनिया ने सुनी थी और यही वजह है कि सोमनाथ अमृत महोत्सव में भारत की आध्यात्मिक और सामरिक दोनों ही शक्तियों की झांकी देखने को मिली।

0: भगवान सोमनाथ की।
1: सदियों से सनातन आस्था का परम धाम रहे सोमनाथ मंदिर में आध्यात्मिकता और आधुनिकता के साथ भारत की शक्ति और सामर्थ्य का अलौकिक नजारा देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर के आधुनिक स्वरूप के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ के दिव्य अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सोमनाथ मंदिर पहुंचे और विशेष महापूजा में शामिल होकर उसके साक्षी बने। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम ने सोमनाथ की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ऊर्जा को एक बार फिर जीवंत कर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अनेक आक्रांताओं के दुष्चक्र का कई बार शिकार हुए सोमनाथ मंदिर की महिमा और महात्म्य का जिक्र किया।

0: मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: सोमनाथ मंदिर के पावन पुनरुद्धार की 75वीं सालगिरह के भव्य दिव्य कार्यक्रम में सबसे विशेष रहा मंदिर का कुंभाभिषेक, जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण की रीतियों का प्रतीक है। वैदिक मंत्रों की अलौकिक गूंज के बीच 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए 11,000 लीटर पवित्र जल को मंदिर के शिखर पर अर्पित किया गया।

इसके लिए 1860 किलो वजनी 350 टन की विशेष क्रेन की सहायता से 155 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया और उसके बाद कलश के पानी से मंदिर का कुंभ

0: मान्यता है कि कुंभाभिषेक के पावन अवसर पर मंदिर में उपस्थित रहने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस समय मंदिर की दिव्य शक्तियां और ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। कुंभाभिषेक के बाद भारतीय सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प की वर्षा की गई। वायुसेना की सूर्यकिरण टीम ने मंदिर के ऊपर 15 मिनट तक मनमोहक कलरफुल प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूर्यकिरण टीम के विमान जामनगर वायुसेना स्टेशन से टेक ऑफ कर करीब 180 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करने के बाद सोमनाथ पहुंचे और अपने कलरफुल फॉर्मेशन से माहौल को शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक बना दिया।
1: महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ।
0: सूर्यकिरण टीम का कलरफुल एयर शो खत्म होने के बाद पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के संग्रहालय पहुंचे, जहां मंदिर के पुराने अवशेषों के साथ अनेक स्मृतियां मौजूद हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी का सेरेमोनियल पगड़ी और खेस के साथ स्वागत किया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी को सोमनाथ मंदिर की एक फ्रेम की हुई तस्वीर भी भेंट की। इस दौरान पीएम मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 1.5 से 2 घंटे तक मंदिर परिसर में ही मौजूद रहे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज सोमनाथ अमृत महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम किया गया। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री करीब 1.5-2 घंटे रुके, जिसके अंदर कुंभाभिषेक से लेकर ध्वजारोहण और साथ ही सूर्यकिरण का एयर शो किया गया। जिस तरह से मंदिर की विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी बात प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में कही कि सोमनाथ को जिसके नाम में सोम हो उसका कभी अंत नहीं हो सकता, और वही चीज किस तरह से राष्ट्र के निर्माण के लिए उपयोगी रहती है, उन सब की बात की। जो संकल्पना थी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की, वो सरदार पटेल ने किस तरह से की थी और उसके बाद किस तरह से ये पूरा पुनर्निर्माण हुआ, उस पर प्रधानमंत्री ने विस्तृत तरीके से बात की है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि आज जो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस जो है उसको लेकर जो बात की गई प्रधानमंत्री के द्वारा कि पोखरण विस्फोट के बाद भी, पोखरण परीक्षणों के बाद भी दुनिया के प्रतिबंधों के बावजूद भारत जिस तरह से एकजुट रहा और आगे बढ़ा, कोई शक्ति हमें झुका नहीं सकती। तो वो संदेश उन्होंने दिया कि किसी की भी कोई भी कैसी परिस्थिति आए, उन परिस्थितियों में भारत हमेशा एकजुट रहा है और हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ा है और इसी तरह वो आगे बढ़ता रहेगा।
0: सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को खास तौर पर याद किया, जिनकी संकल्प शक्ति की वजह से ही मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण संभव हो सका।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: गजब का इत्तेफाक है कि 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के मौजूदा स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो 11 मई को ही भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व को यह पैगाम दे दिया था कि भारत अपनी आत्मरक्षा का हुनर कायदे से जानता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर पोखरण परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत का परमाणु सामर्थ्य देखकर आंखें लाल कर ली थी, लेकिन भारत इसके लिए दृढ़ संकल्पित था।
1: दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं।
0: इससे पहले पीएम मोदी सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड से मंदिर तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मोदी के रोड शो में लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान सड़क पर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। गुजरात के गिर से ब्रजेश जोशी और दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सनातन संस्कृति में स्थान का विशेष महत्व है। भारत के ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से किसी स्थान विशेष में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा के रेडिएशन को महसूस किया और भगवान के धाम के रूप में उसकी पहचान स्थापित की। सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा से लबरेज ऐसा ही एक स्थान है, जहां अनादिकाल से ही भगवान शिव के अविनाशी स्वरूप की मौजूदगी महसूस की जाती रही है। ये सत्य सिर्फ मिथकों तक ही महदूद नहीं है, ऐतिहासिक घटनाओं में इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। सोमनाथ मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने आधा दर्जन से अधिक बार तहस नहस करने की कोशिश की। आक्रांताओं ने बार बार उसे ध्वस्त किया, लेकिन उस स्थान में कुछ अलौकिक ऊर्जा है कि बार बार ध्वस्त होने के बाद भी मंदिर का निर्माण होता रहा और आज पूरे विराटता के साथ सोमनाथ मंदिर हमारे बीच में मौजूद है।

0: सौराष्ट्र में गीर जिले के प्रभासपाटन में अरब सागर के तट पर स्थित अनादि मंदिर सोमनाथ, जब से धरती का अस्तित्व है, जब से मानवता का वजूद है, तब से इस अद्भुत अलौकिक महिमामय मंदिर का उल्लेख मिलता है। दुनिया के प्राचीनतम स्क्रिप्चर माने जाने वाले ऋग्वेद से लेकर महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण तक में सोमनाथ की महिमा का उल्लेख है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का महत्व ऐसा कि आमतौर पर वाचाल और उत्ताल रहने वाली अरब सागर की लहरें इस मंदिर के पास शरणागति की मुद्रा में शांत हो जाती हैं। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के लिए स्वयं चंद्रदेव ने इस स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने न सिर्फ चंद्रदेव को श्राप मुक्त किया बल्कि उनके आग्रह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां अनंत काल के लिए विराजमान भी हो गए।
1: ये जो भी आप मंदिर देख रहे हो, जो खड़ा है मंदिर, वो सनातन धर्म

0: तब से पूजा विधि और धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं।
1: सोमनाथ मंदिर के एक दिव्य अलौकिक बात पर अमूमन किसी का ध्यान नहीं जाता। सोमनाथ मंदिर जहां पर स्थित है, यहां से ठीक दक्षिण की तरफ सीधी लकीर खींचेंगे तो धरती के आखिरी छोर अंटार्कटिका तक कहीं भी भूखंड का कोई हिस्सा, यहां तक कि कोई टापू नहीं मिलेगा। बहरहाल सोमनाथ मंदिर को लेकर इतिहास के पन्नों को जब आप पूरे मनोयोग के साथ पलटेंगे तो आपको हैरान करने वाले कई और तथ्य मिलेंगे, जिसे जानकर श्रद्धा और विश्वास न होते हुए भी इस परम तीर्थ के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी। दरअसल क्रूर विदेशी आक्रांताओं ने जब जब भारत भूमि पर आक्रमण कर सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हमला जरूर किया, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं इस बात का एहसास था कि ये मंदिर सनातन शक्ति का अक्षय केंद्र है। इसलिए 1200-1300 साल के कालखंड में सनातन को मिटाने की दुराशा लेकर आए हर आक्रांता ने सोमनाथ मंदिर को न सिर्फ लूटने बल्कि उसे तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वसुधा के इस दिव्य स्थान में जाने कौन सी अलौकिक शक्ति है कि मंदिर का ढांचा ध्वस्त होने के बाद भी ऋषि मुनियों, तपस्वियों से लेकर आम श्रद्धालुओं तक का यहां आने का सिलसिला थमा नहीं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां आए और इस गौरवशाली मंदिर की दुर्दशा देखी तो लौह पुरुष की आंखें भी नम हो गईं। उसी समय उन्होंने समंदर का जल हाथ में लेकर मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया।
2: उसने मंदिर की ये जीर्ण दशा देखी तो उसकी लोखंडी पुरुष मानते हैं, उसकी आंख भी आंसू से दिखाई गई, उसका दर्द उसके चेहरे में और आंखों में दिखाई दिया। उसने पहला ही काम उस समय जब पुराना मंदिर था वहां से समुद्र में जाने के लिए एक सीढ़ी थी, पत्थर की सीढ़ी थी, वहां से सीधा उतरे और उसने हाथ में सूर्य का समुद्र का जल लेकर उसने प्रतिज्ञा ली कि जहां मैं सोमनाथ का पुनरोद्धार करूंगा और बिना सोमनाथ का पुनरोद्धार आजादी मिली तो ये आजादी अधूरी है।
1: अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के अनुसार लौह पुरुष ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार शुरू करवा दिया। हालांकि अफसोस ये कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरदार पटेल 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को यहां आकर प्राण प्रतिष्ठा के अलौकिक अनुष्ठान को संपन्न कराया।
2: 11/5/1951 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस हाल जब दर्शन करते हैं इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, वहां से मंदिर अब शुरू हुआ 11/5/1951 से।
1: मंदिर का मौजूदा स्वरूप बेशक सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति और अदम्य साहस का परिणाम है, लेकिन पिछले 1200-1300 सालों के कालखंड में सरदार पटेल की तरह और भी कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद इसी स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 8वीं शताब्दी से लेकर क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के समय तक कम से कम 6 बार मंदिर के ढांचे को तहस नहस किया गया, पर हर बार सरदार पटेल जैसे सनातन के मसीहा ने आगे बढ़कर मंदिर के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया। सबसे पहले इस मंदिर पर 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने धावा बोलकर इसे तहस नहस कर दिया। उसके बाद गजनी के बददिमाग आक्रांता महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। खिलजी वंश के दरिंदे अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में एक बार फिर इस अनादि मंदिर को जमींदोज कर दिया। खिलजी के बाद गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने 1395 ईस्वी में इस मंदिर को मटियामेट करने की कोशिश की। वहीं मुगल वंश के औरंगजेब की तो इस मंदिर से खास अदावत थी, इसलिए औरंगजेब ने पहले 1665 ईस्वी में और फिर अपने मरने से एक साल पहले 1706 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ डाला।
3: इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन

0: उद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया, वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है।
1: कमाल देखिए कि इस मंदिर को ध्वस्त करने वाले आक्रांताओं की कब्रों पर आज कोई एक अदद दिया जलाने वाला नहीं बचा है, लेकिन सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ उसी स्थान पर विराजमान है। मानो आक्रांताओं को पैगाम दे रहा है कि प्रथम ज्योतिर्लिंग अपनी स्वयं सिद्ध शक्ति से सिंचित है और स्वयं महादेव ही इसके रक्षक हैं। अनादिकाल से ही ये मंदिर भक्तों और श्रद्धालुओं की आस्था का परम धाम बना हुआ है। गुजरात के गीर से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ आज के हमारी जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
2: और अब बात श्री राम की नगरी अयोध्या की करते हैं, जहां मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में चल रहा काम भी जल्द पूरा होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां 30 जून तक अपना काम पूरा कर लेंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरयू तट पर बन रहा भव्य संग्रहालय अब ट्रस्ट की प्राथमिकता बन चुका है। इस संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी।
3: पहले प्रभु श्री राम का ये नया नवेला मंदिर राम भक्तों के लिए खुला और फिर मंदिर परिसर में बने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद इनके द्वार भी दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। लिहाजा देश और दुनिया भर से अयोध्या आने वाले राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का ये उत्साह और उमंग इनके आध्यात्मिक आनंद को बयां कर रहा है।
4: प्रत्येक मंदिर, चाहे परकोटे के 6 मंदिर हो, चाहे सप्तऋषि मंदिर हो, शेषावतार हो और कुबेर टीला हो, सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं ने दर्शन प्रारंभ कर दिया है। बहुत आनंद के साथ देश भर से आने वाला हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करके आनंद हो रहा है।
5: सारे मंदिरों के दर्शन हुए?
6: बढ़िया लग रहा है। हम पूरे इंडिया में इतने घूमे, पर ये जो सगोड़ है इधर, वो राम अयोध्या की बहुत बढ़िया रही और बहुत दर्शन बढ़िया से किए।
5: किसके किसके आप दर्शन किए मंदिर में?
7: सबका, राम जी के परिवार का, राम जी का, सबका, रामलला का, बहुत अच्छा लगा।
3: इस बीच श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर और दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिसर में चल रहा दूसरा काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केवल रखरखाव से जुड़ी टीम ही परिसर में मौजूद रहेगी। हालांकि परिसर से बाहर ट्रस्ट कार्यालय, विश्राम गृह और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का काम चलता रहेगा।
8: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया था कि शहीद स्तंभ, पूर्ण स्तंभ जो है इसी का, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य बाकी नहीं है और LNTTCE भी अपना कार्यभार 30 जून को यहाँ पूर्ण करके उनकी टोली चली जाएगी। केवल वह टोली बचेगी जो एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर देख रेख के लिए।
3: नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर की पूर्णता के बाद अब ट्रस्ट का पूरा जोर सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय के काम को पूरा करने पर है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक विशेष गैलरी प्रभु राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित होगी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि संग्रहालय में एक ऐसी दिव्य दर्शन गैलरी होगी, जहां श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होगा मानो वो स्वयं मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे हों।
8: एक यह अवश्य अब निर्णय ले लिया गया है कि म्यूजियम में, संग्रहालय में एक गैलरी इस प्रकार की होगी जहां की ऐसा लोगों को लगेगा जब वो उस गैलरी में जाएंगे कि वह मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। यानी उसमें सभी मंदिर जो बने हैं उन सब का एक तरीके से दर्शन, तो वह दिव्य दर्शन की गैलरी होगी। भगवान की मूर्ति का दर्शन, राम परिवार का दर्शन, बाकी सभी मंदिरों का दर्शन। तो वो आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के तहत उस कार्य को किया जाएगा।
3: वहीं संग्रहालय में देश के विभिन्न भाषाओं, लिपियों और कालखंडों में लिखे गए राम साहित्य और रामायण की दुर्लभ पांडुलिपियों को भी रखा जाएगा, ताकि शोधार्थियों और युवाओं को शोध के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकने की जरूरत न पड़े। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, राम साहित्य और अध्यात्म पर शोध का विश्व स्तरीय मंच भी बनकर उभरेगा।
9: जब हमारे पास सभी तरह के रामायण एक जगह पर केंद्रित होंगे तो शोधार्थियों के लिए कितना लाभ होगा। अब वो शोधार्थी भाषा पर काम करेंगे, राम शैली पर काम करेंगे, लिपि पर काम करेंगे, लिपि के विकास पर काम करेंगे, भाषा विन्यास पर काम करेंगे और राम कथा पर बात करेंगे। तो उनके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, एक उनके पास बहुत बड़ी क्या कहेंगे एक उनके पास बहुत बड़ा विकल्प रहेगा कि उनको शोध के लिए ना अब कहीं ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया नहीं जाना पड़ेगा।
3: कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के बूते अयोध्या न सिर्फ इस वक्त धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी चमक बिखेर रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए पीएम मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात, प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना, नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शिवेंदु अधिकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होगी ईवी गाड़ियां, सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और फैक्ट चेक में आपका बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है और कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाई उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही अवैध घुसपैठिए राज्य छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। क्या है वायरल दावे की और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर में आज बात होगी उस वीडियो की जिसके जरिए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बंगाल पुलिस ने जमकर पीटा। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध घुसपैठिए राज्य को छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।

0: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने 207 सीटों को जीतकर बंगाल में बदलाव की नई कहानी लिख दी है। टीएमसी को सत्ता से बेदखल करके बीजेपी ने बंगाल में भगवा फहरा दिया।
1: स्थापित हो
0: शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सीएम पद की शपथ ले ली है।
1: कृत्रिम निष्ठा अनुगत्य पोषण करीब।
0: इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही भारी संख्या में अवैध घुसपैठिए राज्य छोड़कर बांग्लादेश जाने लगे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को कहीं जाते हुए देखा जा रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि वीडियो पश्चिम बंगाल की है, घुसपैठिए बांग्लादेशी छोड़ने लगे, हजारों की संख्या में जालीदार टोपी वाले कबाड़ उठाकर देश के दूसरे हिस्सों में निकल चुके हैं, ये सावधान रहने का वक्त है, अगर ये दरिंदे आपके गांव, शहर, कस्बे में दिखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को कहीं जाते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध घुसपैठिए बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जाने लगे हैं। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे ये हमारा मकसद था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक को इसे हुगली का बताते हुए सुना जा सकता है। साथ ही साथ वो एक जगह इज्तिमा का भी जिक्र कर रहा है। इज्तिमा मुस्लिमों का एक धार्मिक समागम होता है। ऐसे में हमें वायरल हो रहे दावे पर शक हुआ। इसके अलावा सर्च में हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें पश्चिम बंगाल से मुस्लिमों के पलायन का जिक्र हो, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर ये दावा सच है तो उसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूबर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला जिसे उन्होंने 5 जनवरी 2026 को शेयर किया था। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो इज्तिमा का है जिसका आयोजन हुगली जिले में किया गया था और ये उसी में शामिल होने जा रहे लोगों की भीड़ है। यहाँ इस वीडियो को 5 जनवरी को शेयर किया गया था जबकि बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। यहाँ से ये तो साफ हो गया कि वायरल वीडियो बंगाल चुनाव के नतीजों से कोई संबंध नहीं रखता। सर्च में हमें एक और वीडियो मिला जिसे एक इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया था। वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 2-5 जनवरी के बीच विश्व इज्तिमा का आयोजन किया गया था। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में होने वाला यह आयोजन बिस्वा इज्तिमा नामक एक विशाल वार्षिक इस्लामिक समागम का हिस्सा है जिसका मुख्य आयोजन आमतौर पर बांग्लादेश में होता है। सर्च के दौरान हमें एक न्यूज रिपोर्ट भी मिली जिसमें हुगली में आयोजित इस कार्यक्रम का जिक्र है। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल बिस्वा इज्तिमा पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के दादरपुर स्थित पुइनन में आयोजित हो रहा है। इस क्षेत्र में पिछला बिस्वा इज्तिमा 1992 में हावड़ा निब्रा इलाके में आयोजित किया गया था। 33 साल के अंतराल के बाद ये विशाल धार्मिक समागम हुगली जिले में हो रहा है। साफ है वायरल हो रहा वीडियो बंगाल के चुनाव नतीजों से संबंधित नहीं है, ये इसी साल पश्चिम बंगाल में संपन्न इज्तिमा का है जिसका आयोजन 2 से 5 जनवरी 2026 के बीच हुगली जिले में किया गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर बंगाल पुलिस ने एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे
3: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल के राज को खत्म कर पहली बार सत्ता हासिल की। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में कई जगहों से हिंसा की खबरें सामने आई। 6 मई की रात को बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी निजी सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बीच पश्चिम बंगाल का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस वाले एक भीड़ पर लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी चार्ज के बाद लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते हुए देखे जा सकते हैं। इसे शेयर करने वालों का दावा है कि ये भीड़ एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों की है जिन्होंने बंगाल के अंदर बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाया, जिसके बाद पुलिस ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, बंगाल में आतंकियों की अब खैर नहीं, दौड़ा दौड़ा कर कूटा जा रहा है। वीडियो पर मौजूद टेक्स्ट में लिखा है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर किया लाठी चार्ज। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल पश्चिम बंगाल का बताकर यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में पुलिस वाले एक भीड़ पर लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी चार्ज के बाद लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते भी दिखे। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर बंगाल पुलिस ने एक धर्म विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को पुलिस ने जमकर पीटा। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे, ये हमारा मकसद है। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी प्रदर्शन का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन इस दौरान हमें कहीं पर भी बांग्ला आवाजें सुनने को नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई इस भीड़ का संबंध पश्चिम बंगाल से होता तो कहीं ना कहीं बांग्ला आवाजें जरूर सुनाई देती, लेकिन कहीं कुछ नहीं सुनने को मिला। इसके अलावा वीडियो में आई लव मोहम्मद की आवाजें सुनाई दे रही है। वीडियो में कहीं पर भी बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा सुनाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई हाल फिलहाल में प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की सच्चाई की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि अगर ये वीडियो वायरल किया जा रहा है तो वीडियो कब का है और कहां का है जिसको लेकर लोग ये दावा कर रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी प्रदर्शन के पुराने वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पे खंगाला। इस दौरान हमें इसका लंबा वर्जन 26 सितंबर 2025 की एक वीडियो रिपोर्ट में मिला। रिपोर्ट के मुताबिक बरेली में आई लव मोहम्मद से संबंधित प्रदर्शनों के बाद हिंसा भड़क उठी थी और कई इलाकों में पत्थरबाजी भी हुई थी। इसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस और अतिरिक्त बलों ने लाठी चार्ज किया था। ये वीडियो उसी वक्त का है। सर्च के दौरान हमें एक और आधिकारिक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर काफी हंगामा हुआ था। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर लोगों को समझाने की कोशिश की। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। दरअसल ये वीडियो पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यूपी के बरेली का है। ये वीडियो सितंबर 2025 में आई लव मोहम्मद से जुड़े विवाद से संबंधित है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों दो छोटे बच्चों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये नन्हे कलाकार अपनी शानदार कलाकारी और एक्रोबेटिक स्किल्स से हर किसी को हैरान कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में इन बच्चों का संतुलन और ताकत देख लोग दंग रह गए। वीडियो में दोनों बच्चे खुले मैदान में बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के शानदार करतब दिखा रहे हैं। एक बच्चा दूसरे के कंधे पर खड़ा हो जाता है, फिर हाथों के बल संतुलन बनाकर अलग अलग पोज दिखाता है। दोनों मिलकर ह्यूमन पिरामिड फ्लिप्स और बैलेंस जैसे कठिन स्टंट बेहद ही आसानी से कर ले रहे हैं।

बस गुनगुनाना सीखा है, लेकिन गा रहे हैं पूरी तरह डूबकर। देखिए जरा अंदाज इनका, लगता है मंदिर से सब उठा लाए हैं, शिवलिंग दिया सब कुछ, और अब यहाँ हो रही है प्रार्थना। पर उस तरह नहीं जैसे आप और हम करते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में, मानो ये भगवान नहीं इनका सबसे प्यारा खिलौना हो। जो भी हो, बच्चे का भजन गुनगुनाना लोगों को पसंद आ रहा है। चीन के एक छोटे बच्चे ने अपनी अविश्वसनीय स्पीड से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा स्टेज पर बेहद शांत अंदाज में बैठा है, उसके हाथ में 2x2 रूबिक्स क्यूब रहता है और सामने टाइमर लगा होता है। जैसे ही टाइमर शुरू होता है, बच्चा बिजली की रफ्तार से अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर देता है। उसकी मूवमेंट इतनी तेज होती है कि सामने बैठे लोग तो क्या, कैमरा भी उसे ठीक से कैद नहीं कर पाता। अगले ही पल क्यूब पूरी तरह सॉल्व हो जाता है और वहां मौजूद लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करने लगते हैं। बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं तोड़ती, कई बार इंसान को भावनात्मक रूप से भी अंदर तक झकझोर देती है। खासकर जब कीमोथेरेपी जैसी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो बाल झड़ने जैसी चीजें भी मरीज के लिए बेहद दर्दनाक अनुभव दे जाती है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में अगर कोई दिल के साथ खड़ा रहे तो दर्द थोड़ा हल्का जरूर लगने लगता है। सोशल मीडिया पर अब ऐसा ही एक भावुक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी का दर्द बांटने के लिए खुद अपना सिर मुंडवाता नजर आ रहा है। इस वीडियो को देख हजारों लोग इमोशनल हो गए हैं और पति पत्नी के रिश्ते की खूब तारीफ कर रहे हैं। माँ तो बस माँ है, उसकी बराबरी भला कोई कहाँ कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। लोग कह रहे हैं कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं हो सकता।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। शुरुआत में एक लड़का नजर आता है जिसका वजन 80 किलो है। वो कैमरे के सामने अपनी टी शर्ट उठाकर अपना थुलथुला पेट दिखाता है, जिसे देखकर कोई भी कह दे ये बंदा अनफिट है। इसके बाद वो एक पार्क में पहुंचता है जहां कुछ फिट लड़के चिन अप्स कर रहे होते हैं। वो उनके बीच जाकर मजे लेते हुए कहता है कि वो भी एक्सरसाइज करना चाहता है। लड़के की बात सुनकर वहां कसरत कर रहा एक युवक हंसने लगता है और स्टाइल मारते हुए लड़के के पेट को थपथपाता है, मानो कह रहा हो भाई तुझसे ना हो पाएगा। इसके बाद वो उसे चैलेंज देते हुए कहता है कि चल अब ये करके दिखा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। लड़का अपना भारी भरकम बैग उस अकड़ दिखाने वाले युवक को थमाता है। बैग इतना वजनदार होता है कि पकड़ते ही वो युवक सीधा जमीन से जा सटता है। वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़का इतना भारी बोझ कंधे पर लादे कैसे घूम रहा था। अगले ही पल जो हुआ, उसने वहां मौजूद सबकी बोलती बंद कर दी। थोड़ी देर पहले जिसे सब अनफिट समझ रहे थे, उसने कैलिस्थेनिक्स के ऐसे दांव पेच दिखाए कि अच्छे अच्छे जिम जाने वालों के पसीने छूट गए। उसकी ताकत देखकर वहां मौजूद भीड़ दंग रह गई। कुल मिलाकर जिसे थुलथुला समझा जा रहा था, असल में वो फिटनेस के मामले में सबका बाप निकला।

अरूबा के रहने वाले एगमंड मोलिना ने गर्दन से बस खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 49 साल के एगमंड ने महज अपनी गर्दन से 21,737 पाउंड यानी 9,860 किलोग्राम बस को खींचकर अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। बताया जा रहा है कि इस भारी बस को उन्होंने 20 मीटर तक खींच दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड यूक्रेन के दिमित्रो हनुस्की के नाम था, जिन्होंने 2024 में 8,060 किलोग्राम वाली वाहन को गर्दन से खींचकर रिकॉर्ड बनाया था। एगमंड मोलिना को लोग ह्यूमन क्रेन यानी मानव क्रेन के नाम से भी जानते हैं। उनके कुछ और रिकॉर्ड काफी हैरान करने वाले हैं, जिनमें केवल उंगली से 159 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा एगमंड ने एक उंगली से 20 मीटर तक बस खींचने का रिकॉर्ड भी बनाया। इतना ही नहीं, कमर बेल्ट की मदद से उन्होंने 1,002 किलोग्राम यानी 1 टन से ज्यादा वजन उठाया था। यहाँ आपको बता दें कि एगमंड का वजन केवल 87 किलोग्राम है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि इस धरती पर एक से बढ़कर एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब हरकत कर सबको चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है, इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत नहीं कोई मशीन हो।

युवती का ये शानदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके शानदार एक्सप्रेशंस, ग्रेसफुल मूव्स और सादगी भरे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है। वो गाने की हर बीट पर इतनी सहजता और आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है कि देखने वाले उसकी तारीफ के बगैर रह नहीं पा रहे। खास बात ये कि उसके डांस में किसी तरह की बनावट या जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब बात श्रीराम की नगरी अयोध्या की करते हैं, जहां मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में चल रहा काम भी जल्द पूरा होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां 30 जून तक अपना काम पूरा कर लेंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरयू तट पर बन रहा भव्य संग्रहालय अब ट्रस्ट की प्राथमिकता बन चुका है। इस संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी।
2: कुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले प्रभु श्री राम का ये नया नवेला मंदिर राम भक्तों के लिए खुला और फिर मंदिर परिसर में बने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद इनके द्वार भी दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। लिहाजा देश और दुनिया भर से अयोध्या आने वाले राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का ये उत्साह और उमंग इनके आध्यात्मिक आनंद को बयां कर रहा है।
3: प्रत्येक मंदिर, चाहे परकोटे के 6 मंदिर हो, चाहे सप्तऋषि मंदिर हो, शेषावतार हो और कुबेर टीला हो, सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं ने दर्शन प्रारंभ कर दिया है। बहुत आनंद के साथ देश भर से आने वाला हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करके आनंद हो रहा है।
4: सारे मंदिरों के दर्शन हुए,
5: बढ़िया लगा। हम पूरे इंडिया में इतने घूमे, पर ये जो सगवट है इधर वो राम अयोध्या की बहुत बढ़िया रही और बहुत दर्शन बढ़िया से किए।
4: किसके किसके आप दर्शन किए मंदिर में?
6: सबका, राम जी के परिवार का, राम जी का, सबका, रामलला का, बहुत अच्छा लगा।
2: इस बीच श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर और दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिसर में चल रहा दूसरा काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केवल रखरखाव से जुड़ी टीम ही परिसर में मौजूद रहेगी। हालांकि परिसर से बाहर ट्रस्ट कार्यालय, विश्राम गृह और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का काम चलता रहेगा।
7: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया था कि शहीद स्तंभ, पूर्ण स्तंभ जो है स्मृति का, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य बाकी नहीं है और LNTTCE भी अपना कार्यभार 30 जून को यहाँ पूर्ण करके उनकी टोली चली जाएगी। केवल वह टोली बचेगी जो एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर देख रेख के लिए।
2: नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर की पूर्णता के बाद अब ट्रस्ट का पूरा जोर सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय के काम को पूरा करने पर है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक विशेष गैलरी प्रभु राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित होगी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि संग्रहालय में एक ऐसी दिव्य दर्शन गैलरी होगी जहां श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होगा मानो वो स्वयं मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे हों।
7: एक यह अवश्य अब निर्णय ले लिया गया है कि म्यूजियम में, संग्रहालय में एक गैलरी इस प्रकार की होगी जहां की ऐसा लोगों को लगेगा जब वो उस गैलरी में जाएंगे कि वह मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। यानी उसमें सभी मंदिर जो बने हैं उन सब का एक तरीके से दर्शन, तो वह दिव्य दर्शन की गैलरी होगी। भगवान की मूर्ति का दर्शन, राम परिवार का दर्शन, बाकी सभी मंदिरों का दर्शन, तो वो आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के तहत उस कार्य को किया जाएगा।
2: वहीं संग्रहालय में देश के विभिन्न भाषाओं लिपियों और कालखंडों में लिखे गए राम साहित्य और रामायण की दुर्लभ पांडुलिपियों को भी रखा जाएगा, ताकि शोधार्थियों और युवाओं को शोध के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकने की जरूरत न पड़े। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, राम साहित्य और अध्यात्म पर शोध का विश्व स्तरीय मंच भी बनकर उभरेगा।
8: जब हमारे पास सभी तरह के रामायण एक जगह पर केंद्रित होंगे तो शोधार्थियों के लिए कितना लाभ होगा। अब वो शोधार्थी भाषा पर काम करेंगे, राम शैली पर काम करेंगे, लिपि पर काम करेंगे, लिपि के विकास पर काम करेंगे, भाषा विन्यास पर काम करेंगे और राम कथा पर बात करेंगे। तो उनके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, एक उनके पास बहुत बड़ी उनके पास बहुत बड़ा विकल्प रहेगा कि उनको शोध के लिए ना अब कहीं ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया नहीं जाना पड़ेगा।
2: कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के बूते अयोध्या न सिर्फ इस वक्त धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी चमक बिखेर रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरवरत्न से सम्मानित हुए पीएम मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात, प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना, नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शिवेंदु अधिकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होगी ईवी गाड़ियां, सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन।

नमस्कार, शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं 6 बजे का GNT स्पेशल। एक खास पेशकश आप सबके सामने रखते हैं। देखिए, आज का दिन यानी 11 मई भारत की आध्यात्मिक और सामरिक दोनों ही शक्तियों के लिहाज से बहुत ज्यादा खास है। 11 मई 1951 को गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मौजूदा स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। आज इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दिन की 75वीं वर्षगांठ है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साक्षी बने। दूसरी तरफ 11 मई को ही भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण भी किया था। तब भारत की सामरिक शक्ति की धमक पूरी दुनिया ने सुनी थी और यही वजह है कि सोमनाथ अमृत महोत्सव में भारत की आध्यात्मिक और सामरिक दोनों ही शक्तियों की झांकी देखने को मिली।

0: Bhagwan Somnath ki.
1: सदियों से सनातन आस्था का परम धाम रहे सोमनाथ मंदिर में आध्यात्मिकता और आधुनिकता के साथ भारत की शक्ति और सामर्थ्य का अलौकिक नजारा देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर के आधुनिक स्वरूप के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ के दिव्य अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सोमनाथ मंदिर पहुंचे और विशेष महापूजा में शामिल होकर उसके साक्षी बने। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम ने सोमनाथ की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ऊर्जा को एक बार फिर जीवंत कर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अनेक आक्रांताओं के दुष्चक्र का कई बार शिकार हुए सोमनाथ मंदिर की महिमा और महात्म्य का जिक्र किया।

0: मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: सोमनाथ मंदिर के पावन पुनरुद्धार की 75वीं सालगिरह के भव्य दिव्य कार्यक्रम में सबसे विशेष रहा मंदिर का कुंभाभिषेक, जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण की रीतियों का प्रतीक है। वैदिक मंत्रों की अलौकिक गूंज के बीच 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए 11,000 लीटर पवित्र जल को मंदिर के शिखर पर अर्पित किया गया।

इसके लिए 1860 किलो वजनी 350 टन की विशेष क्रेन की सहायता से 155 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया और उसके बाद कलश के पानी से मंदिर का कुंभ

0: मान्यता है कि कुंभाभिषेक के पावन अवसर पर मंदिर में उपस्थित रहने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस समय मंदिर की दिव्य शक्तियाँ और ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। कुंभाभिषेक के बाद भारतीय सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प की वर्षा की गई। वायुसेना की सूर्यकिरण टीम ने मंदिर के ऊपर 15 मिनट तक मनमोहक कलरफुल प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूर्यकिरण टीम के विमान जामनगर वायुसेना स्टेशन से टेक ऑफ कर करीब 180 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करने के बाद सोमनाथ पहुंचे और अपने कलरफुल फॉर्मेशन से माहौल को शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक बना दिया।
1: महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ।
0: सूर्य किरण टीम का कलरफुल एयर शो खत्म होने के बाद पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के संग्रहालय पहुंचे, जहां मंदिर के पुराने अवशेषों के साथ अनेकानेक स्मृतियां मौजूद हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी का सेरेमोनियल पगड़ी और खेस के साथ स्वागत किया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी को सोमनाथ मंदिर की एक फ्रेम की हुई तस्वीर भी भेंट की। इस दौरान पीएम मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 1.5 से 2 घंटे तक मंदिर परिसर में ही मौजूद रहे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज सोमनाथ अमृत महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम किया गया। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री करीब 1.5-2 घंटे रुके, जिसके अंदर कुंभाभिषेक से लेकर ध्वजारोहण और साथ ही सूर्यकिरण का एयर शो किया गया। जिस तरह से मंदिर की विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी बात प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में कही कि सोमनाथ को जिसके नाम में सोम हो उसका कभी अंत नहीं हो सकता, और वही चीज किस तरह से राष्ट्र के निर्माण के लिए उपयोगी रहती है, उन सब की बात की। जो संकल्पना थी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की, वो सरदार पटेल ने किस तरह से की थी और उसके बाद किस तरह से ये पूरा पुनर्निर्माण हुआ, उस पर प्रधानमंत्री ने विस्तृत तरीके से बात की है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि आज जो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस जो है उसको लेकर जो बात की गई प्रधानमंत्री के द्वारा कि पोखरण विस्फोट के बाद भी, पोखरण परीक्षणों के बाद भी दुनिया के प्रतिबंधों के बावजूद भारत जिस तरह से एकजुट रहा और आगे बढ़ा, कोई शक्ति हमें झुका नहीं सकती। तो वो संदेश उन्होंने दिया कि किसी की भी कोई भी कैसी परिस्थिति आए, उन परिस्थितियों में भारत हमेशा एकजुट रहा है और हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ा है और इसी तरह वो आगे बढ़ता रहेगा।
0: सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को खास तौर पर याद किया, जिनकी संकल्प शक्ति की वजह से ही मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण संभव हो सका।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: गजब का इत्तेफाक है कि 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के मौजूदा स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो 11 मई को ही भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व को यह पैगाम दे दिया था कि भारत अपनी आत्मरक्षा का हुनर कायदे से जानता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर पोखरण परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत का परमाणु सामर्थ्य देखकर आंखें लाल कर ली थी, लेकिन भारत इसके लिए दृढ़ संकल्पित था।
1: दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं।
0: इससे पहले पीएम मोदी सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड से मंदिर तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मोदी के रोड शो में लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान सड़क पर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। गुजरात के गिर से ब्रजेश जोशी और दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सनातन संस्कृति में स्थान का विशेष महत्व है। भारत के ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से किसी स्थान विशेष में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा के रेडिएशन को महसूस किया और भगवान के धाम के रूप में उसकी पहचान स्थापित की। सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा से लबरेज ऐसा ही एक स्थान है, जहां अनादिकाल से ही भगवान शिव के अविनाशी स्वरूप की मौजूदगी महसूस की जाती रही है। ये सत्य सिर्फ मिथकों तक ही महदूद नहीं है, ऐतिहासिक घटनाओं में इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। सोमनाथ मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने आधा दर्जन से अधिक बार तहस नहस करने की कोशिश की। आक्रांताओं ने बार बार उसे ध्वस्त किया, लेकिन उस स्थान में कुछ अलौकिक ऊर्जा है कि बार बार ध्वस्त होने के बाद भी मंदिर का निर्माण होता रहा और आज पूरे विराटता के साथ सोमनाथ मंदिर हमारे बीच में मौजूद है।

0: सौराष्ट्र में गीर जिले के प्रभासपाटन में अरब सागर के तट पर स्थित अनादि मंदिर सोमनाथ, जब से धरती का अस्तित्व है, जब से मानवता का वजूद है, तब से इस अद्भुत अलौकिक महिमामय मंदिर का उल्लेख मिलता है। दुनिया के प्राचीनतम स्क्रिप्चर माने जाने वाले ऋग्वेद से लेकर महाभारत, शिवपुराण और स्कंद पुराण तक में सोमनाथ की महिमा का उल्लेख है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का महत्व ऐसा कि आमतौर पर वाचाल और उत्ताल रहने वाली अरब सागर की लहरें इस मंदिर के पास शरणागति की मुद्रा में शांत हो जाती हैं। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के लिए स्वयं चंद्रदेव ने इस स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने न सिर्फ चंद्रदेव को श्राप मुक्त किया बल्कि उनके आग्रह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां अनंत काल के लिए विराजमान भी हो गए।
1: ये जो भी आप मंदिर देख रहे हो, जो खड़ा है मंदिर, वो सनातन धर्म का केंद्र है और प्रथम ज्योतिर्लिंग भी है। हमारा तीर्थपुरी सोमपुरा ब्राह्मण समाज है, वो चंद्रमा ने जब से मंदिर यहाँ की स्थापना की थी, तब से पूजा विधि और धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए।
0: सोमनाथ मंदिर के एक दिव्य अलौकिक बात पर अमूमन किसी का ध्यान नहीं जाता। सोमनाथ मंदिर जहाँ पर स्थित है, यहाँ से ठीक दक्षिण की तरफ सीधी लकीर खींचेंगे तो धरती के आखिरी छोर अंटार्कटिका तक कहीं भी भूखंड का कोई हिस्सा, यहाँ तक कि कोई टापू नहीं मिलेगा। बहरहाल सोमनाथ मंदिर को लेकर इतिहास के पन्नों को जब आप पूरे मनोयोग के साथ पलटेंगे तो आपको हैरान करने वाले कई और तथ्य मिलेंगे, जिसे जानकर श्रद्धा और विश्वास न होते हुए भी इस परम तीर्थ के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी। दरअसल क्रूर विदेशी आक्रांताओं ने जब जब भारत भूमि पर आक्रमण कर सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, उन्होंने सोमनाथ

0: इस बात का एहसास था कि ये मंदिर सनातन शक्ति का अक्षय केंद्र है, इसलिए 1200-1300 साल के कालखंड में सनातन को मिटाने की दुराशा लेकर आए हर आक्रांता ने सोमनाथ मंदिर को न सिर्फ लूटने बल्कि उसे तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वसुधा के इस दिव्य स्थान में जाने कौन सी अलौकिक शक्ति है कि मंदिर का ढांचा ध्वस्त होने के बाद भी ऋषि मुनियों तपस्वियों से लेकर आम श्रद्धालुओं तक का यहां आने का सिलसिला थमा नहीं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए और इस गौरवशाली मंदिर की दुर्दशा देखी तो लौह पुरुष की आंखें भी नम हो गईं। उसी समय उन्होंने समंदर का जल हाथ में लेकर मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया।
1: उसने मंदिर की ये जीर्ण दशा देखी तो उसके लोखंडी पुरुष मानते हैं, उसकी आंख भी आंसू से दिखाई गई है। उसका दर्द उसके चेहरे में और आंखों में दिखाई दिया। उसने पहला ही काम उस समय जब पुराना मंदिर था वहाँ से समुद्र में जाने के लिए एक सीढ़ी थी, पत्थर की सीढ़ी थी, वहाँ से सीधा उतरे और उसने हाथ में सूर्य का समुद्र का जल लेकर उसने प्रतिज्ञा ली कि जहाँ मैं सोमनाथ का पुनरुद्धार करूँगा और बिना सोमनाथ का पुनरुद्धार आजादी मिली तो ये आजादी अधूरी है।
0: अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के अनुसार लौह पुरुष ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार शुरू करवा दिया। हालांकि अफसोस ये कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरदार पटेल 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को यहां आकर प्राण प्रतिष्ठा के अलौकिक अनुष्ठान को संपन्न कराया।
1: 11/5/1951 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस हाल जब दर्शन करते हैं इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की वहां से मंदिर अब शुरू हुआ 11/5/1951 से।
0: मंदिर का मौजूदा स्वरूप बेशक सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति और अदम्य साहस का परिणाम है, लेकिन पिछले 1200-1300 सालों के कालखंड में सरदार पटेल की तरह और भी कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद इसी स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 8वीं शताब्दी से लेकर क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के समय तक कम से कम 6 बार मंदिर के ढांचे को तहस नहस किया गया, पर हर बार सरदार पटेल जैसे सनातन के मसीहा ने आगे बढ़कर मंदिर के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया। सबसे पहले इस मंदिर पर 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने धावा बोलकर इसे तहस नहस कर दिया। उसके बाद गजनी के बददिमाग आक्रांता महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। खिलजी वंश के दरिंदे अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में एक बार फिर इस अनादि मंदिर को जमींदोज कर दिया। खिलजी के बाद गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने 1395 ईस्वी में इस मंदिर को मटियामेट करने की कोशिश की। वहीं मुगल वंश के औरंगजेब की तो इस मंदिर से खास अदावत थी, इसलिए औरंगजेब ने पहले 1665 ईस्वी में और फिर अपने मरने से एक साल पहले 1706 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ डाला।
2: इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांता आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे, बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है।

0: कमाल देखिए कि इस मंदिर को ध्वस्त करने वाले आक्रांताओं की कब्रों पर आज कोई एक अदद दिया जलाने वाला नहीं बचा है, लेकिन सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ उसी स्थान पर विराजमान है। मानो आक्रांताओं को पैगाम दे रहा है कि प्रथम ज्योतिर्लिंग अपनी स्वयं सिद्ध शक्ति से सिंचित है और स्वयं महादेव ही इसके रक्षक हैं। अनादिकाल से ही ये मंदिर भक्तों और श्रद्धालुओं की आस्था का परम धाम बना हुआ है। गुजरात के गीर से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ आज के हमारी जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और अब बात श्रीराम की नगरी अयोध्या की करते हैं, जहां मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में चल रहा काम भी जल्द पूरा होने वाला है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां 30 जून तक अपना काम पूरा कर लेंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरयू तट पर बन रहा भव्य संग्रहालय अब ट्रस्ट की प्राथमिकता बन चुका है। इस संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी।
3: सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए।
4: पहले प्रभु श्री राम का ये नया नवेला मंदिर राम भक्तों के लिए खुला और फिर मंदिर परिसर में बने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद इनके द्वार भी दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। लिहाजा देश और दुनिया भर से अयोध्या आने वाले राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का ये उत्साह और उमंग इनके आध्यात्मिक आनंद को बयां कर रहा है।
5: प्रत्येक मंदिर, चाहे परकोटे के 6 मंदिर हो, चाहे सप्तऋषि मंदिर हो, शेषावतार हो और कुबेर टीला हो, सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं ने दर्शन प्रारंभ कर दिया है। बहुत आनंद के साथ देश भर से आने वाला हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करके आनंद हो रहा है।
6: सारे मंदिरों के दर्शन हुए?
7: बढ़िया लग रहा है। हम पूरे इंडिया में इतने घूमे, पर ये जो सगवड़ है इधर वो राम अयोध्या की, बहुत बढ़िया रही और बहुत दर्शन बढ़िया से किए।
6: इसके किसके आप दर्शन किए मंदिर में?
8: सबका, राम जी के परिवार का, राम जी का, सबका, रामलला का, बहुत अच्छा लगा।
4: इस बीच श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर और दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिसर में चल रहा दूसरा काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केवल रखरखाव से जुड़ी टीम ही परिसर में मौजूद रहेगी। हालांकि परिसर से बाहर ट्रस्ट कार्यालय, विश्राम गृह और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का काम चलता रहेगा।
9: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया था कि शहीद स्तंभ, पूरे स्तंभ जो है इस विषय का, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य बाकी नहीं है और LNTTCE भी अपना कार्यभार 30 जून को यहाँ पूर्ण करके उनकी टोली चली जाएगी। केवल वह टोली बचेगी जो एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर देख रेख के लिए।
4: नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर की पूर्णता के बाद अब ट्रस्ट का पूरा जोर सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय के काम को पूरा करने पर है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक विशेष गैलरी प्रभु राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित होगी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि संग्रहालय में एक ऐसी दिव्य दर्शन गैलरी होगी, जहां श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होगा मानो वो स्वयं मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे हों।
9: एक यह अवश्य अब निर्णय ले लिया गया है कि म्यूजियम में, संग्रहालय में एक गैलरी इस प्रकार की होगी, जहां की ऐसा लोगों को लगेगा जब वो उस गैलरी में जाएंगे कि वह मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। यानी उसमें सभी मंदिर जो बने हैं उन सब का एक तरीके से दर्शन, तो व वह दिव्य दर्शन की गैलरी होगी, भगवान की मूर्ति का दर्शन, राम परिवार का दर्शन, बाकी सभी मंदिरों का दर्शन। तो वो आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के तहत उस कार्य को किया जाएगा।
4: वहीं संग्रहालय में देश के विभिन्न भाषाओं, लिपियों और कालखंडों में लिखे गए राम साहित्य और रामायण की दुर्लभ पांडुलिपियों को भी रखा जाएगा, ताकि शोधार्थियों और युवाओं को शोध के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकने की जरूरत न पड़े। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, राम साहित्य और अध्यात्म पर शोध का विश्व स्तरीय मंच भी बनकर उभरेगा।
10: जब हमारे पास सभी तरह के रामायण एक जगह पर केंद्रित होंगे तो शोधार्थियों के लिए कितना लाभ होगा। अब वो शोधार्थी भाषा पर काम करेंगे, राम शैली पर काम करेंगे, लिपि पर काम करेंगे, लिपि के विकास पर काम करेंगे, भाषा विन्यास पर काम करेंगे और राम कथा पर बात करेंगे। तो उनके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, एक उनके पास बहुत बड़ी क्या कहेंगे एक उनके पास बहुत बड़ा विकल्प रहेगा कि उनको शोध के लिए ना अब कहीं ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया नहीं जाना पड़ेगा।
4: कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के बूते अयोध्या न सिर्फ इस वक्त धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी चमक बिखेर रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोमनाथ मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण, इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक, पीएम ने की महादेव की आराधना। वडोदरा में सरदार गौरव रत्न से सम्मानित हुए पीएम मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सरदार धाम का किया लोकार्पण, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सौगात, प्रदेश भर में लागू होगी आयुष्मान कार्ड योजना, नई सरकार बनते ही एक्शन में सीएम शिवेंदु अधिकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, इंसानी हलचल, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, महाराष्ट्र के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होगी ईवी गाड़ियां, सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और फैक्ट चेक में आपका बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है और कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाई उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही अवैध घुसपैठिए राज्य छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। क्या है वायरल दावे की और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर में आज बात होगी उस वीडियो की, जिसके जरिए लोग दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बंगाल पुलिस ने जमकर पीटा। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध घुसपैठिए राज्य को छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।

0: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने 207 सीटों को जीतकर बंगाल में बदलाव की नई कहानी लिख दी है। टीएमसी को सत्ता से बेदखल करके बीजेपी ने बंगाल में भगवा फहरा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सीएम पद की शपथ ले ली है।
1: आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिबो।
0: इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही भारी संख्या में अवैध घुसपैठिए राज्य छोड़कर बांग्लादेश जाने लगे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को कहीं जाते हुए देखा जा रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि वीडियो पश्चिम बंगाल की है, घुसपैठिए बांग्लादेशी छोड़ने लगे, हजारों की संख्या में जालीदार टोपी वाले कबाड़ उठाकर देश के दूसरे हिस्सों में निकल चुके हैं। ये सावधान रहने का वक्त है, अगर ये दरिंदे आपके गांव, शहर, कस्बे में दिखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को कहीं जाते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध घुसपैठिए बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जाने लगे हैं। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे, ये हमारा मकसद था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक को इसे हुगली का बताते हुए सुना जा सकता है। साथ ही साथ वो एक जगह इज्तिमा का भी जिक्र कर रहा है। इज्तिमा मुस्लिमों का एक धार्मिक समागम होता है। ऐसे में हमें वायरल हो रहे दावे पर शक हुआ। इसके अलावा सर्च में हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें पश्चिम बंगाल से मुस्लिमों के पलायन का जिक्र हो, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर ये खबर सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर ये दावा सच है तो उसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूबर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला जिसे उन्होंने 5 जनवरी 2026 को शेयर किया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो इज्तिमा का है जिसका आयोजन हुगली जिले में किया गया था और ये उसी में शामिल होने जा रहे लोगों की भीड़ है। यहाँ इस वीडियो को 5 जनवरी को शेयर किया गया था जबकि बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। यहाँ से ये तो साफ हो गया कि वायरल वीडियो बंगाल चुनाव के नतीजों से कोई संबंध नहीं रखता। सर्च में हमें एक और वीडियो मिला जिसे एक इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया था। वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 2 से 5 जनवरी के बीच विश्व इज्तिमा का आयोजन किया गया था। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में होने वाला यह आयोजन बिस्वा इज्तिमा नामक एक विशाल वार्षिक इस्लामिक समागम का हिस्सा है जिसका मुख्य आयोजन आमतौर पर बांग्लादेश में होता है। सर्च के दौरान हमें एक न्यूज रिपोर्ट भी मिली जिसमें हुगली में आयोजित इस कार्यक्रम का जिक्र है। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल बिस्वा इज्तिमा पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के दादरपुर स्थित पुइनन में आयोजित हो रहा है। इस क्षेत्र में पिछला बिस्वा इज्तिमा 1992 में हावड़ा निब्रा इलाके में आयोजित किया गया था। 33 साल के अंतराल के बाद ये विशाल धार्मिक समागम हुगली जिले में हो रहा है। साफ है वायरल हो रहा वीडियो बंगाल के चुनाव नतीजों से संबंधित नहीं है, ये इसी साल पश्चिम बंगाल में सम्पन्न इज्तिमा का है जिसका आयोजन 2 से 5 जनवरी 2026 के बीच हुगली जिले में किया गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर बंगाल पुलिस ने एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नाम शपथ करते थे
3: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल के राज को खत्म कर पहली बार सत्ता हासिल की। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में कई जगहों से हिंसा की खबरें सामने आई। 6 मई की रात को बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी निजी सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बीच पश्चिम बंगाल का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस वाले एक भीड़ पर लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी चार्ज के बाद लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते हुए देखे जा सकते हैं। इसे शेयर करने वालों का दावा है कि ये भीड़ एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों की है जिन्होंने बंगाल के अंदर बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाया, जिसके बाद पुलिस ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, बंगाल में आतंकियों की अब खैर नहीं, दौड़ा दौड़ा कर कूटा जा रहा है। वीडियो पर मौजूद टेक्स्ट में लिखा है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर किया लाठी चार्ज। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल पश्चिम बंगाल का बताकर ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में पुलिस वाले एक भीड़ पर लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी चार्ज के बाद लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते भी दिखे। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाने पर बंगाल पुलिस ने एक धर्म विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को पुलिस ने जमकर पीटा। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे, ये हमारा मकसद है। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी प्रदर्शन का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन इस दौरान हमें कहीं पर भी बांग्ला आवाजें सुनने को नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई इस भीड़ का संबंध पश्चिम बंगाल से होता तो कहीं ना कहीं बांग्ला आवाजें जरूर सुनाई देती, लेकिन कहीं कुछ नहीं सुनने को मिला। इसके अलावा वीडियो में आई लव मोहम्मद की आवाजें सुनाई दे रही है। वीडियो में कहीं पर भी बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा सुनाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई हाल फिलहाल में प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की सच्चाई की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि अगर ये वीडियो वायरल किया जा रहा है तो वीडियो कब का है और कहाँ का है जिसको लेकर लोग ये दावा कर रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी प्रदर्शन के पुराने वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें इसका लंबा वर्जन 26 सितंबर 2025 की एक वीडियो रिपोर्ट में मिला। रिपोर्ट के मुताबिक बरेली में आई लव मोहम्मद से संबंधित प्रदर्शनों के बाद हिंसा भड़क उठी थी और कई इलाकों में पत्थरबाजी भी हुई थी। इसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस और अतिरिक्त बलों ने लाठी चार्ज किया था। ये वीडियो उसी वक्त का है। सर्च के दौरान हमें एक और आधिकारिक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर काफी हंगामा हुआ था। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर लोगों को समझाने की कोशिश की। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। दरअसल ये वीडियो पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यूपी के बरेली का है। ये वीडियो सितंबर 2025 में आई लव मोहम्मद से जुड़े विवाद से संबंधित है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
6: Thank God I get to wake.
5: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों दो छोटे बच्चों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये नन्हे कलाकार अपनी शानदार कलाकारी और एक्रोबेटिक स्किल्स से हर किसी को हैरान कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में इन बच्चों का संतुलन और ताकत देख लोग दंग रह गए। वीडियो में दोनों बच्चे खुले मैदान में बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के शानदार करतब दिखा रहे हैं। एक बच्चा दूसरे के कंधे पर खड़ा हो जाता है, फिर हाथों के बल संतुलन बनाकर अलग अलग पोज दिखाता है। दोनों मिलकर ह्यूमन पिरामिड फ्लिप्स और बैलेंस जैसे कठिन स्टंट बेहद ही आसानी से कर ले रहे हैं।

बस गुनगुनाना सीखा है, लेकिन गा रहे हैं पूरी तरह डूबकर। देखिए जरा अंदाज इनका, लगता है मंदिर से सब उठा लाए हैं, शिवलिंग दिया सब कुछ, और अब यहाँ हो रही है प्रार्थना। पर उस तरह नहीं जैसे आप और हम करते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में, मानो ये भगवान नहीं इनका सबसे प्यारा खिलौना हो। जो भी हो, बच्चे का भजन गुनगुनाना लोगों को पसंद आ रहा है। चीन के एक छोटे बच्चे ने अपनी अविश्वसनीय स्पीड से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा स्टेज पर बेहद शांत अंदाज में बैठा है, उसके हाथ में 2x2 रूबिक्स क्यूब रहता है और सामने टाइमर लगा होता है। जैसे ही टाइमर शुरू होता है, बच्चा बिजली की रफ्तार से अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर देता है। उसकी मूवमेंट इतनी तेज होती है कि सामने बैठे लोग तो क्या, कैमरा भी उसे ठीक से कैद नहीं कर पाता। अगले ही पल क्यूब पूरी तरह सॉल्व हो जाता है और वहां मौजूद लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करने लगते हैं। बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं तोड़ती, कई बार इंसान को भावनात्मक रूप से भी अंदर तक झकझोर देती है। खासकर जब कीमोथेरेपी जैसी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो बाल झड़ने जैसी चीजें भी मरीज के लिए बेहद दर्दनाक अनुभव दे जाती है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में अगर कोई दिल के साथ खड़ा रहे तो दर्द थोड़ा हल्का जरूर लगने लगता है। सोशल मीडिया पर अब ऐसा ही एक भावुक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी का दर्द बांटने के लिए खुद अपना सिर मुंडवाता नजर आ रहा है। इस वीडियो को देख हजारों लोग इमोशनल हो गए हैं और पति पत्नी के रिश्ते की खूब कर रहे हैं। माँ तो बस माँ है, उसकी बराबरी भला कोई कहाँ कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। लोग कह रहे हैं कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं हो सकता।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। शुरुआत में एक लड़का नजर आता है जिसका वजन 80 किलो है। वो कैमरे के सामने अपनी टी शर्ट उठाकर अपना थुलथुला पेट दिखाता है, जिसे देखकर कोई भी कह दे ये बंदा अनफिट है। इसके बाद वो एक पार्क में पहुंचता है जहां कुछ फिट लड़के चिन अप्स कर रहे होते हैं। वो उनके बीच जाकर मजे लेते हुए कहता है कि वो भी एक्सरसाइज करना चाहता है। लड़के की बात सुनकर वहां कसरत कर रहा एक युवक हंसने लगता है और स्टाइल मारते हुए लड़के के पेट को थपथपाता है, मानो कह रहा हो भाई तुझ से ना हो पाएगा। इसके बाद वो उसे चैलेंज देते हुए कहता है कि चल अब ये करके दिखा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। लड़का अपना भारी भरकम बैग उस अकड़ दिखाने वाले युवक को थमाता है। बैग इतना वजनदार होता है कि पकड़ते ही वो युवक सीधा जमीन से जा सटता है। वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़का इतना भारी बोझ कंधे पर लादे कैसे घूम रहा था। अगले ही पल जो हुआ, उसने वहां मौजूद सबकी बोलती बंद कर दी। थोड़ी देर पहले जिसे सब अनफिट समझ रहे थे, उसने कैलिस्थेनिक्स के ऐसे दांव पेच दिखाए कि अच्छे अच्छे जिम जाने वालों के पसीने छूट गए। उसकी ताकत देखकर वहां मौजूद भीड़ दंग रह गई। कुल मिलाकर जिसे थुलथुला समझा जा रहा था, असल में वो फिटनेस के मामले में सबका बाप निकला।

अरूबा के रहने वाले एगमंड मोलिना ने गर्दन से बस खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 49 साल के एगमंड ने महज अपनी गर्दन से 21,737 पाउंड यानी 9,860 किलोग्राम बस को खींचकर अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। बताया जा रहा है कि इस भारी बस को उन्होंने 20 मीटर तक खींच दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड यूक्रेन के दिमित्रो हनुस्की के नाम था, जिन्होंने 2024 में 8,060 किलोग्राम वाली वाहन को गर्दन से खींचकर रिकॉर्ड बनाया था। एगमंड मोलिना को लोग ह्यूमन क्रेन यानी मानव क्रेन के नाम से भी जानते हैं। उनके कुछ और रिकॉर्ड काफी हैरान करने वाले हैं, जिनमें केवल उंगली से 159 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा एगमंड ने एक उंगली से 20 मीटर तक बस खींचने का रिकॉर्ड भी बनाया। इतना ही नहीं, कमर बेल्ट की मदद से उन्होंने 1,002 किलोग्राम यानी 1 टन से ज्यादा वजन उठाया था। यहाँ आपको बता दें कि एगमंड का वजन केवल 87 किलोग्राम है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि इस धरती पर एक से बढ़कर एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब हरकत कर सबको चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है, इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत नहीं कोई मशीन हो।

युवती का ये शानदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके शानदार एक्सप्रेशंस, ग्रेसफुल मूव्स और सादगी भरे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है। वो गाने की हर बीट पर इतनी सहजता और आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है कि देखने वाले उसकी तारीफ के बगैर रह नहीं पा रहे। खास बात ये कि उसके डांस में किसी तरह की बनावट या जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
2: Thank God I get to wake up.
1: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: और अब बात श्री राम की नगरी अयोध्या की करते हैं, जहां मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में चल रहा काम भी जल्द पूरा होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां 30 जून तक अपना काम पूरा कर लेंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरयू तट पर बन रहा भव्य संग्रहालय अब ट्रस्ट की प्राथमिकता बन चुका है। इस संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी।
4: सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए।
5: पहले प्रभु श्री राम का ये नया नवेला मंदिर राम भक्तों के लिए खुला और फिर मंदिर परिसर में बने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद इनके द्वार भी दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। लिहाजा देश और दुनिया भर से अयोध्या आने वाले राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का ये उत्साह और उमंग इनके आध्यात्मिक आनंद को बयां कर रहा है।
6: प्रत्येक मंदिर, चाहे परकोटे के 6 मंदिर हो, चाहे सप्तऋषि मंदिर हो, शेषावतार हो और कुबेर टीला हो, सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं ने दर्शन प्रारंभ कर दिया है। बहुत आनंद के साथ देश भर से आने वाला हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करके आनंद हो रहा है।
7: सारे मंदिरों के दर्शन हुए?
8: बढ़िया लग रहा है।
9: हम पूरे इंडिया में इतने घूमे पर ये जो सगवट है इधर वो राम अयोध्या की बहुत बढ़िया रही और बहुत दर्शन बढ़िया से किए।
7: किसके किसके आप दर्शन किए मंदिर में?
10: सबका, राम जी के परिवार का, राम जी का, सबका, रामलला का, बहुत अच्छा लगा।
5: इस बीच श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर और दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिसर में चल रहा दूसरा काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केवल रखरखाव से जुड़ी टीम ही परिसर में मौजूद रहेगी। हालांकि परिसर से बाहर ट्रस्ट कार्यालय, विश्राम गृह और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का काम चलता रहेगा।
11: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया था कि शहीद स्तंभ, पूरे स्तंभ जो है स्मृति का, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य बाकी नहीं है और LNTTCE भी अपना कार्यभार 30 जून को यहाँ पूर्ण करके उनकी टोली चली जाएगी। केवल वह टोली बचेगी जो एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर देख रेख के लिए।
5: नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर की पूर्णता के बाद अब ट्रस्ट का पूरा जोर सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय के काम को पूरा करने पर है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक विशेष गैलरी प्रभु राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित होगी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि संग्रहालय में एक ऐसी दिव्य दर्शन गैलरी होगी जहां श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होगा मानो वो स्वयं मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे हों।
11: एक यह अवश्य अब निर्णय ले लिया गया है कि म्यूजियम में, संग्रहालय में एक गैलरी इस प्रकार की होगी जहां की ऐसा लोगों को लगेगा जब वो उस गैलरी में जाएंगे कि वह मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। यानी उसमें सभी मंदिर जो बने हैं उन सब का एक तरीके से दर्शन, तो वह दिव्य दर्शन की गैलरी होगी। भगवान की मूर्ति का दर्शन, राम परिवार का दर्शन, बाकी सभी मंदिरों का दर्शन। तो वो आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के तहत उस कार्य को किया जाएगा।
5: वहीं संग्रहालय में देश के विभिन्न भाषाओं, लिपियों और कालखंडों में लिखे गए राम साहित्य और रामायण की दुर्लभ पांडुलिपियों को भी रखा जाएगा, ताकि शोधार्थियों और युवाओं को शोध के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकने की जरूरत न पड़े। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, राम साहित्य और अध्यात्म पर शोध का विश्व स्तरीय मंच भी बनकर उभरेगा।
12: जब हमारे पास सभी तरह के रामायण एक जगह पर केंद्रित होंगे तो शोधार्थियों के लिए कितना लाभ होगा। अब वो शोधार्थी भाषा पर काम करेंगे, राम शैली पर काम करेंगे, लिपि पर काम करेंगे, लिपि के विकास पर काम करेंगे, भाषा विन्यास पर काम करेंगे और राम कथा पर बात करेंगे। तो उनके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, एक उनके पास बहुत बड़ी क्या कहेंगे एक उनके पास बहुत बड़ा विकल्प रहेगा कि उनको शोध के लिए ना अब कहीं ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया नहीं जाना पड़ेगा।
5: कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के बूते अयोध्या न सिर्फ इस वक्त धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी चमक बिखेर रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच।